0: चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं मन में एक गांठ अब भी है, क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बच्चियाँ आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
2: देखो हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि हम माओ को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान ले तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो 1000 घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है। पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अधेरों में पनपता है।
0: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
2: एक और डर बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे। पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं। लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
2: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूं?
2: कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर माँ नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
0: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा

0: लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है। और खासकर बेटियों के मामले में हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
1: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं। हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है, फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुंचेगा।
0: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी, आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी, पहले बस घबरा जाती थी। यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है, यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है

0: स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: यूविन का नाम तो सुना है पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
0: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो। तकनीक मदद के लिए है, छाटने के लिए नहीं।
2: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
0: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तक तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
2: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
1: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
0: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
2: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
1: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
2: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
1: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
2: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
1: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
0: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का अधिकार नहीं है। और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है। सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं, जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
1: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर तारीख मिलेगी। किसी ने UN कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल। पर तुमने पूछा ना? हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प हैं। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
0: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
1: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
0: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
1: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
0: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो UVIN पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
1: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है, पर लिखी चीज साथ रहती है।
0: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
1: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है। पहले जो डर था, अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
0: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
1: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है, अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
0: सही। और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
0: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
1: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई, एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
0: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
1: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है, क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से तो फर्क साफ दिखेगा।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा, नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
1: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
0: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
1: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिक कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच,

0: सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दे, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दे और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दे। ध्यान दे, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहां तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी खास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में, पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है, और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुलगैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में, ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. अब बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है, पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसकी सफाई करते हैं. अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं. बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर पानी में, जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो. जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए, और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं. दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं, और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलीथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलीथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। ये सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है, और फिर हम लोग को जहाँ भी उसे लगाना है उसको हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं, वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाती है।

0: वाली विधि है। इसके लिए एक से दो वर्ष की आयु का कल्म सबसे उपयुक्त होता है। यदि कल्म अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का, उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो। और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कल्म के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़े और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहां हम लोग को लगाना है वहां पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियां जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग है सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सिन है थिया बेडाजोल है इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट जो कि भारत चीन कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा, मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं, जो कि जो ये एफिड्स है वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करके इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो ब्लैक मिल्ड्रिव, ये जो है आप सब इसमें भी क्या होता है कि काले रंग की चूर्ण, आपको ऐसा लगेगा कि पत्तों के ऊपर एक चूर्ण, काले रंग का चूर्ण आ गया है, और ये भी डंठ जैसे जैसे संक्रमण फैलता जाएगा ये पत्तियों की ऊपरी सतह से नीचे निचली सतह पर और फिर जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उन पर ये फैलने लगती हैं। इसके लिए भी हम लोग जो फफूंदी नाशक है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसका मैनेजमेंट में देखें कि इसको कैसे हम लोग रोकेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को जो कैनोपी होती है, जो कैनोपी है पौधे की, उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है, तो इस वजह से जैसा पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में, और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र, और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का, आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कॉम्प्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा, आपका अलमीरा, और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है, जो जो कास्ट है, जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है। तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि मॉडल्स, कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है। और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्मों, जो उचित किस्म है बांस की, उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को, विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं, उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का हम लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना। बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले, जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है, किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना, और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना, और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना, ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी, और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तो ही जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य के किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

കൃഷി. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा. और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण. और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं

0: तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, पशुपालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है, और इस वजह से काफ़ी परेशानियां भी होती हैं पशुओं को भी और पशुपालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
1: देखिए, टीका वही चीज़ है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो यदि पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो टीका पशु के अंतर्गत, पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है। रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है, और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम से कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में उदिन वीक, एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
0: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण ज़रूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें, या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें, और उसमें ये चीज़ पशु जो डॉक्टर्स होते हैं, यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं, आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए, और क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत जरूरी होता है कि उसके महत्व को समझे, और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की, और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
1: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो, उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं, जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रति सीरम एंटी सीरम कहते हैं, और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोअन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन, वो बदलते रहते हैं। तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखने चाहिए।
0: तो यहाँ पर किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण, यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के, और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। आपके आप जितना स्वस्थ रहेंगे, आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से, आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
1: देखिए, किसान बंधुओं के लिए सबसे ज़रूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान, उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है, तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता, और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है, इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के ही समय अवधि पर किया जा सकता है,
0: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र
1: हार्ड
0: होता है।
1: हार्ड टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है, उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, एफएमडी में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। एफएमडी रोग यदि देखा जाए खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरियंट्स हैं, एशिया ए ओ करके आता है, तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी है थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। आप कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
0: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताए 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

കൃഷി. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों, आप सभी का उन्नत कृषि में. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में. और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं. तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए. तो टीकाकरण कराने के

0: अभी भी जो परहेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो, ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें। चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है बिल्कुल। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें, जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें। कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है, तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें। बछड़ा है, बछड़ा को एक साथ रखें, जो गाय है उसको एक साथ रखें, बाछी को एक साथ रखें। अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें, और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है, और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रख रखाव की, और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है। अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है, और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा।
0: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है, आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से, यह विषाणु जनित रोग।
1: हाँ, ये किस जानवर में देखा जाता है?
0: ये गाय और भैंस में देखा जाता है, बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है,
1: गाय और
0: भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको, यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है। इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया। कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है, गला, इसलिए इसका नाम गलघोटू रखा गया है। यह जीवाणु जनित रोग है।
1: अच्छा,
0: ठीक है। इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, यह भी जीवाणु जनित है, यह भी गाय भैंस में होता है। यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसा सड़न सा रोग हो जाता है, मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है। अच्छा। इसलिए इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बुल नहीं पाता है।
1: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
0: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है, और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता है, और बहुत ही संक्रामक बीमारी है, एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है। इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं, इससे
1: ब्रुसेलोसिस
0: इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है।
1: अच्छा।
0: यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं, ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है।
1: इसमें
0: मृत्यु तो बहुत कम होती है लेकिन यह जो है एबॉर्शन कॉज करता है, पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती, बछड़ा मिलता, वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है।
1: अच्छा।
0: यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा, और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं।
1: ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
0: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज, एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है, और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है, आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा मुँहपका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं, आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
1: और सर, इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुँहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है, यह पशुओं में पाए जाने वाला प्रमुख रोग

0: जो विषाणु द्वारा फैलता है, यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें टीकाकरण कराएँ। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
1: पॉलीवेलेंट,
0: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात को रोकता है। जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स। इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है। 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताए और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताए। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
1: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज
0: प्रिकॉशन कहते हैं, बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं उसे, आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
1: चेक करवाएं या फिर कुछ
0: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
1: थनेला रोग
0: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
1: हमारे यहाँ
0: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
1: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए और उनके, जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा।
0: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में बंधा हुआ है और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
1: लेकिन मनुष्य की जैसे जुबान नहीं है,
0: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है। आप उसकी आंख देख करके, उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वह स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है,
1: इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
0: सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में मई जून जुलाई अगस्त सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएँ और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएँ और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन वो उसका शरीर
1: जो पोषक तत्व तो उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है,
0: हाँ एब्जॉर्व नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य के किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे। और बहुत

सारी बातें जानेंगे, बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है, और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था, तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्थल हैं उसके प्रमाण काफी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि इसकी जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते है ना, तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या हुआ, लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए, बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे, जो इधर उधर फैले हुए थे, अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के, वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे। और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का, कि वो व्यापार कर सके। और यहां भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहां से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में।
तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे। पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे, तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है, जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं, वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं, जो कपड़े पहुँच रहे हैं, वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो। उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर हैं वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं। पावर लूम है और आधुनिक डिज़ाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं, बहुत ईजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिज़ाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है, और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कंपटीशन आ गया है क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं, सुंदर चाहते हैं, फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो। तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है, जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं, वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है। और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत, जैसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का, वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है, और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है। और ये खास तौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो
आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपने जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए आज अंग उमंग कार्यक्रम में। इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है?
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है। इसमें असंख्य जीव विद्यमान है, उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है। तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारे कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में। तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है। ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है, उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं। और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है, और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है। तो ये कैसे? क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है, जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है। और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है, उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं, और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है, और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है। तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं। मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है, और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है, वो गैस का जो एक्सचेंज है, उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीद और रंध्र और बृहत रंध्र जो है, वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में, इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से, पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं। और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व, यानी सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व, न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है, जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है, उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्म जीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन

0: जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है। अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्म जीव जीवाणु का रोल क्या है, तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो उसको क्या करता है, ये जीवाणु जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमाइनो एसिड रिलीज होता है। अमाइनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा और उस अमाइनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये स्यूडोमोनास स्पीसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमाइनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो टोबैक्टर हो गया, ये जो एस्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, तो ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम आयन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम क्या करता है, तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रिडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे, तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू डीएपी या एसएसपी या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है किसके साथ, आयरन के साथ, एल्युमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फास्फोरस या तो H2PO4- और HPO42- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमीडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का पीएच क्या है। तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम अपने माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फास्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फास्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फास्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज नेक्स्ट चीज है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो वो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, जिसको इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मैच्योरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्मजीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु में ये है सूक्ष्मजीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्मजीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसिलस थुरिंजिएंसिस ये क्या है ये भी रोग के रोकथाम में पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो या रोगों को कंट्रोल करने में हो या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए अब हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्मजीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्मजीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी धन्यवाद। साहब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्मजीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है वायु मंडल का जो प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी ये अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती है यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा, वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है रेजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50-250 kg प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसिस का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो PSB बायो फर्टिलाइजर है, और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जो सब्जी वाले फसल हो गए, तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे देखा गया कि लगभग 15 से 40 kg तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है। और जब उससे वो नाइट्रोजन

इसका भी 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का। तो वो क्या करते हैं, उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5 से 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अल्गी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 केजी प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी वाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अल्गी का कल्चर नीलहरी सवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, पौधा को अवेलेबल कर उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम एक केजी सॉरी 25 से 30 ग्राम एक केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा सनलाइट ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार, जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें तो हम लोग बिचरा जो 20-21 दिन का बिचरा हो जाता है उसको लगाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचरा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचरा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम
वो बिचड़ा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सूटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये मेथड, ये विधि

0: है जिसको हम बिचरा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचरा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, दो 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा, और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फाइटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, ये सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है, जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है यानी कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ, इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है, क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है, 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वायबिलिटी अच्छी होती है, और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें ज़्यादा अच्छा, उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सनलाइट से तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद
1: सर, आपने सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। दोस्तों आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। हमारे दैनिक कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के बारे में। जी हां, आजकल जैसे हमारी दिनचर्या बिगड़ती जा रही है, हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज एक तय आयु वर्ग के लोगों को ही हुआ करती थी, आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक में डायबिटीज का खतरा मंडराता रहता है। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाता है। जब एक गर्भवती महिला को डायबिटीज होता है तो ऐसे में सिर्फ उस महिला को ही खतरा नहीं होता है बल्कि उसके होने वाले बच्चे को भी बहुत खतरा रहता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े के अनुसार हर साल 21 मिलियन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज हो जाता है, यानी कि हर 6 गर्भधारण में से एक को मधुमेह प्रभावित करता है और इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का, बहुत सारी जानलेवा स्थितियों का खतरा बना रहता है, जैसे कि प्रीक्लिम्स या स्टिल बर्थ या प्रसव आघात जैसे जानलेवा स्थितियों का खतरा काफी बढ़ जाता है और इसके काफी सारे दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं, जैसे कि माँ और बच्चे दोनों को टाइप 2 मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों का आजीवन खतरा बना रहता है। अगर गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज कंट्रोल नहीं किया जाता है तो बच्चे के विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चे का विकास रुक सकता है, बच्चा या तो कमजोर पैदा होगा या फिर बहुत ही मोटा। डायबिटीज के दौरान क्या होता है कि गर्भ में बच्चे के आसपास का पानी कम हो जाता है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बहुत सारी परेशानियां आती है और इसी दौरान बच्चे को भी शुगर हो सकता है। कुछ महिलाओं को डायबिटीज पहले से होता है और कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज क्यों होता है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है वो एक हार्मोन पैदा करता है और ये हार्मोन खून में चीनी को बनाता है और खून में जब चीनी बनता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, यानी कि पैनक्रिया जो चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है वो आमतौर पर पर्याप्त इंसुलिन बनाता है जिससे डायबिटीज का खतरा नहीं रहता है। और अगर पैनक्रिया जितना जरूरी है उतना इंसुलिन बना पाने में कामयाब नहीं रहता है, सफल नहीं रहता है, तो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है जिससे प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाता है। अभी तक तो हमने कारण जान लिया है, आइए अब जानते हैं कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उसे पहचाने कैसे। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो गया है तो उनमें कुछ सामान्य से लक्षण दिखते हैं, जैसे कि उन्हें बार बार पेशाब आता है, उनका वजन तेजी से घट जाता है, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, इसके साथ ही थकान भी उन्हें बहुत ज्यादा होती है। कुछ महिलाओं में तो आंखों से भी कम दिखने की समस्या हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हुई है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से जांच करवाते रहना चाहिए और इसके साथ ही कुछ और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को शुगर हो गया है तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें अपना खान पान, शारीरिक गतिविधि, इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अपने खाने से कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम कर देना चाहिए, तेल, घी, चावल, आलू, मिठाई और तली हुई चीजों से बचना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, उन्हें हर रोज अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए और डॉक्टर ने जो भी बताया है वो तो फॉलो करना ही चाहिए। इसके अलावा इसके साथ ही डॉक्टर ये भी सुझाव देते हैं कि समय समय पर अल्ट्रासाउंड करवाते रहना चाहिए। तो हमारे मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान मधुमेह से पीड़ित हो गई हैं तो क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अपना विशेष ध्यान रखे तो माँ भी स्वस्थ रह सकती है और साथ ही उनका आने वाला बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और जो खतरा होता है उसे भी कम किया जा सकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज होता है, तो क्या वो गर्भवती नहीं हो सकती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो गर्भवती हो सकती हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। आज के समय में बात करें तो मधुमेह विश्व भर में 8 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित करती है और ये बीमारी हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, अंधापन और अंगों के विच्छेदन का एक प्रमुख कारण है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना, खास तौर से जब आप प्रेग्नेंट हैं, तो विशेष ध्यान रखें ताकि आपका बच्चा भी स्वस्थ रहे और आपके बच्चे को आपसे मधुमेह ना मिले। और ऐसे ही ढेरों जानकारी के लिए हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।
2: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
3: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
2: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
2: तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी तई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
3: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: باشی. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और कृषि में आज हम किसी फल या सब्जी के बारे में या फिर किसी अन्य तरह के फसल के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं फूलों की खेती से आय के नए अवसर के बारे में। हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है लेकिन खेती नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है और क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर स्वप्निल भारती मैम। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद
0: मैम। आपसे पहला जो सवाल है वो ये है कि फूलों की खेती आज के समय में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है उमा। और सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि आज के समय में क्या हो गया है कि फूलों की खेती सिर्फ एक पारंपरिक कृषि गतिविधि नहीं रह गया है। अभी क्या है कि तेज़ी से ये जो फूलों का डिमांड है हमारा वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये एक उभरता हुआ व्यवसाय है और ये उद्यमशीलता आधारित क्षेत्र बन चुका है। यदि हम कुछ वर्ष पहले की बात करते हैं तो फूलों का उपयोग मुख्य रूप से सिर्फ धार्मिक कार्यों या फिर पूजा पाठ या फिर घर की सजावट इन्हीं सब चीज़ों में किया जाता था, यहीं तक सीमित था हमारा फूलों का उपयोग। लेकिन अगर वर्तमान समय की हम बात करते हैं तो समाज में जो हमारा है या फिर समाज में और बाज़ार में इसकी ज़रूरतें जो हैं वो बदल रही हैं। अभी इसकी उपयोगिता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी फूलों की मांग हमारी इवेंट मैनेजमेंट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चाहे वो हमारा शादी हो या फिर कोई भी कॉरपोरेट इवेंट्स हो या फिर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सब में हमें फूलों की सजावट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसके साथ साथ कोई भी शादी होती है हमारे घर में या फिर कोई पूजा का समारोह हो रहा है, उस समय भी हमारा जो फूल है वो एक अनिवार्य हिस्सा है हमारे जिंदगी का, जीवन शैली का। इसी प्रकार होटल्स में

0: हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में जो कट फ्लावर्स होते हैं, जो डेंटल वाले फूल होते हैं, जो ताज़े होते हैं, उनकी उपयोग से वातावरण जो है वो आकर्षक होता है, साथ ही साथ प्रीमियम लुक देता है वो होटल्स में। तो इससे क्या है कि जो वो होटल का जो भाव है वो भी बढ़ जाता है, जो कमरे का रेंट, वो सब चीज़ें भी हम फूलों की वजह से वो सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा हाँ, साथ ही साथ जो फूल है उसका सिर्फ हम सजावट के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये परफ्यूम या फिर जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी इसका कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका उपयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करें अगर कुछ फूलों की, गुलाब हो गया हमारा, रजनीगंधा है, जास्मिन है जिसे हमारे प्रदेश में चमेली के नाम से हम जानते हैं, तो इनका इत्र या फिर इनसे जो गुलाब जल बनाते हैं हम, जल या फिर इत्र, उसका उपयोग हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं और इन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में हम इसके साथ साथ गुलाब या फिर गुलाब हो गया, कार्नेशन हो गए, ऑर्किड हो गए, इन सब के डंठल भी हम एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा जो है वो भी अर्जित हो रही है और किसानों की जो आय है वो सिर्फ हमारा सीमित नहीं है सिर्फ हमारे यहाँ देशी मुद्रा के लिए, वो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। तो इसी वजह से किसानों की जो आय है वो भी हमारी वृद्धि हो रही है। तो इसी बढ़ती मांग को अगर देखा जाए तो किसान को जो पारंपरिक फसलें हैं हमारी उसके तुलना में अगर हम फूलों की खेती कर रहे हैं तो वो आपको अधिक लाभ दे रहा है, क्योंकि ये कम समय में आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं और साल भर आप खेती कर सकते हैं, आप बार बार फूल तोड़ सकते हैं, 4-6 महीने में ही आपने कितनी बार डंठल तोड़े, कितनी बार आपने फूल तोड़े। तो इस वजह से जो है हमारा डिमांड जो है, जो मार्केट में जो उपलब्धता है फूलों की, हमेशा बरकरार रह रही है और हमारे किसान इसे अच्छा अर्जित कर रहे हैं, अच्छी कमाई उनकी हो रही है।
1: तो मैम, हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन कौन से फूलों की ऐसी किस्में हैं जो सबसे अधिक लाभदायक माने?
0: ये सबसे ज़रूरी है हमारे किसी भी प्रकार की जब हम खेती करते हैं किसान भाई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस परिस्थिति में हम कौन सा कहाँ पर ये अनुकूल है, कौन सा ताप, ये एरिया जो है हमारा, वो बिहार प्रदेश जो है हमारा, उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें उगा सकते हैं। तो इसमें आप कम लागत में, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे जो प्रमुख हमारा जो फसल है, जो सबसे प्रमुख जो फूल है वो है गेंदा, जिसकी मांग जो है वो हमारी पूरे वर्ष किसान भाई बनी रहती है, चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, सजावट हो, किसी भी चीज़ों में हमारा गेंदा जो है वो हमेशा उसकी मांग बनी रहती है। इसको लगाना भी, और सबसे है कि ये तीनों सीज़न में, जो हमारा ग्रीष्म ऋतु हो या फिर वर्षा ऋतु हो या फिर शीत ऋतु हो, ये तीनों सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत रहती ही रहती है। तो अगर आप गेंदे की खेती कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ इसे प्राप्त हो सकता है। दूसरा जो है वो है गुलाब। गुलाब भी बहुत अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि आपको पता है कि इससे इसका जो कट फ्लावर है वो हमारा ईस्टर में, क्रिसमस में, मदर्स डे में या फिर न्यू ईयर में, वैलेंटाइंस डे में, इन सब समय में हमारा कट फ्लावर जो है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसके अतिरिक्त भी पूरे साल कोई ना कोई फंक्शंस, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, ये सारी चीज़ें भी आती रहती हैं, या फिर शादियों का समारोह चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उन सब में भी हमें कट फ्लावर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो गुलाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जिसका डिमांड हमको पूरे साल मिलती रहता है। गुलाब में ही आपको जो देसी गुलाब है उसकी भी खेती अगर आप कर रहे हैं तो आप उसे गुलाब जल बना सकते हैं, या फिर आप उसे पंखुड़ी बना सकते हैं, फिर आप उसको मिठाइयों में यूज़ कर सकते हैं, उसका फिर रोज़ शरबत बना सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा ये फसल भी। एक बार आप इस फसल को लगाएंगे और आपको 7 वर्षों तक इसे फ़ायदा मिल सकता है। तीसरी जो फसल है किसान भाई वो है ग्लैडियोलस की। ग्लैडियोलस साल में एक बार आप लगा सकते हैं, सितंबर माह से हम लगाना उसको शुरू करते हैं, लेकिन आप 6 से 8 महीनों तक इसके स्पाइक को काट के बेच करके आप अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आपका आता है रजनीगंधा। रजनीगंधा भी एक बहुत प्रमुख फसल है और इसकी खेती बहुत ही आसान होती है। इसे आपने एक बार लगाने के बाद में आप 3 वर्षों तक इसमें फूल ले सकते हैं, जिसमें आप कट के फ्लावर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको लूज़ में, यानी खुले यानी ढीले फूलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बहुत माला बनता है शादियों में, जो हमारे वरमाले होते हैं वो भी होता है, वो आप बना करके इसको बेच सकते हैं, या फिर भगवान को अर्पित करने के लिए भी फूल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ये है उसके अतिरिक्त रजनीगंधा और ग्लाडियोलस में दो प्रमुख चीज़ें हैं, जो कि है कौड़म और इसका कंद। उसका उसे भी आप बेच करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। फिर आता है एक बहुत प्रमुख फसल, एक ऑर्किड है, जरबेरा है। इन दोनों की खेती हम पॉली हाउस में करते हैं और ये और ताकि पॉली हाउस में करके और फिर इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्लावर होता है, जो फूलों की गुणवत्ता होती है, वो पॉली हाउस में बहुत अच्छी रहती है। तो इसी वजह से हम इनकी खेती पॉली हाउस में करते हैं और फिर हम इसे बाज़ार में बेचते हैं, जो कि सजावट के रूप में काफ़ी काम आता है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूँगी कि ऑर्किड एक ऐसा फूल है जिसकी जो वास लाइफ, यानी जो आप उसको रखते हैं या फिर उसको आप कहीं सजावट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आप कम से कम वो 10 से 15 दिनों तक वो फूल बहुत फ्रेश रहता है। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन सब फूलों की खेती आप करके बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
1: तो मैम, क्या छोटे और सीमांत किसान भी फूलों की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं?
0: हाँ जी माँ जी, बिल्कुल हमारे किसान भाई, आप किसी भी कोई भी सीमांत हो या फिर कोई भी छोटे किसान हो, कितनी भी भूमि आपके पास हो, आप उसमें खेती करके आराम से अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए किसान भाइयों के पास, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत बड़े बड़े पैमाने पर भूमि नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ 1 से 2 बीघा भी ज़मीन है, उसमें भी आप गेंदा या रजनीगंधा जो मैंने आपको बताया, अगर उन फसलों की आप खेती करते हैं, तो जो आप पारंपरिक खेती जो आप कर रहे हैं दलहन का, तिलहन का, गेहूं, ये सब चीज़ों का, उसकी तुलना में हमारे किसान भाई आप 2 से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण, सबसे ज़रूरी जो कारण है वो ये है कि इन फूलों की अगर हम तुलना करें किसी भी प्रकार की फसलों से, तो इनका जो डिमांड है, इनकी जो बाज़ार में मांग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मूल्य बहुत बेहतर होता है। और अगर हम किसी सीज़न से अतिरिक्त इसको हम उगा पा रहे हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छा भाव आपको बाज़ार में मिलता है। साथ ही साथ इसकी तुड़ाई, कोई फसल जब हमारा होता है जैसे दलहन या तिलहन, उसकी तुड़ाई हम एक ही बार कर पाते हैं, किंतु इन फूलों की खेती में क्या है, आप जितना उनकी तुड़ाई करेंगे आपको उतने फूल आपको प्राप्त होते जाते हैं। तो इनकी तुड़ाई आप बार बार कर सकते हैं, बहुत बार कर सकते हैं, 3 से 4 कटाई तो आप कर ही लेंगे। तो इसकी वजह से आपको नियमित आय भी मिलती रहता है, आपको आय सिर्फ एक बार नहीं डिपेंड होना पड़ता है, आपको हमेशा मिलते रहेगा। इसके अलावा हम पॉली हाउस या फिर नेट हाउस के उपयोग से भी किसान हमारे जो हैं वो नियंत्रित वातावरण में, जो कि एक कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उसमें आप उच्च गुणवत्ता वाले फूल बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। इससे मौसम जो है वो निर्भर नहीं, मौसम पे कम निर्भर करेगा हमारा फूल का जो है, और उससे आप ऑफ सीजन जब हम उसको उगाते हैं तो आपको कीमत बहुत अच्छी मिलती है मार्केट में।
1: तो मैम, फूलों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ जी उमा, ये ना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इनमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष तौर पर हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले है कि मिट्टी और जलवायु, क्योंकि मिट्टी और जलवायु का अगर वो सही चयन कर रहे हैं, तभी हमारे जो कोई भी फूल है या फिर कोई भी फूलों की फसल है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस ज़मीन में। क्योंकि क्या है कि हर फूलों का जो है, हर फसल की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी को सैंडी लोम जो बोलते हैं हम, उस वो मिट्टी चाहिए, किसी को क्ले मिट्टी चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो प्रदेश है, उसमें हमारी जो मिट्टी है, जो गंगा के किनारे की मिट्टी होती है ना, बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें अगर हम फूलों की खेती किसान भाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छे गुणवत्ता वाले आपको फूल प्राप्त होंगे। उससे दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपके जो बीज होंगे वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले ही बीज होने चाहिए, या फिर बीज नहीं तो अगर आप पौधे खरीद कर ला रहे हैं मार्केट से, तो वो जो पौधा भी है उसका, वो पौधा काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं लगी होनी चाहिए। तो जब भी हम बीज या फिर पौधा लेकर आते हैं, तो एक प्रिकॉशनरी के तौर पर हम किसान भाई क्या करेंगे कि उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे कोई भी फफूंद नाशक। वैसे तो जो हम बीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो बैवेस्टीन या फिर थायरम के साथ में वो ट्रीट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको एक सेफ साइड पे रहना है, तो हम पौधों को, उसके जड़ को या फिर बीज जो है उसको हम, या फिर कंद होता है हमारा, कंद बल्ब कुछ भी, जो भी हमारी जो सीड प्लांटिंग मटेरियल है, उनको हम कोई भी फफूंद नाशक के साथ में आधे घंटे तक उसमें घोल बनाकर रखते हैं, उसके बाद उसको छाया में सुखाने के बाद तभी आप इसे खेत में लगाएं, तो ये बहुत अच्छा आपका प्रिकॉशनरी मेजर हो जाएगा, जैसे कि जो भी मिट्टी से जनित आपकी बीमारी होगी वो पौधों में आपकी नहीं लगती हैं। साथ ही आपको सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ताकि जो आपके पौधे हैं उनकी जो उनका जो विकास है, उनकी जो वृद्धि है वो संतुलित रहे और फूलों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती रहे। इसके अलावा जो आपकी एक सब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाज़ार में मांग, बाजार में मांग और मूल्य, ये दोनों चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। उसी के तहत हमारी कौन सी चीज़ किस एरिया में हमारी कौन सी डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसी के बेसिस पर उन्हें हमारे उन्हें उसी पर्टिकुलर क्रॉप का, उसी पर्टिकुलर फसल का खेती चयन करना चाहिए करने के लिए। उसके अलावा जो है सबसे जो लास्ट में अंत में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कटाई के बाद जो प्रबंधन, वो कैसे करेंगे, उसमें पैकिंग आपको करनी होती है, कटाई के बाद हम कोई भी फूल को तुरंत पानी में डालते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उसे दूर मार्केट में भेज रहे हैं तो आपके पास परिवहन, उसके आपके पास कोई गाड़ी होनी चाहिए उसे दूर मार्केट में भेजने के लिए। उसके बाद तुराई का समय आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कब तुराई करें। अगर आपको बहुत दूर मार्केट में भेजना है तो आप कोशिश करें कि रात में ही, शाम में ढलते ही तुराई कर ले, ताकि रातों रात आपका फूल चला जाए मार्केट में और सुबह होते ही आपकी फूल बिक्री के लिए शुरू हो जाए। अगर आप लोकल मार्केट में उसकी बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको देखना है कि आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे से 4-5 बजे तक आप अपनी तुराई कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप उसे स्थानीय मार्केट में भेज करके आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम, फूलों की खेती से जुड़े जो नए अवसर हैं वो कौन कौन से हैं?
0: हाँ, ये जो एक किसान भाई हमारा जो एक सेक्टर है वो थोड़ा पीछे रह गया है, जिसके बारे में जानकारी जो है वो अब बनी है। सिर्फ फूलों की खेती जो है वो सिर्फ फूलों तक ही अब सीमित नहीं रह गया है, हमारा जो फ्लोरिकल्चर का जो क्षेत्र है वो अब आय के कई नए, आय के यानी कि जो हमारा कमाने का बहुत अच्छा अवसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो तेज़ी से पैदा कर रहा है। और हमारे किसान और युवाओं इस चीज़ की थोड़ी उन्हें कम जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला है हमारा कट फ्लावर का इंडस्ट्री। कट फ्लावर यानी कि हमारा डंठल वाली जो फूल होते हैं, उस फूलों की आवश्यकता महानगरों में, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा ही रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा मांग है उनकी। अब महानगरों के अलावा भी अब छोटे छोटे शहरों में भी धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ने लगी है, क्योंकि अब लोगों का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलों की तरफ आकर्षण हो रहा है। किसी भी फंक्शन में कहीं भी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, शादी हो, गाड़ियों को ही सजावट करना हो क्योंकि शादियों में, तो उस समय अब क्या है कि लोगों को देखने के लिए, लोगों की आँखों को वो अच्छा लगना चाहिए, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे कट फूलों की आवश्यकता जो है वो बढ़ते जा रही है। दूसरा जो हमारा लूज फ्लावर होता है, किसान भाई लूज फ्लावर मतलब कि जो खुले फूल होते हैं, जैसे कि हमारी ये गेंदे की, तो गेंदे का माला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिक्री होता है, तो गेंदे का माला या फिर गुलाब के माले शादियों के लिए, भगवान पे चढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी त्यौहार, किसी भी समाव, किसी भी पूजे वाले कार्यक्रम में सजावट के लिए हमारे इन खुले फूलों का काफ़ी डिमांड है। तो ये दो चीज़ों की तो सब लोगों को आइडिया है कि हाँ, कट फ्लावर भी होता है, क्लूज भी होता है, पर तीसरा हमारा आता है वैल्यू एडिशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा बहुत ही इसमें ये सबसे अच्छा आय का स्रोत है, और विशेष करके हमारी महिलाओं के लिए। हमारी महिलाएं जब खेत से फूल कट जाते हैं उसके बाद, उसमें वैल्यू एडिशन का यही मतलब हो गया, जब हमने तुराई कर लिया उसके बाद हम उस फूल में क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप उनसे गुलाब है तो गुलाब जल, इत्र, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स में आप उसे भेज सकते हैं। उसके अलावा आप उसको चाहे तो ड्राई करके ड्राई फ्लावर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अभी फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप देख सकते होंगे कि मेहंदी में, शादियों में मेहंदी में, या फिर संगीत में, या फिर हल्दियों में, हल्दी के कार्यक्रम में आजकल फ्लोरल ज्वेलरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ों, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके भी अच्छी आय अर्जित की जा सकती हैं। फिर चौथा जो हमारा सेक्टर है, लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें क्या है कि अभी पार्क हो गया, या फिर होटल हो गया, या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्री भी होते हैं, या फिर सरकारी या फिर बहुत सारी जैसे हमारी परियोजनाएं हैं CPWD की, NTPC की, या फिर हमारे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उन सबको अब सजावट चाहिए, सबको ग्रीनरी चाहिए। तो ये ग्रीनरी कैसे आएगा? ये ग्रीनरी आएगा आपका लैंडस्केपिंग करने से। तो लैंडस्केपिंग भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसमें हम सजावट करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है इनकम का। इसमें आप छोटे से एरिया को भी अगर आप सजावट करते हैं, उसका लॉन बिछाते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा आप इनकम कमा सकते हैं। फिर एक आता है ऑनलाइन डिलीवरी का प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से आजकल आप देख रहे होंगे ऑनलाइन डिलीवरी में फर्न्स एंड पेटल्स बोल करके भी एक है, जो कि पौधों को भेजता है। लोग गिफ्ट ऑर्डर करते हैं, लोग पौधे, अभी फ्लिपकार्ट में हो गया, सब जगह अभी जितने भी हमारे ऑनलाइन डिलीवरीज है। तो आप चाहें तो आप अपना एक अलग से भी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग से भी पौधे सप्लाई कर रहे हैं, सीड सप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी हमारा बहुत अच्छा आय का स्रोत है। और सबसे लास्ट में जो है वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अगर हमारी अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता आ रही है, तो हम एक्सपोर्ट करके और हम उससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं।
1: तो मैम मतलब ये बहुत ही एक अच्छा अवसर है, जिनके पास खास तौर से छोटे ज़मीन है, छोटी जगह है, वो फूलों की खेती से बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, जिनके पास भी छोटा जगह हो, कम भूमि हो, आप छोटे मोटे फूल, आपको बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है। हमारा गेंदा हो गया, आप गेंदे से शुरुआत कर सकते हैं, आप रजनीगंधा से शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि स्थानीय मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किन चीज़ों की हो रही है, तो आप ऐसे छोटे छोटे कम कम, जिसके जिसमें लागत भी आपकी ज़्यादा ना लगे, वैसे फूल लेकर के आप ये व्यवसाय जो है वो शुरुआत कर सकते हैं बहुत अच्छे से।
1: तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी ये वार्ता आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, मुझे यकीन है, क्योंकि हमारे बिहार में फूलों की डिमांड है। बस ज़रूरत है कि आप अच्छी तरीके से डिमांड को समझें, बाज़ार को समझें और खेती शुरू करें। मैम बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी बातें बताई।
0: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप लोगों का भी।
1: तो दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

0: साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो महिलाएं होती है ना, ये जो लेडीज होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन कभी आपने सोचा है कि लेडीज फर्स्ट कहने की नौबत क्यों आई? और क्या अभी भी समाज में ये लोग मानते हैं कि लेडीज फर्स्ट यानी कि स्त्रियों को पहले मौका मिलना चाहिए? जी नहीं, आज भी हमारा समाज उसी पुरानी सोच में जकड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि समाज ने अपने सोच के ऊपर एक बदले हुए रवैया का परत चढ़ा लिया है, लेकिन आज भी उसके अंदर सोच वही है। अगर ये सच नहीं है तो ये भी सच नहीं होता कि घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर लेडीज फर्स्ट जैसी बातों को हमने स्वीकार कर लिया होता, स्त्रियों को हमने बराबर का सम्मान दिया होता, ज्यादा की बात नहीं हो रही, बराबर की, बराबरी का सम्मान दिया होता, बराबरी का मौका दिया होता, घरेलू हिंसा की वजह से, दहेज की वजह से आज भी बहुत सारी स्त्रियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। आए दिन हम नए नए केस सुनते हैं, पढ़े लिखे घरों में भी घरेलू हिंसा से तंग आकर स्त्रियां खुद को खत्म कर लेती है, या फिर घरेलू हिंसा इस कदर बढ़ जाती है कि उस स्त्री की मौत हो जाती है। तो इन सारी बातों को सोचकर जरा भी लगता है कि आज भी हमारा समाज लेडीज फर्स्ट को समझ पाया है? चलो लेडीज फर्स्ट ना सही, पर स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार मिल पाया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि आज स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का हक मिलता है तो आप जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। हाँ, वक्त बदल रहा है, बहुत जगहों पर स्त्रियां अपना परचम लहरा रही हैं, उन्हें बराबरी का मौका मिल रहा है और कुछ जगहों पर तो वो काफी आगे निकल चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां अभी भी काम करना बाकी है। लोगों को ये समझना बाकी है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों एक समान होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार 2012 से 2022 के बीच करीब घरेलू हिंसा के 13 लाख मामले सामने आए और लगातार ऐसी घटनाओं के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये तो वो महिलाएं हैं जो थाने तक पहुंची, बहुत सारी महिलाएं तो थाने तक पहुंचती ही नहीं है, उन्हें लगता है कि घर की बात घर में होनी चाहिए। अगर घर पर उनके साथ घरेलू हिंसा होती भी है तो वो सह लेती हैं घर की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन घर की इज्जत बचाते बचाते वो अपना स्वाभिमान खो बैठती हैं और इन महिलाओं के लिए उनका घर भी सुरक्षित नहीं रहता। उन्हें पता नहीं होता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। आंकड़े बताते हैं कि मानसिक और शारीरिक हिंसा की दीवारें आज भी उतनी मजबूत है, समाज चाहे जितना भी आगे बढ़ने का दावा करता हो। दोस्तों, घरेलू हिंसा के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि आज भी लोगों को लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से कम है, ज्यादा ना हो पर बराबर की तो है, बराबर का मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, दहेज प्रथा। दहेज के बारे में कितने कानून हैं, दहेज से जुड़े हुए बच्चे स्कूल में कितना पढ़ते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर दहेज लेते हैं। और विडंबना ये है कि लड़की वाले खुशी खुशी दहेज देते हैं, लड़की के जन्म के साथ ही उनके दिमाग में जो पहली सोच होती है कि इसके लिए मुझे इतने दहेज इकट्ठा करने होंगे। हमने दहेज जैसी समस्या को कितना आम बना दिया है कि ये हमें अब समस्या लगती ही नहीं है। कोई समस्या तभी खत्म होगी जब उसे हम समस्या समझेंगे। दहेज की वजह से बहुत सारी औरतें आज भी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और कई औरतें तो अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इसके बाद आता है शराब या नशा। शराब या नशे की वजह से भी घरेलू हिंसा का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, क्योंकि नशे की हालत में फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानवर से भी बदतर हो जाता है और फिर वो हिंसक व्यवहार करता है। और जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष नशे की हालत में ही घरेलू हिंसा को अंजाम देते हैं और कई बार पुरुषों पर महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी घरेलू हिंसा का कारण बनती। महिलाएं जब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं तो फिर उनके साथ कुछ भी हो वो सहती रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या, और कई बार जागरूकता की भी कमी होती है। हम अपने आसपास जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे माहौल को देखते हैं, हमें लगता है कि वही सच है, और जब आसपास घरेलू हिंसा आम हो तो ऐसे में महिलाओं को लगता है कि यही जीने का तरीका है, वो इसे मानकर अपने जीवन को जीने लगती है। और अगर कुछ महिलाओं को ये पता है कि ये गलत है, जो हो रहा है उनके साथ वो सही नहीं है, तो भी वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की इज्जत को बचाना है। ये तो कारण हो गए कि किन किन वजहों से घरेलू हिंसा होते हैं। और घरेलू हिंसा से बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो जागरूकता। महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो भी उसी चीज में ढल जाएं। उन्हें आवाज उठाना चाहिए और ये बात कि अगर हम बाहर जाएंगे तो घर की इज्जत उछलेगी। कौन से घर की इज्जत? घर तो वो होता है ना जहाँ आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर तो वो होता है ना जहाँ आप थके मांदे आते हैं और कोई आपको पुचकारने वाला मिलता है, कोई आपका ख्याल रखने वाला मिलता है। लेकिन ये कैसा घर है कि जहाँ हर रोज हर पल आप आतंक में जीते हैं कि ना जाने अगले क्षण आपके साथ क्या हो जाए, ना जाने कौन आपको क्या बोल दे, ना जाने कौन आप पर हाथ उठा दे। उस घर को घर कहना उचित है क्या? यकीन मानिए समाज आपका साथ देगा जब आप अपने लिए आवाज उठाएंगी। यकीन मानिए आपके या आपके घर की इज्जत खराब नहीं होगी अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, बल्कि आपके आसपास की लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी। ना जाने कितनी सारी लड़कियां, अगर आपकी कोई बेटी है या फिर आपकी बहन है तो उसे भी ये समझ आएगा कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अगर आप चुप रहती हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास की लड़कियों को भी चुप रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इसके अलावा शिक्षा बहुत जरूरी है। जब लड़कियां पढ़ती हैं और उनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वो अपने बल पर अपना जीवन यापन कर सकती हैं तो फिर वो मजबूर नहीं होती है घरेलू हिंसा को सहने के लिए। इसके अलावा परिवार और समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो आप बराबर के जिम्मेदार हैं। समाज के तौर पर भी हमारा फर्ज बनता है कि अगर अपने आसपास ऐसी कोई स्थिति देखे, ऐसी किसी औरत को देखे, तो उसके हक के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आए हम, तभी एक बेहतर समाज बनेगा ना। कल को आपके साथ ये हो सकता है, कल के आपकी बेटी के साथ, आपकी बहन के साथ ये हो सकता है। इसे रोकने के लिए आपको एक बेहतर समाज बनाना ही होगा। इसके साथ ही अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपके आसपास किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप महिला हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि 181, 112। इसके अलावा अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक नंबर है 9771468006, यानी कि 9771468006। इस पर आप फोन कर सकते हैं और उनसे मदद मांग सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया 181, 112, इन नंबरों पर भी आप फोन कर सकते हैं। आप एनजीओ से मदद ले सकते हैं, आप महिला संगठन से जुड़ सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। और कई बार ये होता है कि काउंसलिंग से भी चीजें ठीक हो जाती है। जी हाँ, कई बार घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा नहीं होती है और घर के लोगों की और स्त्रियों की काउंसलिंग करके भी घरेलू हिंसा जैसे मामलों को ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे जरूरी है समय पर शिकायत दर्ज कराना। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप किसी अपने परिचित के साथ, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए, उनसे मदद मांगिए। इसके अलावा अगर लगे कि आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। आपके साथ अभी जो हो रहा है उसके आगे क्या, कितना बुरा, कितना बड़ा हो सकता है आप नहीं जानती हैं। घरेलू हिंसा में स्त्रियों की मौत तक हो जाती है, इसलिए समय पर शिकायत दर्ज कराना बहुत जरूरी है। अगर हम कानूनों के बारे में बात करें, हालांकि कानून तक पहुंचने से पहले महिलाओं को अपनी सोच से लड़ना होगा। समाज को अपनी सोच से लड़ना होगा और ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा कोई किसी के खिलाफ नहीं कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हालांकि हमारे समाज में स्त्रियों को घरेलू हिंसा का सामना ज्यादा करना पड़ता है, और महिलाओं को ये समझना होगा कि ये उनकी किस्मत नहीं है, ये उन्होंने खुद चुना है। आप अगर अभी कदम बढ़ाएंगे तो आप अपनी किस्मत खुद बदल लेंगी, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। अगर हम कानूनों की बात करें, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए 2005 में एक कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। ये कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक और भावनात्मक हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। इसके अलावा कई बार महिलाओं को ये भी डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाए, फिर वो जाएंगी कहाँ, वो रहेंगी कहाँ। तो ये कानून महिलाओं को घर में रहने का अधिकार देता है और ये कानून महिलाओं को संरक्षण देता है। इसके अलावा ये कानून महिला को भरण पोषण और मुआवजा से जुड़े भी सुरक्षा मुहैया कराता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कानून हैं, लेकिन कानून तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम अपने अंदर के जंजीर को तोड़ें, हम अपने अंदर के बंधन को तोड़ें कि हमें चुप नहीं रहना है, हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना है। अगर आज आप चुप रह जाएंगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन या फिर आपके आसपास की लड़कियां भी कल को चुप रह जाएंगी कि उनके साथ भी तो यही हुआ था, वो चुप रही और उनका जीवन चल तो गया। उस इंसान के साथ उस घर में रहकर क्या फायदा जिनके साथ आप सुरक्षित ही नहीं है। याद रखिए कि घरेलू हिंसा निजी मामला नहीं है कि घर की बात है, घर में निपटा लेंगे, नहीं है। ध्यान रखिए, घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध है। चुप रहना समाधान नहीं है, बल्कि आवाज उठाना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। आप शुरुआत में ही आवाज उठाएंगी तो ये बातें आगे नहीं बढ़ेगी। और पुरुषों के लिए सबसे जरूरी सलाह कि स्त्रियों को अपने से कम आंकना बंद करें, और वो जो पिता हैं, भाई हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस काबिल बनाएं कि कल को उन्हें घरेलू हिंसा चुप होकर ना सहना पड़े। तो आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। सुरक्षित रहें, खुश रहें और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
0: Ladies first.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
2: कौन सी कहानी टीकी?
1: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
3: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
1: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
2: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
1: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
4: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नए बाग लगाने के बारे में. अभी बहुत सारे किसान भाई बहन नए बाग लगाने की तैयारी कर रहे होंगे या नए बाग लगाने के प्रोसेस में होंगे. ऐसे में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होता है. तो उन्हीं बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पवन कुमार, सर उद्यान फल विभाग से और सर असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर सबसे पहला सवाल कि बाग को लगाने का उचित समय क्या है?
1: मैडम फलदार वृक्ष का जब हम बाग लगाने की बात करते हैं तो उसका सबसे अच्छा जो समय होता है, सबसे उचित समय जुलाई अगस्त का महीना होता है. लेकिन जुलाई अगस्त का महीना इसलिए होता है कि उस समय रुक रुक कर वर्षा होती रहती है और आकाश में बादलों की वजह से दिन में तेज धूप से पौधे बच जाते हैं, साथ ही तेज़ी से उसमें व्यवस्थित भी हो जाते हैं. इसलिए जुलाई अगस्त का महीना अच्छा रहता है. लेकिन उसके लिए हमें बाग लगाने की तैयारी हमें अप्रैल मई से ही शुरू कर देनी पड़ती है.
0: अच्छा, और सर अगर बाग लगा रहे हो तो उस समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है?
1: हाँ मैडम, अगर मैं बाग लगाने की बात करूँ तो उस पर कुछ ऐसे चीज़ें हैं, चूँकि फल वृक्ष जो होते हैं दीर्घकालिक होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं. एक बार

मान लीजिए कि अगर हम भागलपुर रीजन की बात करें तो अगर यहाँ आम है, अमरूद है, लीची है, ये सब लगाएं, लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा क्रॉप लगाएं जो यहाँ पर नहीं ठंडे प्रदेश में होता है, सेब की, नारंगी की हम अगर करना चाहें तो उतना प्रॉफिटेबल या उतना कॉमर्शियलाइज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस फल का बाग लगाना चाहिए, दूसरा किस जाति का, किस प्रभेद का लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ भागलपुर में जरदालू यहाँ का जो है सो मेन फसल है, अगर हम जरदालू लगाते हैं तो यहाँ पर हमें, या मालदा ये सब अगर हम लगाते हैं तो यहाँ हमें क्या होता है कि इसका डिमांड है। लेकिन अगर यही हम अगर लगाने का, हम दशहरी की बात करें तो दशहरी का डिमांड यूपी में ज़्यादा है, तो अगर हम यहाँ लगाते हैं तो वहाँ हमारा उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। तो इसीलिए किस क्रॉप को लगाएं और किस जाति का लगाएं, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि भूमि की तैयारी, हमारी ज़मीन कैसी है, उस फल बाग के लायक उसको हम सही ढंग से तैयार करना चाहिए। फिर उसका भूमि का रेखांकन हम करते हैं कि किस तरह से लेआउट करें ताकि जो हम बगीचा लगाएंगे तो प्लांट से प्लांट की दूरी हो, या जो भी हमारा रो कतार से कतार की दूरी हो, वो ऐसे लाइन में हो जो हमारा बाद में हम इसमें इंटरकल्चरिंग ऑपरेशन जो भी करते हैं, अंतर्वर्ती खेती करते हैं, या उसमें जो भी हम खरपतवार जुताई कुराई करते हैं उसमें आसानी हो, उसके लिए रेखांकन करके ही लगाना चाहिए। प्लस गड्ढा खोदना, गर्मी में अप्रैल और मई के माह में गड्ढा खोदने की बात हम करते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद जब हम उसकी भराई करते हैं तो वो जो गड्ढा होता है उसमें जिस समय की बहुत तेज धूप, सबसे ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ 15 अप्रैल से मई के माह तक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, उस समय अगर हम गड्ढा करके और 20-25 दिन तक अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो उसके गड्ढे के चारों तरफ जितने भी कीड़े मकोड़े या जितने भी जो बीज होते हैं उसके खरपतवार के बीज गिर के पड़े रहते हैं, उनको जैसे ही नमी मिलता है वो जैसे उगाते हैं और वो फिर हमारे मेन क्रॉप को वो क्षति पहुंचाते हैं। तो सीड भी हो गया और कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, मिट्टी से जो भी संक्रमित होने वाले जीवाणु हैं वो सब उस धूप में नष्ट हो जाते हैं जब 20-25 दिन हम खुले छोड़ देते हैं। तो गड्ढा करके 20-25 दिन छोड़ना चाहिए। गड्ढा करने का तरीका है कि उसको हम आधा, अगर मान लीजिए कि आम की बात हम करें, आम का बात करते हैं तो उसके लिए गड्ढे का जो माप होता है वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, यानी 1 घन मीटर का गड्ढा करना चाहिए। तो 1 घन मीटर का गड्ढा जब करते हैं तो उसकी आधी मिट्टी को एक साइड दे लें और उसकी जो नीचे वाली आधी मिट्टी है उसको दूसरे साइड हम लोग रखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके पहले लेआउट करते हैं। लेआउट करने का कई तरीका है, जैसे वर्गाकार विधि है, आयताकार विधि है, षडभुजाकार विधि है, त्रिभुजाकार विधि है, और जहाँ पर कि ज़मीन थोड़ी ऊंची नीची होती है तो वहाँ पर हम लोग कंटूर सिस्टम में हम लोग प्लांट को लगाते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बना के उसमें हम लोग लगाते हैं। तो जो विधि हमारा जिस जगह के लिए उपयुक्त है उस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। खास करके वर्गाकार विधि बहुत ही आसान विधि है और कॉमर्शियलाइजेशन समझिए ज़्यादातर इसी विधि का ही हम लोग करते हैं, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। प्लस उसमें जो देखरेख, बाग का देखरेख भी आसान होता है, प्लस उसमें जो हम लोग खरपतवार नियंत्रण हो या जुताई करना हो तो चूंकि कतार से कतार और पौधे से पौधे को वर्गाकार विधि में रहता है तो उसमें भी आसानी होती है। तो इस तरह से हम लोग लेआउट करके और गड्ढा की खुदाई करते हैं, और गड्ढा की खुदाई करने के बाद तब फिर हम लोग उसको, जब वर्षा होने का रहता है तो वर्षा होने से पहले 20-25 दिन छोड़ने के बाद वर्षा होने से पहले उस गड्ढे को हम लोग भराई करते हैं। तो गड्ढे की भराई करने में हम लोग जो उपयोग करते हैं उसमें कुछ फर्टिलाइज़र का भी उपयोग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हम लोग कंपोस्ट का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि कंपोस्ट जितना आप उसमें लगाएंगे उतना ही आपका जो है सो गड्ढा अच्छा रहेगा, जो पौधे का विकास अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम लोग करीब एक गड्ढे में प्रति गड्ढे हम लोग करीब करीब 30-40 kg कंपोस्ट हम लोग एक गड्ढे में

0: चलते हैं तो ऊपरी जो मिट्टी हमने साइड में रखी है उस ऊपरी मिट्टी में ही हम लोग कंपोस्ट मिलाते हैं, उसमें कुछ जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास ये तीनों चीज़ का जो है सो सम्मिश्रण, जैसे यूरिया बहुत कम देना चाहिए, बल्कि यूरिया अगर हम शुरू के डोज में नहीं भी देते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर दें तो 250 ग्राम यूरिया दे दें, 500 ग्राम SSP दे दें, 250 ग्राम MOP और नीम की खल्ली अगर उपलब्ध है तो 1/2 kg कम से कम नीम की खल्ली, आम में अगर हो तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, 1 kg तक भी दे सकते हैं, ये जो है सो सारे चीज़ को मिला के हम गड्ढे की भराई करते हैं। और गड्ढे की भराई करने पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो ऊपर का सरफेस है उसको पारागोला साइड में, जैसे कि मुट्ठी जो बांधते हैं तो ये जो मुट्ठी जो ऊपर का जो हो जाता है ऊपरी हिस्सा, तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपरी हिस्सा तक उसको भराई करने चाहिए, ताकि यदि पानी पड़ता है और मिट्टी अगर बैठे तो वो समतल ज़मीन से नीचे ना जाए। अगर समतल ज़मीन से नीचे जाता है तो वहाँ पर पानी फंसने का चांस रहता है, और जब पानी फंसता है तो वह पौधे को नुकसान पहुंचाता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके उसको पिरामिड शेप में हम लोग भराई करते हैं। और जब एक बारिश हो जाती है तो फिर वो मिट्टी बैठती है, जब मिट्टी बैठ जाएगी तब फिर हम उसको करते क्या है कि पौधे से पौधे फिर से हम फीता लेके, और जितना दूरी पर हमको पौधा लगाना है, अगर 10 मीटर पर लगाना है 5 मीटर पर लगाना है, तो कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी लगा के और उसको फिर हम लोग खूंटा बांध गाड़ के और बीच में खुदाई करते हैं गड्ढे के बीच में, और पौधे को हम लोग लगाते हैं। इस तरह अगर हम लगाते हैं तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है, चूँकि जो 1 घन मीटर इसमें जो मिट्टी की खुदाई हुई तो उसका मिट्टी बहुत जो है सो भुरभुरा हल्की हो जाती है, और पौधे हमारे जो होते हैं जो नर्सरी से हम पौधे ले जाते हैं उसका जड़ जो है सो बहुत कोमल होता है, तो जब उस जड़ को अगर सॉफ्ट मिट्टी हल्की मिट्टी मिलती है तो उसका बरवार भी ज़्यादा होता है, और जितना जड़ का बरवार ज़्यादा होता है उतना उसका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, खास करके किसान भाई करते क्या है कि जब बरसात का समय आया तो नर्सरी से पौधे लेके जाते हैं और गड्ढा करके और उसको लगा देते हैं। लेकिन मैं बता दूं किसान भाइयों कि अगर आप तुरंत में गड्ढा खोद के लगा रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक तरीके से कि हम अप्रैल मई माह में गड्ढे करके 20-25 दिन छोड़ दें, उसके बाद जिस तरह से मैंने बताया कि गड्ढे की भराई करनी है उस तरह से अगर लगाते हैं तो जस्ट समझिए उसमें ये फ़र्क होता है, जो एक माँ अगर बच्चे को अगर दूध पिलाती है तो उस बच्चे का ग्रोथ, और एक वे माँ जो डब्बे का दूध पिलाती है उस दूध के विकास, उस दूध को पी के जो बच्चे का विकास होता है, तो दोनों में जो फर्क है समझिए यही फर्क यहाँ पर नज़र आता है, जो हम गड्ढा करके करते हैं और जो हम तुरंत में करते हैं। तो ये है लगाने का तरीका मैडम।
1: तो सर अगर हम आम की बात करें, अमरूद की बात करें और लीची की बात अलग अलग करें, तो इसमें गड्ढों की दूरी क्या होनी चाहिए और गड्ढों की गहराई क्या होनी चाहिए?
0: हाँ मैडम, अगर हम आम की का बाग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि पारंपरिक विधि से अगर हम लगाना चाहते हैं तो 10 मीटर का कतार से कतार और 10 मीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, चूँकि पौधा जो है जो अपना आकार लेता है, तो ऐसा हम लोग दूरी रखते हैं कि एक दूसरे पौधे का टहनी या जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से टकराए नहीं, और धूप का अच्छा जो है सो प्रवेश हो सके, ताकि धूप का जब प्रवेश अच्छा होगा तो कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप कम होगा और फल का ग्रोथ भी अच्छा होता है, और अंदर तक अगर धूप आती है तो वहाँ पर फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी ऊपर से लेके नीचे तक आता है, और अगर घना हो जाता है बगीचा तो फिर हर पार्ट में पौधे के हर पार्ट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो पाता है, और दूसरा कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। तो इसलिए आम के लिए 10 मीटर, और आजकल चूँकि ज़मीन का जोत घटता जा रहा है इसीलिए सघन बागवानी के रूप में अब 10 मीटर की जगह 5 मीटर पर हम लोग लगाना शुरू किए हैं। गवर्नमेंट भी अनुदान पर जो बगीचा लगाने के लिए अनुदान देती है तो उनका भी कहना है कि आप 5 मीटर पर लगाएं और उसका मैनेजमेंट करें, उसका कैनोपी मैनेजमेंट छत्रक प्रबंधन जो होता है वो अगर आप करेंगे तो 5 मीटर पर लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगेंगे। अगर मैडम 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, अगर उसमें 100 पौधा लगता है 10 मीटर पर, तो 5 मीटर पर अगर हम लगाते हैं तो सीधे 400 पौधे हो जाते हैं। तो कहाँ 100 पौधे, कहाँ 400 पौधे, प्लस जो ज़्यादा बड़े पौधे होते हैं अगर कटाई छटाई उसकी ना करेंगे तो उसका मैनेजमेंट भी हमको कठिन होता है, चाहे उसमें हमको कोई स्प्रे करना हो केमिकल का तो उसमें भी पौधा बड़ा होने पर हमको दिक्कत होती है, हार्वेस्टिंग करने में फल की तुराई करते हैं उसमें भी परेशानी होती है। तो इसीलिए अब हम लोग सघन बागवानी के रूप में 5 मीटर पर लगाते हैं ताकि उसका मैनेजमेंट भी आसान हो, कम हाइट रहने पर उसमें स्प्रे भी करना हो कोई चीज़ का तो हम कर सकते हैं आसानी से, उसका फल तुराई करना हार्वेस्टिंग करना तो वो भी हमारे लिए आसान होता है। और अमरूद के लिए हम लोग 5 से 6 मीटर पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखते हैं, लीची के लिए 8 मीटर कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, इसी तरह से नींबू के लिए हम लोग 6 मीटर। तो जैसा जो वृक्ष का जितना उसका बरवार होता है, जैसा उसका नेचर है उस हिसाब से हम लोग रखते हैं, लेकिन मोटा मोटी जो हमारे यहाँ फसल होती है तो ये आम अमरूद लीची नींबू इस सब का यही है।
1: सर अगर नर्सरी से जब फल के पौधे खरीद रहे हों तो उस वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: हाँ मैडम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि किसान भाई नर्सरी में जाते हैं और वहाँ से पौधे खरीद के लाते हैं और लगाते हैं, चूँकि ये बहुवर्षीय पौधा है, आज अगर हम लगाते हैं तो ये 5 साल बाद हमको फलन देता है, तो हमको पता नहीं चलता है 5 साल में अगर हम वेट करते हैं उसके बाद अगर नर्सरी वाले अगर कोई गलत पौधे भी दिए हैं, अगर सही वैरायटी नहीं दे पाए हैं, तो उस जगह भी हम लोग जो है सो 5 साल के बाद अगर उनके पास कहने के लिए जाएंगे तो वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी फलदार वृक्ष को खरीदें, जब भी नर्सरी खरीदें, तो किसी सरकारी या विश्वसनीय पौधशाला से, नर्सरी से ही खरीदें ताकि उसकी एक विश्वसनीयता बनी रहे। अदरवाइज 5 साल हम उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद अगर फल छोटा हो गया तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसकी गारंटी होनी चाहिए। दूसरा है कि पौधे जब खरीदते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो और कीट व्याधि मुक्त हो। अगर नर्सरी में ही पौधा अगर कीट व्याधि से प्रकोप से रहेगा तो फिर अगर हम बाग में ले जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको परेशानी होगी। तो कीट व्याधि से मुक्त हो और स्वस्थ पौधा हो उसको हम लोग लेते हैं। तीसरा ध्यान देना चाहिए कि कलमी पौधे, आम का अगर कलमी पौधे लेते हैं तो उसमें हम लोग कलम बांधते हैं बीजू के पौधे पर, सायन लेके उसको हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग का जो पॉइंट होता है कलम बंद जहाँ पर कि जुड़ाव होता है, उस जुड़ाव के ऊपर तथा नीचे तना समान मोटाई का अगर रहता है तो उसका ग्रोथ जो है सो अच्छे से होता है, उसमें डैमेज होने का चांसेस कम रहता है। तो वो जुड़ाव पर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जुड़ाव हमारा बहुत सटीक जुड़ाव हो और ऊपर नीचे का मोर और लेस जो है सो मोटाई जो है सो थिकनेस बराबर हो। चौथा बात ध्यान में रखना चाहिए कि पौधा बहुत ज़्यादा आयु का नहीं होना चाहिए। प्राइवेट नर्सरी में जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े बड़े पौधे रहते हैं। सवाल है कि किसान भी उस चीज़ को कहते हैं कि नहीं बड़े पौधे लगाएंगे तो हमारा प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगा, बकरी नहीं खाएगी, ये नहीं खाएगी, लेकिन एक गमले में एक पॉट में जो हमने उसका जड़ को रोक के रखा है और पौधा हमारा बड़ा हो गया, और पौधे का नेचर है कि जितना जड़ नीचे जाएगा उतना मैंने ऊपर भी उसका तना वगैरह का विकास होता है, तो ऊपर तो विकास हो रहा है लेकिन नीचे जड़ का जो है सो विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उस पौधे को ले जाके हम अपने बाग में लगाते हैं तो उस पौधे को जमीन में इस्टेब्लिश होने के बाद उस बड़े पौधे को जितना भोजन चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो जड़ सक्षम नहीं हो पाता है उतना न्यूट्रिशन देने में, क्योंकि उसका फीडर रूट उतना डेवलप नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका पौधा सुरक्षित तो बकरी से रहेगा लेकिन उसका ग्रोथ वैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप छोटे पौधे ले जाते हैं, 1 साल के पौधे, 2 साल के पौधे लेके जाते हैं, तो उसका रूट भी जड़ भी उसका अच्छा रहता है और उसको जब लगाते हैं तो वो जमीन में जाके उस जितना जड़ का ग्रोथ होता है उसी हिसाब से ऊपर का भी ग्रोथ होता है और पौधा हेल्दी और अच्छा कैनोपी लेते हुए और उसकी बरवार होती है। उसके बाद हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि पौधशाला की क्यारी से जब पौधे को निकालते हैं तो निकालते समय उसकी मिट्टी जो पिंडी हो वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, या पॉली बैग से या गमले से जब निकाल के हम पौधे को लगाते हैं तो वो जो पिंडी होता है वो पिंड हमारा नहीं टूटना चाहिए। अगर पिंड टूटेगा और जड़ में अगर हवा लग जाएगा तो फिर वो पौधा हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये पिंडी नहीं टूटना चाहिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में भी लाने में वो डैमेज होने का चांस रहता है अगर सही ढंग से उसको नहीं निकाला गया है। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। यातायात के दौरान पौधों की विशेष सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि मिट्टी के पिंडी ना टूटे। इन सब बातों का ध्यान में रख के अगर आप नर्सरी से पौधे खरीदते हैं और अपने बाग में लगाते हैं तो वो आपका दूरदर्शिता के लिए अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ अच्छा रहेगा।
1: सर ये तो बात हो गई बाग लगाने की, लेकिन बाग लगाने के बाद किस तरीके से देखरेख करना चाहिए ताकि पौधों की बढ़भाड़ सही तरीके से हो?
0: हाँ मैडम, पौधा लगा तो लेते हैं और पौधा लगाने के बाद फिर उसमें अगर हम सही तरीके से उसका प्रबंधन ना करें तो फिर हमारा पौधे का विकास उसका नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या है कि जब पौधा हम लगाते हैं तो शुरू से जब एक साल का पौधा हमारा व्यवस्थित हो जाता है तो उसकी कटाई छटाई पर ध्यान देना चाहिए कि अनवांटेड अवांछित जो शाखाएं हैं उसको हमेशा हटाते रहना चाहिए, जो ज़्यादा घना हो गया उसको हटाते रहना चाहिए। चारों दिशा में अगर पॉसिबल हो तो चारों दिशा में हम चार शाखाएं ही छोड़ें ताकि उसकी दूरी जो सो आपस में टकराए नहीं एक दूसरे का, और चार शाखाएं छोड़ने के बाद फिर वहां से जब पौधे निकलते हैं मने शाखा निकलती है तो वहां पर फिर कटिंग करके वहां से फिर चार शाखाएं छोड़ें। उसके आगे भी फिर जब दो तीन साल तक हम लोग कटाई करके उसको अगर कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो वो पौधा हमारा अच्छा रहता है। दूसरी बात रही कि अगर पौधा व्यवस्थित हो गया है तो उसको नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के मौसम में अगर सिंचाई नहीं भी करते हैं तो हमारा काम चल जाता है। जाड़े के समय में हम 15 दिन पर भी सिंचाई करते हैं, 20 दिन पर भी सिंचाई करते हैं तो वो भी हमारा चल जाता है। लेकिन गर्मी के सीजन में हम कम से कम साप्ताहिक जो है सो एक सप्ताह में जरूर हम सिंचाई करें, अदरवाइज हमारा पौधा जो है सो डैमेज होगा। और नया पौधा जब लगाते हैं तो उसमें तो दो दिन तीन दिन पर भी हमको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा बहुत अच्छा सिंचाई का प्रबंधन हो तो उसके लिए ड्रिप सिस्टम जो होता है टपक सिंचाई विधि, जिसमें कि हम एक बार जो है सो उसका पाइपलाइन बिछा देते हैं और उसके बाद उसे बूंद बूंद करके पानी गिरता है तो उससे हमारा जो है सो इरीगेशन बहुत अच्छे से होता है। सह है कि इसमें जो हम कीटनाशक वगैरह का उपयोग करने की बात आती है तो हमको सुपरविजन करते रहना है कि पौधा हमारा अगर कहीं पर इन्फेक्ट कर रहा है, शुरू में दीमक वगैरह का प्रकोप रहता है तो जब पौधा हम लगाते हैं तो उस समय ही क्लोरोपाइरीफॉस, आजकल थाइमेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग आप करें। क्लोरोपाइरीफॉस का उपयोग करने के बाद आप जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हम कीटनाशक का उपयोग करेंगे और जो वैज्ञानिक के संपर्क में रहें ताकि जब जो ज़रूरत पड़े तो दवा पूछें, पहले से उतना अति करने की आवश्यकता नहीं होती है। और शुरू में जब पौधा को स्थापित करने की बात आती है तो खास करके दीमक वगैरह का ही प्रकोप होता है, बाद में जब फलन में आता है तब हमको कई तरह की बीमारी का फेस करना पड़ता है। तो ये हुआ। दूसरा है कि अगर पौधा जो एक वर्ष का पौधा है तो उसमें न्यूट्रिशन चाहिए, उसमें जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग होना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर हम हर साल अगर उसमें नहीं करते हैं तो उसका व्यवहार सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हर साल के लिए अलग अलग, जैसे आम का पौधा अगर हम लगाते हैं तो उसमें प्रथम साल जो कंपोस्ट है उसमें एक पौधे में जो है 10 किलोग्राम और नाइट्रोजन 100 ग्राम, फॉस्फोरस 75 ग्राम और पोटास 100 ग्राम, इस मात्रा को हम प्रत्येक पौधे के गड्ढे में हम मिलाकर और उसको हम भराई कर देते हैं और उसके बाद उसका हम सिंचाई कर देते हैं। और जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो उसी डोज को हम डबल कर देते हैं, 3 साल का पौधा हुआ तो उसी डोज को हम ट्रिपल कर देते हैं। यानी कि अगर इस तरह से हम बढ़ते हुए क्रम में 10 साल तक हम बढ़ते जाते हैं तो जब 10 साल का पौधा हो जाता है तो जो 10 किलोग्राम हमने दिया था वो सीधा हो जाता है 1 क्विंटल। यानी कि एक पौधे में 1 क्विंटल अगर हम दें तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर उपलब्धता कम है तो कम से कम 50 kg तो एक पौधे में देना ही चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन, जहां 100 ग्राम हम फर्स्ट ईयर वाले को दे रहे थे तो 10 साल के पौधे में 1 किलोग्राम चाहिए, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम, और फास्फोरस 750 ग्राम और पोटास 1000 ग्राम। तो इस तरह से 10 साल के पौधे को देते हैं और 10 साल से बाद जो भी हो, 12 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, यानी कि उसके बाद हम लोग वही डोज को स्थिर रखते हैं और उसको देते हैं। इस तरह से अगर हम बाग का समुचित प्रबंधन अगर करेंगे कि उसका कैनोपी मैनेजमेंट, छतक प्रबंधन करेंगे, सिंचाई प्रबंधन करेंगे और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट हम करेंगे, तो इस तरह से हमारा जो है सो पौधे का विकास अच्छा होगा और हमारा फल बगीचा जो है सो अच्छे रूप में विकसित होगा। एक बात का और ध्यान रखना है जो मैं बोलना चाह रहा था कि जब भी आपका प्लॉट हो तो प्लॉट का जो बाउंड्री होता है, तो बाउंड्री से आप अगर 10 मीटर पर पौधे को लगा रहे हैं तो कम से कम बाउंड्री से 5 मीटर छोड़ के ही चारों तरफ लगाएं। काहे कि जब पौधा लगाते हैं तो उसका जो छत्रक होता है, कैनोपी होता है, डाली होता है, तो दोनों साइड में बढ़ता है। तो अगर हम सटा के लगाते हैं तो वो फिर दूसरे ज़मीन में वो चला जाएगा। तो इसीलिए उसकी आधी दूरी हम 5 मीटर छोड़ के, और अगर 5 मीटर पर लगा रहे हैं तो 2.5 मीटर छोड़ के, यानी कि चारों बाउंड्री में छोड़ के ही पौधे लगाना चाहिए।
1: अगर किसान भाई बहनों, अगर आप सर के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपके बगीचों में पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
2: जलवायु बदल रहा है, कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से किसान परेशान हो जाते हैं। फसल को समय पर पोषण नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग ने जलवायु को भी बदल दिया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जलवायु अनुकूल खेती अपनाए। इसके लिए हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की ओर से किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि किसान जलवायु अनुकूल खेती कर सके। अब हम जलवायु अनुकूल खेती क्यों जरूरी है इस पर आधारित एक गीत सुनाने जा रहे हैं।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिली लीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ.
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
2: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग समझते हैं। उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोंटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र के तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्राय हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है, और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है, और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है, जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों, पेड़ों, बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं, वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज़्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
2: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की अश्वशक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है, और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं, और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?

0: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं, जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों की सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुरकाव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं
1: जी।
0: भुरकाव यंत्रों को हस्त चालित रोटरी या हस्त चालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्त चालित रोटरी भुरकाव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है
1: जी।
0: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह
1: जी।
0: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हत्थे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुरकाव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं, और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है, जिसकी मदद से चूर्ण को चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो, साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया, तो वहां पे भी अलग से हम
1: डाल सकते हैं जी।
0: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे, इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं, और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे, सेम चीज यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है, और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकलकर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
1: जी।
0: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
1: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित, जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं, उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
0: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 यह है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए,
1: यानी समय का बहुत महत्व है,
0: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
1: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
0: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
1: जी,
0: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
1: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
0: हर एक जगह फैल सकता है उनकी सहायता से
1: जी।
0: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
1: जी,
0: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
1: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
0: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए
1: जी,
0: ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां जो ये बना के बेचती हैं तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
1: जी, डब्बे पे भी लिखा होता है, एक उसमें कॉशन
0: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें, यानी तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं, साफ पानी से, और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए, क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं, उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
1: जी,
0: अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए, उसे खुला में नहीं रखना चाहिए। अगर खुला में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे, चाटने लगे
1: जी,
0: जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले,
1: जाने अनजाने तो में उसको कोई
0: इसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
1: जी।
0: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें, और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं, क्लैंप हैं, नली है, नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए, प्लास होना चाहिए, रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में, तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
1: जी।
0: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
1: जी ना चलाएं
0: किसी भी सूरत में, कैसा भी जरूरत पड़े,
1: फंस जाए अगर कुछ चीजें ऐसे एहसास हो तो किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
0: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
1: जी। तो किसान भाई ये तो सावधानियों की बात हुई, हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं, ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें, क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं, ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है, शायद साल में 2 या 3 बार या 5 बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
0: किसान भाइयों, अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए, इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें। जैसे कि नंबर 1 यह है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ, हाथ चालित है तो हाथ से, इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के, ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके, बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए। कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद, उन सभी को अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें, जोड़ लें।
1: जी,
0: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से अब पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से।
1: जी
0: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए, उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो, ये आप ध्यान रखें।
1: जी।
0: अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
1: जी।
0: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वाशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोल कर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
1: जी।
0: फिर है हस्त दाबिये छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से, पहले भी मैंने बताया था, 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
1: ताकि प्रेशर बने।
0: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पर हस्त दाबिये टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
1: जी,
0: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है। तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
1: जी।
0: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें। अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें।
1: जी।
0: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है, वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें।
1: जी।
0: और चमड़े के वाशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदल नहीं है।
1: जी।
0: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन, तेल, ईंधन, एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जाँच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर, साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं। अगर वो गंदा हवा जा रहा है, मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है, तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा। ठीक है। तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं, हम चल दिए खेत में लेके अपना मशीन,
1: बिल्कुल,
0: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के 2 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा।
1: जी।
0: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है, इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद।
1: जी।
0: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे। अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
1: बंद कर
0: देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्ट

0: डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। सख्ती चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़े देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उस पे धूल और मिट्टी को न जमने दें, ठीक है। अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले, काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें
1: जी।
0: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी जरूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हो एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
1: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ न मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
0: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सके। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें। फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को, अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से जो

0: सारी सावधानियां थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
1: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 FM ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं। तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है, यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं, लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जैसे जीवन में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन को संतुलित रूप से चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे शरीर को भी अलग अलग तरह के विटामिन्स मिनरल्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के अलग अलग भागों को संतुलित रूप से चलाने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को ज़रूरत होती है कैल्शियम की। एक उम्र तक पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से कैल्शियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जैसे ही महिला 50 पार की हो जाती है उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी जो हड्डियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो 50 के पार की महिलाओं में, या फिर आपकी उम्र 50 से कम भी है, तो हो सकता है आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो। और कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानेंगे, और इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या है, किस तरीके से आप सही खान पान सही दिनचर्या के साथ कैल्शियम की कमी को ठीक कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप खान पान के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी कब होती है। कैल्शियम की कमी का मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे शरीर या फिर खून में कैल्शियम का स्तर काफी कम हो जाता है, और जब महिलाएं 50 के पार की होती हैं तो उनमें ये परेशानी खास तौर से देखी जाती है। और जब उनका मेनोपॉज होता है यानी कि उनका मासिक धर्म रुक जाता है, तब भी उनके अंदर ये परेशानी कहीं ज़्यादा गति से बढ़ती है। और जो महिला गर्भावस्था में होती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो उनके अंदर भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है, और इसी वजह से उस वक्त कहा जाता है कि जो कैल्शियम युक्त खाना है, पदार्थ है, उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसका सबसे जो सामान्य लक्षण होता है वो होता है हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में, नसों में, और हृदय के भी कुछ परेशानी आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आपकी हड्डियां ज्यादा दर्द करती है, या फिर आपको ऑस्टियोपोरोसिस का भी लक्षण दिखता है, तो फिर आपको कैल्शियम की कमी है। अगर कुछ महिलाओं के दांतों में भी परेशानी दिखती है, जी हाँ, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आप पाएंगे कि आपके दांतों में कैविटी हो गई है। आपको कभी कभार लगेगा कि आपके दांत के किनारे झड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। हाथ पैर की हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द होता है। पीठ या कमर दर्द, जैसे कि महिलाएं बहुत ही आम सी समस्या समझती और इसका उपचार नहीं करती है, ये कैल्शियम की कमी का मुख्य लक्षण हो सकता है, और ये आगे चलकर बहुत परेशानी, बहुत जोखिम का कारण बनते हैं। और जब आपके मांसपेशियों में ऐंठन होते हैं, या फिर मांसपेशियों में खिंचाव होते हैं, या फिर झटका महसूस होता है, हाथ पैर में झुनझुनी, जैसे कि हम बहुत ही सामान्य मानते हैं, बहुत ही आम मानते हैं, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग को ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर आपके हाथ पैर में झुनझुनी हो रही है तो आप को ये बहुत बड़ी परेशानी का संकेत दे रही है आपका शरीर। और कभी कभी हमारे हाथ पैर थोड़े सुन्न भी पड़ जाते हैं, और ख़ास तौर से ये जो हमारी उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां या हाथों की उंगलियां, जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी ज़्यादा होती है तो फिर आपके हाथ पैर की उंगलियां कभी कभी सुन्न पड़ सकती है। और ये अगर लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो फिर आपके अंदर कैल्शियम का स्तर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। और इसके और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है, बहुत ही आराम से आपने अपने दिन की शुरुआत की है, और फिर अचानक आपको थकान लगने लगती है, आपको कमजोरी हो जाती है, दांत और मसूड़ों की समस्या भी आपको हो सकती है। दांत तो झड़ते ही हैं, साथ ही आपके मसूड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, और इसे हम मानते हैं कि शायद दिल की कोई बीमारी होगी या फिर किसी और परेशानी से हो रहा होगा। इसका संबंध कैल्शियम की कमी से भी होता है। और कुछ महिलाओं में अगर उनका मेनोपॉज शुरू नहीं हुआ है तो भी अगर उनके अंदर कैल्शियम की कमी है तो ये सारे लक्षण तो दिखेंगे ही, इसके अलावा उनका जो मासिक धर्म होता है उसमें भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, या तो फिर वो काफ़ी देर से आएंगे, या फिर उस दौरान आपको काफ़ी दर्द होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सारे छोटे छोटे लक्षण हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी तो नहीं होती है, हाथ पैर में थोड़ा दर्द होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, झुनझुनी को जैसे कि हम बहुत ही आम सी परेशानी मान लेते हैं, पीठ और कमर दर्द को तो महिलाओं ने अपना साथी ही समझ लिया है, लेकिन अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी काफ़ी गंभीर हो गई है तो आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। जी हाँ, ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानी हो सकती है। और अगर समझे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है तो इसकी वजह सबसे साफ यही होती है कि आप कैल्शियम से भरपूर भोजन नहीं कर रही हैं।
और आपके अंदर विटामिन डी की भी कमी होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी होती है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब मेनोपॉज होता है या गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को कैल्शियम की कमी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बदल रहे होते हैं, कुछ बढ़ रहे होते हैं, कुछ घट रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी होती है। और उस दौरान मेनोपॉज के बाद या तो फिर जिस वक्त मेनोपॉज शुरू होने वाला हो या तो फिर आपके या फिर आप गर्भावस्था में हैं, तो भी आपको कैल्शियम से भरपूर भोजन करना चाहिए। और आप अगर सोच रहे हैं कि शरीर को थोड़ा कम चलाएंगे तो हमारी हड्डियां सुरक्षित रहेगी, आप जितना ज़्यादा अपने शरीर को चलाएंगे और ख़ास तौर से एक्सरसाइज, अगर आप पैदल चलती हैं, आप एक्सरसाइज करती हैं, तो आपकी हड्डियां और मजबूत होती है। एक शोध में पाया गया था कि जो महिलाएं रोज 5000 कदम चल रही हैं उनकी हड्डियां ज़्यादा मजबूत पाई गई उन महिलाओं के मुकाबले जो कम पैदल चलने का काम करती हैं। और इसके अलावा आप कुछ ऐसे दवाइयों का भी सेवन कर रही होंगी जिसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। कुछ ऐसी पाचन से संबंधित बीमारियां भी होती है जो कि कैल्शियम की कमी का कारण बन सकती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती हैं, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। और अधिक कैफीन और अल्कोहल का सेवन, अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं और कैफीन या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपको कैल्शियम की कमी होनी ही होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें होती है जो कैल्शियम की कमी का कारण बनती है, लेकिन अब हम बात करते हैं इलाज और बचाव के बारे में। कैल्शियम की कमी के इलाज से बेहतर है कि आप इसका बचाव करें, क्योंकि इलाज बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है तो उस स्तर पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सही आहार लेना शुरू कर दें। कैल्शियम के लिए दूध, डेयरी उत्पाद यानी कि दूध यानी कि दही, पनीर या फिर दही या पनीर से बने कुछ जो उत्पाद है वो आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, तिल में तो बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, और फिर आप मखाना का सेवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तिल, मखाना और गुड़ से बने जो लड्डू होते हैं वो आपके अंदर कैल्शियम की कमी को बहुत ही अच्छे से पूरा करते हैं। बादाम आप खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, और इसके अलावा आप रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठिए और ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह से, अगर ज़रूरत हो तो आप विटामिन डी की सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो पहले आप डॉक्टर से मिल लें, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हैं और ख़ास तौर से कोई दवाई खा रहे हैं, सप्लीमेंट खा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह ले ही लें। इसके अलावा आप एक्सरसाइज तो करें ही, और चलना, योगा करना और हल्का वर्कआउट करना तो आप करें ही। इसके अलावा वजन उठाने वाले एक्सरसाइज भी आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज करने में बिल्कुल नई हैं, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, तो शुरुआत बहुत ही हल्के एक्सरसाइज के साथ करें और धीरे धीरे आप एक्सरसाइज सीखें और उसके बाद करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और जब आप वेट उठाने वाले एक्सरसाइज कर रहे हैं तब तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो जिन्हें इस बारे में पता हो कि किस तरह के एक्सरसाइज कैसे करने चाहिए, उनका जो टेक्निक है वो पता हो तो अच्छा रहता है। इसके अलावा जो महिलाएं 50 पार कर चुकी हैं या फिर उनका मेनोपॉज आने वाला है और उनमें लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, उनकी जो महावारी है वो समय पर नहीं आ रही है, तो उन्हें ज़रूरत होती है कि वो जांच करवा लें। वैसे भी आमतौर पर महिला या पुरुष किसी को भी नियमित जाँच करवाते ही रहना चाहिए। आप समय समय पर ब्लड टेस्ट करवाइए और साथ ही बोन डेंसिटी टेस्ट भी आप करा सकते हैं अगर ज़रूरत आपको लगे तो। दोस्तों, महिलाओं में ना कैल्शियम की कमी आम हम समझते हैं, लेकिन ये आम नहीं है। अगर आप सही खान पान रखेंगे, व्यायाम करेंगे और अगर समय पर इसकी जांच कर ली जाए और जांच में पता चल जाए कि आपको कैल्शियम की कमी है और शुरुआती लक्षण दिखने लग जाते हैं, शुरुआत में ही पता लग जाता है, तो फिर इसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। और अगर आपके शरीर में लगातार ऐठन होता है, आपके हड्डियों में दर्द होता है या फिर आपको बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, आप खाना भी ठीक खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो एक बार आप अपने कैल्शियम की जाँच जरूर करा लें, डॉक्टर से मिल लें और वो जो भी आपको सलाह देते हैं उसे जरूर अपनाइए। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट को यहीं देते हैं विराम। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
2: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
0: टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
2: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी नई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
4: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडा क्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को एक लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट अनु। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है और आज हम आपके लिए एक और खास विषय लेकर आए हैं और विषय है हमारा खास तौर पर हमारे देश के बच्चों के लिए। जी हाँ, कुपोषण को दूर भगाना है और इसीलिए कुपोषण निवारण के बारे में, साथ ही मशरूम की उपयोगिता क्या है कुपोषण निवारण में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे मशरूम के उत्पादन की विधि क्या होती है, इसके प्रबंधन क्या है। तो खास तौर पर कुपोषण निवारण की हम बात कर रहे हैं और आज साथ ही उसमें बात कर रहे हैं हम मशरूम की। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ हैं अनीता मैम और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होम साइंस, और ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु।
0: मैम, जैसा कि अभी हम कुपोषण के बारे में बात कर रहे थे, उसके निवारण के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे मशरूम की उपयोगिता हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं हमारे श्रोताओं कि मशरूम क्या है।
1: मशरूम एक खाने योग्य कवक है जिसमें पर्णहरित नहीं होता है। इसके कारण यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। भोजन की आवश्यकता पूर्ति है तो यह मृत जैव पदार्थों तथा अन्य जैविक कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होता है। इसकी खेती हम कृषि अवशेषों जैसे गेहूं, जौ, मक्का, धान, कपास, गन्ना इत्यादि का जो कृषि अवशेष होता है उस पर इसकी खेती बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। यों कहें, यह मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, यह भी हम कह सकते हैं।
0: मतलब कि मशरूम एक खाने योग्य सब्जी है, इसको सब्जियों की श्रेणी में हमने डाला है। जो है हमारे विश्वविद्यालय की ओर से एक योजना भी चलाई जा रही है, अपनी क्यारी अपनी थाली, और उसमें मशरूम की उपयोगिता के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी कहा गया कि बच्चों को सब्जी में मशरूम दें। तो ऐसा क्यों किया गया है, यानी कुपोषण को दूर भगाने के लिए मशरूम की उपयोगिता इसमें क्या है, वो बताएं श्रोताओं को।
1: हमारे देश में बच्चों में काफ़ी कुपोषण है और इस कुपोषण को ध्यान में रखकर ही ये जो योजना चलाई गई है, अपनी क्यारी अपनी थाली, ये सब ये योजना का मुख्य उद्देश्य ही है जो कुपोषण को कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसमें जो आंगनवाड़ी है उसके माध्यम से बच्चों को मशरूम युक्त आहार देने का प्रावधान है। असल में बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके कई कारण है, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि क्वालिटी प्रोटीन की उपलब्धता हमारे बच्चों को नहीं हो पाती, जिसके कारण कि वो कुपोषित होते हैं। और मशरूम जो है एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, एक ऐसा खाद्य पदार्थ है कि जिसमें बहुत उम्दा किस्म का क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है और जिसे हम बड़ी आसानी से, इसको हम थोड़ी सी एक तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करके हम इसे अपने घर के किसी कमरे में, किसी कोने में कोई झोपड़ी बनाकर किसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम बच्चों को कुपोषण को दूर करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये इसके उम्दा किस्म का, इसका प्रोटीन की जो बात करें, इसका प्रोटीन जो पशु से प्राप्त प्रोटीन जो होता है उसके समतुल्य होता है। अब जो आपका मीट मछली अंडा से जो प्रोटीन पाया जाता है, इसके प्रोटीन को उसके समतुल्य माना जाता है। और हमारे भारत में अधिकतर आबादी जो है वह शाकाहारी है, तो उनके लिए भी यह बहुत बड़ा वरदान है कि शाकाहारी परिवार से होते हुए भी हम उम्दा किस्म का प्रोटीन युक्त आहार लें और हमारे बच्चे पोषित रहें। और इसके अलावा इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में अन्य पोषक तत्व जैसे फॉस्फोरस, थायमिन, नियासिन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, लौह तत्व, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, ये सभी पोषक तत्व पाया जाता है। इसलिए इसका यदि

0: रख देते हैं। लगभग 15 से 20 दिन के बाद माइसेलियम पूरी तरह से रन हो जाता है। 20 से 25 दिन के अंदर पहला फसल निकलता है और फिर पहला फसल तोड़ने के बाद हम उसमें लगातार नमी देते रहते हैं। फिर दूसरा फसल आता है, दूसरी फसल तोड़ने के बाद भी हम लगातार नमी देते हैं, फिर तीसरी फसल भी आती है। उसका तीन फसल लेने के बाद भी उसमें फसल आता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि तीन फसल के बाद उसे या तो पशुओं को खिला देना चाहिए या वर्मी कंपोस्ट पीट में उपयोग कर लेना चाहिए या जमीन के अंदर डाल दें कि वो कंपोस्ट में बदल जाए
1: जी।
0: और इसकी तकनीक काफ़ी आसान होती है। इसकी यदि आपको प्रशिक्षण लेना हो तो आप कृषि विज्ञान केंद्र अपने सबौर में है, भागलपुर में स्थित है, वहाँ संपर्क करके आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। और कई प्रशिक्षित किसान भाई भी हैं जो कि केवीके से प्रशिक्षण लेकर अपने अपने गाँव में भी प्रशिक्षण देते हैं, तो उन किसान भाइयों से भी संपर्क करके आप इसकी खेती कर सकते हैं।
1: अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो इस मौसम में ऑयस्टर मशरूम जो है हम उसका उत्पादन कर सकते हैं मैम, तो इसकी विधि के बारे में जैसा बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे इसके उत्पादन की विधि होगी और कैसे वो इसे लगा सकते हैं।
0: ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए सर्वप्रथम आप गेहूं का भूसा ले लें। यदि आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो गेहूं का भूसा ही लें। गेहूं के भूसा को आप रात भर भिगो दें पानी में। सुबह में जैसे आप धान को उबालते हैं धान से चावल बनाने के लिए, इसी तरह से उसको किसी बर्तन में लेकर के उसको उबाल लें। जब पूरी तरह से भाप आने लगेगा तो उसको उस बर्तन को उतार के रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी टोकरी में, साफ सुथरा टोकरी में पलट दें, उसका पानी निकलना बंद हो जाए तब उसे किसी प्लास्टिक सीट पर, साफ सुथरा निर्जीवीकृत प्लास्टिक सीट पर उसे फैला दें छांव में जहां हवा लगता रहे। फिर जब उसमें नमी लगभग 70-75% नमी बचे तब उसमें आप 10 kg जैसे आपका भूसा है तो 1 kg मशरूम का स्पॉन्ज चाहिए, उस स्पॉन्ज को उसमें मिला दें और पीपी बैग ले लें। पीपी बैग में आप मशरूम और स्पॉन्ज को पैक कर दें, फिर उसमें रबर को बंद करके लगभग 15-20 छेद कर दें, 2-3 छेद ऊपर, 2-3 छेद पेंदा और बाकी 10-12 छेद बीच में आप कर दें। उसके बाद किसी कमरे में या तो मचान बना दें या फिर शीका बना दें या फिर ज़मीन पर आधा टुकड़ी ईटा को रख के उसको रख दें, कमरे को फिर बंद कर दें और लगभग आप 15-20 दिन के बाद देखेंगे उसमें पूरा माइसेलियम रन कर गया है। तब फिर आप उसमें उसका देखेंगे कि पिन हेड निकलता है। पिन हेड निकलने के बाद 3 दिन के अंदर वो मशरूम का रूप ले लेता है। फिर आप उसको तोड़ लें और फिर नमी देते रहेंगे, फिर दूसरा और तीसरा फसल ले सकते हैं। आपसे हमने बात किया बटन और ऑयस्टर मशरूम, इसके अलावा बिहार में मैंने बताया था 4 प्रजाति का मशरूम कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्की मशरूम है और आपका दुधिया मिल्की या दुधिया मशरूम है और है पेडिस्ट्रा मशरूम। मिल्की या दुधिया मशरूम की खेती हम लोग करते हैं आपका अप्रैल मई में उसकी खेती करते हैं और जो इसकी खेती के लिए भी आपको ऑयस्टर और बटन दोनों के बीच का तरीका अपनाते हैं। दोनों कुछ भाग ये ऑयस्टर का लेता है, कुछ भाग मिल्की का ये बटन का लेता है। इसके अलावा चाइनीज या पॉल मशरूम है, उसका भी खेती हम लोग मई जून में करते हैं
1: जी। तो ये तो आपने जाना कि ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन की विधि क्या हो सकती है और इसके अलावा भी मैम ने बताया आपको कि उपयोगिता इसकी क्या है, औषधीय गुण क्या है, मशरूम के पौष्टिक गुण क्या है। और मैम अंत में ये हम जानना चाहेंगे कि मशरूम से हम कौन कौन से व्यंजन बना सकते हैं, क्योंकि प्रमुख बात यह है कि हम उत्पादन तो कर लिए लेकिन अब बारी आती है व्यंजन बनाने की, तो कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं।
0: मशरूम के लिए व्यंजन बनाने से पहले हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों बहनों को कि बहुत लोग मशरूम खरीद के ले जाते हैं फिर कहते हैं कि उनको बनाने का प्रक्रिया सही ढंग से नहीं आता, कहते हैं कि बहुत बेकार लगा। एक्चुअली ये मशरूम में एक प्रकार का गंध होता है, यदि आप प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो वह गंध रह जाएगा तो वो खाने में आपको फिर स्वादिष्ट नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि जब मशरूम तोड़ के आप हार्वेस्ट करके ले जाते हैं या खरीद के ले जाते हैं तो उसे गुनगुना पानी कर लें। गुनगुने पानी में 10 मिनट के लिए मशरूम को डुबो के छोड़ दें, फिर उसे जैसे स्पंज वाले रसगुल्ले का रस निचोड़ते हैं उसी तरह से उसको निचोड़ करके उस पानी को फेंक दें। फिर आप उसको धो करके मनचाहा तेल मसाला देकर इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप जैसे आप मटन बनाते हैं उस तरह से तेल मसाला देकर मटन जैसा इसकी सब्जी बना सकते हैं। आप इसका भुजिया बना सकते हैं, आप इसका खीर बना सकते हैं, आप इसका रायता बना सकते हैं, आप इसका भरवा पराठा बना सकते हैं, इसका आप मशरूम कचौड़ी बना सकते हैं, मशरूम का आप कोफ्ता बना सकते हैं और मशरूम का अचार बना सकते हैं, मशरूम का बड़ी बना सकते हैं, मशरूम का सुखौता बना सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना सकते हैं। इसलिए मशरूम का वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, बहुत प्रोडक्ट है, आप जो सोच सकते हैं।

0: हैं, बस यही एक लाइन में आप समझें, मशरूम का जो आप सोच सकते हैं, जो भी डिश सोच सकते हैं, वो सारा डिश आप मशरूम का बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप मशरूम मंचूरियन की ही बात करें, जैसे मंचूरियन आप बनाते हैं तो मंचूरियन में जो आपका इंग्रेडिएंट है वो सारा एसेसरी इंग्रेडिएंट, मतलब जो उसको मशरूम मंचूरियन बनाने में सहायक सामग्री, वो सारा सामग्री सेम रहेगा, मुख्य इंग्रेडिएंट की जगह पे आप मशरूम को ले लें तो आप मशरूम मंचूरियन बना सकती हैं। जैसे मशरूम पकौड़े की बात करें, फूलगोभी के पकौड़ा आप जैसे बनाती हैं वैसे आप मशरूम का पकौड़ा बना सकती हैं। तो फूलगोभी की के जगह पे आपको मशरूम लेना है, बाकी जो बेसन मसाला लेना था वो वैसा ही लेना है। तो मशरूम का आप जो सोच सकती हैं, हर डिश मशरूम का बन सकता है, लेकिन हर ये ध्यान रखें कि उसको हम लोग थोड़ा पानी के साथ प्रोसेसिंग करके उस पानी को फेंक देंगे ताकि उसका जो एक गंध है वो गंध दूर हो जाए।
1: तो यहाँ पर हमने जाना कि मशरूम के कौन कौन से व्यंजन हम बना सकते हैं, और साथ ही आज का हमारा विषय भी था कि कुपोषण निवारण में मशरूम की क्या उपयोगिता है। तो मैम ने बखूबी बताया आपको कि इसके गुण क्या हैं, साथ ही इसमें कौन कौन से पौष्टिक गुण हमें मिलते हैं, और कुपोषण को दूर करने के लिए क्या क्या इसमें विटामिन मिनरल्स और जो भी चीज़ें हैं, जो वसा फैट और इसके अलावा प्रोटीन, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं मैम ने बताया जैसे कि ये पूरक एक सब्जी है, पूरक आहार के रूप में आप इसे ले सकते हैं। तो बच्चों को अगर मशरूम मिल जाएगा तो सोचिए कि बच्चों के इस शारीरिक विकास के लिए कितना फ़ायदा होगा ये। तो इसीलिए अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के अंतर्गत अब बच्चों को मशरूम भी दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरक आहार में शामिल हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इसकी उपयोगिता के बारे में बताई और ख़ासतौर पर कुपोषण निवारण के लिए। तो आगे भी आप सभी से मुलाकातें होंगी, हम एक नए विषय के साथ आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहें 90.4।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाद सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर, मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम एक नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावे बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो, लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारे जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि एक होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉइल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली ये जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहाँ पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं जैसे कि सुटेबल लैंड को सिलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज और प्रैक्टिसेस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन का भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावे एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं, ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावे कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर, मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन। तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउटक्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है, बट वहीं हम जब देखते हैं कि कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि पैडी हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखते हैं तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है ना। तो इसका मेन कारण ये है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पॉलेंस है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो दूसरे जगह पे दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे नहीं जा पाते हैं, या तो वो ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, मेनली जो है फ्लावर्स के नेचर के बेसिस पे ही है ना। जैसे कि राइस के केस में जो है वो क्लिस्टोगेमस नेचर ऑफ फ्लावर्स होता है, जब मेज में हम देखें वहां पे ओपन पॉलिनेटेड है, विंड के थ्रू पॉलन जो है काफी दूर तक जाता है, इसलिए हम मेज के केस में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर हम रखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलरली मेज के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं और वहां पे 2 to 3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर्ड कर लेता है और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मैच्योर हो जाता है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्युमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्युमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं। फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है। इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का। इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 and 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है। 3rd and 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग के बात आती है उसका कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते हैं तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचा जाता है, बेचना होता है, तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज में, लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उसमें प्रॉपर लेबल होगा, और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है। और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है, लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहली

क्रीज पर है वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं। और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देने लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और
इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त, तो अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें। हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों एग्जाम्स चल रहे हैं और कल आपके कोर्स AST 1-to-1 यानी कि सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का एग्जाम है और आपके लिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं रेडियो रिविजन। आज के रेडियो रिविजन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश कुमार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम। ये जो कल का आप लोग का एग्जाम है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये काफी अहम कोर्स है और इसमें हम जानेंगे कि सीड के बाद सीड क्या होता है, सीड के गुणवत्ता का क्या पैरामीटर मीन सीड क्वालिटी को हम किस बेसिस पे जज करते हैं और सीड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि सीड का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि उससे हम एक नया प्लांट या नया क्रॉप ले पाते हैं। तो जो भी हमारा प्रोपेगेटिंग मटेरियल्स है वो हमारा सीड कहलाता है। इसके अलावे बॉटनिकल डिफिनेशन में हम उसको राइपेन ओव्यूल या मैच्योर ओव्यूल के रूप में डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट होना अति आवश्यक है, जैसे उसमें जो इम्ब्रियो हो लाइव हो, रिजर्व फूड मटेरियल्स हो जो कि ग्रोइंग सीडलिंग को वो फूड सप्लाई करे, इसके साथ साथ वो जो सीड है वो सराउंडेड प्रोटेक्टेड रहे, उसके जिसको हम कहते हैं कि सीड कोट कहते हैं, है ना। अब आते हैं कुछ सीड प्रोडक्शन के बारे में कि हम जो है किस बेसिस पे, किस आधार पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करते हैं। ब्रॉडली जो है दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक प्रिंसिपल्स हैं और एक एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं। जेनेटिक प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य ये है कि जो वेराइटल डिटोरेशन जेनेटिक लेवल पे होता है उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, सीड प्रोडक्शन में जेनेटिक कंटामिनेशन ना हो। तो मीन्स जो भी जेनेटिक कंटामिनेशन होगा उससे डिटोरिएट वेराइटी हमारा जेनेटिकली डिटोरिएट करेगा, तो वैसे फैक्टर को हमें प्रिवेंट करना है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि होता है डेवलपमेंटल वेरिएशन। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसका जो आइडियल लोकेशन है उसी लोकेशन में सीड प्रोडक्शन करें, क्योंकि कंटिन्यूअस सीड प्रोडक्शन करने से जो फेवरेबल प्लेस या क्लाइमेट नहीं है, इवन सॉइल फर्टिलिटी में भी वेरिएशन होने के कारण उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंटिन्यूअस कल्टिवेशन के कारण ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है मैकेनिकल मिक्सचर। जब भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो ये हम ध्यान रखें कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के टाइम में एंड प्लस सोइंग के टाइम पे किसी भी तरह का दूसरे वैरायटी का मिक्सचर उसमें सीड में ना हुआ हो, नहीं तो सीड पर्टिकुलरली ये जो है जब हम सीड सोइंग करते हैं उसमें जो है सीड ड्रिल के थ्रू दूसरे वैरायटी का सीड के साथ वहां पे सोइंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल पे हम क्लीन कर लें सीड ड्रिल को, देन हम सोइंग करें। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारा उसके कारण जो है हमारा आउटक्रॉसिंग होता है, नेचुरल आउटक्रॉसिंग है, उसको हमें प्रिवेंट करना है। इसके साथ ही कई सारे एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि सुटेबल लैंड को सेलेक्ट करना, सही टाइम पे सोइंग करना, लाइन सोइंग करेंगे हम टाइमली, हम जो भी एग्रोनॉमिकल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जैसे वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, ये सब अडॉप्ट करेंगे। साथ ही साथ सोइंग के समय में हम सीड को प्रॉपरली ट्रीट भी कर लें ताकि किसी भी तरह का सीड बॉर्न डिजीज उसके साथ ना रहे, क्योंकि यदि डिजीज हमारा इन्फेक्टेड रहेगा तो लार्ज स्केल पे वो डिजीज स्प्रेड करेगा। इसके बाद हम आते हैं कि जो सीड प्रोडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं इसको हम जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लीकेशन के रूप में करते हैं। इसका कारण ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव दो है यहाँ पे, एक तो हमको क्वालिटी को मेंटेन करना है और दूसरा चीज लार्ज स्केल पे सीड को प्रोडक्शन का भी करना है। तो इसके लिए हम जो है जनरेशन सिस्टम में सीड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो सबसे फर्स्ट जनरेशन है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस से हम लोग ब्रीडर बनाते हैं, ब्रीडर से फाउंडेशन बनाते हैं एंड फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनाते हैं। जो न्यूक्लियस एंड फाउंडेशन, न्यूक्लियस एंड ब्रीडर सीड है, इसका प्रोडक्शन विश्वविद्यालय अपने स्तर पे या ICR रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी है उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो अपना सीड प्रोड्यूस करते हैं, और जो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड है उसका प्रोडक्शन सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के सुपरविजन में होता है। इसके अलावा एक अलग कैटेगरी है जिसको कि हम ट्रूथफुली लेवल सीड कहते हैं, ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन है, जो प्रोड्यूसिंग एजेंसी है वो अपने से इन चीजों को क्वालिटी इंश्योर करती है। जितने भी मार्केट में अभी हाइब्रिड आ रहे हैं, प्राइवेट सीड कंपनी जो भी हाइब्रिड सेल कर रहे हैं, मोस्टली आपका धान का या मक्का का हो गया, या इसके अलावा कुछ वेजिटेबल सीड भी जो है वो सभी हाइब्रिड जो है एज ए मेजर, मतलब मेजर क्लास ऑफ सीड जो है वो TL सीड के रूप में ही बाजार में सेल होता है। तो ये इस कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो है कंसेप्ट है, और डिटेल में फिर हम जाएंगे कि अलग अलग क्रॉप का सीड प्रोडक्शन। तो जैसे कि इस क्रॉप में हमें पैडी का जानना है, मेजर क्रॉप को पैडी का जानना है, मेज का जानना है, लेंटिल का जानना है, मूंग का जानना है, और इनके बारे में सब चीज आप लोग जो है एक बार जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल है, आइसोलेशन डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब चीजों को कर लेना है। और सभी क्रॉप्स का आइसोलेशन डिस्टेंस ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके बारे में समझना है। क्योंकि आइसोलेशन जो भी हम अडॉप्ट करते हैं उसका मेन उद्देश्य है आउटक्रॉसिंग को रोकना, क्योंकि यही मेजर फैक्टर्स है जिसके कारण कि फील्ड लेवल पे जेनेटिक कंटामिनेशन होता है। जैसे कि पैडी का जो आइसोलेशन डिस्टेंस है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का 3 मीटर होता है, बट वहीं हम जब देखते हैं कि कुछ क्रॉस पॉलिनेटेड, क्योंकि पैडी हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में देखते हैं तो वहां पे आइसोलेशन डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है, है ना। तो इसका मेन कारण ये है कि चूंकि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो पॉलेंस है रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो दूसरे जगह पे दूसरे प्लांट पे या दूसरे फ्लावर पे नहीं जा पाते हैं, या तो वो ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, मेनली जो है फ्लावर्स के नेचर के बेसिस पे ही है, है ना। जैसे कि राइस के केस में जो है वो क्लिस्टोगेमस नेचर ऑफ फ्लावर होता है, जब मेज में हम देखें वहां पे ओपन पॉलिनेटेड है, विंड के थ्रू पॉलन जो है काफी दूर तक जाता है, इसलिए हम मेज के केस में आइसोलेशन डिस्टेंस 400 मीटर हम रखते हैं। तो यहाँ पे यदि ये जो आइसोलेशन है 400 मीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, तो लैंड यदि हम वैकेट रखें आइसोलेशन के लिए, फिजिकल आइसोलेशन करें या जिसको हम कहते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, तो इसका के कारण हम जो हमारा काफी लैंड वेस्ट हो जाता है। तो कई सारे मेथड्स भी हैं, पर्टिकुलरली मेज के केस में हम आइसोलेशन डिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और वो जो मेथड है उसको हम कहते हैं कि बॉर्डर रो का प्लांटिंग करके। जो बॉर्डर रो होता है वहां पे हम मेल लाइन को ग्रो करते हैं और वहां पे 2-3 मेल लाइन को हम सराउंडिंग में कर देते हैं। यदि और बाहर से किसी भी दूसरे प्लॉट से कोई भी पॉलन आता है या कंटामिनेट होने की कोशिश करता है, वो मेल लाइन से कंटामिनेट हो जाएगा, वो फिल्टर कर लेता है, और जो हमारा जो फीमेल लाइन है प्लॉट में, सीड प्रोडक्शन प्लॉट में, वो हमारा सेफ रह जाता है, तो वहां तक जेनेटिक कंटामिनेशन का असर नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब हम सीड प्रोडक्शन कर लेते हैं तो सीड प्रोडक्शन करने के बाद हमें ये देखना है कि सीड को हार्वेस्ट कब करना है। हार्वेस्टिंग के समय भी हमें मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नॉर्मली जो सीड मैच्योर हो जाता है वो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, कि उस समय तक जो है जितना ड्राई मैटर एक्युमुलेशन होना होता है सीड में वो एक्युमुलेट हो जाता है, बट उस स्टेज पे एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो पाता है हार्वेस्ट करना, क्योंकि जो है वहाँ उस लेवल पे मॉइस्चर कंटेंट जो है नियर अबाउट 20% के आसपास होता है। तो इसलिए हम लोग जो हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी जो पे हम सीड को हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी पे सीड का मॉइस्चर कंटेंट नियर अबाउट 16% के आसपास आ जाता है। हार्वेस्ट करने के बाद जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग एंड क्लीनिंग करके उसके बाद हम जिसको हम कि रॉ सीड के रूप में बोलते हैं, रॉ सीड के रूप में हम उसको रखते हैं। फिर इस रॉ सीड को हम फर्दर जो है उसका क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, जिसके लिए हमें सीड प्रोसेसिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है। और सीड प्रोसेसिंग प्लांट में कई सारे जो है हमारे मशीन होते हैं, जो सबसे पहला मशीन होता है उसको कहते हैं प्री क्लीनर, नेक्स्ट मशीन जो है वो कहते हैं क्लीनर, एंड थर्ड मशीन होता है हमारे पास ग्रेडर्स। तो ग्रेडर्स में कई तरह के ग्रेडर्स मशीन होते हैं, और ये ग्रेडर डिपेंड करता है किस टाइप का सीड है। यदि लॉन्ग ग्रेन सीड है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी का सीड है, तो वहाँ इंडेंटेड सिलिंड्रिकल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है, इसमें कट ग्रेन जो ब्रोकन ग्रेन है उसको रिमूव कर दिया जाता है। और यदि हमारा राउंड सीडेड है तो स्पाइरल सेपरेटर का इस्तेमाल होता है ग्रेडिंग के लिए। और इन जनरल यदि कोई भी क्रॉप है जो कि उसके लिए कॉमन ग्रेडर्स हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मशीन होता है सीड प्रोसेसिंग प्लांट का। इसमें बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी सीड को कई ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, और इसमें जो है मोस्टली जो है 1, 2, 3 और 4 ग्रेड का होता है। उसमें 1 ग्रेड एंड काफी बेस्ट क्वालिटी होता है, एंड 2 ग्रेड्स भी कह सकते हैं कि सीड का अच्छा क्वालिटी होता है, 3rd और 4th जो है उसका सीड का डेंसिटी या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो उसको हम लोग जो है रिजेक्ट करते हैं। अब ग्रेडिंग की बात आती है उसका, कि क्या जो सीड है उसको हम पर्टिकुलरली सेफ रखने के लिए, क्योंकि हम जब सीड को प्रोसेस करते होते तो इमीडिएटली जो है उसका मार्केटिंग नहीं होता है, तो उसको हम वेयर हाउस में रखना है। तो यहाँ पे भी फर्दर हमें एक बार मॉइस्चर चेक कर लेना है कि मॉइस्चर प्रॉपर एज पर जो इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मॉइस्चर हमें उसको सेफ लेवल पे करेंगे, फिर सीड को ट्रीटमेंट करते हुए पैकेजिंग करेंगे। और जब भी सीड को हमें बेचा जाता है, बेचना होता है, तो प्रॉपर लेबलिंग के बेचना होता है। जो सीड एक्ट 1966 है उसमें ये कंपलसरी है कि जब पैकेजिंग के विदाउट मीन्स लूज में, लूज कंटेनर में हम सीड को नहीं बेच सकते हैं। जब भी होगा सीड पैकेजिंग करके ही होगा और उसमें प्रॉपर लेबल होगा, और तो मेजर इस कोर्स से संबंधित जो सिलेबस है आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आज का ये रेडियो रिवीजन काफी मददगार साबित होगा। घबराना नहीं है, कल जाकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं।
1: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
0: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
1: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं
0: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
1: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
0: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
1: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
0: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है, तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
0: बिल्कुल।
1: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
1: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो चलिए आपसे शुरू करते हैं विमलेश जी।
1: जी अजीत जी, देखिए सबसे पहले ये प्रयास करें कि अपने बुजुर्गों और परिवार के उन प्रियजनों से मिलें जिनसे हमारी मुलाकात कम होती है। और हाँ, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अब तो सचमुच को समय के लिए पढ़ाई से छुट्टी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। आपकी छुट्टियों का समय एक बहुत अच्छा अवसर है अपने पढ़े हुए पाठ को दोहराने का। रोज थोड़ा समय पढ़ाई के लिए जरूर रखें, क्योंकि इससे आप जब भी स्कूल जाएंगे तो आप बेहतर कर सकेंगे।
0: लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं? ये तो फिर से पढ़नी ही होंगी।
1: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ें। जैसे पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी मदद करती हैं। और हाँ, आप राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का भी लाभ उठा सकते हैं, इसमें आपको मिलेगा रोचक साहित्य का भंडार।
0: और हाँ, आपको एक विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल पर जाएं और आपको वहाँ NCERT के पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगी। NCERT के ऑडियो बुक और वीडियो कार्यक्रम दीक्षा पर भी सुने और देखे जा सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
1: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें, सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है,
0: जैसे
1: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
0: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। अक्सर होता ये है कि बच्चे अपनी पुस्तकों या कमरे को व्यवस्थित नहीं रख पाते। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियां खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
1: जी बहुत अच्छे, एक और बात तो छूटी गई। गर्मियों की छुट्टियों में देश भर में समर कैंप चलाए जाते हैं। इन दिनों बच्चे किसी भी समर कैंप में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी कर सकते हैं, जैसे कहानी लिखना, डायरी लिखना और हाँ, कविता लिखना इत्यादि। इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
0: और इन छुट्टियों में वे कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, छुट्टियों की शुरुआत में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से मिलने का थोड़ा समय तो आपने जरूर निकाला होगा, जैसा हमने कहा था। अब जब छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं तो एक बार फिर से उनसे मुलाकात करने, क्योंकि
1: स्कूल खुलते ही बच्चे फिर से व्यस्त हो जाएंगे। तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, हमारा प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथु और मैं।
3: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथु बुलाती हूँ। कभी कभी थाथु मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथु, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
4: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।

0: होता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थातु और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातु का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातु अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थातु, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातु मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
1: अब सो जाओ।
0: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थातु से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम थातु और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। उन्हें इस वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह,
4: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
5: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
4: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
5: सन 1962, जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
6: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
7: हाँ।
5: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
4: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने

0: साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1/6 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही, उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: हां साहब।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह उठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन. दोस्तों, अगर हम औषधीय पौधों की बात करें और पुराने समय की बात करें तो उस समय वैद्य जी हाँ, अभी जो डॉक्टर हैं उस समय वैद्य जी हुआ करते थे और हमारा जो इलाज है वो जड़ी बूटियों से किया करते थे. और आज वही औषधीय पौधों के बारे में हम बात करेंगे. जी हाँ, पहले ज़माने में से जड़ी बूटी कहा जाता था लेकिन आज हम उसे औषधीय पौधे भी कह सकते हैं और जिससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं हमारे शरीर को और बहुत सारे रोग दूर किए जा सकते हैं. तो आज खेती के बारे में जानेंगे, इसके औषधीय पौधों की खेती ग्रामीण युवाओं के लिए कैसे एक रोजगार का जरिया बनता है उसके बारे में आज हम जानेंगे. क्योंकि इस अगर बात करें औषधीय पौधों की खेती के बारे में तो जब से ये कोविड काल आया है तब से भी इसकी जो है खेती में लोग दिलचस्पी लगाने लगे हैं क्योंकि इसकी मांग जो है बाज़ार में बढ़ने लग गई है. तो आज पूरी जानकारी इस पर देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर आर डी रंजन. मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से. डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. सबसे पहले तो बात करते हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में. तो क्या हमारे किसान भाई इसकी खेती हमारे बिहार में कर सकते हैं और उनके उत्पादित फसल का उपयोग किन किन काम में वो कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल. मेरे प्यारे किसान भाइयों, और जैसा कि सभी जानते हैं कि हम बिहार में ये औषधीय पौधे की खेती की जा सकती है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी अर्थव्यवस्था का कृषि मेरुदंड के समान है. बिहार प्रदेश की जलवायु तथा मिट्टी में पारंपरिक खेती के अलावा सफलतापूर्वक औषधीय एवं सुगंध पौधे की भी खेती की जा सकती है, जो हमारे प्रदेश के किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी है. औषधीय एवं सुगंध पौधों में प्रमुख सतावर, कालमेघ, सनाय, मुश्कदाना, सर्पगंधा, अश्वगंधा, पुदीना, लेमन ग्रास, सिट्रेला, तुलसी आदि प्रमुख हैं. इन औषधीय पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाया जा सकता है. जैसा कि अश्वगंधा के जड़ पत्तियों का उपयोग किया जाता है, कालमेघ का पूरा पौधा यूज करते हैं, तुलसी की पत्तियां यूज करते हैं और जो कि इसमें औषधीय गुण होते हैं. इन औषधीय पौधे का महत्व मनुष्य जाति के लिए और भी बढ़ गया है क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण एवं संश्लेषित रसायनों के उपयोग से मानव अनेक प्रकार के असाध्य रोगों एवं विकृतियां हो रही हैं जिसका इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं है. और मैं किसान भाइयों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी विगत वर्तमान में जो हमारे विश्व पर जो एक कोरोना नाम का जो अभिशाप था उसे मुक्त पाने के लिए हमारा औषधीय पौधा का सहारा लिया गया, इसलिए इसकी महत्ता और ज्यादा है. औषधीय पौधों को दवाई के रूप में तैयार कर विभिन्न रोगों के इलाज हेतु प्रयोग किया जाता है. इन पौधों से प्राप्त तेल से विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पान मसाला, दंत बंजन आदि को उपयोग में किया जाता है, जो कि किसान के लिए आर्थिक लाभकारी है.
0: जी जी, तो ये हो गई खेती की बात और किन किन फील्ड में से उपयोग किया जाता है किन किन चीज़ों के लिए. लेकिन हम बात करते हैं डॉक्टर साहब रोजगार सृजन की दिशा में, तो क्या ये औषधीय पौधे की खेती करना किसान भाइयों के लिए एक रोजगार सृजन का अवसर बन सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल. मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोग पहले जानते थे कि औषधीय और सुगंधित पौधों का काफ़ी महत्व है, लेकिन विगत वर्षों में इसकी महत्ता और बढ़ गई है. जो हमारा जो विश्व जो कोरोना नाम जो कि मैंने पहले भी बताया कि कोरोना के बीमारी से जूझ रहा है, उसमें हमारा औषधीय एवं सुगंधित पौधे से काफ़ी अच्छा इलाज करने में मदद मिला है. और अभी के वर्तमान समय में युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के सहित आत्मनिर्भरता एवं आमदनी का एक सशक्त ये जरिया है. प्रदेश के अधिकतर किसान सिर्फ जागरूकता के अभाव में व्यावसायिक खेती एवं उसके मार्केटिंग से अनभिज्ञ हैं.
0: जी,
1: किसानों के आर्थिक स्थिति को व्यावसायिक खेती से जोड़कर उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है. सरकार के स्तर पर समूह बनाकर तकनीकी आधारित खेती पर सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की जानकारी के माध्यम से युवाओं को औषधीय पौधों की खेती की ओर प्रेरित किया जा सकता है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है. बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधे की खेती, आधारभूत संरचना के विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन बाजार व्यवस्था आदि से संबंधित योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत फसल के विविधीकरण द्वारा राज्य के किसानों, ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को आय के अधिक आय का स्रोत उपलब्ध कराना है। इस हेतु गुणवत्ता पूर्वक रोपण सामग्री के व्यवहार कर देसी चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले निर्यात योग्य अत्यधिक मांग वाले औषधीय पादप का समूह में खेती करना, आधारभूत संरचना विकास करने में प्रसंस्करण मूल संवर्धन एवं उत्पादों को बाजार में व्यवस्था के लिए सहायता प्रदान करना है। कृषिकरण की इस परियोजना में वैसी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है जिसकी बाजार सुनिश्चित हो।
0: जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि औषधीय पौधे की खेती करने पर किसान भाइयों को लागत फसल उत्पादन का कितना प्रतिशत अनुदान राशि सहायता अर्थ मिल सकता है?
1: जी, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी देता हूँ। औषधीय पादप के सर्वांगीण विकास हेतु प्राप्त सहायता अनुदान बिहार सरकार के द्वारा निम्न है, जैसा कि घृत कुमारी या कालमेघ या तुलसी या आंवला, स्टीविया, सतावर, ब्राह्मणी, सफ़ेद मुसली, पिंपली, अश्वगंधा, तेजपत्ता, इस औषधीय पौधों को लगाने पर जो सहायता राशि जो सरकार के द्वारा मिलती है वो 20% है। इसके अलावा बेल, सर्पगंधा, चित्रक, कलिहारी, इस पर 50% की सहायता राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा गुगुल हैं जिस पर कि 75% सहायता अनुदान दिया जाता है। आधारभूत संरचना विकास करने हेतु सहायता अनुदान इस प्रकार हैं, जैसे कि हम नर्सरी का अगर विकास करना हो, मान लीजिए किसी औषधीय पौधे के नर्सरी का विकास करना है तो उस पर जो सहायता अनुदान दिया जाता है वो 50% है। या इसके अलावा अगर आप औषधीय पौधों को सुखाने हेतु एक सेट का निर्माण करना है उस पर सरकार 50% से 100% का सहायता अनुदान देती है। इसके अलावा भंडारण के लिए 50% से 100%, प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होती 25%, या प्रयोगशाला अगर बनाना है तो उस पर सरकार 30% का अनुदान देती है, या फसल बीमा जो इंश्योरेंस होती है क्रॉप इंश्योरेंस उसके लिए 50% का अनुदान दिया जाता है। आयुर्वेद के महत्व को पहचानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा है कि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान को खाली पड़े जमीन का इस्तेमाल औषधीय पौधे की खेती के लिए करना चाहिए। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की असीम संभावना है। अतः किसान बंधुओं से ये मेरी गुजारिश है कि वो औषधीय पौधे को लगाकर अपने आर्थिक स्थिति को और अधिक ये बना सकते हैं।
0: जी, बिहार की बात कर तो बिहार में कौन कौन से औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है और इससे कितना किसान भाइयों को लाभ मिल सकता है?
1: जी, हमारे पास बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, लेकिन जो प्रमुख है उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि इस औषधीय पौधों को अगर किसान भाई लगाते हैं तो उन्हें अच्छे आमदनी की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि पहला है तुलसी। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ सुगंधित तेलों के लिए उपयुक्त स्रोत होता है। तुलसी में जो हमें है मुख्यतः पत्तियां या बीज को हम उसे प्रमुख यूज में करते हैं। यह पौधा तिरु सुगंध युक्त 1 से 3 फीट ऊंचा होता है। तुलसी की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी एवं जलवायु में की जा सकती है, परंतु इसकी खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका पीएच का मान 5 से 8.5 के मध्य हो एवं जल धारण की क्षमता अधिक हो। इसकी बुआई बीजों के द्वारा की जाती है। बीजों को पौधशाले में तैयार किया जाता है। 1 हेक्टेयर में 600 से 800 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। बीजों की बुआई के लिए लगभग 30 दिनों के बाद पौधशाला से पौधों को उखाड़कर मुख्य खेत में 60x30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। इसके 1 हेक्टेयर में लगभग 10 क्विंटल हरी पत्तियां प्राप्त होती है जिससे आवशन विधि द्वारा 80 से 90 लीटर तेल प्राप्त होता है। इसके तेल में मिथाइल जेविकोल, मिथाइल सिग्नमेट, यूजिनॉल इत्यादि केमिकल होते हैं जो काफ़ी लाभकारी हैं। इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी का पौधा कीटनाशक, कीट प्रतिकारक एवं जीवाणुनाशक होता है। तुलसी की खेती जिन किसानों को करते हैं तो उन्हें 30,000 से 35,000 रुपए की प्रति हेक्टेयर का आय प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा दूसरा जो औषधीय प्रमुख औषधीय पौधा है वो लेमन ग्रास है। यह पूर्वी भारतीय नींबू घास के नाम से जाना जाता है। यह नींबू इसके पत्ती के द्वारा आश्वन के द्वारा इससे तेल हम प्राप्त करते हैं। इसके तेल का मुख्य घटक सिट्रॉल होता है। इसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन एवं साबुन बनाने में किया जा सकता है। नींबू घास के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु उत्तम रहती है। इसका प्रबंधन शिल्प द्वारा किया जाता है। सिंचाई की सुविधा रहने पर इसे फरवरी मार्च में अथवा वर्षा ऋतु में रोपण उचित होता है। रोपाई के 90 से 100 दिनों के बाद प्रथम कटाई करते हैं। इसकी उपज क्षमता 175 से 225 किलोग्राम तेल प्रतिवर्ष प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। और किसान भाइयों, इसे हम 60,000 से 75,000 रुपये का लाभ प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में सभी लोग जानते हैं। अश्वगंधा एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है। इसकी खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। इसकी जड़ें मूली के समान या मूली जैसी पतली एवं हल्के पीले रंग की होती है। इसके पत्ते एवं जड़ के मसलन पर अश्वमूत्र के समान गंध आती है। अश्वगंधा की जड़ों में एक उड़नशील तेल एवं विथेनियोल, निकोटीन आदि एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसके औषधीय उपयोग अनेक प्रकार के रोग में किया जाता है। यह शक्तिवर्धक, गठिया, मूत्र रोग, प्रसव काल में प्रयुक्त औषधि के रूप में काम आता है। इसकी बुआई बीज के द्वारा की जाती है। इसे अगस्त माह में लगाया जाता है एवं पंक्ति और पौधे के बीच की दूरी 20 से 10 सेंटीमीटर रखा जाता है। इसकी खेती में रासायनिक खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और किसान भाइयों, इसे लगाने पर करीब 60,000 से 90,000 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक हमारा प्रमुख औषधीय पौधा है, वो काल मेघ है। काल मेघ एक अति गुणकारी औषधीय पौधा है। इसमें एक प्रकार का क्षारीय तत्व एंड्रोग्राफिलिड या नियोड्राग्राफिलिड एवं काल मेघ ग्रीन पाया जाता है, जो स्वाद में तीव्र होता है, काफ़ी तीखा होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग वरण नाशक, जॉन्डिस, पेचिस, सर दर्द, कृमि नाशक, रस शोधक आदि में किया जा सकता है। इसकी नर्सरी मई से जून में लगाया जाता है और खेतों के लिए छायादार स्थान उपयुक्त होता है। इसकी कटाई फूल आने पर अगस्त से नवंबर के माह में करते हैं। पौधे की कटाई फरवरी मार्च में करते हैं। और किसान भाइयों, इससे हम 45,000 से 60,000 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रमुख औषधीय पौधा है शतावर। यह बहुवर्षीय आरोही लता युक्त कंद वाला औषधीय पादप है। इसकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बलवर्धक, दुग्धवर्धक, पौष्टिक एवं से गुणों से युक्त होता है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत से गुणकारी औषधि तथा खाद्य पदार्थों का निर्माण में भी किया जाता है। जैसे सतावर घी, सतावर चूर्ण, चौनप्रास, महलम आदि में के बनाने में उपयोग किया जाता है। यह सभी प्रकार की मिट्टी पर उगाया जाता है, परंतु अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए बलुई मिट्टी में इसे लगाना चाहिए। इसके खेती प्रति हेक्टेयर से 10 से 15 क्विंटल सूखी जड़ें प्राप्त होता है और जिसका मूल्य बाजार में 90,000 से 1,20,000 रुपये तक होता है तथा इससे 60,000 से 90,000 रुपया शुद्ध लाभ किसानों को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष की आय होती है। सनाए एक दूसरा औषधीय पौधा है, जो शुष्क जलवायु में उगाए जाने वाला एक झाड़ीदार औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियां एवं फली में दस्तकारक सेनोसाइड होते हैं। पत्तियों का सामान्यतः प्राकृतिक दस्तवार के रूप में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यह फसल के प्रकार के मिट्टियों में उगाई जाती है, परंतु मुख्य रूप से इसे दोमट या लाल मटियार भूमि पर लगाना उचित होता है। इसके फसल से प्रति हेक्टेयर 38,000 से 56,000 रुपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर्पगंधा एक प्रमुख औषधीय बहुवर्षीय पौधा है। इसके जड़ों में 50 प्रकार के एल्कोएट्स पाए जाते हैं। इसका उपयोग मानसिक रोग एवं तनाव, रक्तचाप, हृदय रोग, चर्म रोग, नेत्र रोग, अनिद्रा, विषनाशक आदि रोगों के औषधि निर्माण में किया जाता है। इसकी खेती नम एवं छायादार स्थानों में अन्वृत्त के साथ की जाती है। बलुई मिट्टी में जड़ों के विकास में सहायता देती है। इसकी उपज क्षमता 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जिससे किसान भाइयों आप 55 से 60 हजार रुपया की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद
0: जी। तो ये थे कुछ बातें औषधीय पौधे की खेती से जुड़ी और कैसे एक रोजगार का आप सृजन कर सकते हैं इस खेती

को अपनाकर। इसकी पूरी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी है, क्या क्या मुनाफा होगा, कैसे मुनाफा होगा, आप कौन सी औषधीय पौधे की खेती कर सकते हैं बिहार में, सारी जानकारी मिली आपको। आशा करते हैं किसान भाइयों के इस वार्ता से आप लाभान्वित होंगे और अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे इस फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको, क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नमस्कार, सेहत सही लाभ कई में आपका फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है। आज हम उस दर के बीच की दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधी बात करेंगे। क्या एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवालों ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर सच है या ये वही बात है जो बार बार दोहराई गई इसलिए सच जैसी लगने लगी। हमारे साथ हैं टीकन भाभी भी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने आपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया। सुनीता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आपसे जब हमने बात की उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बाहर ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि मैंने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो टीकन भाभी कह रही थी, पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अब भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है। शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हुए हैं, ऐसे समय पर कोई भी दखल डराती है
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। आप उन सब माओं को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं जिनकी बछिया आपकी बेटी की उम्र की है और आपकी इस बात को समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, कुछ भी हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल लगते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है। क्या एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब, नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि एचपीवी वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है। यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, अनियमित हो जाएगा, ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करे?
2: देखो, हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद ही बदलता है, खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहती है पीरियड्स पर असर नहीं।
0: ये फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं है। अब दूसरा सवाल, बांझपन, शायद सबसे खतरनाक अफवाह।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता, इन सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि एचपीवी वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली और आज वे मां हैं। एक गवाही तो साफ कहती है, 2010 में वैक्सीन ली, आज गर्व से मां है। ये अफवाह को सीधे चुनौती देती है।
1: ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही

0: की है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें, तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
0: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पहले अफवाह एक गली तक रहती थी, अब एक वीडियो हजार घरों तक पहुंच जाता है। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है, वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: हाँ, घर में भी यही होता है। पीरियड्स पर खुलकर कौन बात करता है? लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डराने वाली बात आ जाए तो वो मन में बैठ जाती है।
0: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई गंदी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं, तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
2: ये बात सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशियाई समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं? कुछ लोग कहते हैं, इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों? बाद में ले लेंगे।
0: पर आधिकारिक जनसंदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा सबसे बेहतर होती है। ये बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले। रोकथाम देर से नहीं, पहले की जाती है।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
0: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
2: अब एक सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
0: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे के बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी। हल्की अस्थायी प्रतिक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमने कितनी सारी बातों को बस किसी ने कहा के आधार पर सच मान लिया।
0: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बात सीधे उसी पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं, तो उनके शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करें?
2: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक: एचपीवी वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ते हैं। तथ्य: उपलब्ध आधिकारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक: एचपीवी वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य: आधिकारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज मां है। मिथक: अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य: समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक: मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य: मुफ्त होना इसका कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सबके लिए उपलब्ध होना है।
0: जब आप ऐसे एक एक करके बताते हैं ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब गड़मड़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, मुद्दे को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो। तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा ये टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
0: कहना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है। ये टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वो पूछे, क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं। डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वो पूछे, क्या इससे मैं आगे चलकर माँ नहीं बन पाऊंगी, तो कहो ये झूठी अफवाह है।
2: ये भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें ये महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपा कर नहीं, समझा कर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्ची से पूछा भी नहीं जाता, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
0: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है। बच्ची को समझाओ कि ये सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि ये किस लिए है। ये भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
2: बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह न हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वो हंस रही थी, कहती है अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उससे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वो बोली ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
0: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता है।
1: और मैं ये भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात ले जानी चाहिए। वहां तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भौं चढ़ा लेते हैं।
0: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बात जितनी खुलकर होगी अफवाह उतनी कम चलेगी।
2: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात। अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधिकारिक जनसंदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचान और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफ किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफ वयस्क महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: ये बात मेरे मन में गहरी बैठ गई है। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
0: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है। अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं, समझदारी है। और मेरी तरफ से, जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सच सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं, स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से, अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़ जाएंगे या बांझपन हो जाएगा कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
2: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता, सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाह तेज होती है पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओ, यहां एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़की के स्वास्थ्य से जुड़े फैसले में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उससे कहा जाता है ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शिक्षा पनप ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल। और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदारी, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है न पूछना ही बड़ी गलती है। और खासकर बेटियों के मामले में,
0: हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। ये दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों, तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
2: ये बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद सम्मानपूर्ण हो।
0: एक बात और, मैंने देखा है जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है, लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई छुपाने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
1: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
2: और ये सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है, उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चों की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सब पर। इसलिए रोकथाम को महिला का निजी मुद्दा समझना गलत है।
0: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है। फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
1: इसीलिए मैं कहती हूँ, बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ, तीनों साथ चलें। तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ गई सच में घर तक पहुंचेगा।
2: अब एक छोटा अभ्यास। मान लीजिए कोई आपसे कहे, मैंने सुना है HPV टीका लगने के बाद लड़की मां नहीं बन सकी। आपका जवाब क्या होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधिकारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले टीका लिया और आज मां हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। ये चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें। एक, HPV वैक्सीन से पीरियड्स प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, ये बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पांच, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। छह, डर को दबाइए मत, पर उसके जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
0: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले बस घबरा जाती थी।
1: यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरे को समझा पाना भी है।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहां जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा, और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर हैं टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूसरी है, प्रक्रिया की। कहां जाएं, किससे पूछें, कागज क्या लगेंगे, भीड़ होगी या नहीं, कहीं लौटना ना पड़ जाए। हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती है।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम की है जब वो लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म व बिना डर सेवाओं के लाभ उठा सकें। इसीलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं, कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना। उपलब्ध सरकारी प्रचार सामग्री में साफ बताया गया है कि HPV वैक्सीन 14 वर्ष की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। यानी पैसा ना होना सही इलाज के लिए बाधा नहीं है, सुरक्षा जेब की मोहताज नहीं है। यही सरकार द्वारा निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी सोच है।
1: ये बात मेरे दिल को छू गई लगी, क्योंकि सच कहूं, अगर ये बहुत महंगा होता तो शायद हम टाल देते। हम जैसे घरों में बीमारी से ज्यादा कभी कभी इलाज का खर्च डराता है।
2: और यही कारण है कि मुफ्त उपलब्धता कोई छोटी बात नहीं, ये बराबरी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहर के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार, सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
0: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आई है तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा, ANM या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथा, जहां लागू हो UWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए, पूछने में शर्म ना करें। स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
1: UWIN का नाम तो सुना है, पर सबको मोबाइल चलाना थोड़े आता है।
2: बिल्कुल सही, इसलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल, इंटरनेट, OTP ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो।

0: तकनीक मदद के लिए है, छांटने के लिए नहीं।
1: ये बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना, सब आसान नहीं। तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ। यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं को किसी सरकारी केंद्र पर ले चले। बहुत अच्छा आइडिया है, पास वाले में चलते हैं। तब तक हमारे स्रोतों को सेहत सही लाभ कई का गीत सुनाइए।
1: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टेकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है, उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों की भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: मैं तो सच कहूं, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली। पर जब वहां बैठी ANM बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वही उतर गया।
2: यही तो भरोसा बनाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहां बैठा इंसान भी होता है। अगर वो सम्मान से बात करे तो सेवा का असर दुगना हो जाता है।
1: और यही एक बड़ी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के मामले में।
0: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा ये अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, ये जुड़ा हुआ है।
2: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आधिकारिक संदेश साफ कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीनेशन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
1: और उपलब्ध सरकारी संचार में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो लड़कियों की बात है, हमसे क्या लेना।
0: यही बात मेरे मन को लगी। मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, जब कुछ लक्षण होंगे तब देखेंगे, पर तब तक देर हो जाए तो।
2: इसलिए जागरूकता जरूरी है। जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुप्पी और देर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।
1: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में ये सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर। ऐसे में क्या करे।
0: यही तो हुआ मेरे साथ। एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने निकलूंगी तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
2: इसलिए निर्णय की धुरी साफ रखो, घर की राय सुनो पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है पर झूठ का अधिकार नहीं है।
0: और अब मुझे ये भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वो सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वो जिम्मेदार है।
2: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
1: ये बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचारकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए SSL के जैसे कार्यक्रम जरूरी हैं जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ फिर तारीख मिलेगी। किसी ने यूएन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
2: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक, नहीं तो केंद्र पर भी जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
2: यही नागरिक समझ है। मुझे नहीं आता कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए कहना अधिकार है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवा में जानकारी मांगना झिझक का नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि ये लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसी चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
2: यही सूचना असमानता है। सुविधा होती है पर खबर नहीं पहुंचती, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाह भी पहुंच जाती है। इसलिए जानकारी को सिर्फ जारी कर देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना जरूरी है।
1: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर करता है जब वो गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
2: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बात होती है।
1: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, एएनएम या डॉक्टर से पूछें कि एचपीवी वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यूविन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड, वीडियो या बिना स्रोत के दावे को अंतिम सच न माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से न हिचकें।
0: ये सूची मैं लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाता है पर लिखी चीज साथ रहती है।
2: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
1: बहुत सुंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके को लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसकी जगह एक जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
2: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपनी पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली। ये उपदेश नहीं, अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जेठानी को भी कहूंगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वो हमेशा कहती है, हमारे लिए कौन सा समय है? अब मैं कहूंगी, समय नहीं बनता, निकालना पड़ता है।
2: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने की बात नहीं, अपने जीवन की कीमत पहचानने की बात है।
1: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है, बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
2: और मैं यही कहूंगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
1: बहुत सही, यही है सेहत सही लाभ कई। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 साल की है तो अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी लें, और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम और सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। 1. 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है। 2. जहां सुविधा हो, यूविन पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो, सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। 3. डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। 4. सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण है। 5. परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। 6. सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। 7. जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना और उसे लेना दोनों आपकी ताकत है। और साथियों, यहां एक बात और जोड़ना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में न लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होता है जब व्यवस्था जवाबदेह हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
2: और जवाबदेही दो तरफ की होती है, व्यवस्था को समझाना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
0: अब मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ता है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनना पड़ता है, आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी संदेश जीवित रहता है।
1: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और संस्थानों के साथ दूरी जैसी चुनौतियां हों। हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा। नहीं, असली काम तब पूरा होता है जब घर की महिला कहे, मुझे समझ में आ गया।
0: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है, अब मुझे पता है क्यों है, कहां मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
2: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
1: और एक अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी न मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध न हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
0: अब मैं ये भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, टिककर करना पड़ता है।
1: और शायद यही इस पूरे सिलसिले की सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता।
3: इन पंछियों को उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
4: कौन सी कहानी टीकी?
3: उस जालिम शिकारी की, जो आया था करने पंछियों का शिकार।
5: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
3: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को चुपके से बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ। माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ। तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल, अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
5: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
3: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा, सभी सुनो एक जरूरी बात, अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ। टीका सुरक्षित है, टीका जाने व बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुँचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं।
7: सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन, और ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जहां जुले जाता है आपको हरियाली से खुशहाली की ओर. और जहां तक हम उन्नत कृषि की बात करते हैं, इसमें हम किसान भाइयों के लिए, किसान भाई जो भी खेती करते हैं उससे जुड़ी परेशानियों की बात करते हैं, हम विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं खेती से जुड़ी. तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो काफ़ी खास है, और इसकी भी खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है. ये हमारे हर चीज़ में हमारे काम आता है, और मैं बात कर रही हूँ बांस की. बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियाँ एवं उनकी खेती, ये हमारा आज का विषय है. और इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अर्पणा पांडे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में. और आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे. तो सबसे पहले तो मैडम, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: मैडम. बांस क्या होता है, तो किसान भाई खास इसके महत्व को जानते होंगे. बांस जो है वो एक, इसके संक्षिप्त परिचय को कृपया दीजिए.
1: बांस को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसके हम लोग हरा सोना, गरीबों की लकड़ी, सभी का मित्र, इन सारे नामों से बांस को जाना जाता है. बांस एक ऐसी प्रजाति है जो ध्रुवों को छोड़कर सभी जगह पे मिलती है, और भारत में अगर इसको देखें तो ये कश्मीर घाटी को छोड़कर पूरे भारत में मौजूद है. और बांस सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक पौधा है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और अगर हम इसके जैव भार की दृष्टि से देखें तो इसकी उत्पादक क्षमता जो है वो बहुत अधिक है, और अन्य कृषि भी वृक्ष से अधिक है, इसलिए इसका बहुत ही उपयोगी है ये. और अगर हमारे देश में देखें तो पूरे जो वन है उसमें 13.96 मिलियन हेक्टेयर जो इसका क्षेत्रफल आंका गया है, और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल और बिहार में इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है. देश का लगभग 60% जो बांस है वो का उत्पादन है वो यहीं से प्राप्त होता है. और बिहार में मुख्यतः जो प्रजातियां हैं बांस की, उसमें बैम्बूसा बैम्बस, बैम्बूसा टुंडला, बैम्बूसा बालकुआ, बैम्बूसा बुल्गैरिस, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस और डेंड्रोकैलमस हैमिल्टनाई, ये जो है सबसे उपजाई जाने वाली, मुख्यतः उपजाई जाने वाली जो बिहार में, ये सारी प्रजातियां हैं.
0: जी जी. अब बांस लगाने की विधि के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे.
1: बांस लगाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले जो है, पहला है बीजों की सीधी बुआई. ये हम बुआई तब करते हैं जब बीज की बहुताया मात्रा में बीज हमारे पास उपलब्ध होते हैं. इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि बांस का जो बीज है उसको हम लोग क्यारी बनाकर लगाते हैं, और बीज का जो जमाव है वो 5 से 10 दिन में हो जाता है, और एक सप्ताह के अंदर ही एक पत्ती की अवस्था में बांस जो है वो प्राप्त कर लेता है. फरवरी से जून माह में के मध्य में बांस के बखारों से कलम से हम लोग बीज को इकट्ठा करते हैं, और बीज गिरने तथा एकत्रित करने से पहले हम लोग को साफ बीज चाहिए, इसलिए हम लोग को उसे एकत्रित करना है तो सबसे पहले हम बांस के वृक्ष के नीचे एक साफ कपड़ा बिछाते हैं, फिर बांस के पौधों को हिलाकर उसमें हम लोग ताज़ा बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसकी सफाई करते हैं.

0: अगर हमें उस समय पे नहीं लगाना है तो उसको हम लोग सुखा कर वायुरोधी डब्बों में इकट्ठा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर हमें उन्हें लगाना है तो हम लोग उसकी सीधी बुआई करते हैं। बोने से पहले बीजों को 48 घंटे पानी में भिंगो कर रखना चाहिए, और फिर पानी में जिस पानी में उसे भिंगाए हैं हम लोग उसमें हम लोग को कवकनाशी को मिला देना चाहिए ताकि बीजों पर कवक का कोई भी प्रभाव ना हो। जो सीधे बीजों की बुआई हेतु उपजाऊ भूमि में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की खुदाई करके बीजों को लगाना चाहिए, और जो हम लोग उसको लाइन वाइज लगाते हैं तो उसमें हर एक लाइन के बीच में 4 से 6 मीटर का अंतराल होना चाहिए, और बोने के बाद हम लोग उसको हल्की मिट्टी से ढक देते हैं। दूसरी विधि जो है जिसमें हम लोग लगाते हैं बीजों को, तो उसमें है पौधा रोपण। इसमें हम लोग सबसे पहले पौधे को नर्सरी में उपजाते हैं, जिससे कि जो हम लोग इस विधि से जब लगाते हैं तो उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो क्यारियां बना के जो ऊपर क्यारियों में हम लोग इसको लगाते हैं, और एक सप्ताह में ही जो नन्हे पौधे बांस के उगते हैं उसको हम लोग थैलियों में डालकर, जिसको हम लोग पॉलिथीन बैग भी कहते हैं, उस पॉलिथीन बैग में डालकर उसको हम लोग हल्की सिंचाई देते रहते हैं। इस सामान्यतः 1 से 2 माह में जो पौधा है वो रोपण हेतु तैयार हो जाता है, और फिर हम लोग को जहाँ भी उसके उसे लगाना है उसको हम लोग वहाँ पर ले जाते हैं। जो जिन गड्ढों में हम लोग को लगाना है, जो हम लोग गड्ढा तैयार करते हैं वो 30x30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और हम लोग को ऐसे जगह का चुनाव करना चाहिए जो कि जहाँ पे वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, मतलब जब बारिश हो तो वहाँ ज़्यादा जल जमाव की परेशानी ना हो, और सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे जो ये चूहा है जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं, तो हम लोग को उसका भी ध्यान रखना है ताकि इसका जो हम लोग अच्छे से इसको लगा सके। तीसरी विधि जो आती है बांस को लगाने में, उसमें हम लोग प्रकंदों द्वारा रोपण। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रकंद जो निकलते हैं बांस से, तो हम लोग प्रकंदों को समूह में भी लगा सकते हैं और एकल प्रकंद में भी हम लोग लगा सकते हैं। एकल प्रकंद में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर हम लोग बिना किसी इसको नुकसान किए हुए लगा सकते हैं, और इसमें हम लोग एक उचित दूरी हम लोग को लगाना होता है ताकि जो जब बांस का पौधा बड़ा हो तो उसमें किसी तरीके का दोनों एक दूसरे, जो दो पौधे निकल रहे हैं वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाए। जो अगली विधि है वो है ऑफसेट रोपण। ये सबसे आसान और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसके लिए 1 से 2 वर्ष की आयु का कलम सबसे उपयुक्त होता है। यदि कलम अधिक बड़ा है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और 1 से 1.5 सेंटीमीटर उसको तिरछा काट कर जिस प्रकंद से वह पैदा हुआ है उसे जड़ सहित उसी आकार में हम लोग लगाते हैं, और उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि कम से कम उसमें एक आँख हो। प्रकंद को इतनी ग्रीवा से काटा जाता है ताकि जो हम लोग कटाई कर रहे हैं तने का उसमें कोई भी दरार या फिर जो मातृ तना है उसमें कोई भी नुकसान ना हो, और प्रकंदों को हम लोग एक आद्र युक्त बोरी में रख कर हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है। आर्द्रता हम लोग को इसलिए रखनी होती है ताकि जो उसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो होते रहे। यदि वर्षा में देरी होती है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी होती है। यदि रोपण क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है तो हम लोगों को ऑफसेट को वर्षा के मौसम से पहले रोपा जाना ज़्यादा अच्छा है ताकि जब वर्षा आए तो वो अधिकतम वृद्धि हो उसमें। कलम के चारों तरफ हम लोग को साफ सफाई भी रखनी जरूरी है ताकि तने जो है वो तेजी से बढ़ें और खरपतवार का कम उस पर इफेक्ट हो और कंपटीशन भी कम हो। इस विधि से सबसे ज़्यादा हम लोगों को सफलता मिली है। अगली जो विधि है इसमें हम लोग तना कटिंग द्वारा रोपण करते हैं। इसमें हम लोग तना की कटिंग को सीधा या लिटा कर हम लोग अलग अलग कलियों में काटते हैं, और इस कटिंग को हम लोग 100 मिलीग्राम नैप्थलिन एसिटिक एसिड को 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और फिर जो ये तना की कटिंग है उस घोल में हम लोग डालकर छोड़ देते हैं और जो छेद है बांस में जो अंदर खोखलापन होता है उसमें हम लोग मोम भर देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस जो घोल बनाते हैं हम लोग इस घोल में 24 घंटे तक उसको रखना है और जहां हम लोग को लगाना है वहां पे हम लोग को 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाना है और जो कटे हुए तने हैं उसको हम लोगों को भूमि में सीधा खड़ा कर देना है। तो ये थी हमारी 5 विधियां जिससे हम लोग बांस की खेती आसानी से कर सकते हैं
1: जी। इसके बाद मुख्य रोगों की हम बात करते हैं, बांस में कौन कौन से मुख्य रोग लग सकते हैं?
0: बांस की बात करें तो बांस में जो प्रमुख रोग हैं सबसे पहले डैम्पिंग ऑफ है जो कि एक फंगल बैक्टीरिया है और ये भारत और चीन में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है ये रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोगों का सबसे अच्छा तरीका है कि जिन क्यारियों में हम लोग बांस को लगा रहे हैं उन क्यारियों में उतना ही पानी दें जितना की जरूरत है और उन क्यारियों पर छाया ना पड़ने दें। धूप का उचित प्रबंधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई भी जैसे कि बेवेस्टीन है जो कि एक फफूंदी नाशक दवा है इसका हम लोग प्रयोग करके जो बांस है उसको हम लोग इस डैम्पिंग ऑफ से बचाया जा सकता है। फिर आपका जो अगली रोग है जो आता है वो है स्मट। ये आपको सबसे ज़्यादा इसका फैलाव मिलेगा चीन भारत और जापान में और ये जो स्मट है आपको बैम्बूसा स्पीसीज जो है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बीज उपचार करेंगे और जो फफूंदी नाशक है जैसे कार्बोक्सीन है थिया बेडाजोल है इन फफूंदी नाशक दवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगली जो बीमारी है स्मूट मोट जो कि भारत चीन कोरिया और जापान और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में इसको देखा गया है जिसके लिए इसके नियंत्रण के लिए मिट्टी की खुदाई और जुताई के समय ही जो हम लोग इसका रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम लोग इस रोग पर हम लोग नियंत्रण कर सकें। फिर आपका जो अगली रोग है वो है सूटी मॉल्ट। इसका लक्षण ये होता है कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपरी सतह पर स्पॉन्ज के रूप में कुछ आपको दिखाई देगा मतलब फफूंदी से वो मतलब काले रंग की फफूंदी से ढक जाएगी और धीरे धीरे ये आपको पत्तियों से शुरू होकर शाखाओं तक फैलती है। इसके लिए हम लोग एफिड्स का यूज़ करते हैं जो कि जो ये एफिड्स है वो प्राकृतिक शत्रु हैं सूटी मॉल्ट्स के

0: है जो कैनोपी है पौधे की, उसको हम लोग इस तरीके से वैसे स्थान पे मतलब हम लोग को बांस लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे धूप और हवा दोनों ही उनको आसानी से मिले, कहीं भी उनको छाया ना हो, क्योंकि ये जो फफूंदी है ये जो है वो छायेदार जगहों पर बहुत तेजी से फैलता है।
1: इसके बाद बांस की उपयोगिता के बारे में बताएं।
0: अभी तक हम लोगों ने देखा कि बांस क्या है और उसमें कौन कौन से रोग हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे बांस की उपयोगिता। बांस तो अभी के समय में इस तरीके का है कि आप अपने प्रायः रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग अब बांस से बनी वस्तुएं या फिर जो हम लोग फर्नीचर्स या हर जगह हम लोग देख सकते हैं। बांस बहुत सस्ता भी है, तो इस वजह से जैसा पहले भी हमने बताया कि बांस जो है वो गरीबों का मित्र और हरा सोना भी कहा जाता है, तो ये बहुत सस्ता है। तो बांस का सबसे पहले हम लोग भवनों में, भवन बनाने में और छप्पर जो होता है जो हम लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, तो उस में छप्पर में भी हम लोग इसका एक सांचे के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बांस जो है उसका हम लोग मछली पकड़ने की बांसी, फूलदान, छड़ी, छाता, सीढ़ी और बहुत सारे कृषि यंत्र और अब जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है उसमें हम लोग बांस की एक जैसे जैसे हम लोग पानी की बहाव के लिए हम लोग अपने इस रीजन में बिहार के एरिया में हम लोग पाइप और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग पहाड़ी एरिया में देखेंगे कि वहाँ पे वो लोग बांस को ही बीच से काट के जो बीच का जो बांस के बीच का जो खाली जगह होता है उससे वो लोग लगा देते हैं किसी भी झरने के पास, तो वो एक तरह से काम करता है पाइप का एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का आपको पानी भेजने में। फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं झूला बनाने में, मच्छरदानी बनाने में, फिर अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप किए गए हैं जिससे कि हम लोग फर्नीचर्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स में हम लोग कंप्रेस्ड करके बांस को सोफ़ा आपका अलमीरा और वो वैसे फर्नीचर्स होते हैं जिनकी जो अगर मजबूती के हम लोग सापेक्ष में देखें तो जो लकड़ी है जो जो कास्ट है जो हम लोग जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में वो उसके आसपास उसका मजबूती रखता है, तो इस वजह से हम लोग जो देख रहे हैं कि इसका फर्नीचर्स में तो हम लोग यूज़ करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग बांस के बीज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, जो नए पौधे रहते हैं उसका हम लोग अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फिर खांसी और दमा रोग में भी इसका हम लोग आयुर्वेदिक इस्तेमाल करते हैं, तथा जो इसके पत्ते होते हैं इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पशुओं के चारा बनाने में। और अभी आप लोग सुनते होंगे कि कृषि वानिकी, तो बहुत सारी अभी वैसी नए नए मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जो कि हम लोग बांस के साथ उनका कॉम्बिनेशन करके हम लोग कृषि वानिकी मॉडल बना सकते हैं ताकि जो किसानों की आमदनी है उसको बढ़ाया जा सके।
1: जी, राष्ट्रीय बांस मिशन ये क्या है इसके बारे में जानना चाहेंगे।
0: राष्ट्रीय बांस मिशन एक योजना है सरकार की तरफ से। राष्ट्रीय बांस मिशन एक केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है जिसमें कि केंद्र सरकार जो है इसमें 100% अपना अंशदान करता है और इस स्कीम में जो है वो कृषि विभाग, सहकारिता विभाग के द्वारा ये मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य है कि क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से बांस के क्षेत्र को बढ़ाना, वन और गैर वन दोनों क्षेत्रों में बांस के तहत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाने के साथ साथ उनके पैदावार के साथ साथ उचित किस्मों जो उचित किस्म है बांस की उनको भी बढ़ाना, फिर बांस आधारित हस्तशिल्प शिल्प को भी बढ़ावा देना, पारंपरिक विवेक और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी जो है वो किसानों के बीच पहुंचाना, और कुशल और अकुशल व्यक्तियों को विशेष रूप से जो बेरोजगार युवक हैं उनका रोजगार को सृजन करना। अगर बांस मिशन का

0: लोग मुख्य घटक देखें तो उसमें बांस विकास के लिए अनुसंधान और विकास, बांस की पौधे उगाए जाने के लिए नर्सरियों की स्थापना करना, वन और गैर वन क्षेत्र में वाणिज्य आधार पर उच्च पैदावार करके बांस रोपण को बढ़ाना, जर्जरीकरण बांस रोपण और कीटनाशी और एवं बांस के रोग का प्रबंधन करना, हस्तशिल्प बांस विपणन और उनका निर्यात को किस तरीके से देखा जाना है उस पर ध्यान देना, किसान और कर्मियों की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, बांस के लिए बांस बाजार, नई विपणन रणनीतियों की स्थापना, सतर्क निगरानी मूल्यांकन और डेटाबेस बनाना, बांस मिशन का की जो रणनीति है उसमें सबसे पहले है उत्पादक और निर्यातक को उचित लाभ मिले जो भी इसका उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, खेती योग्य भूमि पर उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास एजेंसियों के बीच प्रतिभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना ताकि एक सामेकित अवधारणा का निर्माण हो कि बांस की भी खेती मुनाफे की हो सकती है, किसानों को सहायता तथा पर्याप्त लाभ को सुनिश्चित कराने के लिए सहकारी एवं स्वयंसेवी दलों को बढ़ावा देना, क्षमता एवं मानव संसाधन का विकास करना और किसानों को उत्पादन के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान करना और जहां तक संभव हो जो मध्यस्थ में जो लोग रहते हैं उनको समाप्त करते हुए सीधे जो ये राष्ट्रीय मिशन है इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना ताकि सबसे ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्रोताओं, अभी आपने सुना बिहार के लिए बांस की उन्नत प्रजातियां एवं उनकी खेती पर एक विशेष चर्चा। आशा करते हैं आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी और अगले दिन आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टिको क्यों है इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कहीं जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उरद की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उरद की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या डायमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: കൃഷി. किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि। और आज एक बार फिर आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनु आप सभी के पास लेकर आई है एक अलग विषय और एक अलग चर्चा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और आज का हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और अक्सर देखा गया है किसान भाइयों की पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनका टीकाकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाइयों अक्सर देखा गया है कि अगर पशु बीमार पड़ जाते हैं तो इससे हमारे किसान भाइयों को, या फिर यूं कहें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो पशु पालन करते हैं, पशु पालकों को नुकसान होता है, यानी कि आर्थिक नुकसान होता है। और इस वजह से काफी परेशानियां भी होती हैं पशुओं को भी और पशु पालकों को भी। और इसलिए आज टीकाकरण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार जी हैं। और डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब बात करते हैं टीकाकरण की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, या फिर आप हमारे किसान भाइयों को बताएंगे कि टीकाकरण क्या होता है या फिर टीका क्या होता है।
1: देखिए, टीका वही चीज है जो जीव रोग उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई जीवाणु है, विषाणु है, वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो रोग उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम उसी जीवाणु को प्रयोगशाला के अंतर्गत इनएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय करते हैं, या फिर उसको पूरी तरह से मार देते हैं, और उसके बाद जब पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो टीका पशु के अंतर्गत, पशु के शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप करता है, उसमें एंटीजेनिसिटी रहता है। रोग का जो लक्षण है पशु में नहीं आ पाता है, लेकिन रोग के खिलाफ उसके अंतर्गत एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। ये एंटीबॉडी जितने दिनों तक रहता है शरीर में, यदि उस दरमियान कोई उसी तरह का रोग का जीवाणु प्रवेश करे तो पशु को उससे बचाया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर FMD का टीका लगाना है तो FMD का ही वायरस को ही इनएक्टिवेट करके उसके शरीर के अंतर्गत डाला जाता है। ये एक टीका हुआ। और टीकाकरण है कि हम किन किन बीमारी के लिए पशु को टीका लगाते हैं। हर एक बीमारी के लिए टीका अलग अलग होता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब ने किसान भाइयों यहाँ पर बताया कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीका होता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक एंटीबॉडी, जब ये टीकाकरण कराया जाता है पशुओं का, तो उनके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, यानी कि विकसित होता है। और वो जब हमारे जो पशु हैं अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, या फिर यूँ कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ जाती है। तो ये बात हो गई टीका के बारे में, और आप सबों को मालूम चल गया होगा अब कि टीका क्या होता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, और डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है।
1: देखिए, वर्तमान समय में किसान का जो पशु है जितना भी, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है।
0: जी जी।
1: और ये देखा जाता है कि बस बहुत सारे पशु डेथ भी कर मृत

0: हो जाते हैं। पशु की मृत्यु से किसान को तो सीधा नुकसान होता है। यदि पशु नहीं मरते हैं तो पशु के इलाज में किसान का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो अगर हम बीमार पड़ने से पहले टीकाकरण करा लें, कुछ लागत लगता है लेकिन हम पशु को बिल्कुल बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। और कभी कभी तो देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर संक्रामक रोग यदि एक पशु को हो जाए तो उस एरिया के कम से कम 2 किलोमीटर तक सभी पशु में उदिन वीक एक सप्ताह के अंदर बहुत सारे पशु उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और टीकाकरण के द्वारा पशु में किसी भी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। टीकाकरण कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह का रोग जो है उससे हम पशु को सुरक्षित रखें।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुओं को रोग से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण कराया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य है। तो किसान भाइयों और हमारे पशुपालकों से ये आग्रह है कि आप इस चीज का इंतजार ना करें कि आपके पशु अगर बीमार पड़ेंगे तो ही आप टीकाकरण करवाएंगे उनका। उनके बीमार होने से पहले उनका टीकाकरण जरूर कराएं, जैसे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं उनके जन्म के बाद ही। तो आप एक शेड्यूल बना लें या फिर आप कहें कि एक समय तालिका बना लें और उसमें ये चीज पशु जो डॉक्टर्स होते हैं यानी कि पशु चिकित्सक जो होते हैं आप उनसे जाकर बार बार पूछ सकते हैं कि आपके पशु को किस तरीके का जो टीकाकरण है वो कराया जाए और क्या क्या जरूरी है उनके लिए। तो बात हो गई यहाँ पर उद्देश्य की। और इसके बाद जब हम किसी भी चीज को कराते हैं, यहाँ पर बात हो रही है पशुओं में टीकाकरण की, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसके महत्व को समझें और तभी हम हमारे अंदर वो उत्सुकता आती है उस बारे में जानने की। और उस बारे में अगर जान जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम टीकाकरण का महत्व क्या होता है।
0: टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य पशुओं के विभिन्न रोगों से बचाव द्वारा पशु तथा जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। टीकाकरण के द्वारा पशुओं के शरीर में किसी रोग विशेष के प्रति एक निश्चित मात्रा में प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिसे एंटीबॉडी के रूप में जाना जाता है, जो पशुओं को उस रोग विशेष से बचाता है। विभिन्न जाति के पशुओं में विभिन्न प्रकार के टीके तथा टीका कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है। पुनः टीकाकरण या बूस्टर का उद्देश्य शरीर में उचित मात्रा में प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनाए रखना तथा उनके प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। प्रत्येक बीमारी का टीका अलग होता है तथा एक बीमारी का टीका केवल उसी बीमारी से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए जिस गांव या क्षेत्र में अथवा समूह में रोग हो उसके चारों तरफ के स्वस्थ पशुओं को टीका लगाकर प्रतिरक्षित क्षेत्र उत्पन्न कर देना चाहिए। कुछ जीवाणुओं एवं विषाणुओं द्वारा उत्पन्न बीमारियों से बचाव के प्रति सीरम भी उपलब्ध है। इसमें प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी होते हैं जो बीमारी के विषाणु अथवा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है, जैसे टेटनस के लिए उपलब्ध प्रतिसीरम एंटी सीरम कहते हैं। और कुछ ऐसा जीवाणु भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं, जिसके खिलाफ टीका तो विकसित हुआ है, जैसे थैलेरियासिस, लेकिन एक हीमोप्रोटोजोन डिजीज है ट्रिपनोसोमियासिस, इसके खिलाफ टीका विकसित करना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसकी एंटीजेनिसिटी फिक्स नहीं होता है। ये इसके शरीर पे जो एंटीजेनिसिटी है रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन वो बदलते रहते हैं, तो ऐसे रोग के खिलाफ टीका तो विकसित नहीं हो पाता है, लेकिन इसके संक्रमण के से हमें अपने पशु को बचा सकते हैं कि कितनी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए।
1: तो यहाँ पर किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने बताया कि टीकाकरण और इसके उद्देश्य और महत्व को अगर बताया जाए तो एक ही है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पशुओं का टीकाकरण करवाया जाता है। और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पुनः टीकाकरण यानी कि उसके बाद जो एक लिमिटेशन रहता है उस टीकाकरण का, यानी कि समय समय पर आपको एक डेट दिया जाता है और उस डेट के बाद आपको पुनः टीकाकरण करवाना पड़ता है अपने पशुओं का। और उसका उद्देश्य और उसका महत्व भी यही है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है पशुओं के अंदर उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया उद्देश्य और महत्व के बारे में टीकाकरण के। और पशुओं को स्वस्थ रखना किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। आपके आप जितना स्वस्थ रहेंगे आपका पशु भी उतना स्वस्थ रहेगा, आप उनकी देखभाल अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और आप अगर जीवन यापिका करते हैं अपने पशुओं से आपको एक अच्छी आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकती है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हम आपसे पूछना चाहेंगे जब पशुओं को टीकाकरण करवाया जाए तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं कि जब हम पशुओं को टीकाकरण करवाने जाएं तो कुछ बातों को ध्यान में रखें।
0: देखिए किसान बंधुओं के लिए सबसे जरूरी है कि पशु को पहचानना कि वह बीमार है या स्वस्थ है। जब आप पशु पालन करते हैं तो पशु के व्यवहार लक्षण को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह बीमार पड़ गया, और जैसे ही आपको पता चलता है कि कोई पशु बीमार पड़ा, आप उसको तुरंत झुंड से अलग कर दें, बाकी स्वस्थ पशु से बीमार पशु को अलग रखें, उसका खान पान, उसका देख रेख बिल्कुल अलग कर दें। और जब ये पता चल जाए कि बीमारी फैल चुका है तो कभी भी बीमारी फैलने के बाद टीकाकरण को ना अपनाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है, वो एंटीजन उसके अंदर जा चुका है, और आप फिर से टीकाकरण करते हैं तो पशु और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु में ही अपनाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि टीकाकरण करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हो सकती है कि आप सुबह में करें, ठंडे समय में करें, शाम के समय करें, दिन में कड़ी दोपहर में कभी उसको ना करें, और जो पशु बीमार हो तो उसको तो बिल्कुल ना करें टीकाकरण। जो गर्भवती पशु हो उसको देखें कि जो टीका आप लगा रहे हैं उस टीके में उसके लिए कोई चेतावनी है क्या कि इसको प्रेग्नेंट को नहीं देना है। कुछ टीका है जो प्रेग्नेंट एनिमल गर्भवती गाय को भी दिया जा सकता है, लेकिन सारा टीका नहीं दिया जा सकता। और उसमें भी होता है कि गर्भधारण की अवधि क्या है, वह शुरू का अंतराल फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट और लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारा टीका मना होता है, उस समय एबॉर्शन हो सकता है। इसलिए स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण करें और देखें कि उम्र क्या है सही सही। बहुत सारा टीका 3 महीना के या समय अवधि पर किया जा सकता है,
1: यानी कि अलग अलग टीकों का एक अलग अलग उम्र अवधि होता है।
0: हर टीका के लिए एक मिनिमम एज है कि इस एज में आप टीकाकरण कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें कि पशु का जो है टीकाकरण करने के बाद उसको रखना कहाँ है, उसको कैसे खिलाना है। उसको सपोज कि हम स्वस्थ पशु को खिलाते हैं, टीकाकरण कर दिए हैं, अब उसको दूसरे तरफ भ्रमण करने ना दें। जैसे सपोज हमारा गाय खुल गया और उस तरफ जा रहा है जिधर बीमारी फैला हुआ है, तो बहुत समय में होता है कि एंटीजन वेरिएबिलिटी होता है कि एक के खिलाफ तो आप टीका लगा दिए हैं, FMD में ही एक स्ट्रेन है उसके खिलाफ लगा दिए हैं, लेकिन दूसरा स्ट्रेन जो है वो उधर रोग फैला हुआ है, उसका टीका आप नहीं लगा पाए हैं। FMD रोग यदि देखा जाए, खुरा और मुंहपका, इसके कम से कम 4 और 5 वेरिएंट्स हैं, एशिया AO करके आता है। तो एक के खिलाफ तो आप टीका लगाते हैं, कभी कभी टीकाकरण किया हुआ भी पशु में भी फिर से रोग उत्पन्न होने का सूचना मिली है। तो इसका कारण है कि जो एंटीजेनिसिटी वेरिएबिलिटी थोड़ा सा अंतर हो जाने पे वो रोग हो सकता है। अब कभी भी पशु को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण ना करने दें, और खासकर वैसे समय में जब आपको पता चला हो कि पड़ोस में यह बीमारी फैल चुकी है। ना ही इतना ही है, बल्कि वहाँ से कोई चारा, कोई खाना, कोई आहार पशु का ना खरीदें जिस क्षेत्र में पशु का रोग फैलने का सूचना आपको मिला हो। इसके बाद देखें कि टीका पर जो आप लगा रहे हैं, टीका में क्या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या उसका एक्सपायरी डेट है, उस समय के अंतराल ही लगाएं, एक्सपायर्ड टीका कभी इस्तेमाल ना करें। और टीका जो भी आता है वो कोल्ड चेन में मेंटेन होता है, ठंडा में रखते हैं बिल्कुल कम टेम्परेचर पर, उसका कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए।
1: यानी कि टीका खरीदने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके बनने की जो तिथि है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, मनुष्यों के लिए टीकाकरण हो, चाहे वो पशुओं के लिए हो। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बताया किसान भाइयों की पशुओं को टीका देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पशु गर्भवती ना हो, वो बीमार ना हो, स्वस्थ पशुओं को ही टीका करवाना चाहिए। और इसके बाद इन्होंने बताया कि वातावरण का खास ख्याल रखना चाहिए, ठंडे वातावरण में पशुओं का टीकाकरण होता है तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और आप सुन रहे हैं उन्नत कृषि, और आज हमारा विषय है पशुओं में टीकाकरण। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। उन्नत कृषि।

0: उड़ता देख साथ मुझे आई एक भूली कहानी याद।
1: कौन सी कहानी टीकी?
0: उस जालिम शिकारी की जो आया था करने पंछियों का शिकार।
2: हमें भी वो कहानी बताओ ना।
0: एक था शिकारी जिसने चिड़ियों का शिकार करने को कैसे बिछाया जाल, लेकिन जाल को सब चिड़िया फुर्र से ले उड़ी साथ।
2: माथा पीटता रह गया शिकारी, एक भी चिड़िया लगी ना हाथ।
0: तो दोस्तों, बीमारी का राक्षस भी बिछाए बैठा है एक जाल। अगर बच्चों का टीकाकरण छूटा तो कर देगा सबको बीमारी से बेहाल।
1: तो इस राक्षस से कैसे बचना है?
0: तो 5 साल या उनसे छोटे बच्चों के मम्मी पापा सभी सुनो एक जरूरी बात। अगर सभी बच्चों का होगा टीकाकरण एक साथ, तो बीमारी के राक्षस का भी हो जाएगा खात्मा उसके साथ।
2: टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।

दुनिया की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM ग्रीन के संग, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों, आप सभी का उन्नत कृषि में. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, अध्यापक सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. और डॉक्टर साहब से आज हम बातें कर रहे हैं पशुओं में टीकाकरण के बारे में. और बहुत सारी जो बातें हैं डॉक्टर साहब ने हमें बताई हैं, आप सबों के सामने रखी हैं, और कुछ बातें और बाकी हैं उनके बारे में भी जानते हैं. तो डॉक्टर साहब, आपने अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमें बताया था कि पशुओं को टीका देने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए. तो अगर पहले की बात हो गई तो अब बाद की भी बात हो जाए, तो टीकाकरण कराने के बाद पशुओं को किस तरीके से रखा जाए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे.
1: बिल्कुल, आप ये तो इंश्योर कीजिए कि जहाँ पशु रखते हैं साफ सफाई पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि पशु का आप टीकाकरण तो कर दिए हैं लेकिन फिर भी दूसरी बीमारी भी हो सकती है उसमें.
0: यानी कि साफ सफाई बहुत
1: उसका
0: है.
1: जो आवास प्रबंधन है, बिल्कुल आप एक क्लीन एनवायरनमेंट में, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, पशु को साफ सुथरा रखें. और उसको जो आप खाना देते हैं वो कभी भी दूषित ना हो, कभी भी गंदा ना हो. कभी भी जो परचेज करते हैं, जो खरीद करके लाते हैं, तो आप देखें कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो, उसके गुणवत्ता सही हो. ऐसे खाना को दें, दूषित क्षेत्र से लाया गया खाना ना दें. चारा आप लाते हैं खेत से काट करके, वहाँ दूसरे पशु भी चरने चले जाते हैं, और बीमार पशु जाकर चारा खाया हो और वहीं से काट करके आप लाए हो, तो वो चारा फिर से मतलब हानिकारक हो सकता है. बिल्कुल. इसके बाद हम देखते हैं कि जो पशु में उम्र के अनुसार उसका प्रबंधन करें. जैसे बड़े पशु को एक साथ रखें, छोटे पशु को एक साथ रखें. कभी कभी कुछ बीमारी सिर्फ छोटे पशु में ज़्यादा हो जाता है. अच्छा. तो आप बड़े पशु को बिल्कुल छोटे पशु से अलग रखें. बछड़ा है, बछड़ा को एक साथ रखें. जो गाय है उसको एक साथ रखें. बाछी को एक साथ रखें. अलग अलग रखने से बहुत सारे रोग का नियंत्रण आप कर सकते हैं.
0: तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पशु हैं, छोटे और बड़े पशु जो होते हैं, उन्हें अलग अलग रखें. और इसके बाद स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, स्वच्छता उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है. और स्वच्छता अगर रहेगी तो आपके पशु बीमार भी नहीं पड़ेंगे. तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर बातें हो गई हैं टीकाकरण के बाद पशुओं के रखरखाव की. और अब कुछ रोगों के बारे में, क्योंकि रोगों को भी जानना बेहद ज़रूरी होता है. अगर रोग को जानेंगे तभी तो रोग विरोधी टीकाकरण हम अपने पशुओं का करा पाएंगे. तो हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ रोगों के बारे में जो प्रायः गाय भैंसों में देखा जाता है. और अगर उसके अलावे भी कुछ और रोग हों तो आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी देंगे उनके बारे में तो बहुत अच्छा होगा. और साथ ही उनके रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में भी बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा.
1: हम देखते हैं कुछ जो बहुत कॉमन बीमारी है, जो हो मतलब देखने को मिलता है. आप देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपको खुरहा मुँहपका रोग, इसको खुरपका मुँहपका रोग से भी जानते हैं रोग के नाम से. यह विषाणु जनित रोग.
0: ये किस जानवर में देखा जाता
1: ये है? ये गाय और भैंस में देखा जाता है. बकरी में भी देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम है.
0: गाय
1: और भैंस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है. दूसरा है गलघोटू बीमारी, हेमराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं इसको. यह गाय और भैंस में बहुत कॉमन है. इस बीमारी से गला में सूजन होता है और पशु यह बिल्कुल समय अंतराल आपको पता नहीं चलेगा कि कब ये बीमारी हुई और कब पशु मर गया. कम उम्र का पशु तो जल्दी मर जाता है. गला, इसीलिए इसका नाम गला घोटू रखा गया है. यह जीवाणु जनित रोग है.
0: अच्छा,
1: ठीक है. इसके बाद आता है लंगड़ी बीमारी, ब्लैक क्वार्टर कहते हैं. यह भी जीवाणु जनित है. यह भी गाय भैंस में होता है. यह आगे पैर या पीछे पैर में ऐसे सड़न सा रोग हो जाता है. मतलब पशु का शरीर सड़ने लगता है. अच्छा. इसलिए इसका नाम लंगड़ी बीमारी है कि पैर बिल्कुल सड़ जाता है, पशु उस पे चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है.
0: ये किस पशु में ज्यादा पाया जाता है?
1: गाय और भैंस दोनों में यह देखने को मिलता है. और कम छोटा उम्र का आदि पशु है तो उसको यह बुरी तरह प्रभावित करता.
0: अच्छा.
1: है और बहुत ही संक्रामक बीमारी है. एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत तेजी से फैलता है. इसके बाद है एक बीमारी, उसको ब्रुसेलोसिस कहते हैं. इससे
0: ब्रुसेलोसिस
1: इससे होता है कि पशु में एबॉर्शन होता है. अच्छा। यह जो समय से गर्भवती पशु जो है उसका गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, छट जाना कहते हैं। ऐसा हो जाता है तो पशु किसान को बिल्कुल नुकसान होता है। इसमें मृत्यु तो बहुत कम होती है, लेकिन यह जो है अबॉर्शन कॉज करता है। पूरा का पूरा एक किसान को जो नई गाय मिलती, बछड़ा मिलता, वो मर जाता है बछड़ा, तो उसको नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे सावधानी की बात है कि यह बीमारी रोगों जानवर से लोग में भी हो जाता है। अच्छा। यदि जानवर को यह बीमारी हुआ है ब्रुसेलोसिस और आप यदि उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी हो जाएगा। और आदमी में इसको माल्टा फीवर कहते हैं,
0: यानी ये तो गंभीर बीमारी हो गई डॉक्टर साहब।
1: जूनोटिक डिजीज के अंतर्गत ये बीमारी आता है। और ऐसे ही एक और रोग है एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स भी जीवाणु के चलते होता है और एंथ्रेक्स भी जानवर से आदमी में होता है। आदमी में भी यह बीमारी तेजी से फैलता है और आदमी को भी बहुत सारा स्वास्थ्य का नुकसान होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि खुरहा, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ी, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी से समय एक नियमित समय पर टीकाकरण करके हम अपने पशु को, अपने पशुपालकों को बिल्कुल बचा सकते हैं। आर्थिक नुकसान से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं।
0: और सर इनके लिए कुछ रोग विरोधी टीकाकरण होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको एक प्रत्येक रोग के लिए उसके लिए क्या जरूरी है वो बताते हैं। जैसे खुरपका मुंहपका रोग है, FMD के नाम से जाना जाता है। यह पशुओं में पाए जाने वाला प्रमुख रोग है जो विषाणु द्वारा फैलता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 1 माह तथा दूसरा टीका 6 माह की उम्र पर दिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष टीकाकरण करना चाहिए, परंतु अब ज़्यादा सुरक्षित होगा अगर आप साल में 2 बार टीका कर लें, टीकाकरण कराएं। टीके की मात्रा है 2 मिलीलीटर प्रति पशु, स्किन के नीचे, सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे कहते हैं। मार्च अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर महीने में लगवाना चाहिए। दूसरी बीमारी है गलघोटू, हेमराजिक सेप्टिसीमिया। बरसात के मौसम में पाया जाने वाला यह प्रमुख रोग है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। इससे बचाव हेतु वर्षा ऋतु से पहले और शीत ऋतु के शुरुआत से पहले टीकाकरण किया जाना चाहिए। इस रोग में एडजुवेंट टीका का प्रयोग किया जाता है। गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में प्रथम टीका 6 माह की उम्र में और इसके बाद प्रतिवर्ष दिया जाता है। टीके की मात्रा 2 मिलीलीटर है और यह चमड़ी के नीचे दिया जाता है। मानसून के आगमन से पूर्व देना अच्छा होता है। और इसके बाद आता है एक लंगड़ी बीमारी। लंगड़ी बीमारी, इसमें भी हम पॉलीवेलेंट टीका का प्रयोग करते हैं।
0: पॉलीवेलेंट,
1: हाँ, इसमें मतलब बहुत सारा वेरिएंट होता है, 3-4 तरह का जो जीवाणु है वो काउज करता है। आप एक ही वेरिएंट का टीका देंगे तो दूसरा वेरिएंट बीमारी कर देगा, इसलिए इसका वैक्सीन सबको मिला करके पॉलीवेलेंट टीका तैयार किया जाता है। यह भी गौ वंशीय तथा भैंस वंशीय पशुओं में दिया जाता है और यह प्रथम टीका 6 माह की उम्र से दिया जाता है और प्रतिवर्ष इसको लगवाना चाहिए। इसमें मात्रा जो है 5 मिलीलीटर देते हैं। इसको मांस में भी हम लगाते हैं और अब स्किन के नीचे भी देने वाला टीका आया है। इसके बाद है एक बीमारी ब्रुसेलोसिस के लिए। यह पशु में तीसरे चरण में होने वाले गर्भपात

0: होता है जो ब्रुसेलोसिस बीमारी होता है, यह टीका सिर्फ गाय में लगाते हैं या भैंस में या फीमेल पशु में लगाते हैं, मादा पशु में लगाते हैं, ताकि उसी में तो गर्भपात की समस्या ज़्यादा होती है। मेल में होता है यह बीमारी तो उसमें मतलब एक तरह से बीमारी से कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वह सोर्स होता है इन्फेक्शन का, दूसरे गाय में उससे फैलता है। इसलिए इसका मादा बछड़ों में इस रोग का प्रथम टीका 4 से 6 महीने की उम्र में 2 मिलीलीटर मांस में लगाया जाता है। इसके बाद एक बीमारी है एंथ्रेक्स, इस रोग में स्पोर का टीका दिया जाता है। एंथ्रेक्स का स्पोर टीका के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह टीका है, 1 मिलीलीटर टीका दिया जाता है।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया कि जो बहुत सारे रोगों के नाम बताएं, और इसके साथ ही इन्होंने रोग विरोधी टीकाकरण के बारे में टीकों के नाम भी बताएं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अगर हमारे किसान भाई या हमारे जो पशुपालक भाई हैं, अगर वो सफल टीकाकरण करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, सावधानियाँ ही मतलब आप एक तरह से टीका अपनाते हैं तो यह एक बचाव है, और रोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही बात है।
1: प्रिवेंशन या फिर प्रिकॉशन इज प्रिकॉशन
0: कहते हैं, बचाव जो है उपचार से अच्छा है। अगर बीमार पड़ जाएगा तो आपको निश्चित रूप से इलाज कराने में बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आर्थिक नुकसान होगा। आप कुछ पैसे लगाएं और एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो सकता था उससे बच जाएं। तो यहाँ पर आप देखें कि अपने पशु का हर चीज़ कंट्रोल रखें, हर चीज़ आपकी जानकारी में होना चाहिए। पशु का खाना पीना, उठना बैठना रहना, कहाँ से आप उसका आहार खरीद करके लाते हैं, कहाँ से चारा काट करके लाते हैं। पशु में आप नियमित रूप से एक पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, और इससे पहले कि बीमारी भयावह हो जाए आप पशु चिकित्सक से यदि संपर्क करते हैं और आप जांच करवाते हैं उसे, आप भी अपना हेल्थ चेकअप कराते होंगे। आजकल हम लोगों के लिए भी यह जरूरी हो गया कि समय अंतराल पर अपना स्वास्थ्य
1: चेक करवाएं, या फिर कुछ
0: जो भी ब्लड शुगर चेक कराएं, क्या है लीवर फंक्शन टेस्ट कराएं। तो जानवरों के लिए भी जरूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और इसी क्रम में हम एक और अच्छी जानकारी देना चाहेंगे। थनेला रोग है, थनेला रोग पशुपालकों में के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक है। एक दुधारू पशु में यदि थनेला रोग हो जाता है तो उसको बहुत नुकसान होता है। हमारा विश्वविद्यालय इस दिशा में एक कदम उठाया है, और यहाँ हमारे एक वैज्ञानिक इस कार्य में जुड़े हैं कि थनेला रोग के प्रति भी हमारे यहाँ टीका डेवलप किया जाए। तो हमारा
1: थनेला रोग
0: के खिलाफ, जो कि आज तक इसका टीका डेवलप नहीं हो सका है, क्योंकि यह बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण यह रोग होता है, लेकिन अधिकांश यह किस जीवाणु के चलते होता है हमने उस जीवाणु को पहचाना है।
1: हमारे यहाँ
0: रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किया गया है कि पहचान किया गया है कि कौन सा जीवाणु अधिक थनेला रोग जानवरों में उत्पन्न करता है, और उसके खिलाफ हम टीका बनाने की ओर अग्रसर हैं।
1: तो सर, सबसे पहले तो यहाँ पर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो भी प्राध्यापक हैं और जिन्होंने रिसर्च किया, उन्हें हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक पशुपालकों के लिए उनका पशु जो है एक आय का स्रोत होता है, और वही अगर डगमगा जाए, वही ख़राब हो जाए, तो हमारे पशुपालकों को काफ़ी हानि होती है। तो इसलिए रोगों का पहचान होना चाहिए, और उनके जैसे कि आपने कहा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानियां बरतनी चाहिए। और टीकों के बारे में भी आपने बताया कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में उसके बारे में जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके टीकों के बारे में भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, या फिर टीका डेवलप किया गया है। तो सावधानियों के बारे में बातें हो रही थी डॉक्टर साहब, आगे कुछ और बातें अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा।
0: बिल्कुल, हम आपसे यह कहना चाहेंगे किसान बंधु कि यदि आप पशु पालते हैं तो पशु के व्यवहार को समझना सीखें। पशु को आप सुबह शाम खाना देने जाते हैं तो बिल्कुल उसको अपने परिवार के सदस्य की तरह समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको खाना खिला देना है, दूध निकाल लेना है और बस उससे कोई मतलब नहीं रहा, बांध दिए रस्सी में बंधा हुआ है, और दिन भर में एक बार पानी भी नहीं कोई पूछा, आप चले गए किसी काम से बाहर, ऐसा नहीं हो। आप पशु के साथ जुड़ें, उसके व्यवहार को समझें। बिल्कुल कभी नहीं प्यासी पशु आपसे पानी मांगेगी, कभी नहीं कहेगी मुझे प्यास लगा है पानी दीजिए,
1: लेकिन मनुष्य की जैसे जुबान नहीं है,
0: जुबान नहीं है, वो वॉइसलेस क्रिएचर है, वो बेजुबान एक जीव है, आप उसकी आंख देख करके उसका व्यवहार देख के समझ सकते हैं कि वो स्वस्थ है या बीमार पड़ गई, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है। आप यदि सुबह शाम उससे उसके पास जाते हैं, खड़े होते हैं, तो बिना बात किए भी बहुत कुछ आप उससे समझ सकते हैं। अगर आपके पशु जैसे ही कुछ ऐसा लक्षण दिखाए, खाना नहीं खाए, बैठा रहे, सर झुकाए, कान उसका नीचे झुका हुआ है, आँख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि ठीक हो जाएगा, आप तुरंत संपर्क करें पशु चिकित्सक से और उचित उपचार कराएं। और हमेशा आप देखते रहें अगल बगल के क्षेत्र में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैला है,
1: इस बात का भी ध्यान रखना।
0: हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सामान्य रूप से हम देखते हैं ठंडे के दिन में खुरहा मुँहपका रोग बहुत फैलता है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में खुरपका मुँहपका रोग FMD के नाम से जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, यह रोग ठंडी के दिन में फैलता है। और दूसरा है गलघोटू और लंगड़ी बीमारी, यह बरसात के सीजन में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में ये रोग ज़्यादा फैलता है। तो आप अपने पशु को इस समय में इस रोग से बचाएँ और प्रत्येक 3 से 4 महीने पर कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें, जो पेट के अंदर रहने वाले परजीवी से आपके पशु को बचा सकते हैं। लीवर में भी लीवर फ्लू या अंतः परजीवी होते हैं, उससे पशु को एक तरह से पाचन में शरीर के खाने पीने का नुकसान होता है कि आप खिलाएंगे बहुत सारा पौष्टिक चीज़ है, उसके शरीर में लगेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीकाकरण कराएँ और कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, गाय खा रही है, लेकिन उसका शरीर
1: जो पोषक तत्व तो उनके शरीर के अंदर जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है।
0: हाँ, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। निश्चित रूप से कोई अंतः परजीवी है, पेट में जोंक हो गया है, सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इसलिए आप डिवर्मिंग भी निश्चित समय अवधि पर जरूर करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक नवजात शिशु जन्म लेता है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उनकी देखभाल करते हैं, हमें पता चलता है उसके कुछ जो सिम्टम्स होते हैं उससे पता चलता है कि वो बच्चा अगर रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी या फिर कहीं उसके बॉडी पर कुछ हो तो नहीं गया है, कुछ ऐसी मतलब चेकअप हम करते रहते हैं बच्चों की। तो उसी तरीके से आपको अपने पशुओं को की भी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि आपके पशु भी बेजुबान हैं, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। आप उनके पास कुछ टाइम बिताइए, तो आपको, अगर आप नए पशु पालक हैं तो आप उनके पास कुछ टाइम बिताएं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि किस दिक्कत के लिए वो किस तरीके का इशारा कर रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो यहाँ पर डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी बातें हमने आपसे की हैं, आपने बहुत सारी बातें हमारे किसान भाइयों, हमारे पशुपालक भाइयों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों, आपसे यूं ही मुलाकातें होती रहेंगी, और अब अगले विषय के साथ, अगले चर्चा के साथ फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। क्यों इतने जीरो?
2: जीरो नहीं बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
1: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। ह्यूमन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 13 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने का भी अनुमान है। 13 से 17 मई के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 13 से 17 मई के दौरान 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढककर रखें। खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद कीटनाशक का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी बहुत जरूरी है। इन कीटों से बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 ईसी या डायमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को क्षति पहुंचाने वाला प्रमुख कीट होता है। अगर फल मक्खी का प्रकोप शुरू हो तो ऐसी स्थिति में 1 किलोग्राम छुआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर दो बार छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा होने की स्थिति ना हो। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर भिंडी की फसल में माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल का अच्छी तरीके से छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बागों में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए और ध्यान रखें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य के किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। इन ट्रैपों को बाग में ऐसे लगाएं कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे कि उन्हें कहां बांधा गया है। ट्रैप को बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन से पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें और गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

लाभ और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, अंग उमंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब हम अंग की बात करते हैं, अंगिका की बात करते हैं, अंग प्रदेश की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में, या फिर आप जो भागलपुर से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी ना कभी भागलपुर का नाम सुना है, तो वो सिल्क सिटी की बात ज़रूर करेंगे। सिल्क जो हमारे भागलपुर का बहुत मशहूर सिल्क है, तसर सिल्क, जो अपने देश में तो अलग अलग हिस्सों में जाता ही है, विदेशों में भी तसर सिल्क की बहुत मांग होती है। तो किस तरीके से हमारा भागलपुर, हमारा प्यारा भागलपुर सिल्क सिटी बन गया और क्या इसका इतिहास रहा है, क्या ये मुगलों के काल में शुरू हुआ या अंग्रेजों के समय पे शुरू हुआ या फिर इसका इतिहास काफी पुराना है, आज इस बारे में हम जानेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे। बस आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। और अगर हम बात करें ना कि भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जो जाना जाने लग गया है और इतनी प्रसिद्धि मिली है भागलपुर के सिल्क को, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माना जाता है कि प्राचीन काल से भागलपुर का नाता सिल्क से रहा है। और अगर हम भागलपुर के प्राचीन नाम की बात करें तो उनमें से एक नाम था चंपा, जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। और चूंकि हमारा भागलपुर गंगा नदी के किनारे है और आपको ये पता है कि आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो शहर या जो भी राज्य नदी के किनारे बसा होता है, वहाँ पर जो व्यवसाय होता है वो काफ़ी फलता फूलता है। अपने इतिहास में ये सारी बातें पढ़ी होंगी। तो क्या हुआ कि गंगा नदी एक व्यापारिक मार्ग था और गंगा नदी के किनारे हमारा अंग महाजनपद, तो माना जाता है कि यहाँ रेशम और वस्त्र व्यापार की परंपरा काफी पुरानी है। और क्योंकि गंगा मार्ग से वस्त्रों का आदान प्रदान होता था तो उनमें एक सिल्क भी था। अगर बात करें तो खास तौर से पूर्वी भारत यानी कि मगध या बंगाल से यहाँ पर वस्त्रों का आवागमन होता था। अगर हम उस वक्त की, मतलब प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में प्रत्यक्ष रूप से जो कारखाना के स्तर हैं उसके प्रमाण काफी कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी माना जाता है कि उस वक्त वस्त्र की यहाँ पर बुनाई होती थी और रेशमी कपड़ों के व्यापार के भी संकेत कई सारे मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमारा भागलपुर है, यहाँ पर काफी वन हुआ करता था, जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो वन आधारित तसर है यानी कि रेशम है, इसका उत्पाद यहाँ पर काफी अच्छा होता था और स्थानीय स्तर पर भी इसे काटा जाता था, बुना जाता था। इसी वजह से माना जाता है कि इसकी जो परंपरा रही होगी काफी प्राचीन रही होगी। और अंग जनपद को हम चंपा के नाम से इसलिए भी जानते थे क्योंकि यहाँ पर चंपा के पेड़ काफी ज्यादा थे। और वहीं अगर हम पाल काल की बात करें ना, मतलब कि 8वीं से 12वीं सदी के बीच में, तो उस वक्त पे इस क्षेत्र में पाल शासकों का काफी प्रभाव था। और उस वक्त का जो प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसके कारण यहाँ पर काफी बौद्ध भिक्षु भी आते थे, उनका भी आवागमन बढ़ा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर यात्रा काफी बढ़ी। और जब लोग बाहर से आते है ना, तो व्यापार भी फलता फूलता है। तो ऐसे में जब उनसे संपर्क हो रहा था तो उनके वस्त्रों को देखा गया जिसमें रेशमी कपड़े भी शामिल थे, तो इन कपड़ों का भी आदान प्रदान बढ़ा। और वहीं अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में रेशम उत्पादन की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे ये संकेत मिलता है कि भागलपुर क्षेत्र भी इस कारीगरी से जुड़ा हुआ था। और अब तक तो हमने बात की कि प्राचीन काल और मध्य काल में क्या

लेकिन मुगल काल में देखा जाता है कि सिल्क का जो व्यवसाय था इसे काफी विस्तार मिला। मुगलों ने क्या किया, वो कर प्रणाली लेकर आए बाजार और संरक्षण भी उन्होंने दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस माध्यम से क्या हुआ कि जो कारीगर थे जो इधर उधर फैले हुए थे अपने अपने स्तर पर काम कर रहे थे, तो अब कारीगरों को संगठित मुगलों ने किया था। और इसके साथ ही शाही दरबार में रेशमी वस्त्रों की मांग काफी अधिक थी, तो इसकी वजह से भी रेशम का उत्पादन बढ़ा और इसकी जो पहचान है वो भी काफी मजबूत हुई। शाही दरबार में मांग थी तो पहचान तो मजबूत होनी ही थी। और प्राचीन काल में जो उल्लेख है रेशमी वस्त्रों के वो बहुत ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल में इसके दस्तावेजी प्रमाण काफी प्रबल रूप से मिलते हैं और बड़े पैमाने पर इसका उल्लेख मुगल काल में दिखता है और बहुत स्पष्ट दिखता है। मध्य काल में रेशम उद्योग का काफी विकास हुआ। मुगल काल में माना जाता है कि भागलपुर रेशम बुनाई का प्रमुख केंद्र बन गया था और यहाँ पर स्थानीय कारीगर हथकरघा यानी कि जो अभी भी आप देखेंगे चंपानगर में हैंडलूम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हैंडलूम से रेशमी कपड़े तैयार करते थे और यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तसर रेशम के लिए बहुत अनुकूल था, तो इस वजह से भी यहाँ पर तसर रेशम का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। और तसर रेशम के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाही दरबारों में इसकी मांग काफी ज्यादा थी, तो ये एक विशेष परिधान में उस वक्त पे शामिल हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें अब ब्रिटिश काल की, तो माना जाता है कि जो भी सिल्क के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ये स्वर्णिम दौर था, क्योंकि 18वीं से 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भागलपुर के रेशम को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया, क्योंकि वो देश से बाहर भी जा रहे थे और उनका मुख्य कारण तो यही था ना भारत में आने का कि वो व्यापार कर सके। और यहां भागलपुर का जो तसर सिल्क था इतना कमाल का था कि उन्हें इसमें भी अवसर दिखा, तो उन्होंने यहाँ पर के जो तसर सिल्क थे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया और फिर यहां से रेशमी कपड़े यूरोप तक निर्यात होने लग गए थे ब्रिटिश काल में। तब भागलपुरी सिल्क की एक पहचान बन गई थी और ये एक ब्रांड बन गया था कि ये भागलपुरी सिल्क है। और इस समय में बहुत बड़ी संख्या में बुनकर परिवार इस उद्योग से जुड़ गए थे, पहले से जुड़े हुए थे लेकिन जब ये एक ब्रांड बन गया और भागलपुरी सिल्क को एक बहुत ही मजबूत पहचान मिली, तब बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़ गए थे तसर सिल्क के व्यवसाय से। अगर हम भागलपुरी तसर सिल्क की विशेषताओं की बात करें तो इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा होता है थोड़ा, और ये काफी खूबसूरत दिखता है। ये हल्का होता है पर मजबूत होता है और काफी टिकाऊ भी होता है। और कहते हैं तसर सिल्क को कुछ लोग एसी ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप तसर सिल्क के कपड़े पहन रहे हैं या फिर चादर ओढ़ रहे हैं तो फिर ये गर्मियों में आपको ठंडे का एहसास कराते हैं और वहीं सर्दियों में आपके शरीर को गर्म रखने की क्षमता भी होती है तसर सिल्क में। और ख़ास तौर से अभी भी बहुत जो जिन्हें सिल्क की अच्छी पहचान है जो सिल्क के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद करते हैं वो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पास जो सिल्क के उत्पाद पहुँच रहे हैं जो कपड़े पहुँच रहे हैं वो हाथ से बुने हों और पारंपरिक डिज़ाइन में हो, उसकी बात ही अलग होती है, उसका एहसास ही अलग होता है। और भागलपुर में अभी भी कुछ जगहों पर हाथ से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से सिल्क के जो चादर है वो बनाए जाते हैं, सिल्क की साड़ियां बनाई जाती है। और लेकिन अब हम बात करें तो आज भी हजारों परिवार रेशम के उद्योग से जुड़े हुए हैं, पावर लूम है और आधुनिक डिजाइन का भी प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग बढ़ा भी है क्योंकि वो सस्ते होते हैं बहुत इजीली बन जाते हैं, तो वैसी भी डिमांड आज के वक्त पे बन रही है जिसकी वजह से आधुनिक डिजाइन का प्रयोग बढ़ा है। वहीं सरकार द्वारा भी कई सारे सिल्क क्लस्टर योजनाएं भी चलाई जाती है, लेकिन उद्योग को कच्चे माल की कमी होती है और मशीनों की जो लागत आती है और बाजार में भी एक प्रतिस्पर्धा आ गई है, एक कॉम्पिटिशन आ गया है क्योंकि अब बहुत सारे लोग सस्ता चाहते हैं सुंदर चाहते हैं फिर चाहे उसकी क्वालिटी कैसी भी हो, तो इस वजह से अब बाजार में आधुनिक डिजाइन आ गए हैं और जो हाथ से बनाया करते थे उनकी मांग थोड़ी कम हुई है, लेकिन आज भी जिन्हें सिल्क की पहचान है जिन्हें सिल्क के कपड़े काफी अच्छे लगते हैं वो आज भी हाथ से बने हुए सिल्क की डिमांड करते हैं और ओरिजिनल सिल्क की डिमांड करते हैं। दोस्तों हमारे भागलपुर में तो तसर सिल्क काफी फेमस है लेकिन पूरे भारत में अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक रेशम है वो पाए जाते हैं और जिनमें से कि चार मुख्य रूप से पाए जाते हैं। एक तो मलबरी रेशम है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादित रेशम है तो वो मलबरी रेशम ही है।
और जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तो शहतूत, जिसे कि हम अंग्रेजी में मलबरी कहते हैं, उसके पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उसी से मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। और मलबरी सिल्क की ये विशेषता होती है कि ये काफी चिकना होता है, चमकदार होता है और मुलायम भी होता है। ये खास तौर से कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में उत्पादित किया जाता है। वहीं हम तसर सिल्क के बारे में तो अब तक बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि ये वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कीड़ों से बनाया जाता है, और क्योंकि हमारा भागलपुर, हमारा जो अंग जनपद था, एक वक्त पे यहाँ पर काफी घने जंगल हुआ करते थे और यहाँ पर जो कीड़े होते थे उनसे तसर सिल्क बहुत ही आसानी से बनाया जाता था। और ये हल्का सुनहरा रंग का होता है, मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, और अभी मैंने बताया कि इसे कुछ लोग कहते हैं कि ये एसी जैसा फील देता है, गर्मी में आपको ठंडे का एहसास कराएगा, ठंड में आपको गर्मी का एहसास कराएगा। और इसका जो उत्पादन होता है तसर रेशम का, वो खास तौर से बिहार में होता है, बिहार में विशेषकर भागलपुर में होता है, इसके अलावा झारखंड में होता है और छत्तीसगढ़ में भी तसर रेशम काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा एरी सिल्क भी है, ये अरंडी के पत्तों पर जो कीड़े पाले जाते हैं उससे ये प्राप्त किया जाता है। ये मुलायम काफी होता है, गर्म होता है, और इसे कहते हैं कि ये अहिंसा सिल्क भी है, क्योंकि इसमें ना कीड़े को बिना मारे ही धागे से निकाल दिया जाता है। अगर आपको सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में बताएं तो जो कीड़े होते हैं उन्हें पहले पानी में खौलाया जाता है, उससे क्या होता है कि कीड़े मर जाते हैं और उनके चारों तरफ जो रेशे होते हैं फिर उसे निकाला जाता है। लेकिन एरी रेशम इनसे थोड़ा अलग होता है, इसमें कीड़े को मारने की प्रक्रिया नहीं होती है, बिना कीड़े को मारे ही इसे सिल्क निकाल लिया जाता है। और ये खास तौर से असम और उत्तर पूर्व भारत में काफी प्रचलित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें की हिंसा नहीं पसंद है और वो नहीं चाहते कि किसी को भी नुकसान पहुंचे, तो वो एरी रेशम का उपयोग ज्यादा करते हैं। वहीं एक और सिल्क है मूंगा रेशम, ये केवल असम में पाया जाता है। इसका जो प्राकृतिक रंग होता है वो सुनहरा पीला होता है और ये काफी टिकाऊ होता है और ये काफी महंगा भी होता है। तो ये जो कुछ प्रकार के रेशम है वो अपने भारत में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे भागलपुर में खास तौर से तसर सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। और तसर सिल्क आज भी भागलपुर से देश के अलग अलग हिस्सों में और साथ ही विदेशों में भी इसकी मांग की जाती है तसर सिल्क की। तो आपके पास भी शायद कोई तसर सिल्क के कपड़े होंगे, कोई शॉल होगा और उस पे मंजूषा या फिर मधुबनी का काम करवा लीजिए तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको बाजार में भी ऐसे कपड़े मिल जाएंगे, जहां पर आप सिल्क के कपड़े लेने जाएंगे वो आपको ऐसे कपड़े दिखाएंगे जो कि हाथ से बुने हुए हैं, उसके ऊपर हाथ से उस पे कलाकारी की हुई है, तो वो अलग फील देता है, ऐसा महसूस कराता है जैसे आप अपनी जमीन से, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और अंग उमंग कार्यक्रम में हम यही तो करते हैं, अपनी मिट्टी के बारे में बताते हैं, अपने अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाते हैं। तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। आज अंग उमंग कार्यक्रम में इतना ही, बस जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि ध्यान रखें कि जहां भी आप थोड़ा भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे सिर्फ आप खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को भी सुरक्षित बनाएंगे और इससे हमारे शहर की तस्वीर भी बदलेगी। तो थोड़ा भी जहां भी वक्त बिताते हैं वहां की साफ सफाई का ख्याल जरूर रखें। इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

की भाग दौड़ से अलग सुकून भरे कुछ पल बिताएं 90.8 FM गेन के साथ, हरियाली से खुशहाली तक।

0: കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और आज हम बातें करने वाले हैं अपने विशेष कार्यक्रम में सूक्ष्म सजीव जीवाणुओं के कृषि महत्व के बारे में. और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर सरोज कुमार यादव. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: सर आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मृदा विभाग से और सर आपसे पहला सवाल यही है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का क्या महत्व है.
1: जी तो सबसे पहले हम जो दर्शक हमारे किसान अन्नदाता मालिकों भाइयों एवं बहनों सुन रहे हैं मैं सभी को नमस्कार करता हूं. और मैं ये जो प्रश्न है कि कृषि में सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्व क्या है, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी, जो इसको हम सॉइल बोलते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ये असंख्य जीवों की आत्मा है. इसमें असंख्य जीव विद्यमान है. उसमें कुछ जीव जो है हमारे लिए लाभकारक भी है और कुछ जीव जो है वो हानिकारक भी है. तो आज हम बात करेंगे जो लाभदायक बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव, उसमें भी खासकर जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो हमारे लिए लाभदायक है, हमारी कृषि प्रणाली के लिए लाभदायक है, हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक है, उसके बारे में. तो अब कृषि में सूक्ष्म जीव का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, जीवाणु का बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है. तो वन बाय वन करके हम इसको जानते हैं कि पहला जैसे है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो जो जैव अवशेष है, जो कार्बनिक पदार्थ है, जो जैविक पदार्थ है, उसको विघटन करने का कार्य करता है. ये जैविक पदार्थ क्या होते हैं, तो ये होते हैं जो हमारे मृत पौधा या मृत जानवरों का जो अवशेष पड़ा रहता है उसको विघटन करने का, डिकम्पोजिशन करने का काम यही सूक्ष्म जीव जीवाणु करते हैं. और इसको विघटन करके, डिकम्पोज करके ये कंपोस्ट बनाते हैं और वो कंपोस्ट जो हमारे कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण माने न्यूट्रिएंट सप्लाइंग और पोषक तत्व जो है पौधा को वो सप्लाई करता है. और मिट्टी में जो है उसकी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों में वृद्धि करता है, उसमें सुधार लाता है. तो पहला ये चीज़ हो गया. दूसरा चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे मिट्टी में ह्यूमस निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस की जो मात्रा है वो बढ़ाने में सहायता करता है. तो ये कैसे, क्योंकि वही सूक्ष्म जीव जीवाणु जो कार्बनिक पदार्थ को अपघटन करता है, विघटन करता है, और जब विघटन पूरा हो जाता है, कंप्लीटली वो डिकम्पोज्ड हो जाता है, तो उसमें जो पदार्थ बच जाता है, शेष पदार्थ जो बच जाता है, जिसका हम फर्दर यानी आगे उसको विघटन नहीं किया जा सकता है थ्रू माइक्रोब्स या किसी अन्य विधि के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमस. ह्यूमस जो है वो गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ है जिसकी मात्रा क्या है, वो सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा मिट्टी में बढ़ता है. और जब ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ती है तो हमारी मिट्टी का जो है स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि ह्यूमस क्या करता है, मिट्टी में नमी और या मॉइस्चर मेंटेनिंग क्षमता को बढ़ाती है. न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो है पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उसको अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाती है. इसके साथ साथ ह्यूमस मिट्टी की संरचना को बनाने में हेल्प करता है. इसके साथ साथ ह्यूमस में जो है वो ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन जो होता है, निगेटिव चार्ज वाले आयन जो होते हैं, वो ह्यूमस पार्टिकल पर होता है, जो क्या करता है, जो आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए है उसमें जो धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज वाले जो पोषक तत्व हैं उसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और उसको जोड़ने का काम करते हैं. और इससे मिट्टी में उस आयन की संख्या बढ़ जाती है, उस आयन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की जो धनायन विनियम यानी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इसको बोलते हैं, उसका क्षमता जो है वो भी मिट्टी का बढ़ जाता है. तीसरा चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं, जो सूक्ष्म जीव जीवाणु हमारे कृषि कार्य के लिए या मिट्टी के लिए बेनिफिशियल यानी लाभदायक रूप में करते हैं, वो है कि मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं. मिट्टी की अच्छी संरचना का निर्माण करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव जीवाणु पॉलीसेक्राइड रिलीज करते हैं, गोंद रिलीज करते हैं, ग्लाइको प्रोटीन रिलीज करते हैं, और ये सब पदार्थ जो है वो मिट्टी के कण को, मिट्टी में जो खनिज मौजूद है उसके कण को जोड़ने का काम करता है, और वो जोड़ करके एक मिट्टी का अच्छी संरचना बनाती है. और मिट्टी का अच्छा संरचना जब बन जाता है तो वह मिट्टी हमारे कृषि कार्य के लिए जल धारण क्षमता को बढ़ाती है, वो हमारे मिट्टी वो हमारे पौधों के लिए पोषक उपलब्ध कराने में ज्यादा उपयुक्त होते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पोषक पौधा को उपलब्ध करा पाएंगे। उसमें हवा का आवागमन जो है, वो गैस का जो एक्सचेंज है, उस मिट्टी में ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ माइक्रोपोर और मैक्रोपोर का स्पेस जो है, जो सूक्ष्म रीड और रंध्र और बृहत रंध्र जो है, वो इक्वल अमाउंट में अवेलेबल रहता है, और उससे पौधा को सांस लेने में या हवा गैसियस एक्सचेंज करने में या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करने में, इस सब में फायदा होता है। तो हमने देखा कि इसका महत्वपूर्ण रोल मिट्टी संरचना को अच्छी संरचना देने में भी है। चौथा चीज है कि ये सूक्ष्मजीव जीवाणु जो मिट्टी में विद्यमान है, वो क्या करता है, तो वो पौधा जो अवशेष है, पौधा का अवशेष और उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके पुनर्चक्रण में भी मदद करता है। ये पौधा में कैसे पोषक तत्व का पुनर्चक्रण करता है, तो जो अवशेष हैं, जो उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं, पौधा के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, उसको क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म यानी जैविक रूप से अजैविक रूप में, और या इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसको अनअवेलेबल फॉर्म यानी अनुपयोगी रूप से पौधा के लिए जो उपयोगी रूप है, उसमें वो परिवर्तित करने का काम करता है। ये काम सूक्ष्मजीव जीवाणु ही करते हैं। तो जब उसमें उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोसेस को हम खनिजीकरण कहते हैं या मिनरलाइजेशन कहते हैं। और जब वह अकार्बनिक रूप में या उपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो पौधा उसको मिट्टी से आसानी से ग्रहण कर पाता है। तो हमने देखा कि उसका जो है महत्व, यानी सूक्ष्मजीव जीवाणु का महत्व, न्यूट्रिएंट को यानी पोषक तत्व को उसके जैविक फॉर्म से पौधा के लिए उपयोगी रूप है, जिस फॉर्म में वो उसको प्राप्त कर सकता है, उस फॉर्म में बदलने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है सूक्ष्मजीव जीवाणु का। इसके साथ साथ सूक्ष्मजीव जीवाणु क्या करता है, तो पौधा के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व, खास करके उसमें जो बृहत पोषक तत्व है, जो प्राथमिक बृहत पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसको उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कैसे, तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मिट्टी से या ऑर्गेनिक मैटर से या फर्टिलाइजर से वो पौधा अपने आप नहीं ले पाते हैं, उसके लिए क्या करता है ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसको उपलब्ध कराने के लिए तीन जो है उसका माध्यम है, जैसे अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये तीन तरह से वो पौधा को उपलब्ध कराने में नाइट्रोजन को हेल्प करता है। अब सबसे पहले हम जानते हैं अमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिफिकेशन में माइक्रोब्स का रोल क्या है, सूक्ष्मजीव जीवाणु का रोल क्या है। तो वो क्या करता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर या मृत अवशेष या फसल अवशेष है, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल है, तो उसको क्या करता है ये जीवाणु, जब डिकम्पोज करता है तो उससे अमीनो एसिड रिलीज होता है। अमीनो एसिड रिलीज होता है तो उससे अमीनो ग्रुप रिलीज होगा, और उस अमीनो ग्रुप को ये जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है, जिसको हम कहेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु या अमोनिकारक जीवाणु, जिसके अंतर्गत क्लोस्ट्रिडियम आ जाता है, कुछ ये सुडोमोनास स्पीसीज आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं अमीनो फॉर्म को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, और ये अमोनिया फॉर्म जो है वो पौधा के लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे पौधा जो है, बहुत सारे फसल जो हैं, वो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है। कुछ जो है जैसे धान हो गए, तो ये क्या करते हैं अमोनिया फॉर्म में भी नाइट्रोजन को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो अमोनिया फॉर्म में जो ले सकते हैं वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर यही अमोनिया जो है वो नाइट्रीकरण के थ्रू, नाइट्रीकरण यानी अमोनिया का परिवर्तन हो जाता है नाइट्राइट आयन में, और नाइट्राइट आयन फिर परिवर्तित होकर नाइट्राइट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें अमोनिया से नाइट्राइट बनाने में नाइट्रोसोमोनास जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, और नाइट्राइट से नाइट्रोबैक्टर बनाने में जो है वो नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोबैक्टर का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उस तरह से वो अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है पौधा माने मैक्सिमम जो फसल है वो क्या करता है नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन को मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। तो हम देख लिए। तीसरा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण उस समय होता है, उसके लिए है कि जो हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 79% यानी 79% नाइट्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन वो पौधा के लिए अनुपयोगी है, पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में क्या है, तो यही सूक्ष्म जीव जीवाणु, जैसे राइजोबियम हो गया, ये जो ट्यूबेक्टर हो गया, ये जो स्पेरिलम हो गया, क्लोस्ट्रोडियम हो गया, तो ये क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में

0: फिक्स करने का काम करता है, पौधा में फिक्स करने का काम करता है, जिसे कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है। और जब वह वायुमंडल से उस नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के रूट में वो परिवर्तित कर देता है, वहाँ पर वो अमोनिया फॉर्म में या अमोनियम एन के फॉर्म में परिवर्तित करता है, तो पौधा क्या करते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ फिर नाइट्रेट फॉर्म में भी चेंज हो जाता है उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो अवशेष के रूप में रेसिडुअल अमाउंट में बच जाता है वो सॉइल में चला जाता है, और सॉइल में फिर दूसरा फसल जो हम लगाते हैं तो उसके लिए भी वो लाभदायक हो जाता है। तो इसमें भी राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है तो वो दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है, वो उस वो वहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है दलहनी पौधा से, और आश्रय के साथ साथ भोजन प्राप्त करता है, उसके बदले हुए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को खींच करके पौधा को उपलब्ध कराने का काम करता है, जिस विधि को हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसके अलावा जैसे एजोटोबैक्टर है, एजो एस्पेरिलम है, क्लोस्ट्रोडियम है, ये स्वतंत्र रूप से या पार्शियली बंध करके पौधा के जड़ से ये क्या करता है मिट्टी में वही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। इस तरह से पौधा को नाइट्रोजन जो आवश्यक पोषक तत्व का प्रथम आवश्यक प्रथम वृहत और प्राथमिक आवश्यक पोषक तत्व है उसको पौधा को उपलब्ध कराने में एवं मिट्टी में उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी पांचवी चीज़ है कि वो जो है सूक्ष्मजीव जीवाणु वो मिट्टी में फॉस्फोरस की उपलब्धता, जो फॉस्फोरस उर्वरक है या फॉस्फोरस जो पोषक आवश्यक पोषक तत्व है वो भी वृहत एवं प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, दूसरा नंबर पर उसका स्थान आता है, तो उसको भी उपलब्धता जो है वो मिट्टी में और पौधा में बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीव जीवाणु का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे तो ये फॉस्फोरस जब किसान भाइयों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा फॉस्फोरस का अप्लाई हम करते हैं खेत में या किसी फसल में थ्रू DAP या SSP या किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के थ्रू, तो वो क्या होता है मात्र 20-25% तक वो पौधा उसको अवशोषित कर पाता है, बाकी जो है 75-80% जो है वो क्या होता है वो मिट्टी में फिक्स हो जाता है या इमोबिलाइज हो जाता है या बंधन बना लेता है, किसके साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, कैल्शियम के साथ, और उसको पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है, क्योंकि पौधा को अवशोषण करने के लिए फॉस्फोरस या तो H2PO4- और HPO4- इस माने फॉर्म में होना चाहिए, आयनिक फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मिट्टी में जाते ही इमिडिएटली वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है आयरन एल्यूमिनियम और कैल्शियम के साथ, डिपेंडिंग ऑन उस मिट्टी का pH क्या है, तो वो जब कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अवेलेबल नहीं हो पाया, लेकिन जब ये सूक्ष्मजीव जीवाणु उसमें होते हैं या सूक्ष्मजीव जीवाणु का हम माने अपर से सीड ट्रीटमेंट के थ्रू या सॉइल ट्रीटमेंट के थ्रू डाल देते हैं तो वो क्या करता है वो जो बंधन है उसको ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके उस बंधन को तोड़ता है थ्रू चीलेशन, चीलेशन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसके थ्रू भी वो बंधन को तोड़ करके फॉस्फोरस को मिट्टी में अवेलेबल फॉर्म में एनिक फॉर्म में लाता है और पौधा को अवेलेबल कराने में माने उपलब्ध कराने में हेल्प करता है, जिससे हमको माने फॉस्फेटिक केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंसी निर्भरता जो है वो कम होती है और पौधा को अच्छी मात्रा में वो फॉस्फोरस जो है वो उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज है कि जो सूक्ष्मजीव जीवाणु है वो क्या करते हैं तो मिट्टी में जो है सो वो रहते हैं और पौधा के लिए प्लांट ग्रोथ माने पौधा के विकास के लिए जो फाइटो हार्मोन है वो उसको रिलीज करते हैं, जो हार्मोन होते हैं पादप हार्मोन उसको रिलीज करते हैं, जैसे ऑक्जीन हो गया, इंडोलेसिटिक एसिड हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये रिलीज करते हैं, और ये रिलीज करने से क्या होता है पौधा की जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से होती है, पौधा के जो स्टेम तना का जो है उसके कोशिका का डिविजन होता है, कोशिका का वृद्धि होता है, पौधा के कोशिका का वृद्धि होता है, और उसके साथ साथ एक ACCDMNase एंजाइम भी रिलीज करता है ये सूक्ष्म जीव जीवाणु, और वो क्या करता है तो इथिलीन, जो पौधा में इथिलीन का की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण पौधा में असमय मेचुरिटी आने लगती है, असमय फ्लावरिंग होने लगता है, असमय फ्रूटिंग होने लगता है, तो इससे पौधा को बचाता है। तो ये सब काम सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा ही पौधा में संभव हो पाता है, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके साथ साथ जो ये जीवाणु ये है सूक्ष्म जीव जीवाणु है ये बायो कंट्रोल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, माने रोग और कीड़ा मकोड़ा जो कृत्रिम कीड़ा है जो हानिकारक होता है पौधा के लिए उसके रोकथाम के लिए भी हम सूक्ष्म जीव जीवाणु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं BT बैसुलस थुरिंजेनेसिस, ये क्या है, ये भी रोग के रोकथाम में पौधा में जो रोग लगते हैं उसके रोकथाम के लिए जैविक प्रोडक्ट जैविक उत्पाद के रूप में हम प्रयोग, जिसका व्यावसायिक उत्पादन भी होने लगा है। तो इस तरह हम देखें कि बहुत सारे चीज में बहुत से पोषक तत्व उपलब्ध कराने में हो, या पोषक तत्व मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाने में हो, या रोगों को कंट्रोल करने में हो, या कि जो हानिकारक कीड़े हैं उसको कंट्रोल करने में हो, या फिर पौधा के लिए जो वृद्धि के लिए हार्मोन है फाइटो हार्मोन जिसको हम बोलते हैं उसको रिलीज करने में हो, या मिट्टी की संरचना को अच्छा बनाने में हो, या फिर जैविक अपघटन में जैव पदार्थ जो जैव अवशेष है उसको अपघटन करके कंपोस्ट बनाने में हो, या ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने में, इस सब में जो है हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसीलिए हमको मिट्टी में सूक्ष्म जीव जीवाणु की मात्रा को बढ़ानी चाहिए बाय द सप्लीमेंट ऑफ जैव अवशेष जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक सबस्टेट यानी भोजन के रूप में भोज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यही है, धन्यवाद।
1: सर आपने इतनी सारी बातें बताई, आपसे एक और सवाल है कि सूक्ष्म जीव जीवाणु का बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कैसे होता है और किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं?
0: जी जी धन्यवाद। अब मैं किसान भाइयों से या अन्नदाता मालिकों मेरे जो माता एवं बहनों सब से ये जैव उर्वरक के प्रयोग के बारे में कि कैसे जैव उर्वरक को प्रयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा जैव उर्वरक प्रयोग करना चाहिए उसके बारे में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो जैव उर्वरक ये भी सूक्ष्म जीव जीवाणु ही है जो जैव उर्वरक के रूप में वैज्ञानिकों के द्वारा शोध कार्यों के द्वारा और प्रयोगशाला में तैयार किया गया और उसको डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है जो बायो फर्टिलाइजर बना उसके द्वारा भी तैयार किया जाता है और किसानों के लिए मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि जैव उर्वरक भी का जो है वो एक जैविक जो हम लोग खेती करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जैव उर्वरक, और इसका प्रयोग करने से हमारे फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी फसल का बढ़वार अच्छा होता है यानी वृद्धि अच्छा होता है, और पौधा का वृद्धि अच्छा होगा बढ़वार अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि उसका उत्पादन भी अच्छा होगा, और उत्पादन अच्छा होता है इसके साथ साथ उसकी जो गुणवत्ता होती है जो अनाज होती है या जो सब्जी होती है या जो फल फूल होता है उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल अवशेष या किसी तरह का रासायनिक अवशेष नहीं पाया जाता है। और इससे क्या होता है वायु मंडल का जो प्रदूषण करने में या प्रदूषण को रोकने में जो हमारे किसान भाइयों का जो सहभागिता होनी चाहिए उसमें भी अपना सहभागिता को प्रदान करते हैं कि किस तरह से हम वायुमंडल के प्रदूषण होने से बचाने में भी हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर करके उसको बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जैव उर्वरक है क्या और किस फसल के। जैव उर्वरक यही सूक्ष्म जीव जीवाणु का एक उर्वरक है, एक पदार्थ है, एक कंपाउंड है जिसमें कैरियर मटेरियल होता है जैसे चारकोल लिग्नेट और पीट, और उसको जो है हम जब सीड बीज उपचार के थ्रू या सीडलिंग उपचार जो बिचरा उपचार के थ्रू या फिर मिट्टी उपचार के थ्रू या प्रकंद उपचार के थ्रू उसको हम फसल में देते हैं और मिट्टी में देते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे जो फसल है उसका जड़ का विकास अच्छा होता है, जो बीज हम सोइंग करते हैं उसमें बीज का जो है जर्मिनेशन अच्छी होती यानी अंकुरण अच्छा होता है, जो पौधा होता है जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें शर्करा की मात्रा वसा की मात्रा प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होती है और पौधा का विकास अच्छा होता है। इसके साथ साथ देखा गया जैव उर्वरक के प्रयोग करने से लगभग 10-15% तक रासायनिक उर्वरक को बचत किया जा सकता है और 15-20% तक उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ये सब चीज हम जैव उर्वरक के प्रयोग करने से वैज्ञानिकों ने शोध करके देखा है और इसी को किसान इसीलिए वो किसान को रिकमेंड भी करते हैं कि इस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग करें। तो इसका पहला जैसे है राइजोबियम, राइजोबियम भी एक महत्वपूर्ण जैव उर्वरक है जो क्या करता है दलहनी पौधों में, दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है और ये दलहनी पौधों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जिसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और इससे वायुमंडल में जो अनुपयोगी नाइट्रोजन है उसको दलहनी पौधों के गांठ में एब्जॉर्ब करके उसको अमोनियम या अमोनिया आयन के फॉर्म में परिवर्तित कर देता है और वो पौधा के लिए उपयोगी होता है जो केवल दलहनी पौधों के लिए। इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जो वैज्ञानिक शोध से पता चला कि लगभग 50 से 250 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। ये वेरी करता है, ये क्रॉप टू क्रॉप, क्रॉप स्पेसिस जो है लेग्यूम है तो दलहन ही क्रॉप सब, लेकिन उसमें भी अलग अलग दलहनी क्रॉपों में अलग अलग राइजोबियम स्पेसीज का प्रयोग किया जाता है और उसकी क्षमता अलग अलग होती है। उसी तरह जैसे फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर है तो उसमें फॉस्फेट PSB के नाम से जो मार्केट में अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है जो बांधा हुआ फॉस्फोरस है जो मिट्टी में बांधा हुआ है जो पौधा को पौधा के लिए अनुपयोगी है तो उस फॉस्फोरस को ये क्या करता है ऑर्गेनिक एसिड डिलीज करके या चिलेशन प्रक्रिया के थ्रू उसको वहाँ से फॉस्फोरस को आइसोलेट कर देता है, उस बंधा हुआ फॉर्म से अलग कर लेता है और मिट्टी में इसकी मात्रा बढ़ाने में अवेलेबल फॉर्म में और पौधा को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करता है जो PSB बायो फर्टिलाइजर है और ये सभी क्रॉप के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं PSB को। उसी तरह एजोटोबैक्टर है तो एजोटोबैक्टर भी है, एजोटोबैक्टर जैसे वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब्जी वाले फसल हो गए तो उस सब में हम एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं और एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक को प्रयोग करने से भी वही काम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का, स्थिरीकरण करने का काम करता है और पौधा को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में हेल्प करता है जिससे देखा गया कि लगभग 15-40 kg तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की उसकी क्षमता है और जब उससे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है तो स्वाभाविक है कि हमारे रासायनिक उर्वरक की खपत जो है वो कम होगी। रासायनिक उर्वरक को किसान प्रयोग करने से बचेंगे, कम करेंगे, उस मात्रा में उसका क्वांटिटी घटाएंगे जिससे क्या होगा हमारा पर्यावरण प्रदूषण की संभावना भी कम होगी और हमारे फसल का भी क्वालिटी अच्छा होगा। ये जो एस्पेरिलम भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है जैसे चावल में यानी धान के पौधा में, गेहूं के पौधों में, मेज के मक्का के पौधा में, ज्वार में, बाजरा में, गन्ना में, इस सब में जो एस्पेरिलम का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका भी 20-25 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करने की क्षमता है और इससे किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक की पर जो निर्भरता है उससे कम होगी। इसके साथ साथ जैव उर्वरक के रूप में हम इसका भी प्रयोग करते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जीवाणु है एक तरह का, तो वो क्या करते हैं उसका धान में केवल प्रयोग किया जाता है। जब धान की रोपनी हो जाती है तो उसके 20-21 दिन के बाद आप मेड़ को अच्छा से मजबूत कर लीजिए और उसको धान के खेत में पानी 5-7 cm 8 cm लगा होना चाहिए और 21 दिन के बाद उसमें जैव उर्वरक जो है नील हरी शैवाल इसको बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी बोलिए या साइनोबैक्टीरिया बोलिए, उसको खरीद के लाइए और 10 kg प्रति हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर खेत में 10 kg ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर ले करके उसमें थोड़ा सैंड यानी बालू मिला करके ताकि उसका वजन जो हो वो अच्छी रहे और समान रूप से पूरे खेत में वो उसका बिखराव हो, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 204 दिन में उसका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है, वो नीलहरी शैवाल जो है विकास करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो पूरा खेत में फैल जाएगा और जब वो 10 से 15 दिन तक में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की करने लगेंगे और उससे देखा गया कि लगभग 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको वो एक्सट्रैक्ट करके और आपके धान के खेत में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। और लगभग 10 केजी ब्लू ग्रीन अलगी का कल्चर, नीलहरी शैवाल का कल्चर जो है वो 30 से 40 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो है उसमें स्थिरीकरण करने का काम करता है। इसके साथ साथ है माइकोराइजा भी है, वो तो फंगस है, कवक बोलते हैं उसको, वो पौधा और कवक का सहयोगी संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो वो भी क्या, वो क्या करते हैं, वो फास्फोरस को अवेलेबल कराने में, माने फास्फोरस जो है आवश्यक पोषक तत्व है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प करता है पौधा को अवेलेबल कर, उसके साथ साथ सल्फर कॉपर जिंक को भी अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। तो अर्बस्कुलर माइकोराइजा या अर्बस्कुलर माइकोराइजा के फॉर्म में कल्चर जो है अवेलेबल है मार्केट में, उसका भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट में, ट्री में और व्हीट मेज राइस वेजिटेबल्स में वो प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उसके जो है पौधा का फास्फोरस अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर कॉपर जिंक का भी अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और उसमें नमी की मात्रा भी ज़्यादा बनी रहेगी। अब इसके प्रयोग के विधि, ये तो हो गया कि किस फसल के लिए हम कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका क्या कार्य है। अब किसान भाइयों ये भी जानना चाहिए कि ये हम करेंगे कैसे, क्योंकि इसको रासायनिक उर्वरक की तरह हम खेत में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको करना क्या है, तो इसका हम बीज उपचार कर सकते हैं। जब हम सीड का सोइंग करेंगे उसी समय में 25 से 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको जो है आप 25 से 30 ग्राम 1 केजी सीड के लिए हम प्रयोग करते हैं और उसमें पहले पानी और गुड़ का सॉल्यूशन बना लेते हैं और उसको उसके सीड के बीज के ढेर पर के छिड़क देते हैं और उसको अच्छा से मिला देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि जैव उर्वरक का जो है वो कोट चढ़ जाए किस पर, बीज पर, और उसको फिर ले जा उसको हम थोड़ा आधा घंटा एक घंटा के लिए छाया में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको हम जब सोइंग करेंगे तैयार खेत में सोइंग कर देंगे। ध्यान रखें कि जैव उर्वरक से जो उपचारित बीज होगा उसका बुआई जो है हम या रोपाई जो है सुबह अथवा शाम के समय में करें, ताकि उस समय में उसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर होता है वो कम रहता है, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, ये जीवित है, ये जीवाणु है, ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये हो गया बीज उपचार। जैसे हो गया धान के केस में या सब्जी के केस में या कोई फल वाले पौधे हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें, तो हम लोग बिचड़ा जो 20-21 दिन का बिचड़ा हो जाता है उसको लगाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बिचड़ा का भी उपचार हम जैव उर्वरक के साथ कर सकते हैं। तो बिचड़ा के उपचार के लिए भी आप हम क्या करेंगे, 10 लीटर पानी लेकर के 2 केजी जो है जैव उर्वरक का वो गुड़ के साथ सोल्यूशन बना करके उसमें क्या करेंगे हम, वो बिचड़ा का बंडल 50 से 100 बंडल जितना सुटेबल हो उस अमाउंट के लिए वो उसमें रख देंगे और उसको आधा घंटा तक सोक होने देंगे। जब उसको वो सोक कर लेगा आधा घंटा 45 मिनट, फिर उसको हम उसमें से निकाल करके क्या करेंगे, खेत में रोपनी कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये विधि है जिसको हम बिचड़ा लगाते हैं, जैसे सब्जी के केस में हो गया, धान के केस में हो गया, फल के पौधा के केस में हो गया, उस केस में हम इसका बिचड़ा उपचार करते हैं। मिट्टी उपचार यदि हम करना चाहें तो मिट्टी उपचार में क्या है, 70 से 80 केजी गोबर की खाद लें या कंपोस्ट लें, उसमें 2 से 4 केजी जो है जैव उर्वरक को मिला करके उसको ओवरनाइट छोड़ दें, उसमें एक्सप्लोर करेगा वो माइक्रोब्स जो है उसमें ग्रो करेगा और उसको सुबह होके जो खेत आप तैयार किए हुए हैं, फाइनल प्रिपरेशन कर चुके हैं, उसमें ले जाके उसका छिड़काव कर दें, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी में जैव उर्वरक की मात्रा, जो सूक्ष्म जीव है जो लाभदायक है उसकी मात्रा बढ़ेगी और जब आप उसमें फसल का बुआई करेंगे या रोपाई करेंगे तो वो उससे इंटैक्ट हो करके जो अपना काम है, जैसे पोषक तत्व उपलब्ध कराना या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करना या फाइटो हार्मोन उपलब्ध कराना या फिर रोग नियंत्रण करना, वो अपना काम खुद ब खुद करने लगेंगे। जैसे आलू के केस में है, अदरक के केस में है, इस सब केस में राइजोम ट्रीटमेंट भी होता है, तो राइजोम ट्रीटमेंट यानी कंद का उपचार भी आप कर सकते हैं और उपचार करके उसको लगावेंगे तो यानी किसी भी तरह से, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सीडलिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे राइजोम ट्रीटमेंट हो, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट हो, इस तरह से हम जैव उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं अपने फसल में और उसका प्रभाव देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फसल की वृद्धि में और साथ साथ जो ग्रेन है उसके क्वालिटी में, उसके गुणवत्ता में हमको सुधार आता है और वायुमंडलीय प्रदूषण तो खुद ब खुद उससे कम होते चला जाएगा। और ये जो है, ये जैव उर्वरक के प्रयोग करने के समय कुछ सावधानियां भी बरतनी है, या खरीदते हैं जब जैव उर्वरक उस समय में भी आपको सावधानियां बरतनी है। जब भी जैव उर्वरक खरीदने जाएं तो वहां देख लें कि हम किस फसल के लिए ले रहे हैं, उस पैकेट पर या उस डब्बा पे उस फसल के नाम लिखा हुआ होगा कि ये जैव उर्वरक जो है इसी फसल के लिए रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड डोज है।

0: कितना देना है हमको, उसकी कैसे देना है, उसका एप्लीकेशन में प्रयोग विधि होगा उस पर दिया हुआ। इसके साथ साथ उसको हमको सुबह अथवा शाम के समय ही देना है, वो सावधानियां में भी लिखी होगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है जैव उर्वरक के केस में, वो उसका देखें मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कब बना है और कब इसका एक्सपायरी डेट है। क्योंकि जो पाउडर फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, सॉलिड फॉर्म में जैव उर्वरक होता है, वो केवल 6 महीने के लिए ही होता है। 6 महीने तक उसमें माइक्रोब्स की वियबिलिटी अच्छी होती है। और जो लिक्विड फॉर्म का जैव उर्वरक भी जो अपने यहाँ भी अवेलेबल है और मार्केट में भी अवेलेबल होता होगा, तो उसका 1 से 1.5 साल तक उसकी लाइफ स्पेन रहती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। जैव उर्वरक को जब भी प्रयोग करें उसी समय उसके डब्बा को या उसके बोतल को ओपन करें, उससे पहले ओपन नहीं करें, ज़्यादा अच्छा। उसको खरीद कर लावें तो हो सके तो उस मिट्टी के बर्तन में घर में संग्रह करने की कोशिश करें। उसको डायरेक्ट सनलाइट से, तीखी धूप से बचा के रखें, ज़्यादा टेम्परेचर से बचा के रखें, उसको छाया में रखें, और उसका जो प्रयोग करते वक्त जो बीज का उपचार भी करें वो भी छाया में करें। धन्यवाद।
1: सर, आपने सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद है कि किसान भाई बहनों के हित में ये बातें आएगी और वो इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों, अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूँ आरजे अनु. आप सभी का स्वागत है हमारे उन्नत कृषि कार्यक्रम में. और आज एक खास विषय आप सभी के सामने

0: कर लें, भिंडी की बात करें, लोबिया या बोरा, साथ ही परवल की बात करें, तो ये जो सब्जी हैं वो प्रमुख तौर पर गर्मी में और साथ ही वर्षा ऋतु में आपको मिल जाएंगे खाने को और बाज़ार में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसी के कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा विषय है गर्मी और वर्षा ऋतु में सब्जियों में होने वाले प्रमुख बीमारियां और साथ ही उनका हम प्रबंधन कैसे करें ये। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर मोहम्मद अंसार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पौधा रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मिर्च से स्टार्ट करते हैं। मिर्च जो है हर मौसम में, सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, हर मौसम में हम इसे खाते हैं। मिर्च में लगने वाले जो रोग हैं आप उनके नाम बताएं और साथ ही हम उनसे अपने मिर्च के इस पौधों को कैसे बचा सकते हैं उसकी जानकारी बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिर्च जो है एक बहुत प्रमुख फसल जो है, सब्जी मानी जाती है, जिसका हम लोग बहुत सारी सब्जियों में इसको यूज करते हैं, हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुख्यतः गर्मी में और वर्षा ऋतु में सब्जी मुख्य तरीके से उगाई जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, खास करके जो ये हमारी गर्मी में है और जो बारिश जो शुरू हो जाती है इसमें बहुत सारी बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि जब पौधा छोटे अवस्था में ही होता है, जुवेनाइल स्टेज में ही होता है, तो उसी में ही बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। तो किसान भाई जब इसका मिर्च का बीज डालते हैं खेतों में या नर्सरी तैयार करते हैं, उस टाइम इसमें पौधों में गलन शुरू लगता है, जिससे शुरू में ही पौधे गल जाते हैं। तो वो क्या होता है कि हमको उसमें पौधे मिल नहीं पाते, जिससे हम लोग उसको मुख्य खेत में रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों को ये बात देखने की जरूरत है कि जब हम लोग बीज डालें तो ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे जल जमाव ना हो, क्योंकि नमी की मात्रा ज्यादा होता है खेत में जब, तो उसी वक्त में इसमें जड़ों में गलन इसका शुरू हो जाता है, जिससे ये पौधे धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग इसका जो नर्सरी तैयार करें, जब बीज डालें, तो ऐसे जगह पे हम लोग नर्सरी का की जगह का चुनाव करें जहाँ पे पानी ना भरता हो, जल जमाव की समस्या ना हो, और जो भी हम लोग बेड तैयार करेंगे जिसमें हम लोग बीज डालते हैं उसको मिट्टी से 15 सेंटीमीटर थोड़ा सा ऊपर उठा के हम लोग बेड बनाएं, उसके अंदर बीज इसमें डालें, तो हम लोगों का काफ़ी हद तक इसमें रोग से हम लोग इसको बचा लेते हैं। दूसरी एक जो बड़ी समस्या मिर्च में आती है, जो अभी हम लोग देखने को मिल रहा है, जो बारिश भी शुरू हो गई है, इसमें फलों का सड़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। फल सड़ता है और दूसरा इसकी जो टहनियाँ होती है, तने होती हैं, उसमें उसका सूखना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग डैम्पिंग, ये इसको हम लोग इसको एंथ्रेक्नोज डिजीज़ बोलते हैं, हम लोग एंथ्रेक्नोज इसको श्यामरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें दो तरीके के लक्षण दिखते हैं, एक तो ये फलों का सड़ना और दूसरा तनों का सूखना। तो हम लोग पहले जब फलों की बात करते हैं, तो फल क्या होता है, फल वो सड़ना शुरू होते हैं जो थोड़ा सा मेच्योर, जो पक्के मेच्योर हो जाते हैं, जिनका पकने की अवस्था में आ जाते हैं, उनमें ज़्यादातर फलों में ये सड़न होती है और फल काले होकर ज़मीन पे गिर जाते हैं। दूसरी समस्या जो इसमें दिखती है, जो लक्षण दूसरा जो हम लोग देखते हैं खेत के अंदर, उसमें टहनियाँ इसमें काली होने लगती हैं, ऊपर से सूख करके नीचे की तरफ बढ़ती हैं और देखते ही देखते पूरा पौधा सूख के ख़त्म हो जाता है। और इसके अंदर एक प्रमुख बात यह है कि जो ये बीमारी जो लगी हुई है मिर्च के पौधे पर, ये जो मिट्टी में चले जाते हैं, फल टूट के मिट्टी में गिर जाते हैं, तो ये जो फफूंद है ये मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जब हम दूसरी बार इसमें मिर्च की फसल दूसरे सीजन में उगाते हैं तो उसमें वो फिर बीमारी आनी शुरू हो जाती है, तो मृदा जनित हो जाती है। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें फफूंदनाशी का हम लोग स्प्रे करेंगे। तो पहला हम लोग जो छिड़काव करेंगे, मैंकोजेब दवा मार्केट में आती है, हम लोग 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। और दूसरा जो हम लोग दवा का छिड़काव करेंगे, एक डाइफेनोकोनाजोल करके एक दवा मार्केट में आती है, सिस्टेमिक फंजीसाइड है, डाइफेनाकोनाजोल है, वो मार्केट में अवेलेबल है, उसको हम लोग ले करके उसका 1 ml 2 लीटर पानी में उसका हम लोग घोल बनाएंगे और कम से कम 7 से 8 दिन के अंतराल पर उसका छिड़काव हम लोग करेंगे। तो इससे निश्चित तौर पर हम लोग देखेंगे कि बीमारी की जो समस्या लगती है वो धीरे धीरे कम होगी। और हम लोग एक चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा पूरी तरीके से सूख गया है तो उसको हम लोगों को खेत से फौरन निकाल के फेंक देना है, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा तो उससे फिर वो आने वाले जब समय में जब हम दोबारा मिर्च लगाएंगे तो उसमें बीमारी फिर से उत्पन्न हो जाएगी। तीसरी एक समस्या जो हम लोग देखते हैं मिर्च के अंदर, वो पौधों का अचानक सूख जाना, पौधों में फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, फल अच्छी तरीके से तुड़ाई हो रही है, अचानक हम लोग देखते हैं कि पौधा ही सूख गया। तो उसमें हम लोगों का क्या होता है कि इसमें लक्षण जो दिखते हैं हरे भरे पौधों में कि जो पत्तियां होती हैं

0: वो लटक जाती हैं। जो दिन में जब गर्मी होती है तो उसमें पत्तियां नीचे लटकी हुई होती हैं, और जब रात का समय होता है, शाम होती है, फिर पत्ती वो फिर से वो स्वस्थ दिखने लगती हैं। फिर जब दिन आता है दूसरे दिन, तो फिर वो पत्ती सूख जाती है। तो ये दो तीन दिन इस तरीके से चलता है, चार दिन चलता है, फिर वो फाइनली पौधा वो जो है सूख ही जाता है। तो इससे उसमें क्या होता है, उसके जो वैस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर जो जीवाणु बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरी तरीके से, जिससे जो पानी जो पौधा लेता है जमीन के अंदर से वो पानी नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है। तो ये जो बैक्टीरियल विल्ट, जो हम लोग जीवाणु की वजह से जो सूखना पौधों के अंदर होता है, एक बहुत बड़ी मिर्च की समस्या है। तो इसको किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि अगर जिस खेत में ये बीमारी अगर लगातार आ रही है, आप लोग मिर्च की फसल लगा रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्षों तक हम लोगों को इसके अंदर फसल चक्र का अपनाएं। कोई भी जो मिर्च वर्ग के जो फसल है उसको हम लोग नहीं लें उस खेत के अंदर, अगर लेते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए कोई किसान भाई इसमें मिर्च लगा रहा है खेत में, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब भी हम लोग मिर्च लगाएंगे तो हम लोग इसको दवा में, इसको ट्रीटमेंट इसका देंगे, इसके जड़ों को हम लोग दवा में इसको डुबाएंगे, फिर खेत में लगाएंगे। तो एक दवा मार्केट में के साइक्लिन करके आती है, जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, उसको हम लोग 1 ग्राम दवा जो है 20 लीटर पानी के करीब से घोल उसको हम लोग बना लेंगे, और उसमें जड़ों को थोड़ी देर के लिए डुबा करके फिर हम लोग मुख्य खेत में उसको लगाएंगे। तो इससे जो है हमारी बीमारी की जो लगने की समस्या है वो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर खेत में पौधा लगा हुआ है, फलन हो रही है, और अब पौधा सूख गया, तब तो हमको फौरन इसमें ऐसी दवा डालना होगा जो खेत में खड़े हुए फसल में उसमें दवा डाली होगी। तो हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे, जो दवा का छिड़काव करेंगे इसके जड़ों में देंगे, ताकि उसके वैस्कुलर सिस्टम में दवा जाए और जहां वो जीवाणु को मारे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक दवा आती है मार्केट में मुख्य तरीके से मिलती है, तो हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसका घोल बना करके पौधों की जो जड़ों हैं, जड़ों में उसको दवा डालना है, ताकि वो जड़ से वो दवा अंदर जाए पौधों के अंदर, और फिर वहाँ अच्छे तरीके से काम करे। अगर हम लोग इस जो कोई पौधा सूख रहा है और अगर हम लोग दवा पत्तियों पर छिड़काव करेंगे, तो हो सकता है कि वो दवा प्रभावी ना हो। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान देना है। और जो एक मिर्च में हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जिसके अंदर पत्तियाँ ऐंठ जाती हैं, उसको हम लोग यहाँ के भाषा में कुकड़ी भी बोलते हैं, मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में हम लोग उसको कर्लिंग बोलते हैं। तो पत्ती उसमें क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। तो वो एक विषाणु जनित बीमारी है, जिसको हम लोग लीफ कल वायरस की वजह से बोलते हैं, वो बीमारी आती है। तो ये जो बीमारी होती है, ये मुख्य तरीके से जो है एक कीट होता है, जिसको हम लोग सफ़ेद मक्खी बोलते हैं, वो सफ़ेद मक्खी से वो बीमारी एक पौधों से दूसरे पौधों में फैलती है। तो वो बीमारी ग्रसित पौधे से रस चूस करके वो स्वस्थ में जब भी जाएगी रस वहाँ से अपना खाना लेने के लिए, तो वो विषाणु वहाँ पे भी चला जाएगा। तो इस तरीके से देखते देखते पूरे खेत में वो कर्लिंग की समस्या आ जाती है, जो पत्ती ऊपर की तरफ ऐंठ जाती है। तो इस तरीके से अगर इसमें पत्ती का ऐंठना ही नहीं होता है, पत्ती भी ऐंठती है, पौधा भी छोटा रह जाता है, पौधा झाड़ी नुमा भी हो जाता है, और इसके अंदर अगर फल फूल लगते भी हैं तो वो छोटे और गठीले तरीके से हो जाते हैं, जिनका कोई मार्केट में उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। तो इसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके से कोई बीमारी दिखती है, तो अगर पौधे अगर खेत में अगर इस तरीके से अगर कोई लक्षण आपको दिख रहा है, तो फौरन उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देना है, और इसको हम लोगों को फौरन खेत में इसको दवा का छिड़काव करना है, जो सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए दवा दी जाती है। तो इसके लिए हम लोगों को इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का मार्केट में खूब अवेलेबल है। इसको हम लोग 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से, या दूसरी दवा थायामिथक्साम करके आती है 1 ग्राम प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, इसका हम लोग 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो सफ़ेद मक्खी है उनका खेतों में जो लगे हुए हैं उनको हम लोग नियंत्रित करेंगे, जिससे बीमारी जिससे फैलती है उसको हम लोग कम कर देंगे। इसको रोकने का और भी अच्छा तरीका है कि हम लोग नर्सरी अवस्था में ही इसको रोकना शुरू करें, क्योंकि नर्सरी में जब हम लोग बीज डालते हैं तो किसान भाई खुले में लगा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आती हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी लगनी शुरू हो जाती है, तो वहीं से वो बीमारी वायरस जो है फैलना शुरू हो जाता है नर्सरी की अवस्था से ही। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी नर्सरी लगाएं तो उसको हम लोग बारीक एक जाली आती है है उस जाली से हम लोगों को नर्सरी को ढकना है। तो उससे दो चीज़ें होंगी कि एक तो बीमारी जो वायरस फैलाने वाले कीड़े हैं वो नहीं उसके अंदर जाएंगे नर्सरी के अंदर, और दूसरा और भी जो पत्ती को चबाने वाले कीट हैं वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो जो नर्सरी आपने तैयार करी है उसके पौधे जो होंगे वो स्वस्थ होंगे, अच्छी तरीके से होंगे, और जब वो मुख्य खेत में जाएंगे रुपाई के लिए तो उसमें भी बीमारी कम आएगी। यदि आती है तो हम लोग इसका जो दवा अभी हमने बताया कि सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए उसका छिड़काव करेंगे। दूसरी बात है, किसान भाई एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी हम लोग मिर्च की फसल लगाते हैं तो हम लोग ध्यान दें कि अपने खेत के चारों तरफ कम से कम दो लाइन बॉर्डर के तौर पे उसमें हम लोग मक्का या ज्वार उगाएं। तो उससे क्या होगा, जो बॉर्डर वाली जो फसल हम लोग लगाते हैं उससे क्या होता है कि सफेद मक्खी डायरेक्ट खेत में नहीं घुसनी है, वो उनका एक प्रोटेक्शन हो जाता है किनारे किनारे मेड़ों पर। तो दो लाइन हम लोग मक्के की अवश्य लगाएं उसके किनारे किनारे खेत के मेड़ों पर, जिससे उसमें मधुमक्खी ये वही सफेद मक्खी का उसके अंदर प्रवेश उसके अंदर हम लोग उसको बाधित कर सकें। दूसरा एक इसमें जो कर्लिंग की समस्या आती है, किसान भाई देखते हैं कि कर्लिंग दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तो जो कुकड़ी होती है ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं, जिसको अभी हमने बताया जो विषाणु की वजह से होती है। एक दूसरी समस्या होती है पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो विषाणु नहीं है वो एक माइट होता है, छोटा कीड़ा होता है, आँख से नहीं दिखता है, वो पत्ती के निचली सतह पर लग करके उसका रस चूसता है, जिससे पत्ती नीचे की तरफ मुड़ जाती है, नीचे की तरफ से मुड़ती है और थोड़ी लंबी हो जाती है। तो माइट है, उसके माइट को रोकने के लिए स्पायरोमेसिफेन करके दवा आती है। स्पायरोमेसिफेन 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप उसका घोल करके छिड़काव करें कम से कम 2 बार 7 से 8 दिन के अंतर पर, तो हम लोग इसको माइट को भी रोक देंगे, तो वो जो इस तरह से अगर पत्ती है तो वो ठीक हो जाएंगी वो।
1: तो ये तो बात हो गई है मिर्च की, मिर्च में लगने वाले रोगों के नाम बताएं डॉक्टर साहब ने आपको, और साथ ही इसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। आजकल देखा जाए तो कद्दू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हमारे किसान भाई कर रहे हैं सर, तो कद्दू में कौन कौन से रोग हैं कद्दू के पौधे में लग सकते हैं और उनका बचाव कैसे कर सकते हैं हम?
0: जी, कद्दू एक मुख्य फसल है जो गर्मी में और वर्षा ऋतु में दोनों में होती है। तो इसको इसमें मुख्यतः तीन बीमारियां आती हैं जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें इसको आप खेत में देखते भी होंगे। एक तो होता है कि पौधा पूरी तरीके से ही सूख जाता है अचानक, तो हम लोगों को देखना है कि उनके जड़ के पास में कोई कीट तो नहीं लगा हुआ है या कोई बीमारी लगी इसको जड़ को, हम लोग उसको देखना है उसको जा करके। तो अगर हम लोगों को जड़ों में अगर देखता है कि अगर कोई काले रंग का कोई घेर लेके घेरा हुआ या कवर कर रखा है तने को, तो हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोई फफूंद लगा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो अभी हमने बताया है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कार्बनडाजिम दवा आती है 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, उसको हम लोगों को जड़ों में उसका डालना है उस दवा को, वहाँ ड्रेंचिंग करना है उस दवा को। और अगर हम लोगों को मैं उस टाइम अगर पत्तियों पर छिड़काव करते हैं तो हो सकता है ये बहुत प्रभावी ना हो, क्योंकि जड़ों से सूखना शुरू होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये है समझना है कि जो जड़ में फफूंद लगा है उसको हम लोगों को रोकने की ज़रूरत है। तो हम ये दो दवा का अगर छिड़काव करते हैं तो इससे पौधों का सूखना रुकेगा। जब हम लोग बीज लगाते हैं कद्दू का, तो सबसे पहले हम लोगों को वही देखने की ज़रूरत होती है, हम लोग ट्राइकोडर्मा का यूज करें। ट्राइकोडर्मा हम लोगों को जो है वर्मी कंपोस्ट जो हम लोगों के पास में ये जो मिलता है, हम लोग 100 किलो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर 1 किलो के करीब हम लोग जो मार्केट का जो मिलता है फॉर्मुलेशन, उसको हम लोग मिला करके 14 से 15 दिन के लिए उसके छावदार स्थान पर रखते हैं ताकि उसके अंदर वो ट्राइकोडर्मा अच्छी तरीके से फैल जाए। जब हम लोग गड्ढा बनाते हैं कद्दू वर्गीय फसलों को लगाने के लिए, उसमें लौकी हो सकती है, परवल है, या आपका ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, तो इन सब में जो हम लोग लगाते हैं बीज लगाते हैं, तो हम लोग पहले गड्ढा बनाते हैं। उन गड्ढे में पहले हम लोग वर्मी कंपोस्ट वो भी ट्राइकोडर्मा मिला हुआ उसको हम लोग पहले गड्ढे के अंदर भर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे अगर कोई इस तरह से फफूंद होगा तो ट्राइकोडर्मा उनको रोकेगा, और जिससे हमारे जो पौधे निकलेंगे उसके अंदर उनमें जड़ों में इस तरह से कोई विकार या कोई बीमारी इस तरह से नहीं दिखेगी। तो अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा वर्मी कंपोस्ट में मिले हुए वर्मी कंपोस्ट को अगर हम लोग डालते हैं गड्ढों में, तो उससे हम लोग बीमारी काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। दूसरा, पत्तियों पर जो एक बीमारी लगती है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक पाउडर की परत सी जम जाती है, दो पाउडरी मिल्ड्यू हम लोग उसको बोलते हैं कि एक इस तरह से परत जमती है, तो देखते हैं कि पूरा पौधा ही सफ़ेद हो जाता है। जब हम लोगों की नमी बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर होती है तो उस वक्त ये बीमारी ज़्यादा आती है खेतों के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी है कि जब भी कोई इस तरह से हम लोग बीमारी आने की संभावना जो बनी रहती है, तो हम लोग बीमारी आने से पहले ही मैंकोजेब जो 2 ग्राम या 2.5 ग्राम जो दवा है उसको प्रति लीटर के हिसाब से पहले से ही छिड़काव करके रखेंगे खेत में, जिससे उसके अंदर इस तरह से कोई बीमारी ना आए, पहले से ही हमने छिड़काव करके उसमें रखना है। दूसरी बात है जो हम लोग देखते हैं कि और भी फफूंदनाशी अगर मान लो बीमारी आ भी गई है, खेत में लग रही है बीमारी की बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो हम लोग उसके अंदर जो सिस्टमिक फंजीसाइड्स हैं जो है वो उसको हम लोगों को डालना बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम, क्योंकि उसमें फिर हम लोग कोई दवा डालेंगे तो काम नहीं करेगा इस तरीके से। तो हम लोग हेक्साकोनाजोल आता है, टेब्यूकोनाजोल आता है, तो या हेक्साकोनाजोल या ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन का मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है, मिला हुआ रहता है, तो इस तरह से जो दवा आती है इनका दवा हम लोग ले करके वो एक ग्राम के हिसाब से इसको हम लोग लेके पत्तियों पर छिड़काव करना शुरू करेंगे, ताकि जो उस तरह से जो फफूंद ऊपर लगी है वो उसको हम लोग साथ समय ठीक कर सकें। अभी जो मिर्च ये कद्दू वर्गीय फसलों में जो हम लोगों को एक उभरती हुई समस्या जो दिख रही है वो विषाणु जनित बीमारियों की, तो अभी हम लोग देखते हैं जो जो जो लक्षण हम लोगों को मिर्च में टमाटर में जो दिखते थे, पत्तियों के अंदर पीला हो जाना या पत्तियों के ऊपर कुकड़ी हो जाना, पत्तियां ऐड जाती हैं, उस तरीके की समस्याएं अब हम लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिल रही है। उसमें आपका खीरा, तरबूज, करेला, खीरा, इस सारे में जो है इस तरह की बीमारी दिखती है जिसमें पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, मोज़ेक तरीके का दिखने लगता है, उजला हो जाता है और पत्तियाँ ऐड जाती हैं, तो ये एक विषाणु जनित बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरी चीज़ करना यह है कि जो ये बीमारी वही मक्खी, सफ़ेद मक्खी से फैलता है जो मिर्च के अंदर जो इस तरह से कुकड़ी या कर्लिंग उसके अंदर बीमारी को फैलाता है। तो हम लोगों को यहाँ देखने की ज़रूरत यह है कि अगर वो हम लोग ये बीमारी अक्सर लगनी कब शुरू होती है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो मिर्च उगाते हैं या टमाटर उगाते हैं, टमाटर मुख्यतः रबी की फसल है, जब टमाटर की फसल ख़त्म होने वाली होती है तो उसके बीच में कद्दू वर्गीय फसलों को लगाना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे कद्दू लगाते हैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो उसके अंदर जब जो विषाणु इसमें लगता था टमाटर के अंदर, वो विषाणु वो कद्दू वर्गीय फसलों में चला जाता है, तो टमाटर तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब कद्दू वहाँ पर जो पौधा तैयार होता है उनमें मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पौधों में उस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को हमको देखना है कि जब भी हम लोग इस तरीके से कोई बीज लगाएं किसी टमाटर के में या मिर्च में किसी फसल में, तो उसमें हम लोगों को टाइम से उसके अंदर दवा का छिड़काव करना ज़रूरी है, ताकि जो सफ़ेद मक्खी टमाटर या मिर्च में लगती हो वो इसके अंदर कद्दू वर्गीय फसलों में ना आने पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि जब पत्ती 2-3 पत्तियाँ निकल आएँ तब हम लोगों के अंदर इमिडाक्लोप्रिड या थायमेथोक्साम जो भी हमने दवा बताया है इसका हम लोगों को छिड़काव करना शुरू कर देना है। 7-8 दिन के अंतर पर इस दवा को हमको छिड़कते रहना है। दूसरी चीज़ है जैसे अभी हम लोग बताएं कि जो बॉर्डर वाले हैं, जो किसान जो मुख्य खेत है उसके किनारे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन मक्के की या ज्वार की हम लोग क्या करते हैं लगा देते हैं, तो उससे सफ़ेद मक्खी का जो खेत के अंदर जो प्रवेश होता है उसको हम लोग रोकते हैं, तो इससे हम लोग देखते हैं कि बीमारी को हम लोग बहुत हद तक कम कर देते हैं।
1: अगर गर्मियों की बात करें और साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो भिंडी अभी बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है और लोग इसे खाते भी हैं, इसकी डिमांड भी ज़्यादा है, तो डॉक्टर साहब भिंडी उत्पादन के समय बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई रोगों के बारे में जानें और उनका बचाव कैसे करें, भिंडी के पौधे में जो रोग लगते हैं उनको पहचानें, तो कौन कौन से रोग इस पौधे में लग सकते हैं और उसका बचाव कैसे कर सकते हैं हमारे किसान भाई?
0: जी जी बिल्कुल, जो भिंडी की फसल है हम लोग देखते हैं कि मार्च से ही आनी शुरू हो जाती है और अभी बरसात में भी खूब भिंडी मिलती है हम लोगों को। भिंडी हम लोग 2 सीज़न में लगाते हैं, एक तो हम लोग गर्मी वाला लगाते हैं, एक वर्षा ऋतु वाला लगाते हैं, दोनों अलग अलग में लगाते हैं। तो जो गर्मी में हम लोग लगाते हैं, जो मार्च के करीब लगाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जो भिंडी में है जो मुख्यतः जो बीमारी आती है वो मोज़ेक की समस्या है, जिसमें पत्ती एकदम गोल्डन की तरह मोज़ेक चमकती हुई दिखती है खेतों में, अगर हम लोग देखते हैं उसको हम लोग येलो वेन मोज़ेक बोलते हैं, तो उस तरह से खेत में एक चमकदार पत्ती जो पीली उजली सी दिखनी शुरू हो जाती है। तो भिंडी में एक सबसे बड़ी बीमारी यही हम लोगों को दिखती है खेतों के अंदर। अब आते हैं हम लोग भिंडी के सीज़न के ऊपर, जो भिंडी 2 सीज़न में जो हम लोग लगाते हैं, एक तो हम लोगों का लगाने का समय है जब हम लोग ये मार्च में लगाते हैं, दूसरा एक वर्षा ऋतु में जो हम लोग जुलाई वगैरह में लगाते हैं जो अभी आ रहा समय, तो इसमें हम लोग देखते हैं जो गर्मी में लगाते हैं मार्च के समय में उसमें कम जो बीमारी होती है उसमें थोड़ा कम आती है, और जब हम लोग इधर देखते हैं जो बरसात में लगाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके की समस्या आती है जिसमें पत्ती पूरी तरीके से पीली हो जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं जब भी किसान भाई लगाएं तो इसमें 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। जब भी हम लोग भिंडी लगाते हैं जो चूँकि बीज जो मार्केट में मिलते हैं वो ऑलरेडी उनमें ट्रीटमेंट किया होता है, तो उस टाइम हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पत्ती में जब पौधे बीज डालने के बाद में जब दो तीन पत्तियां निकल आती हैं तो उसी टाइम से हमको छिड़काव करना जरूरी होता है। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि किसान भाई क्या करते हैं कि जब पौधों में बीमारियां आनी शुरू हो जाए, पौधा बड़ा हो गया, भिंडी निकलने फूल निकल रहे हैं, फल भी निकल ले रहे हैं, उस टाइम बीमारी आती है तभी हम लोग दवा छिड़काव के बारे में सोचते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी भिंडी में दवा का छिड़काव हमको करना है तो जब पत्तियां दो तीन पत्ती निकल के आ जाए पौधे के बीज लगाने के बाद में या सोइंग करने के बाद में तभी हमको उसी टाइम दवा डालना है, क्योंकि बहुत छोटे पौधे छोटे अवस्था में ही बीमारी आ जाती है और वो पौधा बड़ा बड़ा बड़ा होते होते उसके अंदर वो लक्षण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है कि शुरुआती अवस्था में ही उसमें दवा डालना जरूरी होता है। तब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर ध्यान देंगे कि सफ़ेद मक्खी जो गोल्डन मोज़ेक जो बीमारी आती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है, ये भी वो उसी ग्रुप का ही वायरस है। तो हम लोगों को जो सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवा बताई इमिडाक्लोप्रिड थायोमेथोक्साम, इन दवाओं को हम लोगों को 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 8 से 12 दिन के अंतराल पर इन दवाओं का छिड़काव करना है जब 3-4 पत्तियां निकल आए इसके अंदर, उस चाहे बीमारी हो या ना हो लेकिन हम लोग को दवा डालना ज़रूरी होता है। अगर हम उस टाइम दवा डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें ट्रांसमिशन या जो सफ़ेद मक्खी से जो वायरस फैलता है हम उसी अवस्था में सफ़ेद मक्खी को मार देंगे तो पौधा बड़ा होते होते होते अगर उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो बीमारी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तब हमारा फल फूल आता है उसमें हमको उपज भी मिलती है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में अगर विषाणुओं के लक्षण दिखने शुरू हो गए तब हम लोगों को उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर हम लोगों के पास में एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि पौधे को उखाड़ के फेंक देना। तो अगर हमारे पास अगर किसान भाई भिंडी लगाए हुए हैं अगर एक दो पौधे में अगर कहीं पर भी अगर इस तरह से लक्षण दिख रहा है तो हमको सबसे पहले उस पौधे को हटा देना है। हो सकता है कि उसी एक दो पौधे की वजह से पूरे खेत में वो बीमारी फैल जाए और देखते देखते पूरे पौधे पीले हो जाए। तो अगर एक दो पौधे में अगर इस तरह से कोई लक्षण दिख रहा है तो बगैर कोई लालच किए बगैर कुछ उसमें दिमाग लगाए उसको हम लोग को हटा देना है ताकि उससे बीमारी दूसरे पौधों में ना फैलने पाए। तो सफ़ेद मक्खी को जो मारने के लिए दवा है उसी को हम लोग छिड़काव करेंगे। दूसरा जो बॉर्डर के लिए भी हम लोग बात कर रहे थे, बॉर्डर पे मक्का या ज्वार की 2 लाइन हम लोग जरूर लगाएं इसमें।
1: तो ये बातें हो गई हैं भिंडी की और इसके साथ ही साथ डॉक्टर साहब हम लोबिया यानी कि जिसे हम स्थानीय भाषा में बोरा भी कहते हैं तो उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, साथ ही उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं उसे भी बताएं।
0: जी बोड़ा जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लोबिया या काउपी हम लोग बोलते हैं उसको, बोड़ा में हम लोग देखते हैं 2 बीमारी बहुत तो आम है यहाँ पे आती है। एक तो आती है कि जो पत्ते होते हैं उनमें काले काले धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं, इसको हम लोग एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। वो पुरानी पत्तियों जो पत्तियां होती हैं जो नई पत्तियां होती हैं उनमें कम होती हैं, जो नीचे की पत्तियां होती हैं जो थोड़ा पुरानी हो जाती हैं उनमें इस तरह से काले धब्बे बनने शुरू होते हैं। तो कभी कभी वो काले धब्बे क्या होते हैं पूरे पौधे पर फैल जाते हैं और वो देखते ही देखते पूरे पौधे को गला देते हैं। जब इसमें फलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जब फलियां आती हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि काले काले से धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये जो बीमारी आती है इसके लिए हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। देने वाली जो बात है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मैंकोजेब, बीमारी हो या ना हो हम लोग एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर कर दें। जब पौधा हमारा थोड़ा सा 4-5 पत्ती जब उसके अंदर आ जाए उसके अंदर छिड़काव हमको कर देना है, मैंकोजेब 2 ग्राम के हिसाब से हम लोगों को उसके अंदर छिड़काव कर देना है। यदि उसके बाद अगर उसके अंदर बीमारी आ रही है उसमें इस तरह से कोई लक्षण दिख रहे हैं कि वो पत्ती काली पूरी हो जा रही है या तने में कालापन आ जा रहा है या फलियों में कालापन लगने शुरू हो जा रहे हैं तो डाइफेनोकोनाजोल जो दवा है वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से हम लोगों को दवा का छिड़काव कर देना है। तो उससे क्या होगा वो काले धब्बे जो हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दूसरा एक जो इसमें जो पत्ती में एक समस्या आती है वो गोल्डन मोज़ेक की है। गोल्डन मोज़ेक एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम लोग देखते हैं कि पत्तियां उजली सी हो जाती हैं उसमें। वही बीमारी हमारे मूंग में भी आती है, वही बीमारी हमारी फ्रेंच बीन में भी आती है, वही बीमारी हमारी इसमें आती है अरहर में भी आती है। तो उसी वही ग्रुप का एक वायरस है जो लोबिया की फसल में लगता है और हम लोग देखते हैं कि पत्तियां देखते ही देखते उजली हो जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे सफ़ेद मक्खी को रोकने के लिए जो दवाओं का छिड़काव, वही दवा का छिड़काव हमको इसके अंदर करना है 7 से 8 दिन के अंतराल पर या 10 से 12 दिन के अंतराल पर। तो उससे क्या होगा वो सफ़ेद मक्खी को हम लोग कम कर देंगे खेत के अंदर और जो पौधे होंगे जो निकलेंगे वो स्वस्थ होंगे उसके अंदर।
1: अगर गर्मी की बात करें साथ ही वर्षा ऋतु की बात करें तो जो परवल जो है वो खास सब्जी है इस ऋतु की, तो डॉक्टर साहब इसमें जो लगने वाले रोग होते हैं परवल के पौधों में वो कौन कौन से होंगे और साथ ही इसका रोकथाम हम कैसे करें?
0: जी, परवल हम लोग देखते हैं यहाँ पे गंगा के किनारे या और भी आसपास के किसान जो है काफ़ी परवल उगाते हैं और उनका अच्छा रेट भी मिलता है हम लोग किसान भाइयों को। लेकिन हम लोग कभी कभी इसमें देखते हैं कि बहुत सारी इसके अंदर बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है, तो हम लोगों को दो चीज़ इसमें ध्यान देने की चीज़ें होती हैं। देखने आए खेत

0: अंदर एक तो इसके अंदर जो इनकी लत है, जो वाइन्स है, उसके अंदर कोई सड़न तो नहीं पैदा हो रही जो पूरी लत सूख जाती है? उसमें क्या होता है कि कहीं एक जगह पे हमको दिखता है कि काला घेरा या काला धब्बा दिखता है, वो तने को पूरा कवर कर लेता है, तो देखते देखते वो पूरे तने को पूरा काला कर देता है, जिससे वो पूरा पौधा ही सूखना शुरू हो जाता है। पहले एक पार्ट उसका सूखेगा, एक तना सूखेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा और तनों में फैल जाएगा लतों में, और देखते देखते वो पूरा सूख जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे ये ध्यान देने की चीज़ है कि जब भी इस तरह का कोई लक्षण दिखे, अगर कहीं थोड़ा सा दिख रहा है या किसी एक लत में दिख रहा है, तो उसको हमको काट के हटा देना है। अगर इस तरह से लक्षण अगर किसान भाई खेत में देखते हैं, तो फौरन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा हम लोग बोले 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, उसका हम लोग खेत में फौरन छिड़काव कर देना है, इससे हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक जो हम लोग पत्तियों में देखते हैं बीमारी आती है, वो एक धब्बा सा बनता है, काला धब्बा जो ब्लाइट अपीयरेंस एक देता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं पत्तियाँ वहाँ काली होकर गलनी शुरू हो जाती हैं। और इस तरीके का लक्षण हम लोग देखते हैं कि पत्तियों पे फैलने के बाद जो फल निकलते हैं, उन फलों में वो उस तरीके का लक्षण शुरू हो जाता है, वो काले पहले छोटे से दाग धब्बे बनते हैं, वो देखते देखते फिर पूरे पौधे पूरे फल को गला देते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर किसी एरिया में अगर किसान भाई पर्वत लगाते हैं और इस तरह की समस्या दिखती है, तो बीमारी हो या ना हो, हम लोग मैंकोजेब का एक छिड़काव ज़रूर उसके अंदर करेंगे। उसको छिड़काव करने के बाद में भी अगर हमको कहीं पे दिख रहा है इस तरीके से कोई लक्षण, तो हम लोग को मैंकोजेब और मेटल एक्सिल का कॉम्बिनेशन वाला दवा आता है जो मिक्स होता है, उसको हम लोग 2.5 से 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके उसको प्रति लीटर के हिसाब से उसको हम लोग छिड़काव करेंगे। तो इससे हम लोग देखते हैं कि वो जो समस्या होती है उसको हम लोग ख़त्म होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे खेत के अंदर से। लेकिन इसका साथ समय छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंतज़ार करेंगे कि फल फूल आने लगे, या हम लोग भिंडी में इंतज़ार करें कि अब फल की तुड़ाई का वक्त आ गया, या मिर्च में हम लोग सोचें कि मिर्च में अब फल आ रहा है अब बीमारी आ गई तो कोई छिड़काव करें, तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोगों को समय से डरना है, बीमारी आने से पहले हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि बीमारी आने से पहले हम लोग सचेत रहेंगे और उस टाइम बताए गए दवाओं का अगर हम लोग सही समय पर छिड़काव करते रहेंगे, तो हम लोग बीमारियों को निश्चित तौर पर रोक देंगे और हम लोगों को अच्छी उपज प्राप्त होगी।
1: जी, तो किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके परिश्रम का पूरा मुनाफा मिले, तो ज़रूरी है कि आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो रोग मुक्त रहें। और डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी है कि कौन कौन से रोग लग सकते हैं आपके सब्जियों के पौधे में, और आप उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो ज़रूर आशा करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। आप इस वार्ता को सुनेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, रोगों को पहचानने की जो क्षमता है वो भी आप में विकसित होगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from less to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, महिलाओं को जितनी परेशानी पीरियड्स से होती है ना, उससे कहीं ज्यादा परेशानी तब होती है जब उनके पीरियड्स समय से पहले रुक जाए। जी हाँ, पीरियड्स अपने साथ कितनी सारी परेशानियां लेकर आता है, मूड स्विंग्स और हाथ पैरों में दर्द, न जाने कितनी सारी दिक्कतें होती है पीरियड्स के दौरान। अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरह की परेशानियां होती है और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये पीरियड्स जैसी बला हमारे जीवन में है ही क्यों, लेकिन ये बला अगर हमारे जीवन से समय से पहले दूर चली जाती है तब हम ही परेशान होते हैं और सोचते हैं कि हमारे पीरियड्स इतनी जल्दी क्यों चले गए। देखिए, पीरियड्स के रुकने को कहते हैं मेनोपॉज, यानी कि जब हमारी महावारी बंद हो जाती है। एक निश्चित समय पर हमारी महावारी शुरू होती है और एक निश्चित समय पर बंद हो जाती है और महावारी के बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल के बीच में हो जाता है, लेकिन आजकल जिस तरीके से लाइफस्टाइल बदल रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पीरियड्स बहुत कम उम्र में रुकने लगे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो जब पीरियड्स 40 की उम्र से पहले अगर बंद हो जाए तो उसे कहते हैं अर्ली मेनोपॉज, यानी कि समय से पहले हो गया हुआ मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले तो अनुवांशिक कारण हो सकता है। अनुवांशिक कारण मतलब कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, अगर माँ या बहन को जल्दी मेनोपॉज हुआ हो तो ऐसी स्थिति में संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ भी आपके जो पीरियड्स है बहुत लंबे समय तक नहीं चलेंगे, जल्दी ही आपका मेनोपॉज हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। इसमें यह नहीं होता है कि आपको किसी चीज की कमी की वजह से मेनोपॉज हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। दूसरी जो वजह होती है वो कुछ बीमारियां होती है, ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कहते हैं, जैसे कि थायराइड की अगर परेशानी है किसी महिला को या फिर कुछ तरह के अर्थराइटिस के प्रॉब्लम है महिलाओं को, तो भी अर्ली मेनोपॉज की समस्या देखी जाती है। और अगर हम बात करें ना, तो थायराइड की भी परेशानी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये भी वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की। कई बार महिलाएं कैंसर का इलाज करा रही होती हैं, जिसमें शामिल होता है कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की वजह से ना ओवरी यानी कि अंडाशय काफी हद तक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और आजकल बहुत सारी परेशानियों की वजह से ओवरी की सर्जरी भी कराई जाती है, यानी कि अंडाशय हटा लिए जाते हैं। तो जब अंडाशय ही हटा दिया जाता है तो भी अर्ली मेनोपॉज हो सकता है और कई बार कुछ संक्रमण हो जाता है और इन संक्रमण की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करती है, जो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है अर्ली मेनोपॉज की, वो है जीवन शैली। आजकल धूम्रपान बहुत ही आम बना दिया गया है, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत है। हर तरीके से धूम्रपान का कोई फायदा नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ कामकाजी महिलाओं को या फिर घरेलू महिलाओं को भी बहुत ज्यादा तनाव का सामना करना पड़ता है, तो भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है। और पोषण की कमी, जैसे कि महिलाएं लगातार आम तौर पे नजरअंदाज कर देती हैं और पोषण का हक सिर्फ अपने परिवार वालों का मानती है, तो ऐसी महिलाओं को भी अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है, यानी कि पोषण की कमी भी एक प्रमुख वजह बनती है। इसके अलावा बात करें तो POI यानी कि प्राइमरी ओवेरियन इन्फिशियंसी, यानी कि जब ओवरी सामान्य से पहले काम करना बंद कर देती है, कुछ स्थिति में ऐसा होता है कि हमारी ओवरी जो तय वक्त होता है उसे पहले ही काम करना बंद कर देती है और हमें अर्ली मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और अर्ली मेनोपॉज जब किसी में आने वाला होता है आम तौर पे जब मेनोपॉज भी शुरू होने वाला होता है तो शरीर में बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, और जब अर्ली मेनोपॉज भी आता है तब भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कुछ लक्षण हमें समझ में आते हैं। पीरियड्स अनियमित हो जाता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप 28 के पार की हैं तो आप अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, डॉक्टर से मिले अगर ये लगातार हो रहा है तो। वैसे भी पीरियड्स अगर लगातार अनियमित हो रहा है तो आप फिर किसी भी एज में हो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए, ये बहुत सारी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा आपको हॉट फ्लशेस भी महसूस होते हैं। हॉट फ्लशेस यानी कि अचानक शरीर में तेज गर्मी महसूस होना, खासतौर से चेहरे पर, गर्दन पर और छाती में, और ये कुछ सेकंड से लेकर ना कुछ मिनट तक महसूस हो सकता है, और ये अर्ली मेनोपॉज का या फिर कई बार मेनोपॉज का भी आम लक्षण माना जाता है। हॉट फ्लशेस के लक्षण क्या होते हैं? अचानक तेज गर्मी का एहसास होना, चेहरा लाल हो जाता है, पसीना आना, खासतौर से रात में जब पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाना और फिर बाद में ठंड लगना। तो ये सारी चीजें हो सकती है कि अर्ली मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के लक्षण हो। और मेनोपॉज के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उनमें से एक चेंज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जब इसका स्तर गिरता है तो हमारे दिमाग को लगता है कि शरीर बहुत गर्म है और वो पसीना या फिर गर्मी की प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इसके अलावा कुछ लक्षण की अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, नींद आने में परेशानी होने लगती है और योनि में सूखापन भी महसूस होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है जब मेनोपॉज होने वाला होता है या फिर अर्ली मेनोपॉज होने वाला होता है। अगर मेनोपॉज होता है तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब वो आना ही है और कुछ लक्षण आपको दिखेंगे ही, बस जरूरी होता है कि आप खान पान सही रखें। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है तो इसके वजह से महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, और कई बार तो महिलाएं माँ भी नहीं बनी होती है तभी उनमें मेनोपॉज आ जाता है कि अभी महिला ने अपना परिवार भी शुरू नहीं किया, और ऐसे में मेनोपॉज आना मतलब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या हो सकता है? एक तो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, यानी कि HRT दी जाती है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो डॉक्टर को कई बार लगता है कि किसी और वजह से भी आपको परेशानी हो रही है, तो किसी और तरीके से इलाज किया जाता है। लेकिन जब देखा जाता है कि किसी वजह से हार्मोन्स में उलटफेर हुआ है, तो फिर वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। एक और वजह हो सकती है कि कैल्शियम और विटामिन की भी कमी की वजह से आप में मेनोपॉज देखा जाता है। तो ऐसे में आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी सप्लीमेंट्स आप खाते हैं वो डॉक्टर के सलाह से ही खाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप में ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आपने अपनी मर्जी से कैल्शियम या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया, नहीं, आप खान पान के जरिए से ये सारी चीजें लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी की वजह से भी अर्ली मेनोपॉज देखा जाता है, और अगर मानसिक तनाव की वजह से अर्ली मेनोपॉज के लक्षण आ रहे हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, यानी कि ये दवाइयां आपके तनाव को कम करती हैं, आपको आपके मूड को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी सलाह देते हैं कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, और सबसे जरूरी धूम्रपान बंद कीजिए। और धूम्रपान तो आप फिर चाहे लड़का हो या लड़की, आपके शरीर को किसी ना किसी तरीके से ये नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये आपका जेंडर नहीं देखेगा, तो धूम्रपान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आप अगर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज की परेशानी से बच सकते हैं। अगर आप में ऐसे लक्षण भी आने शुरू हो गए हैं और डॉक्टर से आप दिखाएंगे तो कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ये परेशानी आपको देखने को मिल रही है, तो आपको वो यही सलाह देंगे, आपको कोई ज्यादा दवाइयां नहीं देंगे। वो कहेंगे कि आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 वगैरह जो भी है जरूरी है वो भरपूर मात्रा में हो। आप इसके साथ ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और कोई भी धूम्रपान या फिर अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन मत कीजिए। और क्या किन्हीं को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या अर्ली मेनोपॉज को रोका जा सकता है? देखिए, लक्षण अगर दिख रहे हैं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो क्या उसे रोका जा सकता है? तो पूरी तरीके से रोकना हमेशा संभव नहीं है, अगर ये खास तौर से अनुवांशिक या फिर मेडिकल किसी रीजन की वजह से हो, जैसे कि आप कैंसर के ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसकी वजह से अगर हो तो अर्ली मेनोपॉज को रोकना आमतौर पर संभव नहीं होता है। हालांकि चांसेस रहते हैं पर बहुत कम रहते हैं, लेकिन जोखिम कम किया जा सकता है अगर आप धूम्रपान से बचें, हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, तो फिर आप अर्ली मेनोपॉज को रोक सकते हैं, लेकिन रुक गया है तो उसके बाद बहुत परेशानी होती है। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, तनाव कम रखें और समय समय पर हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। अगर आपको दिख रहा है कि आपके अंदर ये सारे लक्षण हैं और आप 28 के पार की हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी परेशानी का सामना करना पड़े। और डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई भी नहीं है और 40 से पहले ही आपके पीरियड्स बंद हो जाए या फिर 3-4 महीने तक नहीं आए, तो ऐसे में आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और आपको खान पान का तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खान पान सही रखेंगे, तनाव कम रखेंगे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, और साथ ही धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको सिर्फ अर्ली मेनोपॉज से ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो फिर क्यों नहीं हम बीमारियों को आने से पहले उसे प्रिवेंट करते हैं, उसे आने ही नहीं देते हैं, तो कितना अच्छा होगा ना। तो बस इन्हीं सारी बातों का और ध्यान रखें। और आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया, हम पैकेट फूड्स खाते हैं और ये पैकेट फूड्स भी हमारे मेनोपॉज अर्ली मेनोपॉज की वजह बन सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें होती है जो हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती है। जाकर ध्यान रखें कि घर का बना खाना ज़्यादा खाएं, बाहर के खाने से बचें। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप खुश रहेंगी तभी आप अपने परिवार को भी खुश रख पाएंगी। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम है हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट।

0: आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 EC या फिर डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप

लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहाँ बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी दोस्त अनु। और एक बार फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक उपयोगी बातें। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इस महीने में हम मना रहे हैं पोषण माह, यानी कि सितंबर माह को हम मना रहे हैं पोषण माह, और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि इस पोषण माह में हम आपको उन चीज़ों से, उन सारी बातों से अवगत करवाएं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको पोषण देंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए थे मशरूम की बातें, और अब बारी आती है सहजन की। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ किसान भाइयों, सहजन जो है कुपोषण दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है। अगर आप इसे अपने दिनचर्या, अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो आज यही विषय है हमारा, पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और

0: उसका महत्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपनिदेशक प्रशिक्षण एवं उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अभय मानकर सर। सर आपका स्वागत है हमारे साथ।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि सहजन की उपयोगिता के बारे में आज हम जानेंगे, साथ ही उसके महत्व के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा विषय है उसी के बारे में बताएं, यानी कि पोषण सुरक्षा, खासतौर पर पोषण पर हम नज़र डालेंगे और इसी से हम इसे आज कोरिलेट कर रहे हैं, यानी कि इसी से जोड़ेंगे हम पोषण के साथ। तो पोषण सुरक्षा हेतु सहजन की उपयोगिता और महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: किसान भाई, सहजन के पोषक तत्व के बारे में हम लोग सभी परिचित हैं। सहजन को आमतौर पर ड्रमस्टिक पेड़ या हॉर्स रेडिश पेड़ के रूप में जाना जाता है।
0: जी,
1: इसका वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। सहजन वास्तव में एक चमत्कारिक पौधा है। यह पौष्टिक तत्वों से भरपूर मानव स्वास्थ्य के लिए एक दिव्य उपहार है।
0: जी,
1: सहजन कुपोषण से बचाव हेतु एक प्रभावी खाद्य है। सहजन को ऐसी भूमि में उगाया जाता है जहां शायद ही कोई पौधा उग सकता है। वास्तव में विपरीत मौसम और यहाँ के सूखे से बचने की अविश्वसनीय क्षमता के कारण इसका एक प्रचलित नाम है कभी न मरने वाला पौधा।
0: अच्छा।
1: भारत सहजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्पादन के दृष्टिकोण से राज्यों में सबसे प्रमुख आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु का स्थान आता है।
0: जी।
1: सहजन में विकासशील देशों के लोगों के पोषण सुधार के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा और ग्रामीण विकास की क्षमता है।
0: जी।
1: इसके पौष्टिक और औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग कुपोषण, भूखमरी, साथ ही साथ दुनिया भर के कई बीमारियों को रोकने और ठीक करने के लिए किया जा सकता है।
0: जी।
1: साथ ही यह पशुचारा के लिए भी काफी उपयोगी है। वास्तव में सहजन में संतरे की तुलना में 7 गुना अधिक विटामिन सी, गाजर की तुलना में 10 गुना अधिक विटामिन ए, दूध की तुलना में 17 गुना अधिक कैल्शियम, दही की तुलना में 9 गुना अधिक प्रोटीन, केले की तुलना में 15 गुना अधिक पोटेशियम और 25 गुना अधिक आयरन पाया जाता है।
0: जी।
1: गर्भावस्था के दौरान लगभग 6 चम्मच सहजन पत्ते के पाउडर एक महिला के दैनिक आयरन और कैल्शियम आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
0: तो कुल मिलाकर कहें तो सहजन कहीं ना कहीं हमारे लिए सर्वोपरि है, एक पूरक आहार है। आप इसे सब्जियों के तौर पर आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। वैसे इसके बहुत सारे जो यूं कहें कि सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी बनाए जाते हैं, इसके अचार भी बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सर यहाँ पर महत्व पर आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम सभी को पता है कि सहजन का अगर हम पौधा लगाते हैं, ये पेड़ बनता है, तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है।
1: किसान भाई, सहजन पौधे का प्रत्येक भाग का महत्वपूर्ण पोषक तत्वों एवं एंटी न्यूट्रिएंट्स का भंडार होता है। सहजन की पत्तियां कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और तांबा जैसे खनिजों से समृद्ध है।
0: जी।
1: विटामिन ए के बीटा कैरोटीन, विटामिन बी जैसे फोलिक एसिड, पैराडॉक्सिन और निकोटिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई भी सहजन में मौजूद होते हैं।
0: जी।
1: सहजन पत्तियों में कैलोरी कम मात्रा में होता है, जिसके कारण यह मोटापे को कम करने हेतु उपयोगी है। सहजन में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जो शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। इसमें कैल्शियम मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक माना जाता है।
0: अच्छा।
1: एनीमिया के इलाज में सहजन पाउडर आयरन की गोलियों के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्यूफा लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और ओलाइक एसिड, इसमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने की क्षमता होती है।
0: अच्छा।
1: शोध से पता चलता है कि सहजन बीज के तेल में लगभग 76% प्यूफा लिनोलिक एसिड होता है, जो इसे जैतून का तेल के विकल्प के उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। अधिकांश पौधे संसाधित होने पर अपनी पोषक गुणों को खो देते हैं, जबकि कच्चे, अंकुरित और किण्वित सहजन बीज के आटे में यह पाया गया है कि इसमें फाइटोकेमिकल्स और एमाइनो एसिड सामग्री किण्वन और अंकुरण में भी अधिकतम थी। सहजन में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, जो आसानी से पच जाता है।
0: अच्छा।
1: सहजन में 40 से अधिक एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। पोषक तत्वों के नुकसान के बिना सहजन को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। निर्जलीकरण द्वारा सहजन के पौष्टिक मूल्य को बरकरार रखते हुए इसे संरक्षित किया जा सकता है। सहजन का अधिक उपयोग शरीर में उच्च आयरन का संचय का कारण बन सकता है। शरीर में अधिक आयरन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हेमेक्रोटोमाइसिस रोग के कारण बन सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन 70 ग्राम सहजन की खुराक का सुझाव दिया जाता है।
0: जी।
1: 300 से अधिक बीमारियों को ठीक करने में इसका उपयोग के कारण सहजन को रामबाण के रूप में जाना जाता है। भारतीयों द्वारा सहजन का उपयोग लंबे समय से हर्बल दवा के रूप में किया जाता रहा है। सहजन के बीज का उपयोग बेन नामक तेल निकालने के लिए किया जाता है। यह तेल ओलाइक एसिड, टोकोफेरॉल और स्टेरॉल से समृद्ध होता है। बेन तेल खाना पकाने के लिए जैतून तेल के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग इत्र, लुब्रिकेंट्स आदि के लिए भी होता है। सहजन बीज एक प्राकृतिक कोगुलेंट होता है जिसमें एक केटायनिक प्रोटीन पाया जाता है जो अशुद्ध पानी को साफ कर सकता है। अन्य कोगुलेंट जैसे एलम, सैक्रम कार्बन और फेरिक क्लोराइड महंगा और दुर्लभ होता है, जिसके कारण सहजन बीजों का यह गुण इस पर अधिक शोध कार्यों को बढ़ावा दे रही है। सहजन बीज में पानी से भरी धातुओं जैसे लीड, तांबे, कैडमियम, क्रोमियम और आर्सेनिक को खत्म करने की क्षमता होती है। इसके बीज के खल्ली में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो जीवाणु विकास को रोकते हैं और पानी से होने वाली बीमारियों को रोकने में सहायता करते हैं। सहजन बीजों के इन गुणों और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण बीमारियों को ठीक करने में और ग्रामीण समुदायों की जीवन शैली में सुधार कर सकने में सहायक हो सकती है।
0: अच्छा।
1: सहजन बीज बायोडीजल के स्रोत भी होते हैं तथा इसका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधनों और इसके बीज केक का प्रयोग हरी खाद या उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक गुणों के कारण सहजन के फूलों का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। इसके जड़ की छाल में औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग अनिद्रा, आँखों और दिल की बीमारियों के लिए किया जाता है। इसके पत्तियों में जेटिन नामक हार्मोन पाया जाता है जो फसल की पैदावार में 25-30% तक की वृद्धि कर सकती है। पोषक तत्वों की कमी को दूर करने और कुपोषण से निपटने के लिए सहजन का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सम्मिलित करना काफ़ी लाभदायक पाया गया है।
0: तो ये आपने जाना कि सहजन के पौधे के किस भाग का उपयोग किस रूप में किया जाता है। यहाँ पर जानते हैं हम कि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सहजन के विभिन्न भागों के बारे में आपने बताया कि किस रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताएं कि सहजन के विभिन्न भाग जो होते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और आपने हर्बल दवा की बात भी की है, तो हम इसके औषधीय उपयोग के बारे में भी जानना चाहेंगे।
1: किसान भाई, हम जानते हैं सहजन के विभिन्न भाग में काफ़ी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं और उसका जो औषधीय गुण है, सबसे हम पहले बात करते हैं पत्ती के बारे में। सहजन की पत्तियों में काफ़ी औषधीय गुण होता है जो हमारे अस्थमा, हाइपरग्लिसेमिया, डिप्सिलीमेडिया, फ्लू, दिल की बीमारी, सिफिलिस, मलेरिया, निमोनिया, दस्त, सिरदर्द, स्कर्वी, त्वचा रोग, ब्रोंकाइटिस, आँख और कान का संक्रमण के इलाज में उपयोगी है। साथ ही रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को भी यह काफ़ी नियंत्रित करता है। एक और एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बायोटिक और एंटी एथेरोक्लोरिटिक एजेंट के रूप में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है।
0: जी।
1: जहाँ तक पत्ती में पोषक तत्व की बात है, सहजन की पत्तियों में फाइबर, वसा, प्रोटीन और खनिजों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, कॉपर, आयरन और सल्फर इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी वन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड प्रचुर मात्रा में इसमें की पत्तियों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सहजन के बीज में।
0: अच्छा।
1: तो सहजन के बीज का भी काफ़ी औषधीय महत्व है। सहजन के बीज में हाइपरथायरॉयडिज्म, क्रॉन्स की बीमारी, एंटी हर्ब्स, सिंप्लेक्स वायरस, गठिया इत्यादि इलाज में मददगार होते हैं। गठिया, क्रैम्प, मिर्गी और यौन संक्रमित बीमारियों में एंटी

0: की चर्चा हम करते हैं, जड़ के छाल में का जो इसका भी काफी औषधीय महत्व है। जड़ की छाल जो होता है उसमें कार्डियक उत्तेजक, एंटी अल्सर और सूजन रोधी या जलन रोधी के रूप में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एलेलोइड, मॉर्फिन, मोरिंगिनिन, खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब हम सहजन के फूल का चर्चा करते हैं। इसके हम सभी जानते हैं कि इसके फूल का भी कई रूप में व्यवहार करते हैं। इसके जो औषधीय गुण है, सहजन के फूल में मुख्य रूप से हाइपो कोलेस्टोरलिक के रूप में यह कार्य करता है और यह गठिया में बहुत ही कारगर काम करता है। मूत्र संबंधी समस्याओं और सर्दी के इलाज में भी यह काफ़ी सहायक होता है।
1: अच्छा,
0: फूल के में जो पोषक तत्व होता है इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, पोटेशियम और एमिनो एसिड पाया जाता है। अब इसके फल का, जिसे हम लोग सब्जी के रूप में ज़्यादा यूज उपयोग में लाते हैं, इसका औषधि के रूप में जो होता है इसके फली से दस्त, यकृत, स्प्लीन की समस्याओं और जोड़ों के दर्द में काफ़ी कारगर होता है। पोषक तत्व जो इसके फली में होता है उसमें फाइबर, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है। फैटी एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलिनिक एसिड भी इसमें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
1: आपने पहले भी बताया था कि ये इसकी उपयोगिता के बारे में हम जान रहे थे और महत्व के बारे में आप बता रहे थे, तो आपने बताया था कि कुपोषण को दूर करने में और साथ ही बीमारियों से लड़ने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है, तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये किस प्रकार मदद करता है कुपोषण को दूर करने में और बीमारियों से कैसे लड़ता है ये सहजन?
0: सहजन में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे गैर विषाक्त और आसानी से पचाने में ये सहायक होता है। सहजन में इन पोषक तत्वों का संयोजन शरीर में समायोजित होने और पचाने में सहायक होने के कारण काफी उपयोगी होता है।
1: अच्छा,
0: ये इसीलिए सहजन को चमत्कारी पेड़ के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसमें हमारे जीवन को बचाने की क्षमता है
1: बहुत ज्यादा।
0: शरीर में पोषक तत्वों की मौजूदगी आंतरिक रूप से बीमारी को रोकने और साथ ही साथ बीमारी से लड़ने में सहायक होती है। शरीर और इसके अंगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिसाल के तौर पर कई बच्चे रतौंधी और अन्य आँखों की बीमारियों और परेशानियों से पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं मिल पाता है। सहजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है जिससे इसे भोजन में सम्मिलित कर उक्त बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विटामिन ए के की चर्चा अगर हम करें तो सहजन में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होने के कारण ये कई रोगों के इलाज में सहायक होता है, जैसे अंधापन, इसे रतौंधी और पूर्ण अंधापन के रूप में भी जानते हैं, उसमें काफ़ी कारगर होता है। मातृ मृत्यु दर, गर्भावस्था और स्तनपान, कमजोर प्रतिरक्षा और संक्रमण से लड़ने की असमर्थता में ये विटामिन ए के रूप में काफ़ी अच्छा कार्य करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विटामिन ए की कमी से दुनिया में भर में लगभग 100 मिलियन से अधिक बच्चे अंधे होते हैं। विडम्बना यह है कि कई देशों में जहाँ यह एक समस्या है वहीं सहजन प्रायः स्वतः विकसित हो जाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में लोग इसे जंगली पेड़ समझकर इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बच्चों के भोजन में सहजन को सम्मिलित कर उन्हें अंधेपन की समस्या से बचाया जा सकता है। सहजन में आयरन भी काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों के इलाज में कारगर होता है। मुख्य रूप से जो आयरन की उपयोगिता है, जिसे एनीमिया, थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सांस की तकलीफ, चक्कर आना, त्वचा का पीलापन पड़ना, जीभ में छाले होना, नाखून का झड़ना, भूख में कमी, विशेष रूप से बच्चों में और सिरदर्द की समस्या में इसका काफ़ी उपयोग कार्य कर रही
1: है।
0: सहजन में कैल्शियम भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कई रोगों में सहायक के इलाज में सहायक होता है, खास करके एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस जो हड्डी की बीमारी कमजोरी के रूप में भी जाना जाता है, मांसपेशियों की समस्या, तंत्रिका की समस्या, दिल की असामान्य धड़कन और कार्य करने की इफिशेंसी को भी कैल्शियम बढ़ाता है।
1: हाँ।
0: अब हम प्रोटीन की चर्चा करें जो एमिनो एसिड के रूप में पाया जाता है। सहजन में यह

0: ही प्रचुर मात्रा में होता है। और इसका खास करके जो ये फायदा पहुंचाता है एडिमा, त्वचा के नीचे तरल पदार्थ का संग्रह होता है जो आमतौर पर पैरों और एड़ियों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों में भी यह हो सकता है।
1: अच्छा।
0: एडिमा वजन घटाने में इसका भी काफ़ी उपयोग है। पतले या रूखे बाल या बालों के झड़ने में इसका काफ़ी कारगर उपयोग है। हाथों और पैरों की उंगली के नाखूनों में रीज या गहरी रेखाएं उभर आती हैं। त्वचा की समस्या जिसमें यह सूर्य की गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। शरीर और बालों में कम पिगमेंटेशन होता है, इसको सहायक होता है। त्वचा पर चकते या सूखापन होता है, कमजोरी और सुस्ती, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और ऐंठन, बेडसोर या अन्य त्वचा अल्सर, अनिद्रा, सिरदर्द, गंभीर अवसाद, चिंता, पेट दर्द आदि में ये काफ़ी फायदेमंद होता है
1: जी।
0: इसमें खास करके सहजन में विटामिन सी भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमें स्कर्वी, जो मसूड़ों में खून अक्सर बहने की समस्या आती है, उसमें काफ़ी कारगर इसका फायदा होता है। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, कमजोरी, नाक और मसूड़ों में सूजन और खून बहना आदि में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है।
1: भी विस्तार से आपने बताया हमें कि कौन कौन बीमारियों से लड़ने में सहायक है, साथ ही इसमें कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन से जो भी चीज़ें पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं जिससे कि ये बीमारियों से लड़ने में सहायक होता है। तो सर कुल मिलाकर कहें तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है हमारे लिए, तो आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है।
0: सहजन को तो हम लोग अभी चर्चा किए कि इसे रामबाण के रूप में जाना जाता है और इसका जितना औषधीय या पौष्टिकता है इससे हम सभी परिचित हैं। फिर भी इसमें जो कुछ तत्व जो मौजूद होता है, खास करके एंटीऑक्सीडेंट, प्रोस्टेट और त्वचा कैंसर, ट्यूमर और बुढ़ापे के लक्षणों को दूर करने में ये काफ़ी सहायक होता है। यह एनीमिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ के रूप में भी हम जानते हैं, उच्च सीरम या रक्त कोलेस्ट्रॉल, थायरॉयड, यकृत और गुर्दे की समस्याओं को दूर करता है। इसमें मौजूद सूजन रोधी गुणों के कारण जो जोड़ों में दर्द, गठिया, एनीमिया और लूपस को दूर करने में सहायक है। यह कोलाइटिस, दस्त, पेट फूलना जैसे गैस की बीमारी में जो होता है, अल्सर और पाचन विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। एंटी बैक्टीरिया, एंटी माइक्रोबियल और एंटीवायरल के रूप में यह काफ़ी कारगर होता है। यह मूत्र संक्रमण जो इन्फेक्शन हो जाता है, टाइफाइड, सिफिलिस, दंत क्षय, कबक, सामान्य जुकाम और HIV में भी के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावकारी है। एक जहर रोधी के रूप में यह सांप और बिच्छू काटने के खिलाफ भी काफ़ी प्रभावी पाया गया है। यह सिरदर्द, माइग्रेन और मिर्गी सहित तंत्रिका विकारों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी।
1: आपने अभी कहा एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं और साथ ही आपने कहा कि बुढ़ापे के जो लक्षण हैं उसे भी दूर करने में यह सहायक होता है, तो कहने के इसमें एंटी एजिंग कंपाउंड भी पाए जाते होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा बताएं।
0: सहजन में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम लोग गैलोर के रूप में के नाम से जानते हैं। सहजन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के सबसे शक्तिशाली स्रोतों में से एक है। सहजन पत्तियां एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स से समृद्ध हैं। सहजन पत्तियों में मौजूदा बीटा कैरोटीन भी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। एंटीऑक्सीडेंट का एक संयोजन एंटीऑक्सीडेंट कैस्केड तंत्र के कारण तुलनात्मक रूप से एक एंटीऑक्सीडेंट से अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि सहजन चाय, किसी अन्य हर्बल चाय, यहाँ तक कि एक हरी चाय जिसे ग्रीन टी के रूप में हम जानते हैं, कि तुलना में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अधिक प्रभावी स्रोत के रूप में कार्य करती है। सहजन का एक दूसरा भी यह है, ये एक एंटी एजिंग कंपाउंड के रूप में, जिसे हम जेटिन के नाम से जानते हैं, ये एक हार्मोन होता है। यह पौध विकास के हार्मोन परिवार का सदस्य है जिसे साइटोकाइनिन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: जेटिन की खोज पहली बार अपरिपक्व मकई कर्नेल की जीन से की गई थी। जेटिन मानव त्वचा पर एंटी एजिंग से प्रभावी है। साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के खिलाफ विभाजित और संरक्षित करने में मदद करते हैं। जेटिन सभी साइटोकाइनिन में सबसे शक्तिशाली है। 2004 के डेनिस अध्ययन के अनुसार जेटिन छोटे सेल आकार को बढ़ावा देने में काफी मददगार पाया गया है, जो अधिक त्वचा युवा त्वचा के लिए काफी महत्वपूर्ण घटक है। यह सेल की संरचनात्मक और कार्यात्मक अखंडता को भी प्रभावित करता है और सेल में माइक्रोमोल्यूलर क्षति को रोकता है। सहजन में न केवल किसी अन्य ज्ञात पौधे की तुलना में हजारों गुना अधिक जेटिन होता है, बल्कि यह कई पोषक गुणों से भरपूर पौधा भी है, जिसमें 90 एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरीज सहित 90 पौष्टिक यौगिक पाया जाता है।
1: तो ये तो बातें हुई कि मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे ये लाभप्रद है, और हमने ये भी सुना है कि ये पौधे की वृद्धि और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा।
0: किसान भाई, हम लोग तो अभी उसके औषधीय गुण या हम लोगों के लिए किस मानव के लिए, हाँ, उसमें क्या उपयोग होता है, लेकिन इसका सहजन का काफ़ी जो हमारे पौधा की वृद्धि के रूप में भी, खास करके इसमें एक हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन, जिसे जीटिन के नाम से जानते हैं, ये उसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे और फसल में अधिक उपज पैदा करने के लिए जिम्मेवार बताया गया या काफ़ी सहयोगी होता है। सहजन पत्ते का छिड़काव पौधे की वृद्धि के लिए और इससे बनी हरी खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए किया जा सकता है। सहजन पत्ती में पौधे के विकास से तो हार्मोन पाए जाते हैं। फुगनी के अनुसार ताज़ा सहजन पत्तियों के रस का उपयोग पौधों के विकास हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए प्रभावी है। इससे किसी भी फसल का उत्पादन लगभग 25-30% बढ़ सकता है। अच्छा। जैसे प्याज, काली मिर्च, मक्का, ज्वार, मिर्च, खरबूजा इत्यादि। जेटिन एक प्लांट हार्मोन है जो साइटोकाइनिन समूह के सक्रिय पदार्थों में से एक है। उन्नत कृषि व्यवहार में इसका छिड़काव अन्य उर्वरकों और पानी के साथ किया जाना चाहिए।
1: जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि इसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है, तो इसके चमत्कार में एक और गुण शामिल है, वो है ये पानी को शुद्ध करता है और साफ करता है। तो ये हमें बताएं कि सहजन का उपयोग पानी को शुद्ध और साफ करने में कैसे किया जाता है।
0: हाँ किसान भाई, ये काफ़ी प्रचलित रहा है, चूँकि प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज लोग पानी को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया करते थे।
1: अच्छा।
0: और खास करके ग्रामीण महिलाओं द्वारा अत्यधिक गंदे पानी को साफ करने के लिए सूखी सहजन के बीज का उपयोग फिटकरी के स्थान पर किया करते थे।
1: अच्छा।
0: जो रिपोर्टेड भी है, सहजन की ताज़ा पत्तियों को एक सब्जी, जड़ों को औषधीय प्रयोजनों के लिए और शाखाओं का उपयोग बाड़ लगाने में भी किया जाता है।
1: अच्छा।
0: इस तरह से हम देखते हैं कि सहजन का काफ़ी आज के दैनिक जीवन में, खास करके स्वास्थ्य के लिए इसका काफ़ी उपयोग है और इसका औषधीय महत्व।
1: तो आज आपने जाना सहजन के बारे में, और हम आपके लिए विषय लेकर आए थे पोषण सुरक्षा हेतु सहजन और उसका महत्व। हमारे साथ डॉक्टर अभय मानकर थे और उन्होंने आपको विस्तार से बताया क्या इसकी महत्व के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, कुपोषण को कैसे दूर करता है ये, साथ ही इसके क्या क्या गुण हैं, सारी बातें यहाँ पर आपको मालूम हुई। तो आशा करते हैं आज का ये वार्ता आप सभी को पसंद आया होगा, और अगले दिन आप सभी के साथ हम और एक विषय लेकर हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया,
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, जैसा हमेशा की तरह होता है, सुनते हैं सबसे पहले एक खूबसूरत विचार जो हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने खूबसूरत विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, इंदिरा चौक जाफराबाद दिल्ली से अजीम वकार और माहिरा वकार, छत्तीसगढ़ कोलियरी से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पूर्णेंद्र चंद्राकर और साहिल चंद्राकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग से। सुनते ही मत रहिए लेकिन सुनाते भी रहिए उमंग। आशोताओं, अब बारी है हमारी आपकी सबकी लोकप्रिय श्रृंखला ये भी जानिए। ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। श्रोताओं, पिछले दो सप्ताह से हम लघु कहानियों के माध्यम से भूगोल की जानकारी ले रहे हैं। हमने बात की थी नदियों की, झीलों की, हिमालय की, घाटी और झरनों की। अब एक विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है जलवायु परिवर्तन। इन दिनों सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो आइए जानते हैं सरल भाषा में कि जलवायु परिवर्तन क्या है। देखिए, मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन में बहुत अंतर है। मौसम परिवर्तन क्षेत्रीय या स्थानीय होता है। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं जलवायु शब्द पर। यह दो शब्दों से बना है, जल और वायु। यानी जलवायु परिवर्तन में जल और वायु की स्थिति में परिवर्तन को मापा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है और वो ये है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक है। कहा जा सकता है कि पृथ्वी के मौसम और तापमान में लंबे समय तक होने वाला बदलाव ही जलवायु परिवर्तन है। इसे ऐसे समझिए, जब पृथ्वी का औसत तापमान, बारिश का पैटर्न, मौसम के प्रकार और ऋतुओं का स्वरूप कई वर्षों या दशकों में बदलने लगे तो यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन है। आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यदि आज से 20 वर्ष पहले या लंबे समय के बाद ऐसा लगे कि पहले इतनी गर्मी नहीं थी जितनी अब हो गई है, या हमें ऐसा लगे कि पहले बारिश बहुत होती थी लेकिन अब कम, या पहले से बहुत ज्यादा होने लगी है, और ये स्थानीय तौर पर नहीं लेकिन वैश्विक हो गई है, दुनिया भर के अखबारों से हमें इस बात की सूचना मिलने लगे, तो निश्चित रूप से जानिए कि ये जलवायु परिवर्तन है। इसके कुछ प्रभाव हैं जो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे अनियमित बारिश और बाढ़, ग्लेशियरों का पिघलना और इसके कारण समुद्र के जल स्तर का बढ़ना, बहुत अधिक संख्या में तूफानों या चक्रवात का आना, और फसल, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव के लक्षणों का दिखाई पड़ना। श्रोताओं, इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं। तो आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैसें सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर आने तो देती हैं, लेकिन पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आज सारी दुनिया इस प्रभाव से जूझ रही है। ग्रीन हाउस को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। जैसे पौधों के लिए गर्मी को अंदर ही बनाए रखने के लिए शीशे का घर बनाया जाता है, आपने अपने आसपास ये देखा होगा। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सूर्य की गर्मी पौधों तक तो पहुंच जाती है, लेकिन कांच के कारण या शीशे के कारण ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन इत्यादि प्रमुख हैं। और जब ये गैसें पृथ्वी पर बहुत बढ़ जाती हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी को बुखार आने लगता है। एक उदाहरण और लेते हैं। आपने देखा होगा कि धूप में खड़ी कार बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्मी कार के बंद होने के कारण अंदर ही फंस जाती है। ग्रीन हाउस गैसें भी पृथ्वी के लिए इसी तरह से काम करती हैं। फिर होता यह है कि हिमखंड पिघलते हैं, बाढ़ आती है, सूखा और तूफान बढ़ जाते हैं, और इसका वैश्विक प्रभाव इस प्रकार से पड़ता है कि जलवायु परिवर्तन तेजी से होने लगता है। तो अब बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता क्यों है। तो सबसे बड़ा कारण है जंगलों की कटाई, और कटाई की तुलना में पेड़ कम लगाना, और ग्लेशियरों का पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण पिघलना। हम सब जानते हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, पेड़ों के नहीं होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कोयला, पेट्रोल और ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग। वाहन, कारखाने और मशीनें भी ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं, इससे भी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो आइए अब अंत में बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोका कैसे जा सकता है। तो पहली बात है पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहनों और कारखानों के लिए सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग, और जहां तक संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग। प्रदूषण कम करना और अधिक से अधिक ऊर्जा बचाना। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के तापमान और मौसम में हो रहा दीर्घकालिक बदलाव है, जो मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण बढ़ रहा है और ये पूरे ग्रह को प्रभावित कर रहा है। तो ये तो थी जानकारी जलवायु परिवर्तन की। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण क्या क्या हैं? 8800440559 जो हमारा IVRS नंबर है, इस पर और audio@ciet.nic.in पर आप हमें अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, भूलिएगा नहीं, साथ ही साथ आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। तो अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम है बगीचे का घोंघा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक घोंघे की कहानी बताई गई है और समझाया गया है कि हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं ना, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। जितना अधिक हम अवलोकन करेंगे और नई नई बातों को जानेंगे, उतनी ही अधिक हमारी जानकारी में भी वृद्धि होगी और हमारा ज्ञान बढ़ेगा।

0: बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। बगीचा बहुत छोटा और बहुत सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था,
1: इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया।
0: बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहां कभी मत जाना, अब वो दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया,
1: मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है।
0: ये सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा, बगीचा पीछे छोड़ दिया। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। उसके सामने बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वो बच्चों के खेलने की जगह थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। घोंघे ने कहा,
1: वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है।
0: उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाया। फिर वो अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वो उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। घोंघे ने कहा,
1: वाह वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है।
0: थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा ये कोई पहाड़ होगा। वो झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वो अपने लंबे पतले पांवों से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है।
1: वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है।
0: घोंघे ने कहा,
1: बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था।
0: तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सिर चकरा गया।
1: इतना लंबा,
0: अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था।
1: ये भला कौन सा पेड़ होगा?
0: वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा,
1: सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है।
0: घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वो इस दुनिया में ही रहेगा।
1: अब तो मुझे यही रहना है।
0: एकलव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक छींका छींक से साभार।
2: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ प्रश्न। घोंघा कहाँ और किस मौसम में पाया जाता है? आपने अपने घर के या विद्यालय के आसपास और कौन कौन से जीव देखे हैं? इस कार्यक्रम में सूखे पत्तों की ध्वनि खड़खड़ जैसी बताई गई है। अब आपके लिए कुछ काम। जरा बताइए, इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी? बादलों की गर्जना, पानी का बरसना, घंटी का बजना और हवा का बहना। बगीचे का घोंघा। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी और वीरेंद्र रावत, कलाकार प्रवीण शर्मा और शालिनी सिंह, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम दत्ता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बगीचे का घोंघा। आशा है कि आपको घोंघे की यात्रा जरूर पसंद आई होगी।

0: और अब सुनते हैं कार्यक्रम धा से धमा चौकड़ी। ये कार्यक्रम अक्षर की कहानी श्रृंखला से लिया गया है। इसमें हिंदी की वर्णमाला के अक्षर ध के नवाचारी प्रयोग बहुत ही मनोरंजक ढंग से समझाए गए हैं। विशेष रूप से इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने आसपास के पर्यावरण और स्थानीय बोली भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों पर ध्यान दें और नए नए वाक्य बनाएं।
1: आज बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, मैं जल्दी आ गया हूँ या बच्चों को देरी हो गई? बस
2: धीरे धीरे चलो ना।
1: अच्छा तो आ गए तुम। अच्छा आ जाओ शाबाश आ जाओ बच्चों, आ जाओ यहाँ पर। अरे अरे अरे वहाँ नहीं, यहाँ बैठो, यहाँ इधर। अरे अरे भाई तुम धक्का क्यों दे रहे हो?
2: मैंने नहीं दिया भैया, पहले इसने दिया।
1: अच्छा चुन्नू ने दिया है। चुन्नू देखो सोनी को धक्का मत दो बेटा। अरे एक काम करो, इस तरफ तुम इधर आओ। ऐसे शाबाश। तो ये बताओ धक्का दे कौन रहा था वैसे?
2: चुन्नू
1: दे रहा था। वैसे एक बात बताऊं, ये धक्का मुक्की करना ना बिल्कुल ठीक बात नहीं,
2: गंदी बात।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा, गंदी बात है,
2: बुरी बात है।
1: हाँ बहुत बुरी बात है, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा तुमने चिंटू। देखो इससे चोट भी लग सकती है तुम्हें, तो क्यों ना इसी बात पर मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाऊं।
2: कहानी
1: हाँ, और पता नाम क्या है उसका?
2: नहीं।
1: मैं बताता हूँ ना, उसका नाम है ध से धमा चौकड़ी। ध से
3: धमा चौकड़ी।
1: शाबाश। तो एक बार एक जंगल के सारे जानवरों ने सोचा क्यों ना नदी के किनारे पिकनिक पर जाए।
4: मुझे पिकनिक बहुत अच्छी लगती है।
1: अच्छा
2: मुझे भी पिकनिक बहुत अच्छी लगती है। भैया क्या आप हमें पिकनिक पे लेके जाओगे?
1: हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगा, कहानी के बाद पिकनिक पर ही चलेंगे, ठीक है ना? हाँ तो बच्चों जानवरों ने सोचा क्यों ना पिकनिक पर जाया जाए, वहाँ पर खूब धूम धड़ा का धमा चौकड़ी करेंगे। ध से धूम, ध से
3: धमा चौकड़ी,
1: धासे धनुष। क्या बात है, धासे धनिया, धूप। क्या बात है, हाँ धासे धीमा। भाई लगता है शब्दों का पिटारा खोल लिया सबने, बहुत बढ़िया। धासे धीरे, वही वाह क्या बात है। धासे धीरे, धासे धूम, धासे धड़ाम, धासे धूम धड़ाका और धासे धमा चौकड़ी। तो बच्चों वहां पर सब जानवरों ने सोचा, जो भी जानवर थे ना वहां पर, सबने सोचा वहां पर जाकर यानी नदी के किनारे पिकनिक पर जाकर बहुत अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, धूम मचाएंगे, खूब मजा करेंगे,
2: मस्ती करेंगे।
1: हाँ मस्ती, धूम, बिल्कुल
2: खेलेंगे, पकड़म पकड़ाई खेलेंगे,
4: लुका छुपी खेलेंगे।
1: हाँ लुका छुपी,
2: आइसक्रीम खाएंगे।
1: अरे वाह आइसक्रीम, अरे वाह वाह वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है,
2: बहुत सुंदर।
1: अरे मेरा चुन्नू मुन्नू, और तुम क्या करोगे, क्या करोगे?
2: रंगीन गुब्बारे।
4: अब तो मेरा भी पिकनिक जाने का मन कर रहा।
1: हाँ तो बच्चों ऐसे ही सारे जानवरों का मन कर रहा था, सबने धड़ाधड़ खेल कूद और खाने पीने का सामान रख लिया। धा से
3: धड़ाधड़,
1: बजाओ ताली इसी बात पर, बस बहुत अच्छा होता। तो बच्चों उसके बाद पता क्या हुआ? जैसे ही सारे के सारे नदी के किनारे पहुंचे, बंदर ने आम के टोकरे पर धावा बोल दिया।
2: भैया धासे
1: धावा, बिल्कुल सही। और पता है भर पेट सारे आम खा गया फटाफट। और पता है उसने सबके हिस्से के आम खा लिए।
2: ये भी बहुत गलत बात है।
1: हाँ बच्चों बिल्कुल सही कहा तुमने,
2: जाते ही आम खा लिए।
1: हाँ हाँ
2: नहीं आम खा ले।
1: हाँ और सबके हिस्से के खा लिए।
2: बिल्कुल
1: उसने सारे आम खाकर अपना पेट तो भर लिया,
2: किसी के लिए नहीं बचाया,
1: किसी के लिए भी नहीं बचाया उसने। तब बाकी जानवरों को बहुत गुस्सा आ गया, सब धक्का मुक्की करके खाने का सामान उठाने लगे।
5: अरे मुझे भी दो, अरे मैं तो रह गया, अरे मैं भी, अरे मेरा पैर दब गया, अरे मेरा पैर,
6: अरे मेरा लड्डू मिट्टी में गिरा गया, लड्डू लड्डू मिट्टी में गिरा गया,
2: लग दिया।
1: और बच्चों बच्चों इतनी धक्का मुक्की हुई, इतनी धक्का मुक्की हुई, हाँ, और इतनी धक्का मुक्की हुई कि सभी धड़ाम से धूल में जा गिरे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, ध से धक्का मुक्की, ध से धड़ाम और ध से धूल। इसी बात पर सबके लिए हो जाए ताली। हाँ तो बच्चों, सब जानवर नए नए कपड़े पहन कर आए थे, सब धूल में गिरे तो कपड़ों में धब्बे लग गए।
2: हाँ
1: ध से धूल और ध से धब्बे। शाबाश, बिल्कुल सही बताया पूर्वा ने। तो पता है वहाँ पर एक धोबिन बिल्ली भी थी।
2: धोबिन
1: हाँ, से धोबिन। पता है धोबिन बिल्ली की साड़ी भी गंदी हो गई। और पता है फिर क्या क्या किया उसने? वो पानी की धारा में कपड़ों की धुलाई करने लगी। हाँ धासे धुलाई, धासे धारा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और उसकी पिकनिक तो गई गई धूल में। और सब जानते बच्चों क्या हुआ? इतनी धक्का मुक्की हुई बच्चों, इतनी धक्का मुक्की हुई कि हाथी धड़ाम से गिरा गेंद पर। अरे गेंद, हाँ धासे धड़ाम, गेंद ले गया था ना वो खेलने के लिए अपने साथ, बड़ी सी गेंद। तो हाथी धड़ाम से गिरा गेंद पर तो एक धमाका हुआ, धड़ाम। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, शाबाश। धासे धक्का, धासे धड़ाम और धासे धमाका।
4: भैया धमाका क्यों हुआ?
1: चुन्नी बेटा, वो धमाका इसलिए हुआ क्योंकि वो गेंद जो फट गई थी, धड़ाम। अरे गेंद भी फटी और हाथी के कपड़े भी फट गए। और पता है हाथी भी पिकनिक छोड़ के धागा लेकर कपड़े सीने बैठ गया। तो धासे क्या हुआ? धागा। हाँ सारी पिकनिक बर्बाद हो गई। अच्छा बच्चों, अगर वो धक्का मुक्की ना करते तो सब कुछ ठीक तरह से होता ना? तो इसीलिए चींटी ने सब जानवरों से कहा,
6: देखो लाइन बनाकर चलना अच्छा होता है।
2: भैया स्कूल में हम लाइन बनाकर चलते हैं, ये अच्छी बात है ना भैया?
1: बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। देखो लाइन बनाकर चलना हमेशा अच्छा होता है। अगर हम लाइन बनाकर नहीं चलेंगे तो धक्का मुक्की होगी, जैसे कि यहाँ पर हुई, है ना? हाँ तो बच्चों, चींटी बोली
6: लाइन बनाकर चलना अच्छा है,
1: और हाथी बोला
7: मेरी तरह धीरे धीरे धीरे धीरे चलना अच्छा है, किसी को भी धक्का नहीं लगता।
1: तो पता क्या हुआ, वहाँ पर मगरमच्छ भी था,
2: पानी में चलता है।
1: हाँ तो मगरमच्छ ने कहा,
8: अगर तुम सभी का ध्यान रखोगे तो कभी भी धक्का मुक्की नहीं होगी। हाँ
1: अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर बंदर सबका ध्यान रखता, सबके हिस्से के आम ना खाता तो धक्का मुक्की होती
2: नहीं?
1: नहीं होती ना। शाबाश
2: भैया, धासे ध्यान।
1: हाँ धासे ध्यान, ताली बजाओ सब, ताली, शाबाश शाबाश। धासे ध्यान, धासे धक्का। तो बच्चों इसीलिए मगरमच्छ ने कहा,
7: देखो भाई सबका ध्यान रखो, खूब खाओ पियो और धूम मचाओ, धूम मचाओ,
2: लेकिन
7: हाँ आराम से, धक्का मुक्की मत करना, ठीक ढंग से खाओ, खूब खाओ पियो और धूम मचाओ, मचाओ धूम।
1: तो इसी बात पर बजाओ जोर से ताली। तो चले पिकनिक पर, चलो आओ मेरे साथ।

クリオール。

0: सेध बेध विनध सेधारा और धुलाई।
1: फिर क्या हुआ?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धा से धमा चौकड़ी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले सप्ताह तक के लिए मुझे यानी अजीत को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डायमेथो 8 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. हेलो नमस्कार, ये है 90.8 एफएम ग्रीन और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन और मैं हूँ आरजे अनु। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। हर रोज कुछ अलग सी बातें, कुछ अलग से विषय के साथ हम हाजिर होते हैं इसी फ्रिक्वेंसी पर और इसी कार्यक्रम में। तो आज एक और खास कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों जलवायु की बात करें तो आज आप खुद ही देख रहे हैं कि जलवायु जो है वो अचानक कैसे परिवर्तित होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें हमारी ही भूमिका है। हम अपनी जलवायु को या फिर यूँ कहें कि जलवायु में संतुलन बनाए रखने में थोड़े पीछे हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर खेती की बात करते हैं तो जलवायु अनुकूल खेती करने की अब हमें ज़रूरत है और उसमें अगर जैव उर्वरकों के महत्व को हम समझेंगे तब हम जलवायु के इस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर जो हमारा आज का विषय है, जलवायु अनुकूल खेती में जैव उर्वरकों का महत्व और प्रयोग, तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद अनु जी।
0: अगर हम बात करें जैव उर्वरक की तो ये भी बताना सबसे पहले जरूरी है हमारे श्रोताओं को कि जैव उर्वरक होते क्या है, तो उसकी जानकारी थोड़ी दें सर।
1: हाँ, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है कि जलवायु में आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे हैं, तो उसके लिए जैव उर्वरक किस तरह से रोल पैदा कर सकते हैं, क्या उनकी भूमिका हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जैव उर्वरक होते क्या हैं। तो जैव उर्वरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण होते हैं जिसके अंदर लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं। और ये लाभदायक सूक्ष्मजीव क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है या वायुमंडल में नाइट्रोजन है, 78.6% नाइट्रोजन है, उसका कुछ भाग मिट्टी में स्थिर कर देते हैं और उस अवस्था में स्थिर कर देते हैं जिसमें कि पौधा उसको लेता है या यूज़ करता है। इसके अलावा मिट्टी में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट का सोर्स हैं, पोषक तत्वों का सोर्स हैं। तो ये पोषक तत्व मिट्टी के अंदर होते हैं लेकिन अनुपलब्ध होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया या जैव उर्वरक क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर जब जाते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा वो जो अनुपलब्ध पोषक तत्व हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस एघुलनशील मिट्टी के अंदर रखा हुआ है, बहुत सारा मिनरल मैटर के अंदर है, या ऐसा समझ लीजिए कि जो किसान लोग फॉस्फेटिव फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं खेतों में, तो उस जो अप्लाई करते हैं उसका केवल 20% तक ही पौधे यूज़ कर पाते हैं, बाकी बचा हुआ 80% तक मिट्टी के अंदर स्थिर हो जाता है और पौधों के लिए बेकार हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब मिट्टी में जाता है तो अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा उसको घोल देता है, उसको घुलनशील कर देता है और वो पौधों को उपलब्ध होने लगता है। और इसके अलावा पोटेशियम है, तो पोटेशियम मिट्टी में लगभग 96% तक अनुपलब्ध है, इनसॉल्युबल फॉर्म है, तो ये बैक्टीरिया अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा उसको सॉल्युबल करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो दूसरे काम है इनके, ये तो इनका मुख्य काम हो गया पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध कराना, दूसरे काम होते हैं कि बहुत सारे पौधक पादप हार्मोन्स निकालते हैं ये बैक्टीरिया या जीवाणु, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए एवं बढ़वार के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और इनका यदि अप्लाई सही से करते हैं तो पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी अधिक आती है और रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो ये तो मैंने बताया कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, और थोड़ा और समझ लेते हैं कि किस तरह से ये रासायनिक खादों से अलग हैं, किस तरह से रासायनिक खादों से ये भिन्न होते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जो जनरली आप लोग रासायनिक खाद अप्लाई करते हैं जैसे कि यूरिया है, DAP है, MOP है, तो इन सभी खादों के अंदर पोषक तत्व विद्वान होते हैं, जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन होता है, MOP में पोटास होता है, SSP में फॉस्फोरस होता है, लेकिन जैव उर्वरक के अंदर ये कुछ नहीं होता है। इसके अंदर ना तो नाइट्रोजन है, ना फॉस्फोरस है, ना पोटास है, ना कोई और दूसरा अवयव है, इनके अंदर केवल सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था। इसीलिए ये क्या होता है कि इको फ्रेंडली मतलब कोई भी नुकसान वातावरण को या हम पर या जानवरों पर या मिट्टी पर कुछ नहीं होता है इनसे।
0: जी सर, ये कितने प्रकार के होते हैं?
1: हाँ देखिए, हम बायोफर्टिलाइजर जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो एक तो नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जिससे कि पौधों को नाइट्रोजन मिलता है, दूसरे होते हैं फास्फोरस की घुलनशीलता बढ़ाने वाले, और तीसरे पोटेशियम मोबिलाइजर होते हैं और न्यूट्रिएंट मोबिलाइजर। तो नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले बायोफर्टिलाइजर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप किसान लोग जानते हैं जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें मुख्यतः हम लोग राइजोबियम का प्रयोग करते हैं। तो राइजोबियम क्या होता है कि दलहनी फसलों के अंदर जो जड़ों में गांठें होती हैं उन गांठों के अंदर ये जीवाणु या बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया वातावरण की नाइट्रोजन को उस जड़ों के अंदर स्थिर कर देता है, उस अवस्था में उसको चेंज भी कर देता है जिसमें कि पौधा उसको लेता है। कितना कर देता है तो ये 25 से लेकर के 200 या 250 किलोग्राम तक स्थिर कर देता है पर हेक्टेयर। वो डिपेंड करता है कि कौन सी फसल है, मान लीजिए सोयाबीन है तो उसमें 105 किलोग्राम करता है, लेंटिल है तो उसके अंदर 60 किलोग्राम करता है, या चिकपी है तो उसमें 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर करता है, मूंग है तो 50 किलोग्राम पर हेक्टर करता है। तो ये राइजोबियम के बारे में मैंने बताया, इसका प्रयोग केवल दाल वाली फसलों में ही करते हैं। दूसरा नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाला बायोफर्टिलाइजर होता है एजोटोवेक्टर। एजोटोवेक्टर एक बहुत ही अच्छा जीवाणु खाद है। ये क्या करता है कि ये भी इसका काम भी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में स्थिर कर देता है, और कितना कर देता है, ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक स्थिर कर देता है, और उस अवस्था में स्थिर करता है जिसमें पौधा लेता है। तो मुख्यतः जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं और कुछ पौधे अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, तो ये नाइट्रेट फॉर्म में चेंज कर देता है। और इसका प्रयोग सभी फसलों में, दाल वाली फसलों को छोड़ करके जितनी फसलें होती हैं, चाहे वो धान्य हो, धान्य मतलब गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, या सब्जियां हो, सब्जियों में कोई भी फसल हो, चाहे वो बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, और फल वाली सब्जियां और फूल वाली सब्जियां, यानी कि सभी फसलों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका मुख्यतः लाभ मैंने बताया कि 20 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर खेत के अंदर स्थिर कर देता है, और उस अवस्था में स्थिर करता है जिसमें पौधा लेता है। तीसरा हुआ बायोफर्टिलाइजर होता है नाइट्रोजन में एजोस्पाइरम। एजोस्पाइरम क्या होता है कि ये

0: जो मिट्टी में अनुपलब्ध फास्फोरस है उसको ये उपलब्ध कराते हैं, अपनी एक्टिविटी के थ्रू ये उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तरह हम आपको समझाते हैं, हमको भूख लगी हुई है और घर में धान या चावल रखा है, तो चावल तो हम नहीं खा सकते हैं जब तक कि उसका हम चावल को कुकर में नहीं तैयार करेंगे। इसी तरह से मिट्टी में बहुत सारा फास्फोरस पड़ा हुआ है, लेकिन वो उस अवस्था में नहीं जिसमें पौधा लेता है। तो ये फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया या जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रतिक्रिया से उसको घोल देते हैं और मृदा घोल में लेकर के आ जाते हैं आयनिक फॉर्म में। क्योंकि फास्फोरस को जो प्लांट लेता है, मुख्यतः सारे प्लांट सभी न्यूट्रिएंट को आयनिक फॉर्म में लेते हैं, तो इसको भी आयनिक फॉर्म में लेता है और बैक्टीरिया इसको आयनिक फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि पौधों को उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और पौधों की उपज भी अच्छी होती है। तो ये दूसरे प्रकार का बायोफर्टिलाइजर हो गया फास्फोरस घोलक। तीसरा होता है पोटेशियम घोलक, KSB, जिसको मार्केट में KSB के नाम से मिलता है। तो KSB क्या होता है, ये भी फास्फोरस घोलक की तरह से ही काम करता है और मिट्टी के अंदर जो अनुपलब्ध पोटेशियम है उसको ही उपलब्ध कराता है अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा। चौथा बायोफर्टिलाइजर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइकोराइजा। माइकोराइजा का कुछ लोगों ने नाम सुन रखा होगा किसान भाइयों ने। तो ये क्या होता है कि ये माइकोराइजा फंगस यानी कवक और जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के बीच सहसंबंध होता है। तो ये कवक क्या करता है, कवक पौधों की जड़ों के अंदर एंट्री लेकर यानी कि उसको भेद करके अंदर घुस जाता है और अपना जाल मतलब माइसीलियम में हाइफी हम लोग उसको बोलते हैं, फैला देता है पौधे की जड़ के अंदर भी और पौधे की जड़ के बाहर भी। बाहर मतलब जो मिट्टी है, जहाँ पर पौधे की जड़ें हैं मिट्टी है, मिट्टी के चारों तरफ इसका माइसीलियम या हाइफी फैल जाता है और ये धागे की तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, इसके संरचनाएँ होती हैं। काम क्या होता है इसका, देखिए मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व अघुलनशील होते हैं और कुछ पोषक तत्व अगतिशील होते हैं। अगतिशील का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो असमर्थ होते हैं। तो असमर्थ होते हैं उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या उदाहरण है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस मृदा में अगतिशील होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉस्फोरस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थ होता है और पौधे की जड़ों के आसपास जो भी फॉस्फोरस उपलब्ध होता है वो पौधे ने यूज कर लिया, ले लिया, लेकिन वो हो सकता है कि एक महीने में फॉस्फोरस ख़त्म हो जाए पौधे की जड़ के आसपास वाला। अब दूसरी जड़ से दूर जो फॉस्फोरस रखा हुआ है वो तो आ नहीं सकता क्योंकि वो अगतिशील है। तो अब यदि माइक्रोराइजा का प्रयोग हमने कर रखा है पौधे में, तो पौधे की जड़ों के अंदर माइक्रोराइजा की स्ट्रक्चर बन चुकी है, संरचनाएँ बन चुकी हैं, वो पौधे की जड़ों से दूर भी पहुँच चुकी हैं। तो जो दूर पौधों की जड़ों से दूर जो उपलब्ध फॉस्फोरस रखा हुआ था जो कि आ नहीं सकता था पौधों की जड़ों में या जड़ों के पास, तो इस माइक्रोराइजा की हाइफी के द्वारा, संरचनाओं के द्वारा वो दूर पड़ा हुआ फास्फोरस इस जड़ों के पौधे की जड़ों के पास में आ जाता है और इवन पौधे की जड़ों के अंदर भी वो कॉर्टेक्स में घुस जाता है। फिर पौधा उसकी उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने लगता है। तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान है माइक्रोराइजा का। और देखिए यदि हम बात करते हैं जलवायु के आस्पेक्ट में, जलवायु के परिप्रेक्ष्य में, तो माइक्रोराइजा क्या होता है कि माइक्रोराइजा एक ऐसा फंगस है जो कि पौधों के अंदर सुखाड़ से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है अंदर प्लांट्स के अंदर और सॉइल के अंदर जिससे कि पौधे के अंदर सुखाड़ से यानी कि गर्मी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा योगदान होगा माइक्रोराइजा का यदि किसान लोग करते हैं, ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर पानी कम है, वर्षा कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन में इस माइक्रोराइजा के प्रयोग से फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये मैंने चार प्रकार के आपको बायोफर्टिलाइजर बताए, कौन कौन से, नंबर एक राइजोबियम जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलाइजर, एजोट्रोबैक्टर, एजोस्पाइलम, दूसरा फास्फोरस घोलक बायोफर्टिलाइजर, तीसरा पोटेशियम घोलक बायोफर्टिलाइजर और चौथा माइक्रोराइजा।
1: जी तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें जलवायु के प्रभाव की, आज देखते हैं कि खेती पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो अगर हम जैव उर्वरक से खेती कर रहे हैं तो जलवायु के प्रभाव को कैसे कम करता है ये?
0: हाँ देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जलवायु के परिवर्तन को या जलवायु के प्रभाव को कैसे हम इसके थ्रू मिटिगेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। देखिए बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है कि जलवायु से हम, जलवायु का जो प्रकोप हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो जैव उर्वरकों का डायरेक्टली तो ज़्यादा कोई संबंध है नहीं जलवायु के प्रभाव को कम

0: करने के लिए इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, जब बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग रिकमेंड करते हैं किसानों को, हम किसानों से बोलते हैं कि आप लोग जैव उर्वरक का प्रयोग अपने खेत में करो, तो उनसे साथ ही साथ बोलते हैं कि आप कम से कम 25% रासायनिक खाद की मात्रा को कम कर दो, यानी कि अपने खेत में जो आप रासायनिक खाद प्रयोग करते हो उसका 25% कम करके प्रयोग करो यदि बायो फर्टिलाइजर देते हो तो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि कोई किसान अपने खेत में 100 किलोग्राम यूरिया देता है और हमने कहा कि तुम एजोट्रोवेक्टर या एजोस्पाइलम भी प्रयोग करो, तो 25 किलोग्राम यूरिया को बचा देना, यानी कि 75 किलोग्राम यूरिया देगा। तो 75 किलोग्राम यूरिया देने के बाद में 25 किलोग्राम जो यूरिया बचा, यानी 25 किलोग्राम जो रासायनिक खाद बची, उससे उसके द्वारा जो मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, जो नाइट्रेट के थ्रू नाइट्रेट लीच हो रहा था, पानी प्रदूषण हो रहा था, वायुमंडल प्रदूषण हो रहा था। कैसे हो रहा था वायुमंडल प्रदूषण, जब हम यूरिया देते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर देते हैं या नाइट्रोजनधारी फर्टिलाइजर देते हैं, तो उसका कुछ भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है, जो कि ये ग्रीन हाउस गैस है जिससे कि वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, उसका कुछ भाग नाइट्रस ऑक्साइड सॉइल में लीच हो जाता है जो कि पानी को प्रदूषित करता है, तो इस तरह से वायुमंडल भी प्रदूषित हो जाता है और पानी भी प्रदूषित हो जाता है। दूसरा और बड़ा भाग क्या है कि जब हम यूरिया का उत्पादन करते हैं, किसी भी रासायनिक खाद का उत्पादन करते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं इसका उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में या उद्योगों में होता है। तो फैक्ट्री में जब उत्पादन होता है तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है इसका उत्पादन करने के लिए, और उस इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के लिए सिंपल सी बात है कि कहाँ से आएगा, वो जो फॉसिल फ्यूल है, जो ईंधन है, उसको जलाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, तो उसके थ्रू कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड, दुनिया भर की जो गैसेस हैं, जो जहरीली गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, तो उस एस्पेक्ट में यदि हम रासायनिक खाद का प्रयोग कम कर सकते हैं, कम करने का मतलब है यदि हम रासायनिक खाद का प्रयोग कम करेंगे तो किसान प्रयोग कम करेगा, कम करेगा मतलब उसका बिक्री कम होगी, बिक्री कम होने का मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम करना पड़ेगा ना प्रोडक्शन इंडस्ट्री को, जब प्रोडक्शन इंडस्ट्री को कम होगा तो सिंपल सी बात है कि जो गैसेस का इवोल्यूशन, जो गैसेस का उत्सर्जन हो रहा था एटमॉस्फेयर में, वो कम होगा। तो इस तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको आप कुछ हद तक रोक सकते हैं कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग कम करके और बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग अपना करके।
1: डॉक्टर साहब, क्या इनके प्रयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता है या फिर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: हाँ, बहुत अच्छा सवाल है किसान भाइयों, क्या जब हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं तो क्या कोई मिट्टी पर इसका दुष्प्रभाव है, क्या है? देखिए, बायो फर्टिलाइजर से पहले हम आपको बताना चाहेंगे रासायनिक खादों से क्या हो रहा था। जब हमारी भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई 1966 के बाद में, तो हम लोगों ने अंधाधुंध ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अप्लाई करना कर दिया स्टार्ट। फर्टिलाइजर तो अप्लाई किया क्या, साथ में हमने एक गलती और कर दी कि हमने जीवांश पदार्थ यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ थे, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसका प्रयोग करना कम कर दिया, यहाँ तक कि बिल्कुल छोड़ दिया, तो इसलिए हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होने का कारण क्या है, देखिए अब जैव उर्वरक की बात हम कर रहे हैं, तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, जीव होते हैं, जीव मतलब बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया या फंगस होंगे, माइक्रोराजा तो फंगस होगा, बाकी मैक्सिमम बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जीवाणु वाले होते हैं, तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, हम मिट्टी को जीवित प्राणी बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, जीवित हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसी तरह से हमारे तरह से मिट्टी भी करती है, मिट्टी भी करती है मतलब सांस लेती है, सांस लेने का मतलब वो ऑक्सीजन लेती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है, एक तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब उसके अंदर जीवन है, तभी तो ऐसा होता है, तो वो जीवन जो है वो केवल इन्हीं जीवों के द्वारा है, यानी कि बैक्टीरिया या फंजाई एक्टोमाइसिन जो भी हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा वो मिट्टी जीवित है। अब मिट्टी जीवित है का मतलब क्या संबंध है इसमें, हम जो बोल रहे हैं इस तरह से करके कि जब हम लोग हरित क्रांति के बाद में किसानों ने, हम लोगों ने क्या करा, रासायनिक खादों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया अधिक से अधिक और कार्बनिक पदार्थ को डालना छोड़ दिया, तो जो ये मिट्टी का जीवन था, मिट्टी का जीवन है सूक्ष्म जीव, और इन सूक्ष्म जीवों का भोजन है वो कार्बनिक पदार्थ, अब हमने कार्बनिक पदार्थ ही डालना छोड़ दिया, तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीवों को भोजन मिलना बंद हो गया तो इनकी संख्या कम हो जाएगी अपने आप। तो संख्या कम होने का मतलब क्या समझ रहे हैं? मैंने अभी पहले बताया कि मिट्टी जीवित है ओनली केवल इसी के द्वारा जो कि सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव यदि उपलब्ध है तो मिट्टी जीवित है, और हमने उसका जीवन समाप्त कर दिया। समाप्त करने का मतलब था उसका भोजन कम कर दिया, तो अपने आप ही उनकी संख्या कम हो जाएगी, जीवन यानी कम हो जाएगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ, सीधा सा क्वेश्चन हुआ कि जो मिट्टी का जीवन का माध्य है वो है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव तभी रह पाएंगे जब तक कि उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होगा। तो अब रासायनिक खादों के डालने से तो उनकी संख्या कम हो गई थी, लेकिन अब जो बायोफर्टिलाइजर हैं, तो बायोफर्टिलाइजर के अंदर तो कोई केमिकल नहीं होता है। तो जब हम बायोफर्टिलाइजर मिट्टी के अंदर डालेंगे तो उसकी सारी गुण अच्छे हो जाएंगे, जैसे कि भौतिक गुण में उसकी मिट्टी का संरचना है, मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता है, मिट्टी का टेक्सचर है, या रासायनिक गुण में मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए या बढ़वार के लिए। दूसरा बायोलॉजिकल पैरामीटर तो है ही हैं। तो ये इन सब के डालने से इन सब भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में, जैविक गुणों में सुधार होता है। जब मिट्टी के सारे गुण अच्छे होंगे तो फसलों का उत्पादन अच्छा होगा। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिससे कि इनके डालने से किसी भी गुण का ह्रास होता हो या हानि होती हो। तो इस तरह से जैव उर्वरक बहुत ही लाभदायक है, इनसे किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं होता मिट्टी पर, सिवाय फायदे के, हमेशा फायदे ही होते हैं
1: जी। तो ये तो हमने जाना कि इससे मिट्टी को फ़ायदा होता है सर, इसके साथ ही प्रयोग विधि के बारे में बताएं।
0: हाँ देखिए, प्रयोग विधि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान लोग अधिकतर जानते हैं, मैक्सिमम लोग हम जानते हैं कि रासायनिक खादों का प्रयोग कैसे करते हैं, यूरिया का प्रयोग कैसे करते हैं, DAP का, MOP का, या और जो दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं, लेकिन जैव उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत पहले से हैं लेकिन इसका प्रयोग अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका प्रयोग जानना, और इसको कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे इसका रखरखाव करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूरिया DAP जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, उनको कहीं भी रख दो, आप धूप में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसको थोड़ा सावधानी के साथ में रखना होता है। तो पहले हम प्रयोग विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रयोग विधि, बायोफर्टिलाइजर को मुख्यतः तीन तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर एक है बीज उपचार, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है। बीज उपचार देखिए, बायोफर्टिलाइजर जो आते हैं दो तरह से आ रहे हैं आजकल। एक तो होते हैं सॉलिड यानी कि ठोस, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, चूर्ण फॉर्म में होते हैं, या लिक्विड, तो लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरह से बताऊंगा, लिक्विड वाला भी और चूर्ण वाला भी। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला विधि है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए यदि लिक्विड वाला बायोफर्टिलाइजर है तो उसको 4 ml से लेकर 6 ml तक प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं, और प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इतना 4 से 6 ml कल्चर लेकर के उसको बीज को उपचारित कर लेते हैं। बीज को उपचारित करने के बाद आपको उसको छाया में सुखाना होता है, और छाया में लगभग आधे घंटे में 30 से 45 मिनट तक वो सूख जाता है। सूखने के बाद में जिस खेत में आपको उसको बोना है, इच्छित खेत में आप उसको बो सकते हैं। तो ये हो गया लिक्विड वाले का। इसी तरह से यदि सॉलिड वाला बायोफर्टिलाइजर है, पाउडर वाला बायोफर्टिलाइजर है, तो उसके लिए जो दर होती है वो 20 से 25 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बीज होती है। तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति के हिसाब से हम कल्चर ले लेंगे और उसको बीज में मिक्स करके हम छाया में सुखा कर उसको खेत में बो देते हैं। लेकिन इसको प्रयोग कैसे करते हैं, मतलब तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आपके पास 10 किलोग्राम कोई बीज है, तो 10 किलोग्राम बीज के लिए आपको यदि लिक्विड वाला बायोफर्टिलाइजर है तो उसके लिए 50 से 60 ml बायोफर्टिलाइजर ले लेंगे। 50 से 60 ml आपने कोई भी बायोफर्टिलाइजर, चाहे वो राइजोबियम हो, PSB हो, KSB हो, ले लिया, या जेट्रोवेक्टर हो। 50 ml लिक्विड बायोफर्टिलाइजर लेकर के 100 ml हम अलग एक पानी लेंगे, और उस 100 ml पानी में हम 20 ग्राम गुड़ डालेंगे। 20 ग्राम गुड़, जो गुड़ या जेगरी जो होती है, जिसको हम लो क्वालिटी का थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 20 ग्राम गुड़ लिया और 100 ग्राम पानी लिया, उसको हम गर्म कर लेते हैं गैस पे या हीटर पे। जब वो गर्म हो जाता है तो मिक्स कर लेंगे उसको, गुड़ को, गुड़ पानी के अंदर अब मिक्स हो गया, घुल गया अच्छी तरह से। घुलने के बाद में उसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा जब हो जाता है तो जो आपका 50 ml अभी कल्चर था बायोफर्टिलाइजर का, उसको हम उसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो अब ये बायोफर्टिलाइजर कल्चर का घोल बन गया। ये सारा काम हम छाया वाले स्थान पर करते हैं, चाहे वो कोई आपका कमरा हो, या पेड़ के नीचे हो, या फिर सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। धूप में कभी भी ना करें ऐसा। तो अब एक प्लास्टिक शीट सरफेस पर आपने फर्श पर या सरफेस पर प्लास्टिक की शीट बिछा ली, उस शीट पर आपका जो 10 किलोग्राम बीज था उसको डाल दिया, 10 किलोग्राम बीज के ऊपर जो अभी आपका ये बायोफर्टिलाइजर का घोल जैसे मैंने बताया था वो तैयार हुआ है उसको ऊपर डाल करके और उंगलियों की सहायता से उसको मिक्स कर देते हैं। जब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है तो बीज की सतह के ऊपर एक लेप लग जाता है, वो लेप बायोफर्टिलाइजर होता है और उस बीज को हम फैला देते हैं उस प्लास्टिक की शीट पर 30 से 45 मिनट के लिए। 30 से 45 मिनट में वो सूख जाता है और सूखने के बाद में हम खेत में उसको प्रयोग कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बीज उपचार। अब दूसरा होता है मृदा उपचार। मृदा उपचार की जो दर है वो कोई भी बायोफर्टिलाइजर हो, चाहे ये एजोटोबैक्टर हो, पीएसबी हो, राइजोबियम हो, तो राइजोबियम का प्रयोग केवल हम सीड उपचार यानी कि बीज उपचार के थ्रू ही करते हैं और दूसरी फसलों में हम बीज उपचार मृदा उपचार दोनों कर सकते हैं। तो नंबर दूसरा है मृदा उपचार। मृदा उपचार क्या होता है, मैं यानी कि भूमि को उपचारित करना, मिट्टी को उपचारित करना मृदा उपचार कहलाता है। तो इसके लिए जो दर है कोई भी बायोफर्टिलाइजर चाहे पीएसबी है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, हम उसको यदि लिक्विड वाला है तो 1000 मिलीलीटर यानी कि 1 लीटर पर हेक्टर दर है और यदि सॉलिड वाला है, पाउडर वाला है तो उसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टर दर है उसकी। जो संशोधित दर है जैसे कि 1 लीटर या 2.5 किलोग्राम को लेकर के 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट है तो अच्छा है, नहीं तो सड़ी हुई, अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं आप। उस वर्मी कंपोस्ट में आप 1 लीटर कल्चर को मिक्स कर देंगे। ये काम अमूमन शाम के टाइम करते हैं, शाम को करते हैं जिससे कि ओवरनाइट का टाइम उसको मिल जाए स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आपने 100 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट में 1 लीटर कल्चर को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद में पूरी रात छोड़ देते हैं, सुबह उठने के बाद में उसको बैग में रखा, भरा और जिस खेत में आपको बोन डालना था उस खेत में उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी, छींट दिया। छींटने के बाद में आप इसको हल्की हैरो से मिक्स कर देते हैं और ध्यान ये रहे कि छींटते समय ऐसा ना हो कि 12 बज रहा है या 1 बज रहा है दिन का और बहुत तेज़ धूप है, मतलब धूप नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह का टाइम हो, 7-8 बजे 9 बजे तक आप छींट दो इसको, जिससे कि धूप हो लेकिन कम धूप हो, क्योंकि जैसे ही धूप मैं आप डालेंगे जो बैक्टीरिया की सेल हैं, जो जीवाणु है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि तुरंत छींटने के बाद में या ब्रॉडकास्टिंग के बाद में उसको मिक्स करना होता है हल्की हैरो से या हल्के कल्टीवेटर से। तो ये मृदा उपचार हो गया। तीसरा होता है बिचला उपचार। बिचला यानी कि पौध उपचार। पौध कुछ लोग सब्जी खेती लगाते हैं, इस समय धान का टाइम है तो ये बड़ा अच्छा मेथड है धान के लिए बिचला उपचार यानी कि पौध उपचार। तो इसके लिए दर 1 लीटर पर हेक्टर है लिक्विड की और उसकी 2.5 से 3 किलोग्राम पर हेक्टर है सॉलिड वाले की। तो इसको हम कैसे प्रयोग करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। 1 लीटर हम बायोफर्टिलाइजर लेने के बाद में, चाहे वो एजोटोबैक्टर हो या पीएसबी हो, 1 लीटर ले लिया और 1 लीटर के बाद में हम 100 लीटर पानी लेते हैं और 100 लीटर पानी में इसका घोल तैयार कर लेते हैं। घोल जब तैयार हो जाता है तो पौध है बिछड़ा उसको उखाड़ करके उसकी जड़ों को कम से कम 45 मिनट तक उसके अंदर डुबो करके रखते हैं। 45 मिनट के बाद हम उसको निकाल कर बिछड़े को जिस खेत में रोपनी करनी होती है उस खेत में उसकी रोपाई कर देते हैं। तो ये मैंने बताया आपको बिछड़ा उपचार, जो कि ऐसी फसल है जिसमें हम बिछड़ा लगाते हैं या पौध लगाते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बिछड़ा उपचार। तो ये 3 तरह से मैंने आपको इसका प्रयोग विधि बताई और इन 3 तरह से मैं सबसे अच्छा बीज उपचार है। यदि किसी में पौध लगाते हैं तो उसमें सबसे अच्छा फिर बिछड़ा उपचार हो जाता है
1: जी। तो यहाँ पर आपने जलवायु अनुकूल खेती में जैव उर्वरक के महत्व और प्रयोग के बारे में जाना और डॉक्टर साहब ने आपको पूरे विस्तार से बताया कि आपको कैसे प्रयोग करना है, साथ ही क्या महत्व है जैव उर्वरक का। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कुछ जानने को आपको ज़रूर मिला होगा इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम में। नमस्कार। कृषि

0: सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम करियर वॉच में। और करियर वॉच में आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी परेशानी के बारे में, जिसे लगभग हर विद्यार्थी जूझता है कि वो अकेले पढ़ाई करे या ग्रुप स्टडी करे। और ये परेशानी हर बच्चे को अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में होती ही है, क्योंकि कुछ बच्चा अकेले पढ़ाई करके अच्छा कर रहा है और कुछ बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप में अच्छी पढ़ाई कर पा रहा है। और हमें क्या चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम किसी और को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि ये बच्चा ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन हर किसी के लिए ग्रुप स्टडी नहीं होता, और उसी तरीके से हर किसी के लिए इंडिविजुअल स्टडी यानी कि अकेले पढ़ाई करना भी बेहतर नहीं होता है। तो क्या है आपके लिए बेहतर, ये जानने के लिए कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ग्रुप स्टडी के फायदे क्या हैं। पहला फायदा तो यही होता है कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं वो जो भी समझते हैं वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, जिससे बहुत टफ सब्जेक्ट भी बहुत आसानी से समझ में हमें आ जाता है। इसके अलावा रिटेंशन बढ़ता है, यानी कि जब आप किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दूसरों को समझा कर पढ़ाते हैं, तो ऐसे में कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक ज़्यादा याद रहता है। मान लीजिए आपने किसी चीज़ को समझ लिया और आपने उसी टॉपिक को किसी और को समझाया, तो ऐसे में आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कुछ स्टडीज़ में ऐसा भी पाया गया है कि आपकी जो रिटेंशन पावर है वो 50% तक बढ़ सकती है। और इसके अलावा जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप थोड़ा लो भी फील करते हैं तो कोई आपका पार्टनर होता है, आपका दोस्त होता है जो आपको मोटिवेट करता है। और ग्रुप में पढ़ना मजेदार होता है, प्रेरणादायक होता है, जिससे पढ़ाई जारी रखने का मन करता है। तो एक तरीके से जो टीम का सपोर्ट होता है आपके पास वो आपको मोटिवेट करता है। और इसके अलावा आपके अंदर संचार और नेतृत्व का कौशल भी बनता है। आप ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, सवाल जवाब आपस में कर रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक जो कम्युनिकेशन स्किल है और लीडरशिप है ये भी डेवलप होती है। और बहुत सारे एग्जाम्स में ना अब ग्रुप डिस्कशंस को भी शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा आपको ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे प्रोसेस में जाकर मिलता है। और ग्रुप स्टडीज के ऐसे नहीं है कि सिर्फ फायदे होते हैं, इसमें कुछ चुनौतियां भी होती है। जैसे कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, तो उसमें सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चा थोड़ा स्लो होगा पढ़ाई करने में, कुछ लोग ऐसा होगा जो काफी फास्ट चीजें सीख रहा है। तो इससे ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे चीजों को आधी ही सीख पा रहे हैं, क्योंकि वो देखेगा कि ग्रुप के सारे बच्चों ने तो सीख लिया पर मुझे ही परेशानी हो रहा है। तो कई बार हम शर्म की वजह से चीजें नहीं बता पाते हैं कि मुझे ये बात समझ नहीं आई है। और ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि सारे बच्चे इकट्ठे हुए और बातें करने लग जाते हैं और वो बातें ऑफ टॉपिक हो जाती है, यानी कि आपको जिस टॉपिक पे बातें करनी थी वो टॉपिक उससे निकल कर न जाने कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं और फिर ये हमारी पढ़ाई में व्यवधान डालती है। तो ग्रुप स्टडी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि हमारा ध्यान भी बहुत ईजिली भटकता है, हम बातें करने लग जाते हैं और यहाँ पर एक और परेशानी होती है कि समय और योजना की परेशानी होती है। सारे बच्चे एक वक्त पे फ्री नहीं हो सकते हैं और सारे बच्चों का जो गोल है वो भी एक नहीं हो सकता है। तो अगर आप जब ग्रुप स्टडी की सोच रहे हैं और सभी का टाइम प्लानिंग बिल्कुल सही है और आपका गोल भी एक ही है तो ये परेशानी नहीं रहती है, ये बात करके सुलझाया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर आप ऐसे बच्चों के साथ ग्रुप बना ले जो कि एक ही एग्जाम को, सेम एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो ये परेशानी तो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर आप ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जो आप अपना गोल है वो क्लियर रखें और रोल्स बांट दें बच्चों में, जैसे कि कौन नोट लाएगा, कौन टाइम का ध्यान रखेगा और कौन क्या करेगा, ये चीजें आप बांट दें तो सारे लोगों में जो बातें हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बटी रहेगी। और एक और बात थी ग्रुप स्टडी की जो परेशानी होती है कि कोई बच्चा शायद पीछे रह जाता है और वो शर्म से नहीं बता पाता है। तो जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक ऐसा माहौल बनाएं जहां पर सारे बच्चे खुलकर अपने जो परेशानी है वो साझा कर पाए, आपके दोस्त ही तो हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाएं जहां पर ओपन हर कोई अपने प्रॉब्लम को बता पाने में बिल्कुल सहज महसूस करे और एक अच्छी तरीके से प्लान करें और ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने की भी एक समय सीमा रखें कि इतने बजे तक ही पढ़ाई करनी है, इतने बजे के बाद हमें अपने घर जाना है। और इसके अलावा आप क्या करें कि बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें प्लान करें, एक टाइम लिमिट भी रखें कि हमें इतने देर तक ही पढ़ाई करनी है, ताकि छोटे छोटे ब्रेक लें और ब्रेक में जितनी बातें करनी है कर लें, जैसे ही ब्रेक खत्म हो आप पढ़ाई करने पे वापस चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका ध्यान ना पढ़ाई पे बना रहेगा। इसके साथ ही आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी ग्रुप स्टडी खत्म होती है तब आप ये चीजें देखें कि आपने आज क्या सीखा है, हर बच्चे ने क्या सीखा है, तो इसे ये भी पता लगेगा कि किसने कितना प्रोग्रेस किया और आज की पढ़ाई में, ग्रुप स्टडी में, आपने सिर्फ बातें ज्यादा की है या पढ़ाई भी की है। अगर इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो ग्रुप स्टडी भी बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। और अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी की, यानी कि जब आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इंडिविजुअल स्टडी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो पढ़ने का प्रोसेस होता है वो काफी अलग होता है, वो चीजों को बहुत गहरी तरीके से समझना चाहते हैं और आत्म अध्ययन करना चाहते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के भी बहुत फायदे होते हैं जैसे कि ग्रुप स्टडी के भी फायदे होते हैं। इंडिविजुअल स्टडी के फायदे ये होते हैं कि आप अपनी गति पे पढ़ सकते हो, आपका एक पर्सनल पेस चलता रहता है, आपको अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा है तो उसी टॉपिक को आप बार बार बार बार पढ़ सकते हो। लेकिन ग्रुप स्टडी में हर तरीके के बच्चे होते हैं, कोई तेजी से सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है, तो ऐसे में जो स्लो लर्नर होता है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। इंडिविजुअल स्टडी का एक और फायदा ये होता है कि आपके पास ध्यान भटकाने वाले तत्व काफी कम होते हैं, आप लंबे समय तक एक ही विषय पर बहुत ही डीपली, बहुत गहराई से काम कर सकते हैं और आपके पास कोई और आपका ध्यान भटकाने वाला नहीं होता है। और यहाँ पर परेशानियां भी बहुत होती है, लेकिन इसके पहले हम फायदों के बारे में और बातें कर लेते हैं। जब आप अकेले पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी आती है और एक आत्म अनुशासन आता है, यानी कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपको पता है कि आपको खुद ही सारी योजनाएं बनानी है, आपको खुद ही समय सीमा तय करना है, आपको खुद ही अपना लक्ष्य तय करना है ताकि आपके स्किल्स मजबूत हो सके। आप टाइम पे पढ़ने इसलिए नहीं बैठते हो क्योंकि बाकी बच्चे आ गए हैं, बल्कि आप टाइम पे पढ़ने इसलिए बैठते हो क्योंकि आपके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप स्टडी हमें सिखाता है कि आप कैसे एक अच्छे लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप टास्क बेहतर सिखाता है, ग्रुप डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो विकसित करता है, वहीं जब आप अकेले पढ़ते हैं तो आपके अंदर जिम्मेदारी आती है, आपके अंदर आत्म अनुशासन आता है और इसके साथ ही आप अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपनी जो रूटीन है, अपनी रणनीति है, प्लानिंग है, वो कर सकते हैं। आप अपने स्टाइल के नोट्स बना सकते हैं, आपका जो रिवीजन का टेक्निक है वो अलग हो सकता है, आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाते हैं। और जब आप अकेले पढ़ते हैं तो इसके फायदे तो हमने जान लिए कि क्या क्या फायदे होते हैं, इसकी चुनौतियाँ भी बहुत सारी है। जैसे कि आपको तुरंत कोई फीडबैक नहीं मिलता, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन आ गया, आप किसी सवाल से परेशान हो गए, तो आपको तुरंत जवाब नहीं मिल पाता है क्योंकि आपके आसपास कोई होता नहीं है। वहीं जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो चीजें हमने नहीं समझी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे ने समझ लिया है, और जब हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो इसमें ध्यान भटकने का भी खतरा रहता है। जब हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ध्यान इसलिए भटकता है कि हम किसी और टॉपिक पे अपने दोस्तों के साथ बात करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, आप खुद पर बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तब तो आपका ध्यान नहीं भटकता है, बहुत ही अच्छे से गहन फोकस के साथ आप पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है तो हमारे पास ध्यान भटकाने के हजारों संसाधन आज के टाइम पे मौजूद है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और बहुत सारी चीजें होती है जो हमारा ध्यान आसानी से भटका सकते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई हमें टोक देता है कि चलो फोन नीचे रखो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अकेले ही पढ़ाई करें, या फिर आपको ग्रुप नहीं मिल रहा है कि आप ग्रुप के साथ पढ़ाई करें, तो कैसे आप बेहतर तरीके से अकेले पढ़ाई कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस ढूंढना होगा, जहां पर कि आपके डिस्ट्रैक्शन की कोई भी चीज ना हो। आप अपने फोन को दूर रख दीजिए, सोशल मीडिया को तय कर लीजिए कि इस जगह पर हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी के आने से आपको परेशानी होती है तो आप वहां पर पहले ही बता दीजिए कि मैं भी पढ़ाई कर रही हूं, कोई भी यहां पर ना आए। तो आप ऐसी चीजें कर सकते हैं, और एक टेक्निक तो हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, 25 से 40 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज पे फोकस कर ही नहीं सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं पोमोडोरो, यानी कि हर 25 से 40 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो भी 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट करेंगे, उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसमें गाने सुनिए, पानी पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, उसके बाद वापस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। इसके साथ ही आप एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन जैसी टेक्निक्स भी अपना सकते हैं। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले एक्टिव रिकॉल को समझते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आप किताब बंद करके दिमाग से जानकारी याद करने की कोशिश करते हैं। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं और बिना देखे जवाब याद करने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा मेहनत करता है, और यही मेहनत आपकी याददाश्त को मजबूत करती है। और जब हम स्पेस्ड रिपीटेशन की बात करते हैं तो ये होता है कि एक ही जानकारी को आप थोड़े थोड़े गैप के बाद दोहरा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई लाइन पढ़ी या फिर किसी डेट को पढ़ा, तो अगले पेज पे जैसे ही हम गए तो एक बार हमने उस डेट के बारे में याद कर लिया कि हाँ इस डेट में ये हुआ था। तो जब आप एक ही चीज को, एक ही टर्म को या एक ही जानकारी को बार बार रिपीट करते हैं तो ये आपको याद रहता है। और इसके लिए एक जरूरी चीज होती है कि पहले दिन पढ़ें आप, तीसरे दिन उस चीज को बिल्कुल दोहराना चाहिए, सातवें दिन आप फिर दोहराइए, पंद्रहवें दिन आप फिर से रिविजन कीजिए। अगर आप इस टेक्निक को आजमाते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से और लंबे समय तक एक किसी चीज को याद रख सकते हैं। आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले दिन आपने पढ़ाई कर ली, तीसरे दिन आप उस चीज को रिवाइज कीजिए, सातवें दिन आपको फिर से रिवाइज करना है, पंद्रहवें दिन फिर से रिवाइज करना है, उसके बाद आपको ये चीज लंबे समय तक याद रहेगी, आपको वो टॉपिक लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ये चीजें भी आप जब आप अकेले पढ़ते हैं या ग्रुप में भी पढ़ते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं लंबे समय तक किसी भी चीज को याद रखने के लिए। और जब आप अकेले हैं तो आपके पास कोई भी ये बताने के लिए नहीं होता है, कोई भी ये कहने के लिए नहीं होता है कि वाओ तुमने कितने अच्छे से इस टॉपिक को समझ लिया है, या फिर तुमने कितनी जल्दी इस काम को कर लिया है। तो खुद के लिए रिवॉर्ड्स सेट करें और छोटे छोटे ब्रेक ले, और छोटी छोटी सफलताओं के बाद खुशियां खुद ही मना ले कि वाओ कितनी अच्छी बात है, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया, और मैंने आज इस टॉपिक को अपने टाइम से पहले या टाइम पे फिनिश कर दिया। तो खुद ही खुश हो जाइए, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मोटिवेट करते हैं, तो आगे पढ़ाई करने के लिए आप जब अकेले होते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। तो इसको जानने का, समझने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने सीखने के स्टाइल को समझें। अगर आप देखकर चीजें जल्दी सीखते हैं, पढ़कर जल्दी चीजें सीखते हैं तो आप अकेले पढ़िए, लेकिन आप सुनकर चीजों को जल्दी सीखते हैं, याद रखते हैं तो आप ग्रुप में पढ़िए। जब दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए सुनेंगे तो वहां पर आप चीजें सुन रहे होंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तब तो आपको ग्रुप स्टडी में ज्यादा मजा आएगा, लेकिन आप इंट्रोवर्ट है तब आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत बड़ी परेशानी होगी, आप अकेले पढ़ना पसंद करेंगे। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है, एक फोकस की जरूरत होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप अकेले ही पढ़ें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो ऐसे बच्चे अकेले पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में ग्रुप में बैठकर डिस्कस करते हैं, तो इससे बहुत फायदे होते हैं। एक तो आपने किसी टफ टॉपिक को अकेले में समझ लिया, लेकिन अब
7: आप ग्रुप में जाकर अगर कोई चीजें समझ नहीं आई तो कंफ्यूजन दूर किया या फिर किसी और के कंफ्यूजन को आपने दूर किया तो फिर आप चीजों को और अच्छी तरीके से समझ गए। तो आप ना जब पढ़ाई करते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि आप दोनों ही टेक्निक को मिलाकर पढ़ाई करें, ग्रुप स्टडी भी करें इंडिविजुअल स्टडी भी करें। जब आप इंडिविजुअली पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी भी टफ टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस के साथ समझ रहे होते हैं, फिर उसी टॉपिक को आप ग्रुप में जाकर डिस्कस करते हैं तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होती है। आप पहले क्या करें कि नोट्स को अकेले पढ़ लें, फिर आप ग्रुप में जाकर जो भी मुश्किल चीज़ें हैं उस पर चर्चा करें, और जब आप समूह में कोई भी चीज़ें सीखते हैं तो उसे फिर आप वापस आकर अकेले में दोहराएं और रिव्यू करें कि आपने क्या सीखा है, और अगर कोई टफ प्रॉब्लम है तो उसे अकेले में सॉल्व करें और फिर ग्रुप में जाकर डिस्कस करें कि कैसे आपने सॉल्व किया, या फिर किसी और ने उसे सॉल्व कर लिया है तो उससे पूछें कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा। आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंडिविजुअली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं तो भी आपको ग्रुप में डिस्कशन करना बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर चीज़ों को अलग तरीके से सीखने का समझने का जो मौका होता है वो होता है। इसके साथ ही वहाँ पर आप अपने जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो भी दूर कर सकते हैं। तो आप दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करें, और दोनों ही तकनीकों के अपने फ़ायदे हैं अपने नुकसान हैं, इसलिए बेहतर है कि आप दोनों तरीकों को मिला कर पढ़ें और ऐसे ग्रुप के साथ पढ़ें जिनका कि लक्ष्य गोल एक जैसा हो, आपके सीखने की शैली भी अगर एक जैसी हो तब तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपने आज के कार्यक्रम यानी कि करियर वॉच को देते हैं विराम। आप मुझे यानी कि अपनी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात कि स्वस्थ रहें, खुश रहें और हर रोज मेहनत करते रहें, हर रोज कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डायमेथो 8 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु. आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जी हां, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत सी एक बहुत ही प्यारी मधुमक्खी के बारे में, क्योंकि एक नहीं कह सकते, हजारों लाखों में ये रहती हैं, यानी कि ये झुंड बनाकर रहती हैं, संघ में रहती हैं. आपको बता दें कि अगर कृषि के तौर पर हम इनकी बात करें तो कृषि में इनकी जो पराग हैं, जी हाँ, कृषि में पैदावार बढ़ाने के लिए, यानी कि जिन फसलों के फूलों पर इनके पराग आते हैं उनमें बीज ज़्यादा बनते हैं. वैसे तो ये बातें हो गई कि हमारे लिए वो कितने लाभदायक हैं. अगर बात करें इनके रख रखाव की, जो कि आज का हमारा विषय है, मधुमक्खियों का मौसमीय प्रबंधन, तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे. और इस खास विषय के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा. ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं. और मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर रामानुज विश्वकर्मा सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान विभाग में, और साथ ही मधुमक्खी पालन में इन्होंने विशेषज्ञता रखी है. तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब. अगर बात करें हम, जैसा कि आज हमारा विषय है मधुमक्खियों का मौसमीय प्रबंधन, तो अगर देखा जाए तो हमें जो शहद है वो सालों भर नहीं प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में जिन महीनों में हमें शहद प्राप्त नहीं होते हैं, हमें उन महीनों में भी अगर शहद मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है. तो इसके लिए ज़रूरत होता है कि हम रख रखाव करें, प्रबंधन करें मधुमक्खियों का. तो इस समय हम कैसे उनका बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं ताकि हमें बिना नुकसान के आसानी से उस वर्ष में भी अधिक आय अर्जित हो.
1: जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद अनु जी. आज हम इसी परिचर्चा को लेकर करके उपस्थित हुए हैं कि कैसे कोई मधुमक्खी पालक भाई, जो शहद उत्पादन का काल होता है, खास कर करके पूरे साल भर का बसंत ऋतु होता है, उस बसंत ऋतु के बाद भी किसान भाई यदि अगर किसी भी फूल वाले स्थानों पे जहाँ से पराग और पुष्परस की प्राप्ति हो वहाँ पे ले जा करके शहद का उत्पादन कुछ न कुछ मात्रा में कर ही सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई नहीं कर पाते हैं, नहीं जा सकते दूसरे स्थानों पे किन्हीं कारणवश, किन्हीं समस्याओं से, तो उनके लिए पूरे साल इसको बाकी जो है शहद उत्पादन काल के बाद में, यानी कि जो ऑफ सीजन होता है, उस ऑफ सीजन, हमारा ऑफ सीजन हमारे बिहार के लिए खास करके अगर हम देखें तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह से अगर हम देखें या अप्रैल के तीसरे सप्ताह से लेकर करके अक्टूबर तक रहता है, और ये अप्रैल से अक्टूबर तक में अगर हम देखें तो हमारे पास में बहुत तरह तरह के वातावरण से किसानों को, मधुमक्खियों को गुजरना पड़ता है. जैसे गर्मी से, गर्मी में ज़्यादा तापक्रम का हो जाना और उच्च हाई जो आर्द्रता हो जाती है, उच्च आर्द्रता, तो इनकी वजह से उनकी शरीर क्रियाविधि और जो फूलों पे पुष्परस और पराग होते वो भी प्रभावित होते हैं. वहीं दूसरी तरफ यदि अगर हम बात करें, जो दूसरा मौसम आ जाता है वो वर्षा ऋतु, उस वर्षा ऋतु में बारिश के कारण पुष्परस और पराग दुल जाने की वजह से भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं. तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और इन सारी समस्याओं को लेकर करके ही हम मधुमक्खी पालकों के लिए उनको याद रहे और वो समझ सकें आसानी के साथ, उनकी आसान भाषा में लेकर करके आए हैं कि वो मधुमक्खी बक्सों का पूरे सालों भर ऋतुवार या मौसम के हिसाब से किस तरह से प्रबंधन करें और कौन कौन से क्रियाकलाप करें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि उनके बक्से जो है पूरी तरह से प्रबंधित रहें, मेंटेन रहें, और फिर आने वाले जो अगला सीजन हो या जहां कहीं पे भी फूल की उपलब्धता जैसे ही शुरुआत होगी उस समय उनकी मधुमक्खी की कॉलोनी जो है पूरी तरह से मजबूत हो, जिससे अधिक उत्पादन कर वो अच्छी आय अर्जित करके स्वयं को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं. तो आज जो है हम सबसे पहले आपको इस तरह से बताते हैं कि थोड़ा सा कि मधुमक्खियों का मौसमी प्रबंधन एक्चुअली है क्या. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न मौसम में खिलने वाले फूलों की पूरी जानकारी होने के साथ साथ मधुमक्खी पालन संबंधी सभी क्रियाकलापों को यदि अगर हम कालबद्ध एवं क्रमबद्ध तरीके से संयुक्त रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ कर करके जो काम करेंगे उसी को हम मधुमक्खी परिवार का मौसमी प्रबंधन कहते हैं.
0: जी,
1: अगर हमारे देश में विभिन्न प्रकार की ऋतुएं होती हैं, जैसे अगर हम बात करें इनमें शरद ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु प्रमुख हैं, तो इन ऋतुओं का प्रभाव जो है जैसा हमने आपको बताया जलवायु तथा वनस्पति दोनों पर पड़ता है, और इसके अलावा मधुमक्खी भी इनसे प्रभावित होती हैं। उनका पालन पोषण वनस्पति तथा जलवायु से ही संबंधित है। अगर हम पूरी तरह से देखें तो वनस्पतियों से मधुमक्खियों को पराग तथा पुष्प रस मिलता है एवं जलवायु ही उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम देखें इस प्रकार ऋतुओं के अनुसार मधुमक्खी परिवारों के प्रबंधन एवं रखरखाव के तरीके भी अलग अलग होते हैं। तो आगे हम इन्हीं प्रबंधन तकनीकों की चर्चा जो है आपके बीच में ऋतुवार करेंगे।
0: जी, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि वसंत ऋतु में ज़्यादा मधुमक्खी जो है वो देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय फूल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें रस चाहिए शहद बनाने के लिए, तो फूलों से प्राप्त करते हैं। और अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ऋतुवार बताएंगे कि कैसे आप प्रबंधन कर सकते हैं हमारे मधुमक्खियों का, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के लिए बिल्कुल आसान होगा समझने में, जानने में, याद रखने में, क्योंकि कई बार जनवरी फरवरी या फिर जो हिंदी में ज्येष्ठ आषाढ़ या कुछ भी जो नाम वो रखते हैं, लेकिन अगर ऋतुवार आपको बताया जाए तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको बताया जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर साहब आप बताएं ऋतु के अनुसार कि कैसे हम अपनी मधुमक्खियों का प्रबंधन कर सकते हैं।
1: जी हाँ, हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, चूँकि हम जैसे हमारा अगर हम देखें अंग्रेजी का महीना हमारा जनवरी से शुरू होता है, अगर ये हम जनवरी महीने की बात करें तो इस समय शरद ऋतु होता है। तो सर्वप्रथम हम सबसे पहले आप सभी लोगों को शरद ऋतु में मधुमक्खी परिवारों का प्रबंधन किस प्रकार से करें, क्या परिस्थितियाँ होती हैं और क्या क्रियाकलाप और क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, हम सबसे पहले इन पर चर्चा करेंगे शरद ऋतु के बारे में। तो अगर हम शरद ऋतु के बारे में बात करें तो मधुमक्खी परिवारों का भली भांति हमें नियमित रूप से उनके बक्से का निरीक्षण करते रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि मधुमक्खी बक्सों में पर्याप्त मात्रा में शहद एवं पराग का भंडारण हो रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मधुमक्खी बक्सों में पानी एवं चीनी की मात्रा को 1:2 के अनुपात में चाशनी बनाकर सायंकाल के यानी शाम के समय में देना चाहिए बक्से में। ध्यान रहे कि चाशनी को सामान्य तापमान पर पहुंचने के बाद ही मधुमक्खी बक्से में देना चाहिए, क्योंकि होता क्या किसान भाई जैसे तुरंत बनाते हैं और आधे घंटे 10 मिनट बाद में तुरंत लेकर के पहुंच जाते हैं, तो इस तरह से गर्म होता है। तो मधुमक्खियां उस तरह से जो कृत्रिम विधि से आप चाशनी बना के दे रहे हैं उसको गर्म होने की वजह से जब तक वो सामान्य तापक्रम पे नहीं हो जाता तब तक तो वहां से वो भोजन के रूप में उठाती नहीं है। दूसरा, यदि अगर कुछ ही मधुमक्खियाँ उठा लेती हैं तो वो पता चले कि उससे प्रभावित हो जाती हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान रखना। उसके साथ ही साथ हमें ध्यान रखना सभी मधुमक्खी बक्सों को शीतकालीन वर्षा व ठंडी हवा के तेज जो थपेड़े होते हैं उनसे बचाना चाहिए। अधिक ठंड होने पर अंतःपट के नीचे, अंतःपट मतलब जो हमारा इनर कवर होता है जो ठीक उसके नीचे, हम या तो पेपर लगा दें या तो जूट का बोरा रख कर मधुमक्खी बक्सों को हमें वंशों को या परिवारों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि सीधे तौर पर ठंड या हवा तेज हवा के थपेड़े ना पहुँचें। और ये खास करके तब होता है कि जब हम उनकी देखभाल करते हैं नियमित रूप से कि उनमें उनकी क्या स्थिति है परिस्थिति जानने के लिए। और ध्यान रखना है कि कुहासा होने पर मधुमक्खी वंशों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए या ज़रूरत के अनुसार बहुत ही कम करना चाहिए। और ख़ास करके हमको ध्यान रखना है कि हम यदि अगर धूप निकली हुई अवस्था हो तो उस अवस्था में बेहतर होता है, यानी कि जब कुहासा पड़ रहा हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस माह में कभी कभी सूर्य की रोशनी होने पर 15 से 20 मिनट के लिए खास करके दोपहर के समय में मधुमक्खी वंशों को खुला छोड़कर ढक देना चाहिए, जिससे बक्से का जो तापमान है वो बनाए रखने में मधुमक्खियों को मदद मिलती है। इस ऋतु में मधुमक्खी पालक जो है मधुमक्खी बक्सों को जहाँ ज़्यादा मात्रा में सरसों की विभिन्न किस्मों की पैदावार होती हैं ऐसे स्थानों में स्थानांतरित उनको कर देना चाहिए, जिससे उनको भरपूर मात्रा में पराग और पुष्परक उपलब्ध होता रहे। बक्से में अधिक शहद इकट्ठा होने की परिस्थिति में समय समय पर निष्कासन करते रहना चाहिए। इस ऋतु में सरसों, धनिया, खेसारी, सहजन एवं अन्य प्रकार के पौधे कहीं कहीं किसी स्थान पर पुष्प उनसे हमें पुष्परस और पराग मिलता रहता है, तो ऐसे स्थानों पे हमें ले जाना चाहिए बक्सों को। बक्सों में मधुमक्खियों की अधिक संख्या होने पर मोमी छत्ताधार वाली चौखटों का प्रयोग करना चाहिए, व आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक मधु कक्ष भी लगाया जा सकता है, और समय समय पर हमें वहाँ से शहद का निष्कासन करते रहना चाहिए। मधुमक्खी वंशों को इस तरह से अगर हम देखें, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पर फूल का स्रोत हो वहीं पे स्थानांतरित करना चाहिए। खासकर बिहार राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ के मधुमक्खी पालकों के लिए ये मैं सुझाव जरूर दूंगा कि इस ऋतु में मधुमक्खियों की संख्या को बढ़ा कर करके लीची के फूल से अधिक मात्रा में शहद प्राप्त करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से ही हमारा शरद ऋतु रहा, इसमें ये कुछ हमें क्रियाकलाप या सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आ जाता है, हम इसी के साथ में आपको बताएंगे कि पूरे मधुमक्खी पालन का जो सबसे, अगर हम कहें कि स्वर्णिम जो समय होता पूरे साल भर का, वो हमारा बसंत ऋतु होता है, जो कि जैसा कि नाम से जाना जाता है कि इस बसंत ऋतु में, यानी बसंत ऋतु हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ से फूल खिला हुआ बिल्कुल अद्भुत एक तरीके से पूरा पर्यावरण वातावरण हमारा होता है। तो इन महीनों में मधुमक्खी परिवारों का प्रबंधन का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, कि क्योंकि यही महीना मधुमक्खी पालकों के लिए उनकी पूरे साल भर की कमाई का महीना होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से मैं आप सभी को बोलूंगा कि इसको बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको पूरा अगर आप इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बहुत ही लाभकारी बना सकते हैं। तो अगर हम बसंत ऋतु की बात करें तो खास करके अगर हमारे क्षेत्रों के लिए, खास करके हमारे बिहार राज्य के लिए अगर बात करें या अन्य राज्यों का भी, कुछ कुछ उत्तरी भारत का भी हिस्सा उससे मिलता है। बसंत ऋतु अगर हमारे यहाँ बात करें तो मध्य फरवरी से लेकर के अगर हम देखें तो मध्य अप्रैल तक कभी कभी कहीं कहीं चला जाता है। तो इस तरह से इन, खास करके इन महीनों यानी इस बसंत ऋतु या मौसम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। जैसे इस ऋतु में ज़्यादातर मात्रा में लीची एवं सहजन से पुष्परस और पराग मिलते हैं हमारे राज्य में, बिहार राज्य में। तो इस ऋतु में वातावरण का तापक्रम भी अन्य ऋतुओं की तुलना में ज़्यादातर बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब कहने का ये कि एक तो पराग और पुष्परस का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, मतलब कि पौधे की बढ़वार और वृद्धि यानी वनस्पति भी अच्छी होती है। वहीं ये जो मौसम होता है इनमें मधुमक्खियों के शरीर की बढ़वार वृद्धि विकास, उनके बक्से में उनके परिवारों की संख्या भी बहुत अच्छी होती है। तो मधुमक्खी बक्सों में अगर हम देखें इन महीनों में अंतःपट के ऊपर लगाए गए जूट बोरे को हटा देना चाहिए, क्योंकि संख्या भी बढ़ रही है और ठंड भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई, तो उससे उनकी गतिविधियों को अगर बढ़ावा देने के लिए हमें जो जूट के बोरे हमने ठंड में लगाए थे ठंड से बचने के लिए उसे हमें हटा देना चाहिए। और इस मौसम की अनुकूल स्थिति होने से बकछुट की प्रवृत्ति पर नियंत्रण एवं शहद संग्रह क्षमता को बढ़ाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे शहद इकट्ठा होना शुरू हो गया तो हमें समय समय पर शहद का निष्कासन करते रहना चाहिए, ताकि मधुमक्खियों को और अधिक मात्रा में शहद इकट्ठा करके ला कर करके बक्सों में और अधिक शहद वो लेकर के आएँ। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, शहद निकालने में देरी करेंगे, तो वो काम करने में शिथिल हो जाती हैं, क्योंकि जो इकट्ठा करके ला कर करके शहद से जो सेल को पैक करती हैं वो अपने ऑफ सीजन के लिए भोजना अभाव काल में, जब भोजन का अभाव होता है उन महीनों में उन मौसमों में इस भोजन का प्रयोग करेंगी, तो ऐसे शहद का हम जो है जो मधुमक्खी पालक भाई है हमें समय से हमेशा निकालते रहना चाहिए, उसके लिए हमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे मधुमक्खियों को काम में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए, आप सभी मधुमक्खी पालक भाई जानते हैं कि एक ही छत्ते में वहीं पे शहद भी इकट्ठा किया जाता है, पराग भी इकट्ठा किया जाता है, और वहीं पे उनके बच्चों का पालन पोषण भी होता है। तो जैसे ही हम सेल को खाली करके देंगे तो या तो वहाँ शहद इकट्ठा करेंगी या पराग इकट्ठा करेंगी, या उन सेल्स का जो खाली छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम सेल्स बोलते हैं मधुमक्खी पालन की भाषा में, तो उनमें रानी मधुमक्खी जो अंडे दे करके पर समय से अंडे दे, नियमित रूप से अंडे दे दे कर करके परिवार बढ़ाने का नियमित रूप से काम भी करती रहती हैं। चूँकि इस बसंत ऋतु में सिर्फ हम अच्छे शहद का उत्पादन ही नहीं काम करते हैं, बल्कि उनके परिवार को बढ़ाने का भी काम करते हैं, उनके परिवार को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का भी काम करते हैं। अगर हम देखें अनुकूल दिनों में बक्सों को खोलकर उनकी साफ सफाई नियमित रूप से करते रहना चाहिए, और मधुमक्खी बक्सों को अगर हम देखें तो हमें स्टैंड से थोड़ा नीचे उतार करके रख देना चाहिए, जिससे मधुमक्खियों की, खास करके श्रमिक मधुमक्खियों की कार्य क्षमता उतार के नीचे उतार के रखने से बढ़ जाती है। और इस मौसम में एक सप्ताह के अंतराल पर हमें कम से कम मधुमक्खी बक्सों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहना चाहिए, और ये देखते रहना चाहिए कि नियमित रूप से वहाँ पे उस बक्से में शहद इकट्ठा किया जा रहा है कि नहीं, पराग इकट्ठा किया जा रहा है कि नहीं, नियमित रूप से रानी मधुमक्खी अंडे दे रही है कि नहीं, उनके बच्चों का पालन पोषण चल रहा है कि नहीं, उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ये सारी परिस्थितियाँ नहीं हो रही हैं तो उनमें कुछ ना कुछ समस्याएँ हैं। अगर वो समस्याएं, उन्हीं समस्याओं के को जानने के लिए हमको सप्ताह में कम एक बार खोल करके देखना चाहिए और समझना चाहिए, और जैसे ही हमें उनकी समस्या समझ में आए, उसको समझ करके तुरंत उनके समाधान की तरफ जो भी क्रियाकलाप है वो हमें करना चाहिए। समस्या क्या आती है, जब इन महीनों में बहुत ज़्यादा संख्या में यदि अगर शहद इकट्ठा हो रहे हैं, रानी अगर उनके परिवार बढ़ रहे हैं, तो पूरे बक्से में रानी मधुमक्खी जब भ्रमण नहीं कर पाती है, तो जिन क्षेत्रों में एक ही बक्से में उसी बक्से में जिन फ्रेम में या जिन क्षेत्रों में रानी मधुमक्खी भ्रमण नहीं कर पाती, उन क्षेत्रों की मधुमक्खियाँ ये समझ बैठती हैं कि अभी हमारा बक्सा, यानी हमारा जो परिवार, उनका बक्सा एक पूरा परिवार होता है, तो वो रानी विहीन है, तो वैसे में वो नई रानी सेल बनाने की तैयारी कर देती है कि हमें नई रानी वहाँ से पैदा करनी है, क्योंकि रानी, उनको लगता है कि रानी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि अगर पहले से जो रानी है वो हमें ध्यान रखना है कि वो रानी उसको काम करने का, पूरे बक्से को घूमने का मौका मिले, या हम एक सप्ताह में ही जो हमारा फ्रेम पहले चौथे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे, जो आठवें पे था उसको दूसरे पे, मतलब एक्सचेंज करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए उसी बक्से में, ताकि रानी का जो पूरी तरह से देख रेख पूरे बक्से का और पूरी मधुमक्खियां उससे रूबरू हो जाएं और अवगत हो जाएं कि रानी मधुमक्खी बक्से में है, नहीं तो वहां नया रानी क्वींसल बनने लगेगा और कुछ ही दिनों के बाद में जो पुरानी रानी पहले से है वो मधुमक्खी बक्सों को छोड़ कर करके बाहर भाग जाती है लज्जित होकर करके। तो ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना है कि अगर वो रानी मधुमक्खी, उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई।

की चीजें जानते हैं, बट इनको ध्यान में रखने की असा समय आपको इनको करने की जरूरत है, तभी आप अपने इस मधुमक्खी पालन को बसंत ऋतु में, जो सबसे अहम ऋतु होती है, उसमें आप इसको एक, अगर हम देखें, पूरी तरह से प्रोडक्टिव या हाईली इकोनॉमिक, यानी कि जो इसमें हमें आय को बढ़ावा देने का मंथ होता है, उसको आगे ले जा सकते हैं आप। इन महीनों में जो निष्कासित शहद है उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि उसका, यदि अगर नज़दीक में कहीं कोई भी शहद प्रसंस्करण इकाई है तो वहाँ से हमें प्रसंस्कृत कर करके बोतल में भर करके उत्पाद को हमें रेडी कर करके ही बाजार में ले जाना चाहिए, जिससे अच्छा रेट मिले। और इसके अलावा जो, यदि अगर कोई मधुमक्खी पालक भाई इन महीनों में, या अगर वो अपने व्यवसाय में एक अन्य व्यवसाय, शहद उत्पादन के अलावा एक अन्य व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं पराग उत्पादन का, तो इन्हीं महीनों में चूंकि भरपूर मात्रा में पराग इकट्ठा किया जाता है, तो पराग एकत्रक नामक जो उपकरण होता है, आप सभी जानते हैं, वो बड़ा ही सस्ता बाजार में उपलब्ध है, उसको आप खरीद करके और उसका व्यवहार कर करके आप पराग उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं। यही ऋतु जो है, अगर हम बोले ये जो बसंत ऋतु हमारा, ये पूरे साल भर की कमाई के लिए क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में हम मधुमक्खियों में प्रजनन कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं, कि यही महीना इसका जो अनुकूल वातावरण होता है, इन्हीं महीनों में यदि अगर हम नाई रानी मधुमक्खी का उत्पादन कर और उनको प्रजनित कर, नर के साथ संपर्क स्थापित कर, गर्भित कर करके, और जिन बक्सों में कमजोर रानी है, बूढ़ी रानी है, पुरानी रानी है, ऐसे बक्सों में हम उनसे बदलने का काम इन्हीं ऋतु में हमें कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मधुमक्खी बक्से को इन्हीं महीनों में, ये खास करके इन ऋतुओं में मधुमक्खी बक्से को इतना मजबूत और सुदृढ़ कर लेना है, खास करके ध्यान रखना गुणवत्ता युक्त अंडे की उपलब्धता रेगुलरली, नियमित रूप से प्रतिदिन यदि अगर अंडे दिए जा रहे हैं तो ये प्रूफ करेगा, अगर नियमित रूप से रानी मधुमक्खी बक्से में अंडे दे रही तो ये प्रूफ करता है कि वो रानी मधुमक्खी जो है नई है, यंग है, और बक्से में जो बाकी सारे क्रियाकलाप हैं, सारी चीज़ें, उसके भोजन की उपलब्धता, तापक्रम, और उसमें वो एक तरीके से भी कोई रोग और कीट की समस्या नहीं, इन सब बातों को प्रूफ करता है। तो इन सबको हमें ध्यान में रखते हुए रानी मधुमक्खी के अंडे देने की क्षमता को बढ़ावा देना है, उसको नियमित रूप से हमें जो खाली सेल हैं उनको खाली करते हुए उसमें अंडे देने की क्षमता को बढ़ावा देते रहना है। और जैसे ही लीची और अगर सहजन में फूल का रस मिलना जैसे ही एक तरीके से ख़त्म होता है या फल लगने की अवस्था में आता है, ठीक उसी समय अगर किसान भाई इसी ऋतु में उन स्थानों पे जहाँ पर अमरूद हो, नीम, जामुन, करंज या सूरजमुखी के पौधे लगे हों, ऐसे फूल वाले स्थानों में मधुमक्खी बक्सों का स्थानांतरण करना चाहिए, और मधुमक्खी परिवारों के लिए स्वच्छ एवं ताज़े पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि मधुमक्खियों को गंदा पानी पीकर बीमार होने से हम बचा भी सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे हम बसंत ऋतु से बाहर निकलते हैं, अब धीरे धीरे मधुमक्खी पालन हमारा एक तरीके से ऑफ सीजन की तरफ बढ़ता है, और वो अगला जो हमारा मौसम, अगर हम बात करें, वो गर्मी का मौसम आ जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खी परिवारों को प्रबंधन कैसा करें, जैसा कि नाम से व्यतीत होता है कि इस मौसम में गर्मी अधिक पड़ने के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे प्राकृतिक भोजन की कमी हो जाती है, मधुमक्खी के शरीर की जो एक तरीके से अगर हम फिजियोलॉजी या क्रिया विज्ञान की बात करें कि जो एक तरीके से उनकी जो कार्य क्षमता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ रानी मधुमक्खी द्वारा जो नियमित अंडे देने की प्रक्रिया है उनमें गिरावट आ जाती है, क्योंकि रानी मधुमक्खी का जो उसका अपना भोजन होता है बड़ा ही कीमती, उसको हम रॉयल जेली बोलते हैं, गर्मी आने की वजह से वो धीरे धीरे श्रमिक मधुमक्खियाँ रॉयल जेली या राज उपले का उत्पादन कम कर देती हैं, जिससे उनको भोजन ना मिलने की स्थिति में वो कमज़ोर भी होने लगती हैं, और वो मानसिक रूप से ये समझ बैठती हैं कि अभी जो है ये मौसम अनुकूल नहीं है उनके लिए, उनके बच्चे और परिवारों के लिए। तो इस तरह से उनका जो नियमित रूप से अंडे देने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे वो गिरावट उसमें होने लगती है, और इस तरह से कम अंडे देने लगती हैं। और इन्हीं गर्मी के महीनों में अगर हम देखें धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बहुत सारे जहाँ पे हम अपना मधुमक्खी बक्सा रखते हैं वहाँ पे स्वच्छ एवं ताज़े पानी की कमी भी हो जाती है, अनुपलब्धता भी हो जाती है। तो इस तरह से और भी क्या होता है कि गर्मी में खास करके हम सभी जानते हैं कि

0: गर्मी में जैसे हम सभी जीव जंतुओं के लिए पानी पीने की जो हमारी जरूरत होती है वो बिल्कुल बढ़ जाती है। मधुमक्खी भी एक विशेष एक प्रकार के कीट ही हैं, जीव जंतु ही हैं, तो उनकी भी जरूरत इन महीनों में या इन अगर हम मौसम में देखें गर्मी में उनकी भी जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में स्वच्छ और ताजे पानी की अगर उपलब्धता नहीं हो पाती है तो वो गंदा पानी पी करके बीमार भी हो जाती हैं। तो इस मौसम में खास करके हमको ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला कि हम स्वच्छ पानी उनको हमें उपलब्ध कराते रहना चाहिए ताकि वो गंदा पानी पी करके बीमार ना हो। और इन महीनों में किसान भाई एक काम और कर सकते हैं कि जहाँ ये ऑफ सीजन के रूप में जाना जाता है लेकिन फिर भी बिहार हमारा राज्य सब्जी उत्पादन में अगर हम देखें तो पूरे देश में लगभग कभी पहले स्थान, कभी दूसरे, कभी तीसरे, यानी अगर हम देखें तो हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर, एक अच्छे स्थान पर हमेशा रहता है। तो पूरे बिहार में कहीं ना कहीं पूरे सालों भर अगर हम देखें कोई ना कोई सब्जी का उत्पादन होता ही रहता है। तो इन गर्मी के महीनों में खास करके हमारे किसान भाई जो है वो जैसे साग सब्जी, जैसे अगर हम बात करें करेला है, नेनुआ है, खीरा है, लोबिया है, मूंग, ये सब की खेती गर्मी के महीनों में बहुत सारे किसान भाई हमारे करते। तो इन जो ये जिन फसलों की हम बात कर रहे हैं इन फसलों के खेतों के आसपास में यदि अगर मधुमक्खी बक्सों को किसान भाई ले जाएंगे तो इनसे इनको जो प्राकृतिक रूप से पराग और पुष्परस मिलने की जो जरूरत है एक तो वो पूरी हो जाएगी और दूसरा यदि अगर मिलेगा इस तरह से प्राकृतिक भोजन तो हमें कृत्रिम भोजन की तरफ नहीं जाना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता। तो इससे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता और जो हमें कृत्रिम भोजन को बनाने के लिए देने के लिए अतिरिक्त आय का जो खर्चा पड़ता उसकी भी हम बचत कर लिए एक तरीके से, तो हम और भी लाभकारी बना लिए। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थानों पे स्थानांतरित करना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण, अधिक बढ़ने के कारण क्या क्या समस्याएं होती, उन समस्याओं की वजह से कभी कभी होता है कि इनके इन वो तो जो समस्याएं पहले बताए वो तो रहती इनके कारण, इसके अलावा ही इनके जो अपने समुदाय की जंगली मधुमक्खियां होती हैं इन पर कभी कभी इनके छत्ते में आकर आक्रमण करती हैं कि इनका जो अपना भोजन पानी है इनका चोरी करके वो खाने का काम करती हैं। और इनके डर की वजह से, जो जंगली मधुमक्खियों की डर की वजह से, जो हमारी पालतू मधुमक्खी है जिनको हम पाल रहे हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खी पालक भाई के लिए, वो पालतू मधुमक्खियाँ थोड़ी सीधी स्वभाव की होती हैं, जंगली मधुमक्खियों के आक्रमण करने से वो घर को छोड़ करके भाग जाती हैं, यानी कि ऐसी परिस्थिति में वो घर को छोड़ के भाग जाती हैं जिसको हम बकछुट या अंग्रेजी में एब्सकॉन्डिंग बोलते हैं। तो एब्सकॉन्डिंग की समस्या होती है, इनसे हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही ऐसे में जंगली मधुमक्खियों का आक्रमण हो या इनके अलावा अगर हम देखें हमारे वातावरण में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के वास्प होते हैं जिनको हिंदी में लोकली हम लोग बर्रे बोलते हैं, बिरना बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, तो इन सब का भी आक्रमण बढ़ जाता है। चूंकि ये बिरना, बर्रे, ततैया, इनका भी जो भोजन पान का अगर हम देखें जो तरीका है, जो खाने के लिए जो खाद्य सामग्री चाहिए वो मीठा पदार्थ चाहिए मधुमक्खियों की तरह, तो ये इसी वजह से मधुमक्खियों के छत्तों में अटैक करती हैं। तो हमें इनसे भी ध्यान रखना है, इनसे बचाने के लिए अगर हम बात करें तो मधुमक्खी बक्से के सामने में एक, अगर हम बात करें आप सभी लोगों ने प्रयोग भी किया होगा, एक क्वीन गेट करके छोटा सा एक जाली आता है जिनसे केवल श्रमिक मधुमक्खियां बक्से के अंदर आ और जा सकती हैं, बाकी कोई नहीं, रानी मधुमक्खी भी नहीं। तो इस तरह से जो जंगली मधुमक्खियां होती उनकी साइज भी बड़ी होती है और जो वास्प विभिन्न प्रकार के जो बर, ततैया या बिरना बोलते हैं उनका भी आकार बड़ा होता है। तो ये जो जाली हम लगा देंगे उस जाली के लगाने की वजह से उसमें उनके शत्रु जो है बड़ी आसानी के साथ प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो उनसे उसको लगा करके भी हम आसानी के साथ बचा सकते हैं। या आसपास में कभी कभी ऐसा होता है कि ये एक तरीके से इनमें प्रतिरोधी क्षमता होती है खास करके बिरना, ततैया इन सब में, तो ये जैसे ही हम अगर वहाँ उनको मारने के लिए इनको प्रबंधन की कोई तकनीकी अपनाते हैं तो ये बड़ी ही सातिर और चालाक होती हैं, तो ये कुछ घंटों तक के लिए गायब हो जाएंगी फिर पुनः आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पालतू मधुमक्खी है, हमारे बिहार में जो 99% जो पालतू मधुमक्खी पाली जाती है वो इटालियन प्रजाति की है, और इसका जो अपने बक्से के आसपास जो चर करके यानी पराग और पुष्परस इकट्ठा करने की जो दूरी होती है वो लगभग दूरी 3 किलोमीटर का दायरा होता, तो हमें थोड़ा सा कोशिश रखना यदि अगर संभव हो, और बिरना का अगर आक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे में उसके छत्ते को खोज करके हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अब बात आती है कि गर्मी बढ़ने की वजह से हमें तो इनके बक्सों में यदि अगर इनका जो इनर कवर है उसके नीचे जूट का बोरा यदि अगर हम पानी में भिगो कर करके उसको थोड़ा सा निचोड़ दें, यानी कि हल्का सा नमी रहे, और उस जूट के बोरे को अंतःपट के नीचे लगा कर करके रखना चाहिए, और फ्रेम जितने भी फ्रेम हो बक्से में उनको एक दूसरे से सटा के रखना चाहिए और किसी एक किनारे से, और इस तरह से टाइट रखने से और जो हमने जूट का भीगा हुआ बोरा लगाया उससे तापक्रम मेंटेन करने में इनको सुविधा मिलती है। यदि अगर तापक्रम मेंटेन रहेगा तो इनके जो परिवार का पालन पोषण है इनका खुद का जीवन यापन बड़े ही अच्छे ढंग से गुजरेगा। अब बात आती है कि गर्मी के महीनों में यदि अगर वो किसान भाई जो यदि अगर प्राकृतिक रूप से पराग और पुष्परस की उपलब्धता या ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं तो उनको शहद और पराग का परिपूरक भोजन बना कर करके देना पड़ेगा। तो शहद का अगर पराग परिपूरक भोजन की अगर हम बात करें, जैसा हमने आपको बताया एक और एक के अनुपात में चीनी की मात्रा हमें बक्सों में चीनी की चाशनी बना करके पानी में मिला करके हमें देना चाहिए। ऐसे में सिंपल सा हम आपको साधारण सा बताएं कि गर्मी के महीनों में खास करके एक और एक अनुपात में पानी और चीनी को एक साथ रख करके हमें धीमी आंच पे स्टोव हो, गैस हो, या कोई गर्म करने की विधि हो उसमें गर्म करके थोड़ा सा पका के हमें खौला लेना चाहिए, और खौलाने के बाद जब थोड़ा सा हल्का लगे कम से कम आधे घंटे, अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा अगर आप करते हैं आधे घंटे तो बड़ा बेहतर रहेगा, उसमें ऐसा लगे कि जैसे कभी कभी लगता है ना कि हमने पानी और चीनी में मिला करके उसको खौलाया नहीं तो लगता कभी कभी कच्चा स्वाद जैसा, तो अगर ऐसा हमने छोड़ दिया तो उसमें खट्टापन आ जाता, फर्मेंट कर जाता है तो उससे स्वाद खराब हो जाता और वो नुकसान भी करता मधुमक्खियों को, तो हमें ध्यान रखना कि थोड़ा पका करके, और ये काम हमें करना चाहिए कि सुबह वाले पहर में जो हमारा सुबह का टाइम होता है उसमें हम पका लें, ये चाशनी तैयार कर लें, उसको छोड़ दें थोड़ी देर ठंडा हो जाए शाम के समय, और उसको शाम के समय में हमें बक्से में देना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है कि पराग, यदि अगर हम पराग, जैसा हमने आपको बताया कि पराग जो है उनके लिए प्रोटीन का सोर्स होता है, उनके बच्चे और उनका खुद का अच्छी उनकी वृद्धि विकास होने के लिए पालन पोषण होने के लिए पराग बहुत जरूरी हो जाता है, तो पराग ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन में यानी कि जो भोजनाभाव काल होता है खास करके गर्मी और बरसात में कम हो जाते हैं, तो उनका प्रतिपूरक अगर हम भोजन बनाने की बात करें तो हम आपको एक मात्रा लिखाते हैं, आप अगर आपके पास थोड़ा सा कलम और पेपर अगर आप ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, हम आपको बता रहे हैं कि आप नोट कर लें और इसी रेशियो में अनुपात में आप पराग का परिपूरक भोजन बना कर करके और बक्से में उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे 100 ग्राम पराग का परिपूरक भोजन बनाने के लिए सबसे पहला हम काम करें कि हमारे पास यदि अगर हमें 15 ग्राम जो सूखा हुआ पराग है जिसको हम ऑन सीजन जब हमारा मधुस्राव काल रहता है शहद मिलता उसी समय हमें थोड़ी बहुत मात्रा में पराग जरूर इकट्ठा करना चाहिए, या आपको खरीद के फिर लाइए। अगर आप इस तरह के पराग को नहीं तैयार करेंगे, पूरी तरह से कृत्रिम रूप से देंगे तो उनका अच्छा वृद्धि विकास नहीं होगा, तो ऐसे में हम आपको बता रहे थे आप फिर से नोट करें कि 100 ग्राम का परिपूरक भोजन बनाने के लिए सबसे पहला 15 ग्राम सूखा हुआ पराग लें, फिर उसके बाद में आप 45 ग्राम चीनी की मात्रा लें, उसको महीन रूप से पीस करके पाउडर बना लें, और उसके साथ ही साथ 25 ग्राम सोयाबीन का आटा ले लें, सोयाबीन का जो आटा आता है वो भी आपको बाज़ार से मिल जाएगा उसका आटा ले लें, 10 ग्राम ईस्ट पाउडर आता है बाज़ार में बड़ी आसानी से, किराना की दुकान से ये सभी सामान मिल जाएंगे आप ले सकते हैं 10 ग्राम ईस्ट पाउडर, और फिर उसके बाद 5 ग्राम उसमें दूध पाउडर, वही दूध पाउडर जो हम मेडिकल हाल से खरीदते हैं बच्चों को पीने के लिए खुद के सेवन के लिए वही दूध पाउडर चलेगा, और फिर 2 मिलीलीटर मात्रा जो ग्लिसरीन की वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। इन सब को, ये जितने भी आइटम हमने बताए ये सभी सामग्री को एक कोई भी शीशे का अगर प्लेट हो तो बेहतर होगा या स्टील का कोई भी एक प्लेट पे लेकर करके इन सब को आपस में एक साथ मिला कर करके आपको लगे कि पूरी तरह से मिल गए हों और आटे की तरह गुथ लें, और इस तरह से प्रति बक्से की दर से आप बक्से के अंदर में चाहे वो प्लेट सहित चाहे उनको पेपर पे एक अच्छे पेपर पे रखिए कि ऐसा ना हो कि पेपर थोड़ी देर में गल जाए, और उस तरह से किसी एक ऐसे साधन के साथ में रखें, प्लेट होगा तो बेहतर रहेगा, उसमें रख करके रख दें और इस तरह से वो परिपूरक भोजन आप दें। गर्मी के महीनों में जब हमें, ये बड़ी साधारण सी बात है कि इनकी संख्या कम हो जाएगी तो इनके बहुत सारे फ्रेम खाली हो जाएंगे, तो जब फ्रेम खाली होने लगते हैं ऐसे फ्रेमों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब उसमें मधुमक्खी नहीं है, फ्रेम खाली होंगे, तो ऐसे फ्रेमों को निकाल करके उनको भंडारित कर लें और भंडारित कर करके उनको आप, जब हमारा ऑन सीजन फिर आएगा, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो उस समय उसे पुनः हम निकाल कर करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनका किसान भाई आप नोट करें और ध्यान रखें, यही छोटी छोटी चीज़ों को अपना कर करके ही मधुमक्खी पालन को आप एक तरीके से, अगर हम कहें कि वैज्ञानिक दृष्टि से आप उसको अपना रहे हैं और दूसरा उसको लाभकारी बना सकते हैं। यही छोटी छोटी अगर हम क्रियाकलापें ही इसको आप अनदेखा अनसुना कर देते हैं, आप जानते हैं लेकिन आप नहीं, अगर उसको समय ध्यान नहीं देते हैं तो यही गर्मी के बाद जैसे बरसात आएगा आपका जो खाली पड़ा हुआ फ्रेम है वो 100% 100% पूरा नष्ट कर दिया जाता जो उसके शत्रु होते हैं मोमी कीट द्वारा। और फिर आपको जब ऑन सीजन आएगा, जब जरूरत पड़ता है, तो मधुमक्खियों से हम शहद उत्पादन का काम ना करा करके वो पहले उनको काम करना पड़ता, नए छत्ते का निर्माण करना, इस तरह से वहाँ अगर आप देखेंगे तो उनकी ऊर्जा, अगर आप ऐसे फ्रेम को स्टोर करके उस समय उपलब्ध कराते हैं तो उनकी ऊर्जा को शहद उत्पादन में आप लगा करके बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे शत्रु हैं गर्मी में, खास करके अगर हम देखें जैसे भौरा मधुमक्खी है, बहुत सारी चींटियां हैं, और जो इनके परभक्षी बर्रे हैं, तितैया या बिरना हमने बोला, वो छिपकली है, सर्प मेढक, ये सभी क्या है ना कि इनके बक्से के अंदर के जो तापमान होता है वो मधुमक्खियां मेंटेन करती हैं, थोड़ा काफ़ी ठंडा आरामदायक होता है अगर हम देखें तो। ये जो जानवर है जो जहाँ कहीं भी हमने अपने बक्से को रखा है तो वो उनको महसूस हो जाता है कि इस बक्से में यानी इस घर में राहत मिलेगी, तो वो अंदर आ जाते हैं, जिनके डर से मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं। तो ये छोटे छोटे जानवर का अगर हम नियमित रूप से सप्ताह में या जिस दिन अगर हम भोजन देते हैं, भोजन हमें 4 से 5 दिन के अंतर पर कम से कम देना चाहिए, अगर एक बार भी आप भोजन देने के दौरान बक्से की जाँच पड़ताल कर लेंगे तो आप इनसे आसानी के साथ बचा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जो पूरे साल का सबसे जो कठिन समय होता है, अगर हम देखें मधुमक्खी पालन का जो सबसे कठिन समय होता है, या खास करके जो मधुमक्खी पालक वो जो नए होते हैं, बिल्कुल नए रूप से मधुमक्खी पालक, वो वर्षा ऋतु में ही ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में एक बहुत तरह की, अगर हम देखें छोटी छोटी समस्याएं इकट्ठा हो कर करके एक बहुत बड़ी जटिल समस्या उनके लिए बन जाती हैं, और हम मधुमक्खी पालक भाई ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से कभी कभी वर्षा ऋतु, वर्षा जो बारिश का मौसम होता है, इस समय पूरे बक्से खाली हो जाते हैं। तो इस मौसम में बारिश होने से जहाँ एक तरफ फूलों पर पाए जाने वाले पराग धुल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है ना पुष्प रस का जो उत्पादन फूलों में होता है वो भी प्रभावित होता है, और यदि अगर पराग और पुष्प रस बिल्कुल एकदम नहीं मिलते हैं तब हमें पूरी तरह से कृत्रिम भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यदि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है मधुमक्खी पालक भाई, आपको बताना चाहूँगा कृत्रिम भोजन यानी कि शहद और पराग का परिपूरक भोजन, जैसा हमने आपको पहले बताया गर्म ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में परिपूरक भोजन बनाने के लिए, वही विधि अपना करके आप उसी विधि से आप शहद और पराग का परिपूरक भोजन इसमें उपलब्ध करा सकते हैं
1: जी।
0: इस मौसम में तापक्रम और अगर हम देखें आर्द्रता का उतार चढ़ाव काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर हम देखें और मधुमक्खियां कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से बाहर ही नहीं निकल पाती हैं कई दिनों तक लगातार बारिश होने के समय, क्योंकि मधुमक्खियां दिन में ही बक्से से बाहर निकलती हैं, रात में निकलती नहीं, तो कभी कभी ऐसे बहुत सारे दिन गुजरते हैं कि जिस समय दिन में भी नहीं निकलती हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है मधुमक्खी पालक भाई। किसी भी तरह से हमें बक्सा बहुत ही कम समय के लिए खोल करके और कृत्रिम भोजन ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से समय के अन्युसार तुरंत आप उपलब्ध कराएं, अन्यथा ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मधुमक्खियाँ शरीर में बड़ी होती हैं लेकिन उनके बच्चे वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं, और उनको यदि अगर नियमित रूप से भोजन नहीं मिलेगा तो उनका शरीर, उनके शरीर पे और उनके वृद्धि विकास पे बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और कभी कभी संख्या इतनी कम होगी या ख़त्म ही हो जाती पूरी तरह से। तो जैसा मैंने आपको पूरे सुझाव ऊपर में बताया उनको हमें फॉलो करना है, इसके साथ ही साथ इस मौसम में हमें ध्यान रखना है कि बक्से को मधुमक्खी पालक भाई सबसे पहला तो मधुमक्खी बक्से के नीचे स्टैंड लगा देंगे ताकि सीधे बारिश का पानी कभी भी बारिश हो तो उनके छत बक्से में आसानी के साथ प्रवेश ना करे। और दूसरा बक्से को हमें थोड़ा झुका के आगे की तरफ रखना। आगे की तरफ मतलब कहाँ, जो उनके आगे यानी आने जाने का एक ही रास्ता होता है आप सभी जानते हैं, उनके दरवाजे की तरफ का जो साइड है उसको आगे की तरफ झुका के रखना ताकि बारिश का पानी या जो छींटे हैं बूंदे हैं वो बक्से पे अगर आए उनके तलपट पे तो वो अंदर में ना जा करके सीधे नीचे गिर जाएं ताकि बक्से में पानी भी किसी भी तरह से किसी भी तरीके से प्रवेश ना कर पाए, उससे हमें हम बचा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और इस मौसम में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि अगर बक्सों के आसपास में थोड़ी बहुत अगर घास फूस कुछ हो गई है उसकी साफ सफाई हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि ये घास फूस जो भी वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे या पत्तियाँ या कुछ भी बरसात की वजह से ये उनके जो शत्रु हैं उनको पलने पोसने के लिए एक तरीके से सुविधा उनको उपलब्ध कराते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है या वहाँ पे कोई भी जीव जंतु आसानी के साथ रह सकता है जो मधुमक्खियों के क्रियाविधि या आवागमन में अवरुद्ध एक तरीके से उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बरसात के महीनों में कभी कभी हमारे पास पुराने बक्से होते हैं तो कहीं कहीं कोने में या किसी साइड में कोई उसका जो बहुत सारे ये तो छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है तो जो ज्वाइंट पोर्शन होता है उसमें कहीं कहीं स्पेस बन जाते जगह बन जाते हैं ऐसी जगह को या कहीं सोड़ा हुआ कोने में कहीं सड़ा हुआ पोर्शन, तो ऐसे सब जितने भी छेद और छिद्र हमें दिखाई दें बक्से को उसे या तो हमें कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का लेप लगा करके या लकड़ियों से ही उसे हमें रिपेयरिंग कर दें या मिट्टी का लेप लगा करके उन सबको बंद कर दें ताकि उस रास्ते से ना पानी जाए ना उनके शत्रु जाए कोई भी उधर से प्रवेश ना कर पाए। और बरसात के महीने में और भी ध्यान रखना कि इस समय भी जब भी हमारा खाली जो फ्रेम हो रहा है बिना मधुमक्खी के उसे फ्रेमों को तत्काल तुरंत निकालें और उनको भी पैक कर दें, उनमें थोड़ी सी भी लापरवाही ना करें अन्यथा वो मोमी पतंगा लग कर करके कभी कभी मोमी पतंगा जो मोम को खाने के लिए जो उनका सीट होता है उनका छत्ता होता है उसको तो खाएगा, कभी कभी जो लाइव जहाँ जीवन मधुमक्खियाँ पल पोस रही हैं उन पर भी उनके आक्रमण की वजह से मधुमक्खियाँ उस बक्से को छोड़ करके घर से बाहर चली जाती हैं जिसको हम चुट भी करते हैं। तो इन सब परिस्थितियों से हमें बचाना है और हमें छोटा सा और एक ध्यान रखना है कि कभी कभी जहां हम अपना बक्सा रखते हैं वहां आसपास में नज़दीक में कोई अगर बाजार है मिठाई की दुकान है तो उन मिठाई की दुकानों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए चूंकि भोजन के अभाव में ये मिठाई की दुकानों पर जाती हैं और वहां उनकी चाशनी में कभी कभी बहुत सारी मधुमक्खियाँ गिर के मर जाती हैं या पूरी तरह से डूब करके वहां से लेकर के आती हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि उन मिठाई की दुकानों से जब ये चाशनी लेकर के आती हैं ना तो उनके जो अपने ही शत्रु समुदाय के जो शत्रु होते हैं खास करके अगर हम देखें विभिन्न प्रकार के बिरना या भावरा मधुमक्खी ये सब उनके माध्यम से उन मधुमक्खियों के माध्यम से उनको रास्ता मिल जाता कि ये कहाँ जा रही हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो खोज करके वहां पहुंच जाती हैं और उनके छत्ते में एक तरीके से आक्रमण कर देती हैं। एक बड़ी विशेष जानकारी आप लोगों को बताऊं कि इन मौसम में इन खास करके इस मौसम में बारिश के मौसम में हम आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी परिवार कमजोर हो जाता है तो जब कमजोर हो जाता है ऐसे में पेपर विधि या अन्य किसी विधि से कई एक या दो दो या तीन कमजोर मधुमक्खी परिवारों को पेपर विधि या अन्य विधियों से मिला करके एक मजबूत परिवार बना देना चाहिए ताकि वो मजबूत परिवार ही कुछ दिनों तक टिक रखेगा। नहीं तो होता क्या है कि जैसे मधुमक्खी परिवार कोई भी कमजोर होगा ना तो वो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोरी फील करने लगता है और बहुत सारे जो उनके एक तरीके से नियमित रूप से जो उनकी जिम्मेदारियां हैं और जो ज़रूरत है वो ना पूरी होने की वजह से कभी कभी मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर होकर के भी वो बक्से को छोड़ करके भाग जाती हैं। और बीच बीच में हमें ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु में जो उनके बक्से के तलपट की सफाई करते रहना और थोड़ा सा इस मौसम में हमें उनको स्टरलाइज करते रहना कीटाणु रहित करते रहना है। और इस मौसम में यदि अगर हमें ज़रूरत है चूँकि हम सभी जानते हैं कि कभी दिन के एक ही दिन में कभी तेज़ धूप होती है कभी बारिश हो रही तो कभी अचानक तो जो इतना उतार चढ़ाव आता है उसके लिए हमें बक्से के अंदर का तापक्रम बनाए रखने में मधुमक्खियों को मदद करनी होगी। कैसे, जूट के बोरों का वर्षा काल में भी हमें प्रयोग करना है, भिगा करके थोड़ा सा उनसे पानी निचोड़ दीजिए और सूखा इस तरह से दे दीजिए। तो इस तरह से बताई गई बातों को यदि अगर हमारे किसान मधुमक्खी पालक भाई आप ध्यान में रख करके मधुमक्खी बक्सों का अगर मौसम के अनुसार पूरे वर्ष भर रख रखाव करेंगे, देख रेख करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो व्यवसाय है वो सशक्त और सुदृढ़ रहेगा और आप अगले आने वाले अगला जो सीजन रहेगा, जो आपका ऑन सीजन रहेगा मधुमक्खी शहद उत्पादन का जो काल रहेगा, उससे आप अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।
1: जी, तो किसान भाइयों और मधुमक्खी पालक जो हमारे भाई हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिली। विस्तार में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप कैसे ऋतुवार आप मधुमक्खियों का प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे उनकी देखरेख कर सकते हैं, उनका भोजन बना सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि आप आय अर्जित कर सकते हैं। शहद की मांग जो है बाज़ार में आप बढ़ गई है और मधुमक्खी पालन भी व्यापक हो गया है इस वजह से कि शहद बेचा जा रहा है। और इसके साथ ही आज बहुत अच्छी जानकारी मिली डॉक्टर साहब से, हम धन्यवाद कहना चाहेंगे आपको। और इसके साथ ही फिर मुलाकात होगी आप सभी से। श्रोताओं सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है, और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं। और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है। और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे, तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, ना सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए आपकी बेटी आपकी बहन इंजीनियर बन सकती हो और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, दो हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डायमेथो 8 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ऋषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं 90.8 एफएम ग्रीन, जो कि आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के लिए उन्नत कृषि कार्यक्रम में खास विषय लेकर आए हैं। आज हम प्राकृतिक खेती के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक खेती करना हमारे लिए आज कितना गुणकारी है, कितना लाभदायक है, और किसान भाइयों को इस बात को समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एके मौर्य। मैं आप सभी को बता दूं, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट केवीके सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में बता दें हमारे श्रोताओं को।
1: आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी है। जैसा कि हरित क्रांति जब आई, उस समय जो है हमारे पास अनाज का उत्पादन कम होता था, खाद्यान्न कम था, भुखमरी का नौबत था। उस समय हरित क्रांति के लिए हम लोगों ने अच्छे अच्छे प्रभेद निकाले, उसके सिंचाई के साधन निकाले, उसमें बहुत सारा कीट प्रबंधन निकाले, उर्वरक का प्रयोग किए। लेकिन उसका आज जो है अंधाधुंध कृषि के कार्यों में जो है हम अगर बात करें तो कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन वातावरण सब प्रदूषित होते जा रहा है। ज़मीन में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक खेती इसलिए और आवश्यकता पड़ रही है कि अब जो रासायनिक खेती हो रही थी उसका उत्पादन अब सस्टेन हो गया, मतलब उसका उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, उसके उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो दोनों बिंदुओं को लेकर के एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी हो, हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो और उत्पादन भी ना घटने पाए, तो इसीलिए प्राकृतिक खेती का जोर दिया जा रहा है।
0: जी, अभी तो आपने बताया कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें प्राकृतिक खेती की, लेकिन अगर हम बात करें इससे लाभ की, तो क्या क्या लाभ मिलता है हमें
1: प्राकृतिक खेती से। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि जो हमारी रासायनिक खेती हो रही थी, पहला महत्वपूर्ण लाभ तो यह है कि उसमें जो हमारे जो चाहे मानव हो या पशु हो, उससे बहुत सारी रोगों से ग्रसित, बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हम रासायनिक खेती करते हैं उसका अवयव जो है उस खाद्यान्न में, भोजन में आने की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है। नंबर एक। नंबर दो है कि हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। नंबर तीन, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है। नंबर चार, कि जो हमारा जरा सी पानी अगर बरसात होती है तो तुरंत वो पानी जो है खेतों से बहने लगता है। इसलिए मतलब बहने का कारण यह है कि खेत में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम रह गई है, पानी न बरसने पर भी उसमें जो है सूखा की नौबत तुरंत आ जाती है। इसीलिए जो है ये सारे लाभों को देखते हुए इसमें जो है ये पूरा किया जाता कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, उत्पादन करने की क्षमता हमारी अच्छी हो जाएगी, जो भी हमारा उत्पाद होगा गुणवत्तापूर्ण होगा, मिट्टी की दशा सुधार होगी। जैसे अगर मिट्टी की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन में बहुत बहुत तेज़ी से जो है उसमें मतलब सुधार होता है, जो कि और अन्य खेतियों में इसका इतना अच्छा लाभ नहीं है। रासायनिक खेती में तो प्राकृतिक मतलब कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है सुधारने की कोई बात ही नहीं होती है। अगर हम बात थोड़ा अगर कर लें कि कार्बनिक खेती में, तो बहुत लंबा समय लगेगा कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए।
0: जी, ये तो लाभ की बातें होंगे, लेकिन अगर अंतर की बात करते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में, तो दोनों बिल्कुल सेम जैसा लगता है सर, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों में?
1: आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहा। किसान भाई ये बड़ा कंफ्यूज करते होंगे, दोनों में बड़ा शंका रहता होगा कि प्राकृतिक खेती क्या है और हमारा जैविक खेती क्या है। जैविक खेती एक तो यह है कि जो है उसमें हम भी जैविक खेती में भी हम कोई भी रसायन का प्रयोग नहीं करते हैं, ना किसी भी रूप में हम ना कोई कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, ना कोई फफूंदनाशक का प्रयोग करते हैं, ना कोई केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और ना ही कोई निमाटोड को मारने के लिए कोई दवा का प्रयोग करते हैं। तो हम कहने तो किसी भी रूप में हम कोई उसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते, यहाँ तक कि उसमें जो हमारा जैविक खेती है उसमें भी कोई जो है हमारा जो हार्मोन है बाहर से वो भी यूज करने को नहीं कहा जाता है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती में भी लगभग यही है, लेकिन अंतर थोड़ा सा, जैसा कि अगर जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती में बाहर से ला करके कोई भी जीवाणु या विषाणु का हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्राकृतिक खेती में बात करें तो उसमें हम लोग जो है ये एस्टोबैक्टर, पीएसबी, राइजोबियम, एजोस्पाइलम या ब्लूग्रीन एल्गी, ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि कार्बनिक खेती में, जैविक खेती में इसका प्रयोग करने की अनुशंसा होती है। इसीलिए जो है ये इस दोनों में मेन अंतर है। दूसरा कि अगर हम प्राकृतिक खेती की अगर बात करें, कहा जाता है कि एक गाय से 30 एकड़ खेती की जा सकती है, लेकिन अगर हम एक एकड़ खेती जैविक तरीके से करते हैं, मान लीजिए अगर हम एक एकड़ गेहूं लगाए हैं तो औसतन एक एकड़ गेहूं के लिए हमको 40 से 50 किलो नाइट्रोजन का आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए लगभग हमको 8 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद कंपोस्ट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मवेशी गाय या भैंसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक मवेशी एक दिन में 8 से 10 से 15 किलो तक ही गोबर दे सकते हैं। तो कहने के मतलब कि एक एकड़ खेती करने के लिए किसान भाई अपना परिवार पालेंगे कि उस खेती के लिए 20 से 25 जो है मवेशी पालेंगे। इसीलिए एक ऑप्शन तो ये देखा गया था कि रासायनिक खेती के बाद में एक जो है जैविक खेती के रूप में, लेकिन जैविक खेती भी जो है रासायनिक खेती से कम महंगा नहीं है, अगर देखा जाए उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसके जो भी उसके कुछ उत्पाद बाहर भी खरीदने पड़ते हैं और इतना कंपोस्ट देना, वर्मी कंपोस्ट भी अगर बात करें तो ये भी जो है कंपोस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है, जो किसानों के लिए संभव नहीं हो पा रहा, जो बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। और अगर प्राकृतिक खेती की बात करें तो शुरुआती दौर में अगर आपके पास एक ही गाय है तो 8-10 एकड़ आप खेती आराम कर लेंगे, लेकिन 4-5 सालों बाद आप एक ही गाय से आप जो है 30 एकड़ तक खेती कर सकते हैं। इसलिए कि एक एकड़ खेती के लिए जो भी हम उसमें उसका जो प्राकृतिक उत्पाद बनाएंगे उसमें हमें 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गौमूत्र की आवश्यकता होती है, जो औसतन एक गाय हमें प्रतिदिन देती है। और प्राकृतिक खेती में हम जब भी प्रयोग करेंगे देसी गाय का ही गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करेंगे, किसी भी कीमत पर भैंस का, भेड़ का, बकरी का या जर्सी गाय का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए कि जो हमारा देसी गाय है, देसी गाय में जो कीटाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, 1 ग्राम में 300 से 400 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन हमारा जो है जो विदेशी गाय हैं, जो जर्सी है या होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसमें 1 ग्राम गोबर में 75 से 80 हज़ार ही जो है कीटाणु या जीवाणु सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं 1 ग्राम के गोबर में। तो इसीलिए देसी गाय का ही गोबर ज़्यादा प्रयुक्त माना जाता है प्राकृतिक खेती में।
0: डॉक्टर साहब, अभी प्रमुख स्तंभ की बात करें तो प्राकृतिक खेती के प्रमुख स्तंभ क्या क्या है?
1: अगर हम प्रमुख स्तंभ की बात करें जिस पे हमारा प्राकृतिक खेती जुड़ा हुआ है, तो इसमें 3-4 मतलब कि कुछ प्रमुख स्तंभ हैं। नंबर एक हमारा जो बीजामृत है, बीजामृत हमारा यह है कि जैसे हम रासायनिक खेती में बीज उपचार करते हैं, उसी तरह से बीजामृत से हम जो है बीज उपचार करेंगे। दूसरा है जीवामृत। जीवामृत जो है आप खेत के जमीन में, खेत में जो हमारे जीवाणु हैं, जो कीटाणु हैं, जो केचुए हैं, उसकी संख्या को बढ़ाने काम करता है। प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि हमें प्राकृतिक खेती में जीवाणु सूक्ष्म कीटाणु या केचुए की खेती कही जाती है, इसलिए हमेशा हम लोग जो है उसके जो संख्या उसकी बढ़ाने की बात करते हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग जीवामृत का प्रयोग करते हैं और उसके कुछ पोषक तत्व के लिए उससे भी संख्या बढ़ती है, हम घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो हमारा है मल्चिंग है। मल्चिंग में प्लास्टिक मल्चिंग का नहीं, फसल अवशेष का ही मल्चिंग उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसल अवशेष मल्चिंग हम इसलिए बात करते हैं कि जो है जो हमारे केचुए हैं, केचुए की संख्या बढ़ाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में जो केचुआ प्रयोग किया जाता है वो हमारा विदेशी केचुआ होता है, लेकिन प्राकृतिक खेती में जो अपने भारतीय मृदा में जो केचुआ पाए जाते हैं, जो देसी केचुए पाए जाते हैं, वो उनका जो संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है और उसकी संख्या हमको बढ़ाना है। उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम जो है जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग करेंगे और मल्चिंग का जब प्रयोग करेंगे तो आप देखते होंगे केचुआ सामान्य रूप से दिन में नहीं निकलता है, इसलिए नहीं निकलता है कि दिन में निकलेगा तो उसको डर रहता है कि कोई चिड़िया पक्षी या कोई कीट मकोड़े जो है उसको खा जाएंगे, इसीलिए वो रात निकलता है। अगर मल्चिंग अगर कर देंगे ऊपर से तो उसको लगेगा कि अभी अंधेरा है, रात है, का दिन को भी हम लोग रात में अगर बदल देंगे तो वो केचुआ जो है दिन रात दोना समय में काम करके आपके खेत में 10 से 15 फीट तक जो है वो आने जाने का काम करेगा, अपने भोजन के तलाश में ऊपर नीचे आया जाएगा, जिससे मिट्टी की आपकी जुताई हो जाएगी और उससे पानी की रोकने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएंगे और मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी, साथ साथ जो है वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ हो जाएगा और उत्पादन भी अच्छा बढ़ेगा। और अगला जो हमारा स्तंभ है वापसा, वापसा मतलब कि जल प्रबंधन, कभी भी जो खेत में हमको ढाला पानी नहीं देना है, सतही सिंचाई नहीं करना है, उसमें पानी भर के नहीं रखना है, इसीलिए उसको जो है हमें जब भी वो प्राकृतिक खेती में मेड़ पानी देना है या कम से कम पानी देना है। पानी, पौधों को पानी नहीं चाहिए, पौधों को नमी चाहिए। जैसा कि अगर आप जो है आलू की खेती करते हैं या गोभी बैंगन टमाटर खेती करते हैं, उस पर अगर मेड़ नहीं बनाते, अगर सीधा पानी देते हैं तो पौधा की फसल खराब होती है। वही सिद्धांत को किसान भाई मानते हुए सभी फसल में जो पौधे को कल नमी देना चाहिए, ज़्यादा पानी देने पर वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी होगी और जीवाणु जो कीटाणु है वो मर जाएंगे और उससे जो है उत्पादन भी आपका घट जाएगा। तो ये आपका जो है ये आप कर सकते हैं। तीसरा और जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु उसका स्तंभ है वो है इंटरक्रॉपिंग, सस्य फसलें। प्राकृतिक खेती में हमेशा एक फसल ना उगा करके दो या तीन फसल उगाना चाहिए, अपनी फसल को किसान भाई जोखिम में कभी ना लें, जोखिम नहीं उठाना चाहिए, साथ में हमको दो या तीन फसल को लगाना चाहिए, क्योंकि दो फसल लगाने से एक फसल किन्हीं कारणों से अगर ख़राब हो गई तो दूसरी फसल हमारी बच जाएगी। और इसमें यह भी है कि अगर कोई अगर रोग कीट लगता है एक फसल पर तो इस तरह से हमको चयन करना चाहिए।

0: को ध्यान रखते हुए एक समान जनरेशन हो, हमारा पौधा जो भी जमे वो जो है बलशाली हो, इसको देखते हुए हम लोग इसको इसका भी बीज उपचार करते हैं, जिसके लिए बीजामृत का प्रयोग करते हैं। और बीजामृत बनाने के लिए हमें जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो किसान भाई अगर अपना नोट करना चाहें, कलम रखे हों, कागज़ कलम रखे हों, तो उसको नोट भी कर सकते हैं। उसके लिए प्राकृतिक खेती में हमेशा ध्यान है, कोई भी आपको बनाने कोई भी प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले जो भी उसमें अवयव हैं उसका उसके प्रयोग के लिए देसी गाय का ही गोबर या गौमूत्र प्रयोग होगा, दूसरा नहीं होगा। दूसरा, प्राकृतिक खेती में कहा जाता है कि मिट्टी प्रयोग करना है, तो मिट्टी के लिए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मिट्टी ले रहे हैं किसी पेड़ के नीचे की हो, जहाँ पर वनस्पतियाँ सड़ कर करके वहाँ पर जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ गई हो और वहाँ कोई केमिकल कभी भी मतलब काफ़ी दिनों से प्रयोग ना हुआ हो, ताकि वहाँ पर जो सूक्ष्म जीवों की संख्या ज़्यादा हो। मिट्टी इसलिए लेते हैं कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव जाएंगे और हम उसी मिट्टी में जो है मिट्टी के भरोसे जो है उस मिट्टी के माध्यम से जो है हम चाहे बीजामृत से या घनजीवामृत से या जीवामृत से जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएंगे। तो ये किसान भाई विशेष ध्यान दें, जो मिट्टी ले उसमें जीवाणु, ये निश्चित माने कि उसमें जीवाणु जो हमारे जिंदा है, और ऐसी जगह से ले जहाँ पर कोई केमिकल ना पड़ा हो लंबे समय से। तो मिट्टी लेने में ये ध्यान रखेंगे किसान भाई हमारे, इसके लिए जो हमारे जो पीपल है, बरगद है या बांसकोट के जमीन का है, या कहीं कोई रास्ता है जहाँ कोई जो है केमिकल नहीं पड़ा, रास्ता की मिट्टी ले लें। उसके अलावा जो हमारा मेड़ चौड़ा मेड़ 20 से मिट्टी ले लें कि वहाँ वनस्पतियाँ लेकिन सड़ती हों, ये ध्यान रखें। तो मिट्टी लेना है तो इसके लिए बीजा हमको क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो उसको नोट कर लें, गोबर 5 किलो, गौमूत्र 5 लीटर, चूना बुझा हुआ चूना 50 ग्राम और पानी जो है 20 लीटर हो, और उसमें जो 50 ग्राम 102 मिट्टी जो है हमें मिट्टी भी होना चाहिए लगभग 150 से 200 ग्राम। इस सबको एक प्लास्टिक के डिब्बा में मिला करके इसको रख दें और इसको रख करके 12 से 14 घंटा इसको हिला घुला के रख दें। उसके बाद इसको जो है हम जब ये तक 10-12-24 घंटे बाद हम इसको जो है 100 किलो बीज के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। बीज पे मिला करके छाया में जैसे उसमें सुखाते हैं, उसमें छाया में सुखा करके उसका उपचार कर सकते हैं। तो ये हुआ बीजामृत, जिससे हम अपना बीज उपचार कर सकते हैं।
1: उन्नत कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्व

0: विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
1: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। तो अभी हम प्राकृतिक खेती की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं डॉक्टर एके मौर्य से। आइए प्राकृतिक खेती के दूसरे भाग में और बातें जानते हैं डॉक्टर साहब से। प्राकृतिक खेती में पौधों को कैसे पोषक तत्व दिया जाता है डॉक्टर साहब?
2: हाँ, जैसा कि अभी पहले बात करते हैं, प्राकृतिक खेती में हम जो है पोषक तत्व देने के लिए दो चीज मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं, जीवामृत, नंबर दो घनमृत। तो जीवामृत जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में तरल रूप में होता है, और इसको हम सिंचाई के माध्यम से जब पानी जा रहा होता है तो पानी जहाँ पाइप खोलते हैं वहीं पर जो है ऊपर एक ड्रम में भर के रख देते हैं ताकि उसमें बूंद बूंद गिरते जाए, पूरे खेत में जीवामृत जो हमारा फैल जाए। दूसरा है कि हम जीवामृत को पानी में घोलकर उसको स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए एक एकड़ स्प्रे करने के लिए 200 लीटर जीवामृत की आवश्यकता होती है, तो इसका हम लोग जो है स्प्रे के रूप में कर सकते हैं। अब ये बात होती है जीवामृत बने कैसे। जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय का गोबर ताज़ा होना चाहिए। गोबर सब जितनी बात करें, गाय का गोबर या मूत्र जो है ताज़ा होना चाहिए। बीजामृत में जो है पुराना गौमूत्र प्रयोग कर सकते हैं, हफ्ता तक जो है पुराना, 10 दिन तक पुराना प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बीजामृत जीवामृत बनना है या घन जीवामृत बनना है उसमें हमेशा जो है ताज़ा गोबर और ताज़ा गौमूत्र ही हमको प्रयोग करना है। किसान भाई इसको विशेष ध्यान रखें, कहने का मतलब कि 2-3 दिन तक इसको हमें प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा पुराना हो जाएगा तो वहाँ पर वो जीवाणुओं की संख्या हमारी घट जाएगी, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। तो गाय का गोबर 10 किलो, गौमूत्र 5 से 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो। बेसन किसी भी दलहन का हो अच्छा है, लेकिन अगर उसमें चने की दाल का अगर मिल जाता है बेसन तो बेहतर माना जाता है। और 100 लीटर पानी, और उसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है हम ये जो मिट्टी बताए थे मिट्टी को लेकर उसको मिला देंगे, मिला करके कोई प्लास्टिक के ड्रम में। इसमें एक चीज़ और किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो भी हम पात्र प्रयोग कर रहे हैं प्राकृतिक खेती में, लोहा या जस्ता एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई प्लास्टिक का डिब्बा हो जो हमारा 150-200 लीटर कैपेसिटी का हो, तो उसमें सारी चीज़ें मिला करके और 3 दिन के लिए उसको रख देंगे। रखने के बाद उसको सुबह शाम डेली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 मिनट तक घुमाएंगे। घुमाने का मतलब यह है कि ऊपर से नीचे तक अच्छे से वो मिल जाए, और इसको ऊपर से जूट के बोरा से ढक के रखना चाहिए। जूट के बोरा से ढक के मतलब यह है कि उसमें कहीं कोई छिपकली कहीं ना गिर जाए, कहीं कोई उसमें साबिच्छू न गिर जाए, तो ये सब चीज़ ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई चीज़ गिरने न पाए। और प्लास्टिक से कभी उसको नहीं बांधना है, जूट के बोरा से, इसलिए उसमें ऑक्सीजन जाती रहे और उसमें कीटाणुओं की संख्या बनती रहे, बढ़ोतरी होती रहे। तो ये जो है जीवामृत समान रूप से तीन से चार दिन में जो तैयार हो जाता है। गर्मी के समय में, अब ये है कि कितने दिन को प्रयोग कर लेना है, गर्मी के समय में बनने के मतलब कि 3 दिन में बन गया, बनने के 3 दिन के बाद 7 दिन तक उसको गर्मी के समय में हमको प्रयोग कर लेना है। अगर ठंडा का समय है तो वो हमको 8 से 10 से 15 दिन तक प्रयोग कर लेना है, इसलिए कि ये जीवाणुओं की संख्या फिर धीरे धीरे घटने लगती है। तो जैसा कि बताया, इसको हमें स्प्रे के रूप में और जो है ये ज़मीन में सिंचाई के समय भी इसको देकर हम दे सकते हैं। जैसे आपको लगे कि हमारी फसल में पीलापन पड़ रहा, कुछ हो रहा है, तो तुरंत आप जो है जीवामृत का जो है छिड़काव या पानी के साथ आप दे सकते हैं। ये पोषक तत्व के रूप में ये जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाता है, जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसमें पोषक तत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और अगला है पोषक तत्व रूप में घन जीवामृत। घन जीवामृत को क्या करेंगे कि गाय का ताज़ा गोबर लेंगे, 100 किलो गोबर लेंगे, 1 किलो जो है गुड़ लेंगे, 1 किलो बेसन लेंगे, 2.5 से 3 लीटर जो है गौमूत्र लेंगे और 250 ग्राम मिट्टी लेंगे। ये सब को क्या करेंगे कि अब गुड़ को, बेसन को और जो हमारा गौमूत्र है किसी प्लास्टिक के बर्तन में बाल्टी में इसको अलग मिला लेंगे, और 100 किलो गोबर को, ये 1 एकड़ के लिए हम बता रहे हैं, एक इसको बना करके 100 किलो गोबर को जो है हम किसी पॉलीथीन पर या फर्श पर इसको फैला देंगे। फैला करके ऊपर से जो हम ये बना लिए हैं जिसमें गुड़ है, बेसन, ये सब घोल लिए हैं गौमूत्र साथ में, इसको ऊपर से छिड़क करके अच्छे से इसको मिला देंगे। मिला करके इसको क्या करेंगे, हम एक के रूप में छोटा छोटा बाल बना करके इसको रख लेंगे और ये 10 दिन में, बनाने के 10 दिन में ये जो है तैयार हो जाता है। और तैयार होकर के इसको आप 6 महीना तक इसको प्रयोग कर सकते हैं। बनाने का 10 दिन के बाद से आप 6 महीने तक इसको प्रयोग कर सकते हैं और ये बुआई के समय खेत में डालना चाहिए। बुआई के समय इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब बुआई करें तो उसमें खेत में डाल के इसको मिलाना है, खेत में मतलब तुरंत दे देना है और इसको हमको बारीक पीस लेना है। अगर मान लें मशीन से बुवाई कर रहे हैं तो उसको बारीक पीस करके जहाँ पर हम लोग फर्टिलाइजर डालते थे उस चैम्बर में हम घन जीवामृत का प्रयोग करके हम बुवाई कर देंगे। हाँ, एक चीज़ और बीच में बताना आपको भूल गए थे कि प्राकृतिक खेती में ज़्यादा जुताई नहीं करना है। प्राकृतिक खेती में कम से कम जुताई या ना जुताई, जिसको जीरो टिलेज या मिनिमम जुताई कहते हैं, उतना करना है। ज़्यादा जुताई करने पे पोषक तत्व जो है वहाँ से उड़ जाते हैं। और जब भी आप जुताई करिएगा देखते होंगे कि खेत के पीछे कुछ पक्षी, बगुले, कौए घूमा करते हैं जो हमारे मित्र कीट को जैसा कि केचुआ वगैरह खा जाते हैं। तो इसीलिए हमें जुताई कम करना चाहिए, जहाँ तक संभव कम से कम जुताई करें। तो इस तरह से हम जो है अपना घन जीवामृत बना करके और हम इसको दे सकते हैं। शुरुआती जब हम खेती शुरू करते हैं प्राकृतिक खेती, तो एक एकड़ में अगर हम 4 से 5 क्विंटल भी देते हैं कहीं नुकसान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3-4 साल बाद जो है एक एकड़ में हमको 1 क्विंटल बहुत ही पर्याप्त होता है। तो इस तरह हम कर सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, अंत में प्राकृतिक खेती में रोग और कीट प्रबंधन कैसे करते हैं?
2: हाँ, रोग और कीट का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि हम लोग चलो ठीक है कि इस तरह करके अपनी फसल को उगा लेंगे, सब पोषक तत्व मिल गया, केचुआ आ गया होगा, लेकिन रोग कीड़े बहुत लगते हैं। आप ये भी जानिए कि जो हम लोग बीजामृत हुआ या जो है जीवामृत हुआ, इस प्रयोग करने से स्वतः ही कीड़े मकोड़े रोग उस पौधे में कम आएंगे, क्योंकि उसको खाने में वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें जो कीड़ा या रोग रोकने के जो विधियां हैं वो किसी कीड़े को या किसी कीट को मार नहीं पाएंगे, केवल केवल उसको भगाने का या ना आने का संकेत ही देंगे कि इसको मत खाइए। कहने का मतलब कि आपके खेत में उस खेत के आसपास मित्र कीटों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी फसल अच्छी होती जाएगी। इसके लिए जैसा कि कोई रोग लगता है, कोई फफूंद रोग लगता है, तो उसमें जो हमारे पास खट्टी दही की मट्ठा हो, जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं, तो खट्टा हो, खट्टा ही प्रयोग होगा इसमें। तो 2 लीटर खट्टा मट्ठा को 200 लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार फसल के ऊपर हम छिड़काव करते रहेंगे, इससे जो भी फफूंदजनक रोग है वो नहीं लगेंगे। दूसरा, अगर ये रोग के लिए ही एक है कि सौंठा मृत बना के भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कीड़ा की अगर बात करें, कीट ना लगे, तो कीट के लिए 2-3 तरह के इसमें जो है अवयव बना करके हम प्रयोग कर सकते हैं। पहला है नीमास्त्र। जितने कीड़े हमारे चूसने वाले हैं, जितने कीड़े हमारे जो चूसने वाले हैं, चाहे उसमें एफिड हो, जैसिड हो, मिलीबग हो, थ्रिप्स हो, व्हाइट फ्लाई हो, जिस मतलब ये सारे कीड़े, मतलब जिसको माहू लाही बोलते हैं, ये सारे कीड़े जितने चूसने वाले हैं, इसके लिए नीमास्त्र जो है बहुत अच्छा काम करता है। और संभवतः हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि नीमास्त्र ही प्राकृतिक खेती में बहुत अच्छा काम करेगा, अगला दूसरा जो है वह डालने की आवश्यकता ना पड़े। तो नीमास्त्र बनाने के लिए क्या है कि 5 किलो जो है नीम की ताजी पत्ती, अगर ताजी पत्ती ना मिले तो 5 किलो जो है नीम की खली, इसको हम क्या करेंगे, कूट लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे, क्रश करके उसको प्लास्टिक के डिब्बा में 100 लीटर पानी में मिला देंगे, मिला करके उसमें 5 लीटर जो है गौमूत्र डालेंगे, 5 लीटर गोबर डालेंगे, 1 लीटर गौमूत्र डालेंगे और उसको जो है अच्छे से 2-3 मिनट तक मिलाएंगे। और इस ड्रम को जो है फिर 2 दिन के लिए जो है हम ऊपर से कोई कपड़ा या जूट का बोरा बांध के रख देंगे और इसके बाद इसको हम छान लेंगे, मतलब लेकिन इसको सुबह शाम इसको घुमाने काम करेंगे। इसको छान करके जो है अब हम 100 लीटर पानी में जो हमारा ऊपर दवा बन गई, जो नीमास्त्र बन गया है, 2.5 से 3 लीटर दवा को मिला करके अपनी आवश्यकता अनुसार एक एकड़ में छिड़काव करते रहेंगे। मतलब 100 लीटर पानी में 2.5 से 3 लीटर जो है नीमास्त्र बना करके हम छिड़काव करते रहेंगे और इसका भी जो है हम अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है अग्नियास्त्र। अग्नियास्त्र में जो कीड़े काटने वाले हैं उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है कि जैसे हमारा मैंगो स्टेम बोरर हुआ, ये फ्रूट बोरर हुआ, कैटरपिलर हुआ, ये सब के लिए जो है हमारा अग्नियास्त्र हम प्रयोग करते हैं। तो अग्नियास्त्र में हम क्या क्या हमको सामग्री चाहिए और उसको कैसे बनाएंगे, तो सामग्री जो किसान भाई नोट कर रहे हैं उसको नोट भी कर लें। उसके लिए सामग्री चाहिए नीम का पत्ता, ताज़ा नीम का पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और गौमूत्र। इसकी मात्रा कितना कितना है, मात्रा है हरी मिर्च जो है 500 ग्राम, उसका 5 किलो नीम का पत्ता, दोनों को हम क्या करेंगे कूट लेंगे और एक ड्रम में इसको जो है 20 लीटर गौमूत्र को साथ इसको मिला देंगे। मिला करके इसको 20 मिनट, सॉरी डिब्बा नहीं होगा, पहले डिब्बा नहीं होगा, ये कोई बर्तन होगा, बर्तन अगर तांबा मिल जाए तो बेहतर है, तांबा नहीं तो इसको स्टील प्रयोग कर सकते हैं, और इसको 20 लीटर जो है गौमूत्र उसमें मिला देंगे और इसको 20 मिनट तक उबालेंगे, करें तो बढ़िया इसको उबाल देंगे, उबाल करके खूब अच्छे से जो है ठंडा कर लेंगे, मतलब 1-2 दिन में नॉर्मली ठंडा हो जाए और इसको छांद करके इसको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करके हमारा अब ये जो है अग्नियास्त्र जो है बन गया। बनने के बाद इसको हमें प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग उसी तरह करना है जैसा कि हम नीमास्त्र प्रयोग करते थे। नीमास्त्र का कैसे प्रयोग कर सकते थे कि 2.5 से 3 लीटर दवा को हम 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करते थे, आवश्यकता अनुसार देख करके कीड़ा आने के पहले जब संभावना उससे पहले स्प्रे कर देते थे। वैसे अग्नियास्त्र को भी 2.5 से 3 लीटर दवा को 100 लीटर पानी में मिलाकर हम इसका छिड़काव करते हैं और इसका जो अस्त्र है नीमास्त्र है अग्निस्त्र है इसका सेल्फ लाइफ जो है लगभग 4 से 6 महीना होता है। तो किसान भाई ने सोचे एक बार बना लिए 10 दिन में उनको ख़त्म करना है, केवल 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म करने में केवल आपका जीवा मृत है, बाकी की सप्लाई भी अच्छी है, 6 दिनों का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगला आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में जो है हम लोग क्या करते हैं उसमें 3 किलो नीम का पत्ता लेते हैं, 2 किलो करंज का पत्ता लेते हैं, करंज का पत्ता नहीं मिल रहा है तो 5 किलो जो है नीम का पत्ता ले लेते हैं, इन दोनों क्या करते हैं कोट लेते हैं, कोट करके फिर वही किसी तांबे के बर्तन में मिल जाए बेहतर है तो स्टील के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में उसको ले लें, फिर उसमें 2 किलो शरीफा का पत्ता। अब किसान भाई को चाहिए कि जो उधर जो पत्ता था उसको लगाना शुरू करें, शरीफा वगैरह जो है ये गायब हो गया है, इसको भी लगाने को सकता है, नीम वगैरह लगाने की भी हो सकता है, ये कर करके शरीफा का पत्ता 2 किलो और 2 किलो जो धतूरा का पत्ता है इसको भी कूट लेंगे और कूट करके इसको उसी में बर्तन में मिला देंगे। मिलाने के लिए 10 लीटर जो है गौमूत्र लेंगे, ये ले करके फिर हम 20 से 25 मिनट जो है इसको उबालेंगे, उबाल करके इसको 48 घंटा के लिए ठंडा छोड़ देंगे, ठंडा होने के लिए, जैसे ठंडा हो जाएगा इसको हम फिल्टर के लिए छान लेंगे, कपड़े से छानेंगे इसलिए कि इसका जाके स्प्रे मशीन में कहीं नोजल फंसने ना पाए, और उतनी ही मात्रा जितना कि पीछे बताया गया था कि 2.5 से 3 लीटर दवा को 100 लीटर पानी में मिला करके एक एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। और आप अगला जो है 10 पांडी अर्क हुआ, कीड़ा ही मारने के लिए है, कीड़ा रोकने मारने नहीं कीड़ा रोकने के लिए है। उसमें क्या करते हैं हम लोग 10 तरह के जो है पौधों का पत्ता लेते हैं, तो पौधा का पत्ता कौन कौन सा है, नीम, आम, शरीफा, करंज, अंडी, धतूरा, मदार या जिसको आग बोलते हैं, बबूल, अमरूद, अदरक, मतलब इन सब पत्तों को देखते होंगे कुछ समान रूप से कोई कीड़े मकोड़े या जानवर नहीं खाते इसलिए पत्तों को ले आता है। अगर 100 मिल जाए अच्छी बात, 100 नहीं मिलता कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, आप इसमें जितना मिल सके उसका उतना आप बना के प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको बनाइए कैसे कि हम जो है 5 किलो एक तो नीम का पत्ता लेंगे और शेष पत्ता को 2 किलो लेंगे मिला करके, इसको हम कूट लेंगे, कूट करके जो है अलग इसको रख लेंगे, उसमें 0.5 किलो 500 ग्राम हल्दी का पेस्ट पाउडर, हल्दी का पेस्ट बना करके वो मिलाएंगे, उसके बाद 500 ग्राम जो हमारा लहसुन है, लहसुन का पेस्ट पीस करके और उसका पेस्ट जो लोढ़िया बाटी पे जो है उसको बनाएंगे। प्रयास करेंगे कि जो है मिक्सर का प्रयोग ना करें, नहीं होता तो मिक्सर प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको जो है जो हमारा लहसुन है उसका पेस्ट बना लेंगे। उसके अलावा 500 ग्राम जो है हमारा अदरक जो है, अदरक का भी

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 EC या फिर डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಕೃಷಿ. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम क्रीम, और मैं हूं आरजे अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं हमारे हर रोज के इस खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम में. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम उन्नत कृषि है. इसमें हम बातें करते हैं उन्नत बातें खेती बाड़ी की, और आज एक ऐसा ही खास विषय जिसे जानकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो विषय है हमारा आज का, सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती. जी हाँ, सुगंधित धान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे चावल आपके दिमाग में उसके नाम आ रहे होंगे जिसकी खुशबू आपको यूं ही अपनी ओर खींचती होगी कि चलो हम इसे पकाएं घर में और खाएं. तो कुछ ऐसे ही सुगंधित धान की बात करेंगे हम, और उसकी वैज्ञानिक खेती की बात करेंगे. तो चलिए, आज मैं आपको बता दूं कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद जी. मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट हैं सस्य विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में. सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम.
0: सर, अगर हम सुगंधित धान की बात करें तो इसकी क्या खासियत है और इसकी खेती कहाँ होती है?
1: मैडम, धान की विभिन्न किस्मों में सुगंधित धान का विशिष्ट स्थान है, जो उसमें विद्यमान खास गुणों के कारण है. यूँ तो सुगंधित धान की किस्मों में भी काफ़ी विविधताएं हैं, परंतु इसके चावल की क्वालिटी, खुशबू और महक लोगों के आकर्षण का मुख्य वजह बन जाता है. वैश्विक स्तर पर सुगंधित धान के उत्पादन एवं निर्यात में भारत का प्रमुख स्थान है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अधिकांश सुगंधित धान का मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप है. भारत में सुगंधित धान की खेती कहाँ होती है, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सुगंधित धान की खेती प्रायः हिमालय के तराई क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में की जाती है. और खासकर ये सुगंधित धान जो है, ये अपनी खुशबू के कारण काफी
0: प्रसिद्ध है,
1: प्रचलित है. और इसी खुशबू के वजह से ये लोगों की चाहत भी बनी हुई है, और हर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इसकी हम खेती करें.
0: बिल्कुल सर, आपने कहा कि इसकी खुशबू जो है वो आकर्षित करती है लोगों को, और इसकी खुशबू ही इसे अन्य धानों से अलग करती है. तो वो किस वजह से है इस सुगंधित धान में खुशबू?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, चूँकि खुशबू से तो लोग वाकिफ हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसमें खुशबू क्यों होती है.
0: जी,
1: तो मैं आपको और किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में महक या खुशबू का होना ही उसका सबसे प्रमुख गुण है.
0: जी.
1: और इस खुशबू के लिए बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स उत्तरदायी होते हैं, जिनमें 2-acetyl 1-pyrrolin कंपाउंड काफ़ी महत्वपूर्ण है. वैसे तो इसके अलावे बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जो लगभग 12-13 की संख्या में हैं, लेकिन 2-acetyl 1-pyrrolin, जिसको संक्षेप में 2-AP भी कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है. और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सुगंधित धान में इस 2-AP की मात्रा और सुगंधित धान से लगभग 15 गुना ज़्यादा होती है.
0: अच्छा.
1: और सुगंधित धान में यह 2-AP 0.14 PPM होती है, जबकि असुगंधित धान में इसकी मात्रा 0.009 PPM होती है.
0: जी.
1: और अच्छी मात्रा में ये 2-AP का निर्माण हो, इसके लिए धान की खेती, खासकर सुगंधित धान की खेती का जो उपयुक्त तापक्रम है और उसका रेंज है, वो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है.
0: तो सर, अगर किस्मों की बात करें हम, कि सुगंधित धान की हम अच्छी किस्म लगाना चाहते हैं, तो इन किस्मों के हम नाम जानना चाहेंगे, और साथ ही हम उसे कब लगाएं ये भी जानना चाहेंगे सर.
1: जी हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुगंधित धान की जो अनुशंसित किस्में हैं, प्रभेद हैं, उसमें सुगंधा टाइप 3, भागलपुर कतरनी जैसी अच्छी प्रभेद है जो प्रकाश संवेदी है, और इनमें एक खासियत है कि इनका जो पुष्पन होता है वो खास तापक्रम आने पर ही होता है, और ये किस्में लंबाई में ज़्यादा होती है, मतलब इनकी लंबाई, ये लंबी लंबे पौधे वाली किस्में हैं। और दूसरे किस्म है जो प्रकाश असंवेदी हैं, और उन किस्मों में राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, सबौर सुरभित आदि श्रेष्ठ हैं, जिनके पौधे बौना किस्म के होते हैं।
0: तो सर, अगर स्वस्थ बिचड़े की हम बात करें तो इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी चाहिए?
1: देखिए, सुगंधित धान को खासकर खुशबू के मकसद से ही लगाते हैं, तो उसका बिचड़ा तैयार करने के लिए भी किसान भाई को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और किसान भाइयों को चाहिए कि सुगंधित धान की खुशबू का संबंध जो है, चूँकि वायुमंडलीय तापमान के साथ है, इसलिए उनको ये चाहिए कि अच्छी खुशबू या सुगंध के लिए पुष्पन का समय जो तापक्रम होता है वायुमंडल का, वह 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इसके लिए सुगंधित धान के बिचड़ा हेतु बीज की नर्सरी में बुआई को सोच समझकर करनी चाहिए, और सुगंधित धान के बीजों की बुआई नर्सरी में जून के अंतिम सप्ताह से 10 जुलाई तक करना ज़्यादा अच्छा होता है, और खासकर भागलपुर कतरनी का जो बिचड़ा डालना है उसके लिए थोड़ा आगे का समय आपको लेना है, और भागलपुर कतरनी का बिचड़ा आप या हमारे किसान भाई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अगर डालते हैं तो उसमें अच्छी खुशबू प्राप्त होती है।
0: तो कितने दिनों के बिचड़ों की हमें रोपाई करनी चाहिए और कितने दूरी पर?
1: मैडम, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि बिचड़ा को रोपने से पहले हमें ये प्रयास करना चाहिए कि बिचड़े की तैयारी हम अच्छी से करें।
0: अच्छा।
1: और बिचड़ा स्वस्थ हो तभी हमको फसल अच्छा मिल सकता है। तो स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले हमको नर्सरी में बीज को बोना है, और बीज को बोने से पहले उससे हम बीज से उपचारित करेंगे। और किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर एक एकड़ में आपको धान की रोपाई करनी है, सुगंधित धान की रोपाई करनी है, तो उसके लिए नर्सरी का जो एरिया होगा वो लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा, और इसमें बीज बोने से पहले आपको लगभग 2 क्विंटल सरी गोबर की खाद को 10 से 15 दिन पूर्व खेत में डालकर अच्छी तरह से मिला देना होगा, और अंतिम कदबा के समय आपको खेत में, यानी 400 वर्ग मीटर की नर्सरी वाले प्लॉट में 3 किलो यूरिया, 2 किलो DAP एवं 1.5 किलो MOP यानी पोटास को समान रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट को मिट्टी या राख में मिलाकर नर्सरी प्लॉट में आपको डालना है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बिचड़ा जब लगभग 15 दिनों का हो जाए तो उस समय फिर आपको उसमें एक बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको नर्सरी वाले प्लॉट में लगभग 2 से 3 किलो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और बिचड़ा उखाड़ने से पहले, यानी जब बिचड़ा आप उखाड़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि उखाड़ते समय बिचड़े के जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये सावधानी आपको स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए बरतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि बिचड़े की रोपाई कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान का बिचड़ा जब 20 से 25 दिनों का हो जाए तब उसकी रोपाई करनी चाहिए, और जैसा कि हमने बताया कि बिचड़ा उखाड़ने से पूर्व नर्सरी वाले प्लॉट में पानी लगा देना चाहिए, ताकि बिचड़ा आसानी से उखड़ जाए और जड़ को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और बिचड़ा की रोपाई आप 20 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति तथा 15 सेंटीमीटर पौधा से पौधा की दूरी पर लगाएं, और एक स्थान पर 1 से 2 बिचड़ा को ही लगाएं, इससे ज़्यादा बिचड़ा नहीं लगाएं, अन्यथा फिर टिलरिंग में कमी आ जाएगी। और बिचड़े को रोपने से पूर्व उसकी जड़ों को जैव उर्वरक, जैसे एजो एस्पिरिलम, पीएसबी और केएसबी कल्चर के घोल में 15 से 20 मिनट तक आप डुबो कर रखें, यानी धान के बिचरे के जड़ों को इन जैव उर्वरक दवा के कल्चर के घोल से उपचारित करके ही रोपाई करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा।
0: सुगंधित धान के लिए ज़रूरी है खाद और उर्वरक की मात्रा जानना, तो कितनी मात्रा दें और इन्हें हम कब डालें?
1: तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सुगंधित धान में जैसे आप राजेंद्र सुवासिनी या सवोर सुरभित जैसे प्रभेद को लगा रहे हैं, यानी सुगंधित बौनी किस्मों को लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो उर्वरक डालना है उसे अंतिम कदवा के समय एक एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 35 किलोग्राम डीएपी, 15 किलोग्राम पोटास को मिलाकर समान रूप से आपको खेत में बराबर रूप से छींट देना है। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो उसके लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट को राख या मिट्टी में मिलाकर अकेले डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, इसको अकेले इस्तेमाल करना है, तो मिट्टी या राख में मिलाकर उसको कदवा के समय खेत में समान रूप से छींट देना है। और जब फसल 25 दिनों का हो जाए, मतलब रोपनी के 25 दिनों बाद, आपको पुनः 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से पहला टॉप ड्रेसिंग करना है और दूसरा टॉप ड्रेसिंग करना है जब गाभा निकलने की अवस्था आवे, तो उस समय फिर 20 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करना है। और यूरिया के टॉप ड्रेसिंग के समय कोशिश ये करना चाहिए कि खेत में पानी लगा हुआ नहीं रहे, और बेहतर हो कि खेत में अगर पानी ज़्यादा लगा है तो पानी को निकाल दें, टॉप ड्रेसिंग करें, और टॉप ड्रेसिंग करने के तीसरे दिन फिर खेत में पुनः पानी लगा दें। यहाँ मैं किसान भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ये जो पूर्व में जो हमने बताया है उर्वरक की मात्रा, वो राजेंद्र सुवासिनी और सवोर सुरभित के लिए था, लेकिन अगर आप भागलपुर कतरनी लगाने जा रहे हैं तो उसके लिए कदवा के समय आपको डीएपी देना है 25 किलोग्राम, यूरिया देना है 10 किलोग्राम और पोटास देना है 15 किलोग्राम। और जब इसकी टॉप ड्रेसिंग प्रथम टॉप ड्रेसिंग करेंगे 25 दिनों के बाद तो उसमें मात्र 10 किलोग्राम यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना है पहला, और दूसरा जो टॉप ड्रेसिंग फिर गाभा वाली अवस्था में करेंगे तो उसमें भी मात्र 10 किलोग्राम यूरिया का ही टॉप ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो धान में लॉजिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होती है तो धान के गिरने की संभावना प्रबल हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको बरतनी है।
0: तो ये बातें हो गई सावधानियों की, और डॉक्टर साहब अब ये जानेंगे हम, सिंचाई प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी होती है, तो किस तरह हमें सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए सुगंधित धान की खेती में?
1: मैडम ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धान को कहते हैं कि जल ज़्यादा प्रिय होता है, धान के लिए जल प्यारा होता है, और एक कहावत भी है कि धान के खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए, तो धान के खेतों की सिंचाई में ये किसानों को पहले से पता है और उन्हें सावधानी भी बरतनी है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि रोपाई के बाद लगातार 2 सप्ताह तक खेत में पानी लगा कर रखें ताकि खरपतवार का अंकुरण ना हो, और अगर आप खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल किए हैं तो उस दवा का भी प्रभाव सही ढंग से हो सके। उसके बाद यह ध्यान रखें कि 2 दिनों से ज़्यादा खेत पानी के बिना ना रहे, अर्थात किसी भी परिस्थिति में खेत में दरार ना पड़ने पाए। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुष्पन के समय, मतलब फ्लावरिंग के समय, खेत में पानी की बिल्कुल कमी ना हो, और धान कटाई के 2 सप्ताह पूर्व यानी 15 दिन पहले अगर खेत में ज़्यादा पानी है तो उस पानी को आप बाहर निकाल दें, और ऐसा करने से बाद की जो रबी फसल की बुआई आप करने जा रहे हैं उसकी बुआई भी समय से संभव हो पाएगी। बस सावधानी ये बरतनी है कि आपके खेतों में किसी भी परिस्थिति में दरार न पड़े, पानी मतलब अगर 2 दिन तक अगर खेत खाली है तो आपको तीसरे दिन हर हाल में पानी खेत में डाल देना अनिवार्य है।
0: तो इस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, अगर खरपतवार की समस्या हो जाती है तो उसका निदान कैसे करेंगे?
1: जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और खरपतवार की समस्या से हर किसान रूबरू होते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा कि खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए आपको प्रारंभ से ही तैयारी करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि अगर खेत में आप गोबर की खाद या FYM डाल रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि गोबर की जो खाद आप डाल रहे हैं वह पूर्ण रूपेण सड़ा हुआ हो, ताकि उसमें खरपतवार के बीज जीवंत रूप में ना रहे, वो बिल्कुल गोबर के साथ ही वो भी सड़ जाएं। तो आपको पूर्ण रूपेण सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। दूसरा कि आप जो बिचरा डाले हैं या बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीज भी जो है खरपतवार से मुक्त हो, तो आपको ऐसे संस्थान से बीज लेना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो और उसमें खरपतवार के बीज ना हो। तीसरी बात कि कदवा के समय बहुत किसान भाई लापरवाही बरत जाते हैं, जैसे तैसे कदवा कर देते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे खरपतवार खेतों में जिंदा रह जाते हैं। तो कदवा करते समय किसान भाई को चाहिए कि हम कदवा ठीक से करें, ताकि खेत में जो भी खरपतवार हैं वो अच्छी तरह से उनका जड़ उखड़ जाए और मिट्टी में पूरा लिपट के वो सड़ जाए। तो कदवा की तैयारी भी आपको ठीक से करनी है। और इसके अलावे अगर आपके खेतों में खरपतवार की समस्या आती है तो धान रोपाई के दूसरे या तीसरे दिन ब्यूटा क्लोर 50 EC या प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1 से 1.25 लीटर दवा को आप 15 से 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर एक एकड़ खेत में समान रूप से छींट दें। और कंडीशन ये है कि जिस समय आप इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों उस समय आपके खेत में कम से कम 1 से 1.5 इंच पानी लगा हुआ रहे, ताकि पानी के लेयर के ऊपर ये दवा का लेयर आ जाए और जो भी नीचे से खरपतवार निकलने वाले हों उसको निकलने ना दे, वो खरपतवार नाशी दवा के संपर्क में आकर वहीं मर जाए।
0: जी,
1: तो ये सावधानी बरतनी है। और अगर उसके बाद भी आपको या किसान भाई को खरपतवार की समस्या नजर आती है तो धान की रोपाई के 20 से 25 दिनों के बाद पुनः 20 पायरीवैक सोडियम 10% के नाम से दवा आती है, और इस दवा का 80 से 100 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव अगर किसान भाई करते हैं तो उनको खरपतवार से निजात मिल जाएगी और फिर उनका फसल स्वस्थ हो जाएगा। और अच्छी टिलरिंग जब हो जाएगी, उसके पौधे जब घने हो जाएंगे, तो फिर उसके फसल को कोई तरह का नुकसान नहीं होगा।
0: जी, तो ये तो बातें हो गई खरपतवार की जो समस्या उसका निदान कैसे करें। और डॉक्टर साहब, अगर कीट और रोगों की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कीट और रोग हैं जो धान सुगंधित धान में लग सकते हैं और उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं?
1: देखा जाए सुगंधित धान, जैसा नाम है सुगंध, तो सुगंध सबको प्यारा होता है।
0: जी,
1: तो सुगंधित धान में कीट और रोग के प्रकोप भी काफ़ी होते हैं।
0: जी,
1: और खासकर यह देखा जाता है कि सुगंधित धान में धर छेदक जो कीट हैं उसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। और इसके लिए फसल की देखभाल किसान भाई को नियमित रूप से करनी चाहिए, और जैसे ही उनको ये नज़र आए कि 2% से ज़्यादा मृत मूल कल्ले अथवा सफ़ेद बालियां नजर आ रही है खेत में, तो शीघ्र उन्हें उचित कीटनाशी दवा का प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। इसके लिए किसान भाई आप क्लोर पायरीफॉस्ट 20 EC की 1 लीटर मात्रा को अथवा फिप्रोनिल 80% WG की 15 ग्राम मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर एक एकड़ में छिड़काव करेंगे तो धर छेदक कीट से फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावे किसान भाई अपने खेतों में फेरोमन ट्रैप, 5 फेरोमन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं, या ट्रैको कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्ड पर्चर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कीड़े के प्रवेश को या कीड़े के भक्षण में या कीड़े को मारने में ये कारगर सिद्ध होगा। और दूसरा कीट है गंधी कीट। दूध बनने की अवस्था में गंधी कीट दानों से रस चूस लेते हैं, जिस कारण दाने खखरी हो जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मालाथियान 5% धूल या मिथाइल पराथियान 2% धूल की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह के समय, जिस समय पौधे पर ओस होते हैं, उस समय इसका अगर भुड़काव करेंगे तो ये गंधी कीट जो हैं आपके खेतों से भाग जाएंगे और फिर आपके फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप कीट से अपने फसलों की बचाव कर सकते हैं। और रोग भी सुगंधित धान में लगते हैं, जिसमें खास करके पत्र लांछन, जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, झोंका जिसे ब्लास्ट भी कहते हैं, और जीवाणु पत्र झुलसा जिसे बीएल भी कहते हैं, और आवरण झुलसा जिसे शीत ब्लाइट कहते हैं, ये काफ़ी नुकसानदायक है सुगंधित धान के लिए। तो किसान भाइयों, इन रोगों से बचाव हेतु सबसे पहले तो बीजोपचार और बिचरा उपचार करें, अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें, और रोग के लक्षण दिखते ही उपचार हेतु संबंधित विभाग के वैज्ञानिकों से अथवा विश्वविद्यालय के किसान हेल्पलाइन से संपर्क करें। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके फसल में पत्र लांछन रोग लगा है तो इसे बचाव हेतु आप डाइथेन Z78 या मेनकोजेब की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 3 से 4 बार छिड़काव करें। और शीथ ब्लाइट से बचाव के लिए वैलिडामाइसिन नाम की दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर 3 बार खरीफ फसल में छिड़काव करें। और बीएलबी से बचाव के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की दवा की 20 ग्राम मात्रा के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 किलो को 400 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में 12 दिनों के अंतराल पर खरीफ फसल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो बीएलबी से भी आपके फसल का बचाव हो जाएगा। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को कुछ और बताना चाहूँगा। चूँकि फसल की कटाई और तैयारी भी सुगंधित धान के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय होता है, तो सुगंधित धान की गुणवत्ता, खुशबू और उत्पादन पर कटनी के समय का काफ़ी असर पड़ता है। और विलंब से कटाई करने से दाने झड़ जाते हैं चावल की मात्रा में और उसकी खुशबू में भी कमी आती है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि सुगंधित धान के फसल की कटाई 50% फूल आने के 30 से 35 दिनों बाद, जिस समय दाना में लगभग 20 से 24% नमी हो, उसी समय उसकी कटाई कर लें। और खेत का पानी कटाई के 10 से 15 दिनों पूर्व बाहर निकाल दें। कटाई के दूसरे दिन ही कोशिश करें कि उसकी हम थ्रेसिंग कर लें, और जो थ्रेसिंग करने के बाद आपको धान मिला है उसको सीधा धूप में ना सुखाकर उसको छाया में तब तक सुखाएं जब तक कि उसमें 12 से 14% नमी ना आ जाए। ऐसा करने से मिलिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव कर जाती है और भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होती है। और जब इसका भंडारण आप करेंगे तो भंडारण करने से पूर्व

0: से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की हो सकती है और जिसका बाजार भाव भी उनको अच्छा मिल सकता है।
1: तो जैसा कि किसान भाइयों और श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि अगर इस तरीके से आप सही तरीके से सुगंधित धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार और बाजार में इसका अच्छा मूल्य भी मिल सकता है। तो ये वैज्ञानिक खेती और इसकी तैयारियाँ पूरी यहाँ पर बताई गई हैं, आपको किस तरीके से बिचड़े को तैयार करना है और इसके साथ ही खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए और इसे कब लगाना चाहिए, कौन सी किस्में सही हैं और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं खरपतवार प्रबंधन के बारे में, कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। तो वैज्ञानिक खेती आपको यहाँ पर बताई गई पूरी की पूरी सुगंधित धान की। तो आशा करते हैं कि आप इन बातों को सुने और ज़रूर इसे अपनाएं और जब आप खेती कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए खेती करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, सुनते रहिए 90.8 MHz पर उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ,
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बातें करने वाले हैं महिलाओं के बारे में। कहते हैं कि महिलाओं में ममता भरी होती है और कभी कभी यही ममता उनके शरीर को कमजोर बना देती है। महिलाओं को अपना ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेकिन उनकी आदत होती है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल जाती है और बढ़ते उम्र के साथ तो ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि वो मान चुकी होती हैं, मुझसे पहले मेरा परिवार है, मेरा करियर है और सबसे अंत में हूँ मैं। बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं को खुद की देखभाल की और ज्यादा जरूरत हो जाती है लेकिन तब उन्हें लगता है कि हमने तो उम्र काट ली अपनी, जो देखना था देख लिया, अब क्या जरूरत है। लेकिन तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना ध्यान रखना क्योंकि एक उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में काफी बदलाव हो रहे होते हैं। इन बदलावों की वजह से उन्हें कई सारी बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए जरूरी होता है कि जो महिलाएं 40 पार कर चुकी हैं या 40 की उम्र की दहलीज पर हैं, वो अपना खास ख्याल रखना शुरू कर दें। तो आइए हम जानते हैं कि इस उम्र की महिलाओं में क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो उनके हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, जो अभी तक आपके प्रजनन स्वास्थ्य और बाहरी खूबसूरती के लिए जिम्मेदार थे, वो अचानक बदलने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं और ऐसे में महिलाओं को अनियमित महावारी और त्वचा पर उगाने वाले बाल बताते हैं कि आपके हार्मोन असंतुलित हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ती हैं। एस्ट्रोजन और प्रोस्टेस्टेरोन जैसे हार्मोन महिलाओं की प्रजनन क्षमता के साथ साथ उनके लुक को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले तो महिलाओं के बाल हल्के और पतले होने लगते हैं और साथ ही उनके त्वचा में लोच और कसाव की कमी दिखाई देती है।

लगती है। बाल सफेद होने लगते हैं और त्वचा पर धीरे धीरे झुर्रियां अपना पांव पसारने लगती है। ये तो बाहरी समस्या हो गई जो एक उम्र के बाद आती ही है, और इसे खुले मन से अपनाना चाहिए। बालों का सफेद होना, झुर्रियां, ये कोई अनहोनी जैसी बात नहीं होती, लेकिन वक्त से पहले होना ये गलत बात है। इसके साथ ही कुछ अंदरूनी समस्याएं भी महिलाओं को झेलनी पड़ती है, जैसे कि उनकी पाचन शक्ति खराब होने लगती है। 40 की उम्र की महिलाओं का पाचन तंत्र पहले से धीमा हो जाता है, जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्याएं परेशान करने लगती है। 40 के पार की जो भी महिलाएं हैं या 40 की दहलीज पर जो महिलाएं हैं, उन्होंने ये अनुभव करना शुरू कर दिया होगा कि आप जिन चीजों को पहले बहुत चाव से खाती थी और बड़ी चाव से आपका पेट उसे पचा भी लेता था, अब वही चीजें आपके पेट पर बोझ की तरह पड़ी रहती है। और अगर आप परहेज नहीं करते हैं तो गैस, एसिडिटी और बदहजमी जैसी समस्याएं आपको बहुत परेशान करने लगती है। इसके साथ ही 40 के बाद महिलाओं को वजन के साथ भी तालमेल बिठा पाना बहुत मुश्किल लगता है। इस उम्र में हार्मोन्स तो असंतुलित होते ही हैं, साथ ही मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं के पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। इस समय वजन बढ़ना जितना आसान होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे कंट्रोल करना। वजन तराजू पर अपनी तौल मजबूत करता जाता है, लेकिन हड्डियां होती जाती है कमजोर। हालांकि 30 के बाद से ही महिलाओं की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 के बाद उन्हें कैल्शियम इनटेक पर, यानी कि वो कितना कैल्शियम ग्रहण कर रही हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 40 पार करते ही एस्ट्रोजन की कमी के वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि उनकी हड्डियों में छिद्र हो जाना। इसलिए जरूरी होता है कि इस उम्र की महिलाओं को कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी चेक करते रहना चाहिए। अब इतनी सारी परेशानियां आएंगी, पेट गड़बड़ रहेगा, हड्डियां कमजोर हो रही है, वजन बढ़ रहा है, तो मूड स्विंग्स का तो होना बनता है। हार्मोन्स सिर्फ आपकी प्रजनन क्षमता को नहीं बल्कि आपके मूड को भी प्रभावित करता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाता है तो इस समय आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर, जो पहले आप बहुत हल्के में टाल देते थे, उस पर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत आसानी से। ज्यादातर महिलाओं के परिवार में ये शिकायत आती है कि अब वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई है। ऐसा उनके हार्मोन में बदलाव की वजह से होता है। ये चिड़चिड़ापन और गुस्सैल होना प्री मेनोपॉज का भी एक संकेत होता है। प्री मेनोपॉज यानी कि आपका महावारी अब बंद होने के नजदीक है, और इसलिए आपको हॉट फ्लैक्स और मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी बातें तो हो गई समस्याओं की, अब इन समस्याओं का निदान क्या है, हल क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो अपने मूड को कंट्रोल में करें। ध्यान दें कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। आपके जीवन में जो भी ऐसी चीजें मौजूद है जो आपको परेशान कर रही है, उसे पहचानें और उसे अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करें। अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रोफेशनल सलाह लेने से भी हिचकिचाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज जरूरी होता है। और इन्हीं बीमारियों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां आपके जीवन में, आपके शरीर में जगह बना लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मूड स्विंग्स का ध्यान रखें। और जैसे ही आप 40 पार करती हैं या 40 की दहलीज पर है, तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए एक उपाय ये भी है कि आप अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आप गहरी अच्छी नींद सोएं, और जो पर्याप्त समय होता है वो अपने नींद को जरूर दें, यानी कि 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है। और इसके साथ ही आप खूब सारा पानी पिए, यानी कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी की कमी भी बहुत सारी परेशानियों का जड़ होती है। अगर आप एक पर्याप्त मात्रा में सही तरल पदार्थ और जो जरूरी पोषक तत्व है उसे भरपूर संतुलित आहार लेना शुरू करते हैं, तो आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लगती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि पानी पिए, नींद लें पर्याप्त। अगर फिर भी आपका मूड थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो अच्छे अच्छे मधुर मधुर संगीत सुनें, किताब पढ़ें, या फिर कोई ऐसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव चीजों में आप अपने आप को शामिल करें। आपको सिलाई बुनाई का शौक हो सकता है, पेंटिंग का शौक हो सकता है, डांस का शौक हो सकता है, जिसे अब तक आपने साइड कर दिया था क्योंकि आप अपने परिवार में, आप अपने बच्चों में उलझ गई थी। अब जबकि आप 40 की हो चुकी हैं या 40 की दहलीज पर हैं, तब तक आप अपनी ये सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हैं, और अब आपके पास पूरा वक्त है कि आप अपने शौक को और अपने आप को समय देना शुरू करें।
हमने कहा आपसे कि आप तरल पदार्थ पिए, लेकिन साथ में हमने ये भी कहा था कि सही तरल पदार्थ पिए। चाय कॉफी आपको कम कर देनी चाहिए। अगर आपको ये आदत है कि सुबह जगते ही आपको चाय या कॉफी का एक प्याला चाहिए, तो ये बहुत गलत है। आपको भले ही लग सकता है कि ये तो तरल पदार्थ है, इसमें भी पानी की मात्रा होगी, लेकिन ये आपको हाइड्रेटेड नहीं बल्कि डिहाइड्रेटेड करता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी पैदा करता है। सबसे पहला जो काम आप सुबह जगने के बाद करें, वो गुनगुना पानी पिए, ना कि गरम गरम चाय या कॉफी के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। इसके साथ ही निकोटीन और नशीले पदार्थों से आप अपने आप को दूर कर लें। और इसके बाद सबसे जरूरी जो है, वो हर उम्र के लिए जरूरी होता है और हर रोज जरूरी होता है, वो होता है थोड़ा एक्सरसाइज करना। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें। अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, ये आपको बोरिंग लगता है, तो आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप करें, लेकिन खुद को बिल्कुल एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 45 मिनट और सप्ताह में 5 दिन आपका फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, आपका वजन नियंत्रित रहता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है। और इस तरह से आप अपने आप को वक्त से पहले झुर्रियों के साथ, सफेद बालों के साथ देखने से बच सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप खुश रहेंगी तो आपका पूरा परिवार भी खुश रहेगा। आप खुद का भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। और साथ ही अगर आपका मूड थोड़ा भी गड़बड़ लगे, तो आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास होता है आपके लिए जानकारी के पिटारे के साथ साथ मनोरंजन। तो जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यानी FM ग्रीन पर। और आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम एक खास विषय लेकर आए हैं, जी हाँ, गर्मा मूंग में समेकित रोग प्रबंधन। आज हम जानेंगे गर्मा मूंग की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें हम। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर आर.एन. गुप्ता। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये जो हमारा विषय है रोगों के बारे में जाना कि गर्मा मूंग में कौन कौन कौन से रोग लगते हैं, तो सबसे पहले तो प्रमुख रोगों के बारे में बताएं, ये कैसे फैलता है, इसके कारक क्या हैं और फिर हम इसका कैसे प्रबंधन करें।
2: सबसे पहले ये है कि गर्मा मूंग जो है हमारे लिए काफ़ी जो है उपयोगी फसल है और ये कम समय में 60 से 65 दिनों में ये तैयार हो जाती है और इसमें पौष्टिकता बहुत होती है, खासकर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है
1: जी।
2: तो ये हमारे लिए भी काफ़ी उपयोगी है
1: जी। और ये सुपाच्य भी होता
2: और सुपाच्य भी होता है और जिस तरह हमारे लिए ज़रूरी है प्रोटीन के लिए, उसी तरह से कीट व्याधियों और रोगों को फैलने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। खासकर जो कीड़े लगते हैं उनके भी विकास के लिए जो है ये प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि जो भी दलहनी फसलें हैं उसमें अन्य फसलों की तुलना में ज़्यादा रोग का प्रकोप होता है। इसका एक मुख्य कारण इसका जो है पौष्टिकता का होना ही होता है, ठीक है। खासकर जो
1: मतलब इसके पौष्टिक गुण को देखकर जो है रोग
2: जो भी रोग व्याधियों का भी प्रकोप इसमें बढ़ जाता है,
1: बढ़ जाता है जी।
2: तो जहाँ तक रोग की बात है, इसमें बहुत सारे रोग लगते हैं। इनके जर्मिनेशन की अवस्था से अंकुरित अवस्था की होने तक और फसलों की मैच्योरिटी तक होने तक पकने तक बहुत सारे रोग लगते हैं। इसका मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूँ
1: जी।
2: पहला क्या है कि जो कुछ रोग का प्रकोप पत्तियों पर पाया गया है, जो कि पत्तियों पर उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ रोग जो है उसको जड़ को प्रकोप जड़ को प्रभावित करते हैं, जड़ों को सड़ाते हैं और उसके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं
1: जी।
2: और तीसरा जो प्रमुख रोग है वो विषाणु को द्वारा फैलता है और विषाणु का जो वेक्टर होता है वो कीट को द्वारा होता है। तो उसमें हमको कीट प्रबंधन की आवश्यकता होती है और इस कीटों को प्रबंधन करके हम विषाणु रोग के संक्रमण को कम कर सकते हैं। तो जहाँ तक पत्तियों पे लगने वाले रोग हैं उनमें प्रमुख रोग है लीफ स्पॉट। पत्तियों पर धब्बे लग जाते हैं और ये धब्बे जो है छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे आकार में बढ़ते हैं और इनके किनारे में जो धब्बे होते हैं इनके किनारे में बैंगनिंग कलर का जो है इसका मार्जिन बन जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इस आधार पे हम इस रोग को पहचान सकते हैं। इनके लक्षण प्रायः पत्तियों पर और कभी कभी तनों पर भी होते हैं और जो फलियां बनती है उस पे भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं
1: जी।
2: तो इस तरह से इसके पत्तियों पर खासकर धब्बे बनते हैं, इसलिए इनको लीफ स्पॉट कहा जाता है। तीन रोग को आसानी से पहचाना जा सकता है। और रही बात इसकी जो है प्रबंधन की, तो प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी जो दवा है वो एक दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब एक साथ मिली रहती है। वो मार्केट में साफ के नाम से आती है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे 14 दिन के बाद फिर हम दूसरा इसका स्प्रे कर देते हैं तो इससे इस रोग का निदान हो जाती है
1: जी।
2: दूसरी जो है पत्तियों पे लगने वाली रोग है उसमें जो है एंथ्रेक्नोज डिजीज बोलते हैं, ये जो है क्लोटोट्राइकम स्पीसीज के द्वारा होता है। इसमें भी जो है पत्तियों पर छोटे छोटे गोल धब्बे बनते हैं, गड्ढे धब्बे बनते हैं और उसके किनारे पे जो है लाल और भूरे रंग के किनारे बन जाते हैं
1: जी।
2: इसको देख के हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं, तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक प्रबंधन की बात है तो उसमें जो है अगर केमिकल का दिया जाए रासायनिक रूप से, तो जो दवा पहले बताई गई जो कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब से मिश्रित दवा है उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो इस रोग को हम रोक सकते हैं
1: जी।
2: तीसरी जो पत्तियों पर लगने वाली रोग है उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। ये जो है पत्तियों पर जो है पाउडर के आकार के सफ़ेद चूर्ण दिखाई पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये कालांतर में जो है इनके धब्बों का जो सफ़ेद है वो मटमैलापन हो जाता है, माने डल कलर का हो जाता है। तो पत्तियों पर जो है पाउडर के तरह अगर धब्बे दिखाई पड़े तो इस रोग को पहचान सकते हैं आसानी से। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग बेटेबल सल्फर आता है, गंधक जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देने से इस रोग से हम निदान पा सकते हैं
1: जी।
2: इसके बाद कुछ और प्रमुख रोग हैं, जैसे इसमें रस्ट की भी समस्या आती है। इसमें जो है पत्तियों पर जो है जैसे जंग लगते हैं ना, उसको रस्ट बोलते हैं, उसी तरह से पत्तियों पे जंग की तरह दिखाई पड़ने लगता है। इसको देख के हम उसको पहचान सकते हैं। अगर इस तरह का अगर लक्षण दिखाई पड़े तो इसमें भी जो एक दवा आती है टिल्ट प्रोपिकोनाजल के नाम से आती है, इसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देने से इस रोग को हम कम कर सकते हैं
1: जी।
2: पत्तियों पर मुख्यतः सारे यही सब रोग लगते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो है जड़ों पे भी लगती हैं, उसमें जो है 2 प्रमुख रोग हैं। एक जो है प्रारंभिक अवस्था में लगती है, जब नमी ज़्यादा रहती है खेतों में उस समय जो है कॉलर रॉट की समस्या आती है, और कालांतर में जब तापमान बढ़ने लगते हैं, जब पौधे जो है फलियां देने की अवस्था में आती है उस समय जो है ड्राई रूट रॉट की समस्या आती है जो कि रजोक्टोनिया बटाटिकुला के द्वारा होता है। तो मुख्यतः जड़ों में लगने वाली ये 2 बीमारियाँ हैं। एक तो नमी की अधिकता के कारण होती है और दूसरी बीमारी जो है नमी के कमी के कारण होती है जब तापमान बढ़ जाते हैं। तो इस रोग को भी हम आसानी से पहचान सकते हैं। जो कॉलर रॉट की समस्या होती है, जहाँ पे तना और जड़ मिलते हैं उस जगह पर सड़न पैदा हो जाती है, जिसके कारण जो है वो जड़ें पतली हो जाती है और जो भी किनारे की जड़ें हैं वो सड़ जाती है और पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं। तो इनके लक्षण प्रायः जो है 20 से 21 दिन तक ही रहते हैं, और कालांतर में नमी जब घटने लगती है तो इसका प्रकोप भी घटते जाता है। दूसरी जो बीमारी है, जब फलियां बनने लगती है, जब 50 दिन के आसपास पौधे होते हैं उस समय जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस समय जो है इसका प्रकोप बढ़ जाता है, और इस जब पौधों के जब हम उखाड़ते हैं तो इसकी जड़ें जो है टूट जाती है, आधे जड़ें जमीन के अंदर रह जाती है और आधी जड़ें जो है हमारे हाथों में आ जाती है, क्योंकि जड़ें टूट जाती है नमी के कारण कड़क से, क्योंकि उसका जो बीज का रीजन जो पिथ रीजन है वो हॉलो हो जाता है वो फंगस के अटैक के कारण, जिसके कारण ये कड़क से टूट जाते हैं। तो ये 2 बीमारियां जो है काफ़ी प्रभावित करती है
1: जी।
2: और इसके रोकथाम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उसका बीज उपचार करना ही सबसे बड़ा उसका मतलब उपचार है। तो बीज उपचार करने के लिए जो है कार्बेंडाजिम का जो है 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसका उपचार करते हैं
1: जी।
2: क्योंकि कालांतर में ये बीमारी जो पहली बार आई कॉलर रॉट है वो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव जो है बीज उपचार का 1 महीने तक होता है, तो कालांतर में ये बीमारी का प्रकोप इसको करने से काफ़ी कम जाती है। दूसरी जो बीमारियां हैं उसमें भी जो भी अर्ली में होने वाली थी वो तो नहीं होगी, लेकिन बाद में जो बीमारी लगती है तो उसमें जो है हम थोड़ा बहुत इरिगेशन कर देते हैं, पानी कर देते हैं ताकि नमी बढ़ जाए, तो इसका प्रकोप घट जाता है। क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई दवा का प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि उसका पिथ रीजन हॉलो हो जाता है तो दवा का जो है प्रवाह उसमें नहीं हो पाता है, इसलिए उसका कोई भी स्प्रे करना लाभदायक इसमें नहीं होता है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो आप उसमें हल्की इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें, तो इसका प्रकोप जो है वो कम जाता है
1: जी।
2: और कुछ बीमारियां जो है जो विषाणु जनित होती है उसमें जो है प्रमुख रोग हैं आपका एक लीफ कर्ल डिजीज, येलो मोजेक डिजीज होती है, जिसमें पत्तियां जो है पीले पीले धब्बे बन जाते हैं और पीले और हरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसमें जो है मोजेक टाइप का सिम्टम होता है। कालांतर में पूरी पत्तियां ही पीली पड़ जाती है तो पूरे खेत जो है पीलापन दिखाई पड़ने लगता है। तो ये विषाणु जनित रोग है, इसका जो है एक वाहक होता है जिसके द्वारा ये फैलता है, वो सफ़ेद मक्खी है। ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा जो है बीमार फसलों से जो है रस चूसकर और जो स्वस्थ पौधे हैं उसमें वो डाल देते हैं, जिसके कारण ये तेजी से ये फैलते हैं। खासकर जिस तरह हवा की दिशा होती है उस दिशा में इस रोग का प्रभाव ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये मक्खियाँ जो है हवा के द्वारा फैलती है, तो ये जहाँ जहाँ बैठती है वहाँ पर ये रोग फैलाने का काम करती है। तो ये विषाणु जनित रोग है। अगर किसान भाई या जो भी हैं वो अगर इसके लक्षण दिखाई पड़े तो सबसे पहले जो है जो संक्रमित पौधे हैं उसके उखाड़ के हटा देना चाहिए, क्योंकि संक्रमित पौधे से ही ये तेज़ी से फैलते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको संक्रमित पौधे को उखाड़ के हटा देना है, या तो जला देना है या तो ज़मीन के अंदर गड़ देना है, ताकि उसका जो है रस चूसकर जो है स्वस्थ पौधे पे नहीं जाए। तो पहला तो ये काम करना है। दूसरा है कि अगर ये सफ़ेद मक्खियाँ अगर मौजूद हैं तो इसके रोकथाम करने के लिए एक कीटनाशक का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ताकि वो जो है उसका वो फैलाव फिर ना हो। तो इसके लिए एक दवा आती है इमीडा क्लोरोफ्रीड 1 ml दवा 3 लीटर पानी में जो है अगर स्प्रे करते हैं तो जो रोग के वाहक हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे में जो है बीमारियां फैल नहीं पाती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। दूसरी जो है विषाणु जनित रोग में है लीफ क्रिंकल रोग, जिसमें पत्तियां जो है सिकुड़ जाती है और काफ़ी छोटी छोटी हो जाती है, और संभवतः ये रोग जो है वहाँ पर जो खेतों में जो वीड होते हैं जो खरपतवार होते हैं उसके द्वारा ये फैलते हैं मुख्यतः, और साथ साथ जो सफ़ेद मक्खी होती है वो भी इसके प्रकोप को बढ़ाते हैं। तो जहाँ पे ये बीड अगर दिखाई पड़े खरपतवार दिखाएं तो उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा, और साथ साथ जो है जो कीटनाशक दवा का प्रभाव प्रयोग करने के लिए बताया गया उसका भी प्रयोग करने से बीड को भी ख़त्म करना है, और साथ साथ जो हमारा कीट है जिससे फैलते हैं उसको भी रोकथाम करने के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना है। अगर ये दोनों चीज़ को करते हैं तो इससे प्रकोप काफ़ी कम जाता है। तो इस तरह से जो है इसके प्रमुख ये सब रोग हैं, और ये जो लक्षण है इसको पहचानना जरूरी है, क्योंकि पहचानने के आधार पे ही उसको हम इलाज करते हैं। क्योंकि जो विषाणु से जनित जो रोग होते हैं उसके लक्षण क्लियर कट होते हैं, अगर उसमें हम जो फंजीसाइड डालेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो रोग को पहचानना इसके लिए ज़रूरी है। और रही बात हमको समेकित रोग प्रबंधन की बात है, मैंने ये मुख्यतः ये दिया कि ये रोग है तो इसके असर तुरंत दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसने मैंने रासायनिक बताया, लेकिन बहुत सारी विधियां अगर आप अपनाते हैं जिसको समेकित रोग प्रबंधन बोलते हैं। समेकित रोग प्रबंधन का मतलब होता है कि 2 या 3 से अधिक विधियाँ को हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं आपस में, जो कि हमारे लिए सस्ता भी हो, हमारे वातावरण के लिए भी हो, और उसको लोग एक्सेप्ट भी करें।

0: इस तरह की विधियां को अपनाते हैं तो उसको हम समेकित रोग प्रबंधन करते हैं
1: जी।
0: तो हमको केमिकल जो है हमारा ये लास्ट ऑप्शन है। अगर हम उन्नत बीज का चुनाव करेंगे, समय पे लगाते हैं, अगर गर्मा मूंग का लगाने का समय आपका मार्च के अप्रैल है, आप उस पीरियड में लगाएंगे तो आपका रोग व्याधियों का प्रकोप कम होगा। और जो खरीफ में लगाते हैं उसको फर्स्ट फोर्टनाइट जो है जुलाई में लगाएंगे, जो पहली पखवारा है उसमें अगर लगाते हैं तो इन रोगों का प्रकोप काफ़ी कम जाता है। तो आपका सही समय पे लगाना जरूरी होता है और सही प्रभेद का भी चुनाव करना जरूरी है
1: जी।
0: और मूंग के कुछ प्रभेद हैं पीडीएम 2, पीडीएम 11, पूसा बैसाखी, ये सब ऐसे बीज हैं जिसमें रोग व्याधियों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। तो इन सब बीजों का भी चुनाव करना है। और कुछ बीमारियाँ जो है बीज जनित होती है उसको रोकथाम करने के लिए जो है बीज उपचार करना जरूरी है, जिसके लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार कर देते हैं। तो आपका 1 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। उस दरमियान जो भी बीमारियां आती है जड़ के द्वारा या बीज के द्वारा वो काफ़ी हद तक इससे कम जाती है, साथ साथ उत्पादन को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से बीज उपचार करते हैं। और जब पौधों के जब रोग के लक्षण पत्तियों पर दिखाई पड़ता है तब फिर हम उसको रोग को पहचान कर उसके हिसाब से दवा का इस्तेमाल करते हैं। और उस दवा में मुख्यतः जो है कार्बेंडाजिम और प्लस मैनकोजेब, उसमें जो है एक जो है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और दूसरा सिस्टेमिक फंजीसाइड है। तो ये दोनों तरह से काम करता है, जहाँ पे स्पर्श करता है उसके लिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है और जो सिस्टम में जाके काम करता है वो सिस्टेमिक फंजीसाइड है। ये दोनों का मिश्रित है तो ये ज़्यादा प्रभावी होता है। तो अगर इस तरह का हम उसका प्रयोग करेंगे, जो भी पत्तियों पर लक्षण आते हैं खासकर जो फंजाई के द्वारा होता है, उससे हम इसको प्रकोप को कम कर सकते हैं। दूसरी बीमारियां जो है आपको मैंने विषाणु जनित बताई, उसको लक्षण स्पष्ट होते हैं, पत्तियां मोजैक की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं, कालांतर में पूरा खेत जो है पीले रंग की पत्तियां हो जाती है, तो ये हमारा येल्लो मोजैक का सिम्टम है। दूसरा जो है लीफ क्रिंकल होता है, जिसमें पत्तियाँ जो है सिकुड़ जाती है, तो दूर से ही स्पष्ट हो जाती है कि पत्तियाँ सिकुड़ जाती है, तो उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जो भी विषाणु जनित है उसके लक्षण स्पष्ट होते हैं तो उसके पहचान करके हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ताकि जो है उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और रोग को इस तरह से रोकथाम कर सकते हैं
1: जी। तो श्रोताओं और हमारे किसान भाइयों, आपको पूरी जानकारी दी गई है गर्मा मूंग में समेकित रोग प्रबंधन आप कैसे करेंगे। और डॉक्टर साहब ने आपको हर एक कैटेगरी, जो जैसे कि पत्तों में जो रोग लगते हैं, जड़ में लगते हैं, विषाणु युक्त जो रोग होते हैं, उन सभी के बारे में अलग अलग से बताया है और उनके प्रबंधन के बारे में भी आपको अलग अलग से बताया। तो आशा करते हैं कि आपको अब बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर, इसी कार्यक्रम में। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
4: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% और दोपहर में 20-25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8-12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 EC या फिर डायमेथो 8 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4-6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6-10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20-25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए सुने हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
2: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
3: जी,
2: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
3: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो भी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
2: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना करें, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
3: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब घास से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
2: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
3: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
2: हाँ,
3: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने दो भैया।
2: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में? और दूसरी चीज, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
3: देखिए जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है, लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है, और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
3: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है, जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को

0: अगर फीवर आया, डॉक्टर को दिखाना पड़ा, दवा करनी पड़ी, तो उसका खर्चा और गया। अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
2: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी मतलब श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए हैं।

0: वो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
1: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह दे कि हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग है, काम कर रहे होते हैं, तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
0: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
1: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती है। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया, तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो। और ऐसी बातें ना, अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
0: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में, उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
1: बिल्कुल करता है, जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना,

0: वो आके पूछेंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा, उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, एएनएम दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
1: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा
0: सा। बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
1: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगे। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और एनम की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलते हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हो।
0: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, 10 तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है, वेरी नाइस, लड़का हुआ है, बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गाँव में, घरों में माओ का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय कि वो रीअश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवी बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फला को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था, देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो 10 आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना, तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं, आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी? जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे कार का भी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है? क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं?
0: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग, अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की, कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहाँ के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
1: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है, हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे, तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए? या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
0: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से, कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है। कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के साथ परेशानियाँ ज्यादा होती हैं। जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया है तो कम से कम 6 महीने तक अगर उन्होंने माँ का दूध पिया होता है तो उनमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ हम जब टीकाकरण कर देते हैं तो यही बच्चे हैं जो कम बीमार पड़ते हैं। तो माँ का दूध तो पहला टीकाकरण हुआ, उसके बाद हमने एज डॉक्टर्स टीकाकरण करना शुरू किया। पहली रक्षात्मक शक्ति माँ होती है। अब आई बात कि टीकाकरण कैसे और कहाँ से और एंट्री पॉइंट कहाँ होता है। देखिए एक एंट्री पॉइंट तो होता है ICDS वाला सेंटर, जब माए राशन लेने जाती है ना वहाँ पर दूसरी माओं से बातचीत होती है, तो वहाँ एक संगोष्ठी टाइप की हो गई कि एक ने दूसरे से कहा अरे हम तो उस दिन गए थे फलां दिन तो वो दीदी मिली थी, बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी अरे

0: वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फलां के बच्चे को लगवाया था देखो और फलां ने नहीं लगवाया, देखो आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया, वो समझने के लिए भी हो सकता है। या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है, वो भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी मैम, एक और चीज़ में मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको किससे, ना बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रिएश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ, तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना। सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या समझना चाहिए, वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो 3 चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस

0: होता है, इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है, जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना, उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहाँ क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर, वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो, आपको कल ऑफिस जाना है तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं, इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना, तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए, अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
0: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
1: मैम अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, सबके लिए एक संदेश।
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं, टीकाकरण जरूर करवाएं।
1: बिल्कुल। तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषक मंच कार्यक्रम में फसल सुरक्षा यंत्र एवं इसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सनोज कुमार जी, जो कि कृषि अभियंत्रिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, पौधे में कीड़े मकोड़े और बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह है नित नए दिन उन्नत बीजों और अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना। इससे फसलों को क्षति पहुंचती है और आपके उत्पादन में कमी हो जाती है। फसलों को अलग अलग प्रकार के कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए आप रासायनिक पदार्थों का छिड़काव करते हैं। प्रतिवर्ष कीटनाशक दवाइयों की खपत बढ़ती ही जा रही है। बताया जाता है कि 1 किलोग्राम उर्वरक के उपयोग से 10 किलोग्राम अतिरिक्त अन्न का उत्पादन हो सकता है, लेकिन अगर आप 1 किलोग्राम कीटनाशक दवाओं का सही से उपयोग करें तो 1 से 2 क्विंटल तक अतिरिक्त अन्न नष्ट होने से बचा सकते हैं, यानी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का डालने का उद्देश्य यह है कि कम दवाइयों का प्रयोग अधिक से अधिक क्षमता तक किया जाए, और यह कैसे हो सकता है इसी बात को हम फसल सुरक्षा यंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये फसल सुरक्षा यंत्र आखिर क्या है, इसे आप किसान भाइयों को थोड़ा सहज भाव में समझाएं।
2: किसान भाइयों, फसलों को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए तथा खरपतवार नियंत्रण में विभिन्न प्रकार के रसायनों का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं, उचित मात्रा में समान रूप से छिड़काव या भुरकाव किया जाए तो ये रासायनिक पदार्थ प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। अतः इन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के उन्नत सुरक्षा यंत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। फसल सुरक्षा में रासायनिक घोलों को प्रयोग के लिए छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करते हैं, वहीं भुरकाव के लिए भुरकाव यंत्रों का करते हैं। छिड़काव यंत्रों का हम विभाजन या वर्गीकरण शक्ति के अनुसार कर सकते हैं, कार्य सिद्धांत के अनुसार कर सकते हैं। शक्ति स्रोत के अनुसार अगर हम इन यंत्रों का विभाजन करें या वर्गीकरण करें तो ये मानव चालित हो सकते हैं या इंजन चालित छिड़काव यंत्र हमारे पास हो सकते हैं। उसी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मानव चालित छिड़काव यंत्र, इसमें भी 4 तरीके के छिड़काव यंत्र उपलब्ध हैं। एक है हस्तदाबीय छिड़काव यंत्र, मतलब कि हाथ से हमको कोई चीज़ दबाना है और उसी से छिड़कना है, तो इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः छोटे किसान करते हैं अपने खेतों में, जिनका खेत का रकबा बहुत छोटा है, छोटे खेतों में रासायनिक घोलों को छिड़कने के लिए करते हैं। ये यंत्र अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग आकार के बनाए जाते हैं, और इस यंत्र का उपयोग करने के लिए टंकी का ढक्कन को खोलकर घोल जो हम बनाते हैं उसको टंकी के 2x3 भाग तक भर लेते हैं। इसके पश्चात पंप को हाथ से चलाकर हवा भरते हैं जिससे कि वो प्रेशर बने, और उसी में एक प्रेशर नापने का यंत्र भी लगा रहता है जिसे हम लोग हिंदी में दबाव मापी यंत्र कहते हैं। हवा भरने के बाद चालक जो है उस यंत्र को अपने पीठ पे बांध लेता है और टोटी खोल करके नोजल को फसल से 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर रखकर वो चलता है, जिससे कि हमारा पूरा दबाव अपने फसल पर गिरता रहता है। हवा का दबाव कम होने पर पुनः आपको हवा उसमें भरना पड़ता है और उपयुक्त तरीके से पुनः छिड़काव कर सकते हैं। वैसे ही हमारा दूसरा मानव चालित छिड़काव यंत्र है हस्त चालित पीठवाही छिड़काव यंत्र। यह यंत्र भी हस्तदाबीय छिड़काव यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु इसके पंप को लगातार आपको हाथ से चलाना पड़ता है, पहले वाले में नहीं था। इसके बाद है पैर चालित छिड़काव यंत्र। यह यंत्र प्रायः हर फसल में कीटनाशक छिड़कने के लिए उपयोगी है, और इस यंत्र को चलाने के लिए भी आपको कम से कम 2 आदमियों की आवश्यकता होगी। पहला आदमी जाली वाले जो चूसन नली है उसको रसायन घोल की बाल्टी में रखकर पांव से पंप चलाता है, और दूसरा आदमी प्रेशर नली को पकड़कर पौधे के ऊपर चलता छिड़काव करता हुआ चलेगा। इसके अलावा जो चौथे प्रकार का मानव चालित छिड़काव यंत्र है जिसको हम लोग रॉकिंग पंप छिड़काव यंत्र कहते हैं, और यह यंत्र छोटे पौधों पेड़ों बागीचों आदि में छिड़काव करने का काम आता है। और इस यंत्र को चलाने के लिए बाल्टी में दवाई का घोल बना लेते हैं और जाली वाली चूसन नली यानी कि सक्शन पंप को उसमें डालकर एक आदमी दोनों हाथों से पंप चलाता है और दूसरा आदमी प्रसार नली यानी कि जो हमारा पाइप है जिसमें से दवा निकलेगा उसको लेके फसल पर छिड़काव करते हैं।
1: तो किसान भाइयों, ये जानकारी अभी डॉक्टर साहब ने आपको दी, जो हैंड हेल्ड यानी कि हस्तचलित जो मशीनें हैं वो कितने तरह के मशीनें होती हैं, उसमें छोटे पौधों के लिए, बड़ों पौधों के लिए या फिर बागवानी पौधों के लिए आपको किस तरह के उपयुक्त मशीन जो है वो प्रयोग करें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप उचित मात्रा का आप छिड़काव करते हैं तभी आपको फायदा होता है, और इस उचित मात्रा को छिड़काव करने के लिए आपके पास सही मशीन और स्प्रेयर का चुनाव होना अति आवश्यक है, क्योंकि उस कीटनाशकों के रूप में आप अपने खेती में एक पूंजी का निवेश करते हैं, तो ऐसे में अत्यधिक मात्रा में अगर छिड़काव करें तो उससे कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, हाँ पूंजी आपका खेती में ज्यादा नष्ट होता है। तो ऐसे में सही तरीके से इसके जो तैयारी है आपको रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये हस्तचलित यानी हैंड हेल्ड मशीन के बारे में आपने बताया कि कोई भी छोटे मंझोले दर्जे के किसान कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इंजन चालित छिड़काव यंत्र के बारे में। तो ये इंजन चालित छिड़काव यंत्र क्या है, इसका हम कैसे ऑपरेट करते हैं और किन किन पौधों के लिए और किन किन फसलों के लिए करते हैं?
2: इंजन चालित छिड़काव यंत्र को प्रायः पेट पर लादकर या ट्रॉली पर बिठाकर भी चल सकते हैं। पेट पर लादकर चलाए जाने वाले यंत्र बेसिकली हल्के होंगे, तभी हम पेट पर रख सकते हैं, जबकि और उसमें टंकी की क्षमता 10 से 20 लीटर तक हो सकती है। किंतु ट्रॉली पर जो लगाने वाले यंत्र होते हैं उनको जो नाप होती है वो ट्रॉली के अनुसार होती है। ट्रॉली पर लगे इंजन की औसत शक्ति लगभग 3 से 4 HP तक होती है, और पीठ पर लादे यंत्र का इंजन ब्लोअर को घुमाता है तो अति तीव्र वेग से प्लास्टिक पाइप के अंदर से हवा फेंकता है और दवाई का घोल बहुत ही छोटी छोटी बूंदों को फुहार के रूप में फसल पर काफ़ी दूर तक जाकर गिरता है। ट्रॉली पर चलने वाले यंत्रों में दवाई का घोल अधिक दबाव के साथ नोजल में भेजते हैं और फिर यह छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर फिर से फसल पर दूर दूर तक गिरता है। इस तरीके के छिड़काव यंत्रों का प्रयोग हम लोग बागवानी में कर सकते हैं। इसके लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, बहुत ऊंचे पेड़, अगर वहाँ पर छिड़काव करना हो तो बेसिकली हम किसी भी हाइट तक के पौधे को इस छिड़काव यंत्र के द्वारा छिड़काव कर सकते हैं।
1: जी, तो ये ट्रैक्टर चालित यंत्र जो है उससे आप कैसे, कौन कौन से फसलों पे और किस तरह से आप कर सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। अब हम आते हैं भुड़काव यंत्र के बारे में। ये भुड़काव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे पौधे हैं जिस और ऐसे कीड़े हैं जिसके कि भुड़काव करना ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर साहब, ये भुड़काव यंत्र किस किस तरह का होता है और कैसे इसका प्रयोग करते हैं?
2: अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं तो छिड़काव यंत्रों का, जिसको कि अंग्रेजी में स्प्रेयर कहते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो घोल के रूप में मिलती हैं, उनको हमको स्प्रेयर या छिड़काव यंत्रों का प्रयोग करके ही डालना होता है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पाउडर फॉर्म में मिलती हैं और जिनको धूल फॉर्म में मिलती हैं, धूल की तरीके से, तो उनको हम जिन यंत्रों के सहायता से उपयोग करते हैं उसको हम लोग डस्टर या भुड़काव यंत्र कहते हैं। तो चूर्ण के रूप में मिलने वाली दवाइयों को छिड़काव के लिए ही इन यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और ये यंत्र चूर्ण के छोटे छोटे कणों को फसल पर समान रूप से, एक समान रूप से वितरित करते हैं।
1: जी,
2: भुड़काव यंत्रों को हस्तचालित रोटरी या हस्तचालित प्लंजर टाइप या इंजन चालित ब्लोअर युक्त वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले होता है हस्तचालित रोटरी भुड़काव यंत्र। इस यंत्र के डिब्बे में चूर्ण भरते हैं, मतलब जो दवा है उसे भरते हैं। डिब्बे में एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है। विडोलक मतलब इसलिए लगाते हैं कि उसमें जो चूर्ण है एक जगह मिल के जमा ना हो जाए, उसको लगातार हिलाते डुलाते रहने से वो चूर्ण की धूल की तरह बना रहता है, अन्यथा उसको एक जगह जमा होने का चांस रहता है।
1: जी,
2: इसलिए उसमें एक विडोलक लगा रहता है, हिंदी में इसको कहते हैं, और एक ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर का काम क्या है, पंखा की तरह समझिए कि एक पंखा है, पीछे और सामने धूल है, तो पंखा क्या करेगा, धूल को पूरा उड़ाएगा एक एक बूंद करके, एक एक दाना की तरह।
1: जी,
2: और वही दाना हमको अपने पौधे पे चाहिए। तो डिब्बे में क्या होगा, एक विडोलक और एक ब्लोअर लगा होता है, और जो गियर और एक हाथे की हाथ की सहायता से चलाते हैं। भुड़काव के लिए एक एक्सटेंशन नली लगा रहता है, तथा पट्टी की सहायता से यंत्र को हम इसको भी कंधे पर टांग सकते हैं। यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए डिब्बे में दवा का चूर्ण भरकर निकास सेट कर लेते हैं और हत्थे से ब्लोअर को घुमाकर हम डस्टिंग का काम या भुरकाव का काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें दूसरा यंत्र है प्लंजर टाइप। इस यंत्र में एक पंप होता है, चूंकि प्लंजर है ना, जिसके प्लंजर को हाथ से ऊपर नीचे चलाने से पाउडर जो है फसल पर एक समान गिरता जाता है। किसी किसी यंत्र में निकास द्वार से एक और नली लगी होती है जिसकी मदद से चूर्ण को, चूहे को बिलों में भी डाल सकते हैं। जैसे एक बार छिड़काव भी कर रहे हो साथ साथ चूहा का बिल जो है दिख गया तो वहाँ पे भी अलग से हम
3: डाल सकते हैं जी।
2: लास्ट है भुरकाव यंत्रों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्र। जैसा कि नाम से ही लग रहा है इसमें मानव चालित पावर हम लोग नहीं लेते हैं, इसमें हम लोगों को इंजन चालित लेते हैं। इसे या ट्रैक्टर से हम ले सकते हैं सीधे। ट्रैक्टर का यूज तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा एरिया हो भुरकाव करने के लिए, जैसे कि छिड़काव यंत्रों में करते थे। इंजन चालित लेंगे या ट्रैक्टर चालित लेंगे। इसे इंजन अथवा ट्रैक्टर से चलाते हैं और इंजन से चलने वाले हल्के भुरकाव यंत्र को तो हम पीठ पर लाद कर चल सकते हैं, परंतु वजन 50 से 70 किलो अगर है तो इस ऐसे केस में हमको ट्रॉली लगाना पड़ेगा, जैसे कि इंजन चालित छिड़काव यंत्र में करते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है। दोनों तरह के भुरकाव यंत्रों में इंजन में ब्लोअर है, विडोलक, ये सारे चीज़ लगे रहते हैं। इसमें एक एजिटेटर भी इंजन में घूमता है और डिब्बे के नीचे जो है ना बना छिद्र रहता है, उसी से चूर्ण निकल कर धीरे धीरे वायु नली, मतलब एयर का जो नली है जिससे हमको चूर्ण बाहर निकलेगा, उसमें धीरे धीरे करके गिरता है। और चूंकि पीछे एक ब्लोअर लगा हुआ, वो तेज गति से हवा को फेंकता है, तो उस हवा के साथ हमारा दवा भी पौधे पे जाके गिरता है
3: जी।
2: इस तरीके से हमारे भुरकाव यंत्रों में तीन मुख्य हैं, और अगर आपका खेत बड़ा है तो ऐसे केसों में शक्ति चालित भुरकाव यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए
3: जी। तो ये भुरकाव यंत्र के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आप ज़्यादातर सब्जी फसलों में देखते होंगे कि डस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको भुरकाव की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में आप अपने खेत के साइज और अपने ज़रूरत के मुताबिक मानव चलित या फिर स्वचलित जो कि मशीन चालित जो मशीनें हैं उसे आप भुरकाव के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि ये छिड़काव और भुरकाव मशीनों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर पूरी क्षमता के साथ एक तो प्रयोग अच्छी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और दूसरी तरफ से ये हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर इसको हम सही तरीके से प्रयोग में सावधानियां न बरतें। तो इनकी प्रयोग में सावधानियों के बारे में हमारे किसान भाई को ज़रूर अवगत कराएं।
2: किसान भाइयों, इन मशीनों का सही ढंग से प्रयोग न होने पर मशीन की पूरी क्षमता का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं और प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए भी इन दवाओं का विषैले प्रभाव से खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि इन मशीनों का प्रयोग सही ढंग से किया जाए। कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन ये है कि भुरकाव या छिड़काव कार्य प्रातः या सायंकाल करना चाहिए, मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करना चाहिए।
3: यानी समय का बहुत महत्व है,
2: बहुत ज्यादा महत्व है। उस समय होता है कि हवा जो है अति मंद गति से चलती है, बहुत धीरे धीरे चलना है, ठीक है। अन्यथा रसायन को हम एक जगह गिराएंगे तो अगर हवा तेज से चल रहा हो तो एक यहाँ गिरा रहे हैं लेकिन दवा जाके कहीं और गिरे,
3: किसी और फसल पे चला जा रहा है, आपके खेत से बाहर।
2: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा बात है कि प्रातः काल पौधे पे ओस के कण लगे रहते हैं
3: जी,
2: तो उन पे दवा अच्छे तरीके से
3: सेट हो सकता है, चिपक सकता है,
2: हर एक जगह फैल सकता है उनके सहायता से
3: जी।
2: दूसरी बात है, अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में यदि छिड़काव जो है बहती हुई हवा में कर रहे हैं हम, ठीक है
3: जी,
2: तो काम करने वाला जो है हवा की दिशा के विरुद्ध चले। हवा अगर नॉर्थ से साउथ चल रहा है तो आपको साउथ से नॉर्थ चलना होगा,
3: यानी वो दवा का उनके ऊपर जो है वो असर ना आए,
2: जिससे कि दवा जो है हाथ के हवा के साथ फसल पर ही गिरे, ना कि हमारे ऊपर गिरे और हमारे को रिस्क हो जाए
3: जी।
2: ठीक है। और जब भी चलें तो अपना नाक मुंह वगैरह जितना भी है ये सब को कवर करें अच्छे ढंग से। कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए चेहरा ढकने का नकाब होता है, दस्ताने भी हैं, कंपनियों बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये बना के बेचती हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जहरीले रसायनों का प्रयोग, उनके उपयोग संबंधी सुझाव को ध्यान में रखें जिससे कोई खतरा ना हो, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो जहर होते हैं, उनके बारे में आपको जो दवाई बेचेगा वो भी बता देगा कि कितना रिस्की है
3: जी। डब्बे पे भी लिखा हाँ। एक उसमें कॉशन
2: डब्बे पे भी लिखा रहता है। छिड़काव या भुरकाव समाप्त होने के बाद जब हम ये अपना काम कर लें यानी उस तब उसके बाद अपने हाथ को अपने चेहरे को सबसे पहले सादे पानी से धोएं साफ पानी से और फिर पूरे शरीर को साबुन के साथ धोइए क्योंकि कुछ रसायनों की जो है साबुन से प्रतिक्रिया होने पे शरीर में जलने का खतरा हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अपने शरीर को पूरे अच्छे साफ पानी से धोएं उसके बाद साबुन लगाएं। बिना शरीर और कपड़ों को साफ किए कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अन्यथा जान जाने का खतरा है। रसायन वाली खाली डब्बों को जमीन में दबा देना चाहिए उसे खुला में नहीं रखना चाहिए। अगर खुला में रखते हैं तो हो सकता है कोई जानवर आके उसमें मुंह लगा दे चाटने लगे जिससे कि उस जानवर को या कोई बच्चा ही कुछ कर ले
3: जाने अनजाने तो, में उसको कोई
2: इसमें सीधे जान जा सकती है और उसका कोई उपाय नहीं है
3: जी।
2: फिर अलग अलग आकार वाले रबर या फाइबर के वॉशर आपके पास होने चाहिए क्योंकि जब भी आप इन तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इनका उपयोग होता है और बार बार पता चलता है हम काम करने का उस समय ये खराब हो गया। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए किसान भाइयों को बहुत जरूरी है कि अपने पास ही रबर या फाइबर का वॉशर कम से कम अपने पास रखें और जहाँ भी घोल या दवा ऐसा गिरता हुआ दिखे या टपकता हुआ दिखे तो उसको केयर लें उसी समय ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ होते हैं क्लैंप हैं नली है नोजल है आदि को खोलने और सुधार कार्य करने के लिए आपके पास पेचकस होना चाहिए प्लास होना चाहिए रिंच वगैरह आदि अपने पास ही रखें किसान। यानी कि कोई छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो हम अब सोच रहे हैं कि हम इसको लेके जाएंगे सर्विस सेंटर में या दुकान में या शहर में तो आपका सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा
3: जी।
2: कभी भी मुंह से फूंक मारकर इन यंत्रों को
3: जी ना चलाएं
2: किसी भी सूरत में कैसा भी जरूरत
3: अगर
2: पड़े
3: फंस जाए अगर कुछ हाँ, चीजें ऐसे तो, एहसास हो तो हाँ, किसी भी कीमत पे मुंह नहीं लगाना है
2: आपको इन यंत्रों को चलाने के समय
3: जी। तो किसान भाई ये तो सावधानियों की बात हुई हम अपनी तरफ से भी जोड़ देते हैं कि जो व्यक्ति उसे मशीन को चला रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जरूर ख्याल रखा जाए। कमजोर व्यक्ति इसे जो थोड़ा सेहतमंद नहीं है तो उसे न चलाएं ताकि कई बार गश्त खाने या फिर इस तरह के जो असर में चपेट में आने की संभावना होती है। साथ ही दवाओं के रख रखाव के बारे में आपने डॉक्टर साहब बताया कि वो बिल्कुल सही जगह पर रखें क्योंकि अक्सर इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि गांव में कुछ विषैले पदार्थ खाने से या उसके जाने अनजाने या फिर किसी आवेश में आकर के भी खाने से मृत्यु की ऐसी बातें देखी जाती है। तो ऐसे में अपने उपयोग के मुताबिक ही घर में लाएं ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए कभी न सोचे घर में क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति ना आ जाए। हम अब आगे चलते हैं और इसमें फसल सुरक्षा यंत्रों के रख रखाव के बारे में क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो साल में यदा कदा कुछ बार ही होता है शायद साल में दो या तीन बार या पांच बार हम इसका प्रयोग करते हैं अगर हम खुद के लिए करें तो ऐसे में उसको रख रखाव बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम अगली बार हम उसे निकालें तो वो सही अवस्था में वो हमें मशीन प्राप्त हो।
2: किसान भाइयों अगर आप फसल सुरक्षा यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है कि आप उन यंत्रों का कैसे रख रखाव करते हैं क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जब भी ज़रूरत हो आप उसको यूज कर सकें। अगर आपने अपने यंत्रों का रख रखाव सही तरीके से नहीं किया है तो ये समझिए कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो यंत्र सही हालत में नहीं मिलेंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा। तो इन सभी कार्यों से बचने के लिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दें जैसे कि नंबर वन ये है कि काम जैसे ही समाप्त हो तो छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर उसको चलाइए। हाँ हाथ चालित है तो हाथ से इंजन चालित है तो इंजन से ही साफ पानी डाल के ताकि उसमें जो भी केमिकल है वगैरह ये सब जो भी है वो कहीं बाहर निकल सके
3: जी
2: बाहर निकल जाए और आपका यंत्र जो है पूरी तरीके से साफ हो जाए कहने का मतलब ये है। फिर है जालियों हैं और अलग अलग लगने वाले जो पुर्जों हैं उन सभी को भी अलग से साफ करने के बाद वापस अपने यंत्र में आप लगा लें जोड़ लें
3: जी।
2: इतना जब साफ कर लें तो ऊपर से आप पूरे छिड़काव यंत्र को ना साफ कर दें साफ कपड़े से
3: जी
2: ठीक है। छिड़काव यंत्र की टंकी में धूल या तलछट नहीं जाने देना चाहिए ये ध्यान रखें और दवा को हमेशा ही छानकर ही डालना चाहिए। उसमें ऐसे लगा रहता है स्ट्रेनर तो कहीं फटा वटा ना हो ये आप ध्यान रखें। अगर वो फट गया या कुछ ऐसा हुआ है तो आपका जो नोजल है उसके जाम होने की संभावना हो सकती है, और अगर नोजल खराब हुआ तो आपको ज़्यादा खर्च पड़ेगा।
3: जी,
2: जब छिड़काव यंत्र लंबे समय तक आपको प्रयोग में नहीं लाना है तो जितने भी वॉशर हैं चमड़े वगैरह के अगर यूज किए गए हैं तो उसमें तेल डाल दें ताकि वह सूख कर कड़ा ना हो जाए। अगर वो कड़ा हो जाएगा तो फिर उसे आपको बदलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। फिर है पंप के बैरल से निकास नली को आप अलग कर दें और उसे एक जगह नली को कुंडली बना के रख दें, मतलब एक जगह से बांध कर रख दें, और प्रसार नली या एक्सटेंशन पाइप जिसको बोलते हैं को भी खोलकर पंप और उसका टोटी सहित एक जगह आप रख लें, सबको अलग अलग सेस पोर्शन जो है।
3: जी,
2: फिर है हस्त दाबीय छिड़काव यंत्र की टंकी को कभी भी उसकी कुल क्षमता से पहले ही मैंने बताया था 2/3 भाग तक ही भरना चाहिए
3: ताकि प्रेशर बने।
2: हाँ, अदरवाइज प्रेशर नहीं बनेगा वो काम नहीं करेगा, तो 2/3 से अधिक कभी भी न भरें। आवश्यकता होने पे हस्त दाबीय टंकी से धीरे धीरे हवा निकाल दें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया हो तो,
3: जी,
2: ताकि छिड़काव रसायन तेजी से बाहर ना निकले, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो सकता है। ठीक है, तो और यदि प्लंजर छड़ जो पिस्टन के अंदर में मूव करता है वो मुड़ गया हो
3: जी,
2: तो भी आपका पंप जो है काम नहीं करेगा। वैसे केस में जरूरी है कि आप प्लंजर को जो छड़ है उसको निकालें और उसे आगे सीधा करें, अगर वो मुड़ गया बहुत ज़्यादा या टूटने की हालत में है तो उसे आप बदल दें।
3: जी,
2: निकास नलियों के जोड़ों से अगर कोई रिसाव हो रहा है वो सिंपल पानी चला के भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कहाँ से रिसाव हो रहा है, तो उसे आप बंद कर दें।
3: जी,
2: और चमड़े के वॉशर यदि घिस गए हैं तो भी उन्हें बदलने ही हैं।
3: जी,
2: अब शक्ति चालित यंत्रों पे आते हैं, तो शक्ति चालित यंत्रों के इंजन तेल ईंधन एयर क्लीनर ये जो हैं उनका दैनिक प्रयोग के पूर्व जांच करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे एयर क्लीनर साफ हवा आपके इंजन में जा रहा है कि नहीं, अगर वो गंदा हवा जा रहा है मतलब एयर क्लीनर को आपने साफ नहीं रखा है तो गंदा हवा जाएगा आपके इंजन में और आपके पूरे इंजन को ख़राब कर देगा। ठीक है, तो फिर आपके गाड़ी जो भी इंजन चालित है उसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है कि नहीं है, या पता चला ईंधन है ही नहीं हम चल दिए हैं खेत में लेके अपना मशीन,
3: बिल्कुल,
2: तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। शक्ति चालित यंत्रों के 2 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन है, बेसिकली पेट्रोल से चलता है, तो उसमें अनुमोदित मात्रा जो होती है तेल की उतना प्रयोग करें। अगर पेट्रोल इंजन है तो आपको स्पार्क प्लग होगा और कॉन्टेक्ट ब्रेक पॉइंट होगा
3: जी,
2: उसका गैप को जो रहता है जिसकी वजह से स्पार्क होता है इंजन चलाने में सहायता होता है, हर एक 100 घंटे के बाद आप जांच कर लें, 100 घंटे यूज करने के बाद।
3: जी,
2: ठीक है, ताकि वो गैप उतना ही रहे, अगर वो गैप बढ़ जाएगा तो फिर हमारा इंजन काम करना
3: बंद
2: कर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से 100 घंटे के बाद आप अपने कार्बोरेटर को भी जांच लें और लाइनों की सफाई कर लें कि कहीं कोई जाम वगैरह ना हो। अगर कार्बोरेटर भी काम करना बंद किया तो आपका पेट्रोल आपका जाएगा नहीं आपके इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर में, तो वो काम नहीं करेगा। वैसे ही स्पार्क प्लग को भी आपको देखते रहना है। ठीक है, शक्ति चालित यंत्र के इंजन के साइलेंसर और हेड को हर एक 50 घंटे पे और पिस्टन और सिलेंडर को 200 घंटे के बाद आप डीकार्बन करें। डीकार्बन मतलब क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो उसमें 4 स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक जिसमें जो जली हुई गैसें होती हैं बाहर निकलती हैं, वो जली हुई गैसें अगर अच्छे से ना निकले, मान लीजिए आपके पास 2 स्ट्रोक वाला पेट्रोल इंजन है, उसमें डीकार्बन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसमें सिंगल एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे कार्बन या कालिख ये जमा हो जाएगा और आपका इंजन को सीज कर सकता है। इसी के लिए उसको हर एक 200 घंटे के बाद डीकार्बन कर दें, यानी कि उसके पूरी तरीके से अंदर में जो भी काला रंग का तलछट जमा हुआ उसको पूरे सफाई करें। शक्ति चालित और छिड़काव यंत्र के ब्लोअर को भी 200 घंटों के बाद खोलकर पूरे तरीके से साफ करें, जो ब्लोअर लगाए हैं जो कि हवा को पीछे से फेंकता है आपके ऊपर। इंजन के सिलेंडर को भी साफ करना जरूरी है। अगर आपके पास एयर कूल्ड इंजन है तो वो आप देखेंगे आपके इंजन के चारों बगल बहुत सारे फिन्स के आकार के बने रहते हैं जो कि इंजन को ठंडा करने का काम होता है। अगर हम फील्ड में काम कर रहे हैं और उस फिन्स पर बहुत सारे धूल या मिट्टी के कण जमा हो जाएंगे तो हमारा इंजन अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी कूलिंग सिस्टम शीतलन प्रणाली अच्छे से काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारा इंजन गर्म होगा और इंजन थोड़ी देर के बाद सीज भी हो सकता है। इसी के लिए जरूरी है कि आपको जो फिन्स हैं उन पे धूल और मिट्टी को न जमने दें। ठीक है, अगर जम गए हैं तो उनको खेत में जाने से पहले काम करने से पहले आप उसे साफ कर लें।
3: जी,
2: फिर है डस्टर के ब्लोअर और चूसन नलियों को प्रयोग के बाद पूरी तरीके से, जैसे कि हम लोग स्प्रेयर के साथ करते थे, हमको इसको भी साफ कर लेना चाहिए, ठीक है। और डस्टर के चिकनाई दिए जाने वाले भागों में प्रतिदिन अनुमोदित मात्रा में ग्रीसिंग जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, जब भी दो भाग अलग अलग मूव कर रहे हों एक साथ, ठीक है, और एक दूसरे से कांटेक्ट में हो, तो वहाँ पे आपको ग्रीसिंग देना है, ये तो सभी किसान भाई जानते हैं, तो वैसा आपको करते रहना है
3: जी। तो किसान भाई, इसके रख रखाव के बारे में आपने जाना कि जब आप मशीनों को रख देते हैं तो अगली बार अगर आपको जब प्रयोग करने का समय आए और सही स्थिति में वो सही हालत में चलता हुआ ना मिले तो आपको बहुत खीज होती है और जो समय पर जो दवा डालने का आपका एक जो लक्ष्य होता है उसमें आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि फसल सुरक्षा यंत्रों, चाहे वो हस्तचालित हो चाहे वो पावर यानी शक्ति चालित हो, तो आप इसको कैसे रख रखाव करें, तो हम आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, जो पावर चालित जो नैस्पेक स्प्रेयर का जो रख रखाव एवं सावधानियां जो हैं उसके बारे में भी चलते चलते आप थोड़ी चर्चा जरूर कर दें।
2: किसान भाई आजकल बहुत आयत मात्रा में नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग कर रहे हैं और इनका रख रखाव के बारे में उनको जानकारी देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके पास अगर नैपसेक स्प्रेयर है तो इनका रख रखाव कैसे करें, इसी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कार्य समाप्त करने के तुरंत बाद आप अपने स्प्रेयर या छिड़काव यंत्र में साफ पानी डालकर चलाइए, जैसा कि मैंने पहले रखरखाव में बोला था, ताकि इसके सभी भीतरी भाग अच्छे तरीके से साफ हो सकें। फिर है छिड़काव यंत्र को बाहर से भी आपको साफ रखना है, अंदर से धोने के बाद आपको बाहर से भी कपड़े वगैरह से साफ कर दें। फिर है छिड़काव यंत्र की टंकी जो है उसमें धूल इत्यादि को नहीं जाने देना चाहिए, यानी पूरे ढक्कन जो है कहीं से भी ऐसा ना हो फटा हुआ है और उसी में कपड़ा वगैरह बांध के हम लगा दिए तो आप अच्छे से आप अपने इंजन का ख्याल नहीं रख पाइएगा। साथ ही दवा का गोल जो है हमेशा ही छान कर डालना चाहिए, उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है ऐसे, ठीक है, आप देख लीजिए उसमें भी कहीं फटा वगैरह ना हो, और अगर फटा है फिर भी आप यूज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। छिड़काव यंत्र प्रयोग करने से पहले उसके सभी गतिशील भागों में तेल या ग्रीस लगाना चाहिए, ये हर एक किसान बंधु जानते हैं। यंत्र यदि अधिक दिनों तक चलाया जा चुका है तो उसके स्पार्क प्लग को आप देखिए, उसके कार्बोरेटर को देखिए, ऐसे तो 200 घंटे में, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक 200 घंटे पे आपको स्पार्क प्लग और कार्बोरेटर और जो नलियां हैं उनकी सफाई को देख लेना है, सभी पाइपलाइनों को साफ कर लेना चाहिए। इंजन के सिलेंडर, और एयर कूल्ड इंजन है तो आपको फिन्स को भी देखना है कि उस पर गंदगी नहीं जमा है, गंदगी जमा होगी तो आपकी कूलिंग सिस्टम जो है शीतलन प्रणाली काम नहीं करता है। यदि यंत्र का भंडारण अधिक समय के लिए करना हो तो ऐसा अगर करने का है तो आप उसे कपड़े से या रैक्सिन के बने कवर में अच्छे से ढक कर रखिए। इसके अलावा इन यंत्रों को प्रयोग में कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि नैपसेक स्प्रेयर के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो इनका प्रयोग भी जैसे कि प्रातः या सायंकाल में करना चाहिए जब हवा मंद गति से चलती है। अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में यदि छिड़काव हवा के बहती हवा में करना है तो आपको उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करना है, अपने मुंह को, चेहरे को, इसके अलावा सारे शरीर को ढक कर रखने की कोशिश करें, मास्क लगाएं, चश्मा लगाएं, दस्ताने लगाएं वगैरह वगैरह। फिर जहरीले रसायनों का प्रयोग अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी करना है, आपको उचित समय पर छिड़काव करना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। आपको जो दवा मिलेगी उस पर भी बहुत सारी सावधानियों की बात लिखी रहती है, उनको आप उचित ढंग से पालन करें। और छिड़काव के समाप्ति के बाद अपने हाथ और चेहरे को अब पहले आप हाथ साफ पानी से धोएं, फिर साबुन से, जो सारी सावधानियाँ थी पहले उसी तरीके के हैं। उपरोक्त सावधानियों को दिन प्रतिदिन अपनाकर आप छिड़काव या छिड़काव मशीनों से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और एक दवाइयों का छिड़काव, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लोकल कृषि प्रसार अधिकारी या विशेषज्ञ के सलाह के अनुसार भी कर सकते हैं
3: जी। तो किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बताया 90.8 एफएम ग्रीन, जो कि आपको कृषक मंच कार्यक्रम में हमेशा कृषकों के हितों की बात हम करते हैं, तो आज जो हमने बताया वो है फसल यंत्र, जो फसल सुरक्षा यंत्र है यानी कि जो स्प्रेयर है या फिर जो डस्टर है, इसे आप कैसे प्रयोग करें, कैसे रख रखाव करें, क्योंकि फसल उत्पादकता बढ़ाने की बात पर तो आप हमेशा पीछे लगे रहते हैं लेकिन फसलों को नष्ट होने से बचाने के ऊपर आपका ध्यान कम जाता है। ऐसे में ओवरऑल यानी कि कुल मिलाकर आपकी
1: उत्पादकता प्रभावित होती है। तो ऐसे में अगर आप सही फसल सुरक्षा यंत्र का चुनाव करें, रख रखाव करें, सही से उसका उपयोग करें, तो निश्चित ही आपके फसल भी अच्छे होंगे और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: जी। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
4: नाटक देखो, नाटक देखो, आओ सारे नाटक देखो, खसरा और रुबेला की कुछ जरूरी बातें सुन लो। नाटक देखो, नाटक देखो।
5: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं, हाँ या ना?
6: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
5: हाँ हाँ। इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
6: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
7: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
8: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
7: क्या क्या क्या?
6: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
7: अच्छा,
8: तो सबकी समझ में आ गया ना, खसरा रुबेला बीमारी है घातक।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डायमेथो 8 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

Ladies first. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है। और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है
दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है। और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है, कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है, बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है। लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं। और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को।
लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। सबसे जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आरजे अनु को और ये है हमारा खास कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम। अभी हम बात करेंगे, जी हाँ, वैसे तो जो खेती है वो सिर्फ हल और जो खेत है वहीं तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें किसानों की सहायता के लिए बहुत सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं जहाँ से वो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे योजनाओं के बारे में हो, चाहे आपको खेती से जुड़ी कोई भी दिक्कतें आ रही हों, आप उन ऐप का इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि हमारा विषय है सूचना क्रांति, मोबाइल ऐप का कृषि में उपयोग। इस विषय को लेकर हमारे बीच है डॉक्टर चंदन कुमार पांडा, जो कि वैज्ञानिक हैं प्रसार शिक्षा विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में, और बहुत सारी जानकारी आज आप सभी को देने वाले हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू मैडम।
1: डॉक्टर साहब, सूचना और एक उपयोगी सूचना, क्या अंतर है, ये क्या होता है?
2: थैंक यू मैडम। एगेन, तो पहले जितना किसान बंधु हमारा FM रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, सबको थैंक यू बोलूँगा, और उसके साथ मैं प्रसार शिक्षा की तरफ से भी आप सबको हार्टफेल ये बताता हूँ। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन आपने रेज किया है, जो सूचना और मतलबी सूचना बा जो भी बोले यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन होता है, देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जब सूचना आता है, सब सूचना सबके

0: क्या इंटरेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसी तरह का इंफॉर्मेशन हम लोगों को देना चाहिए जो उनका जरूरत है, और उसी आधार पर आप भी मैं डिस्कस भी करूंगा मोबाइल ऐप्स में, जिसे डिफरेंट टाइप का मोबाइल ऐप है, बहुत मोबाइल ऐप्स है। आप देखोगे तो एग्रीकल्चर का गूगल प्ले स्टोर में जाके एक बार टाइप करेंगे तो मोबाइल ऐप्स इन एग्रीकल्चर अब बहुत तरह का मिल जाएगा। नॉट नेसेसरीली किसान के लिए हर तरह का मोबाइल ऐप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्यों सब मोबाइल ऐप सब एक ही तरह से उसको सपोर्ट नहीं करता है, पर जरूरत को उसको जो जरूरत है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इसके बाद जो डिस्कशन में किसान के पास रहता है, जो मोस्टली किस तरह का इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है किसान को, ये सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। क्यों मोबाइल ऐप्स जब डेवलप किया जा रहा है तो डेवलप इसीलिए किया जा रहा है ना, किसान के जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए। तो किसान को किस तरह का इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ता है, मैंने एक स्टडी भी किया था एक बाजू वाला 3-4 गाँव लेके, जो इंफॉर्मेशन किस तरह का इंफॉर्मेशन किसान को जरूरत था, मैं उसका रैंकिंग भी किया था। तो रैंकिंग करने के बाद मैंने देखा जो किसान को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जरूरत होता है, बीज, जो सीड हम लोग बोलते हैं, बीज का सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो लोग। सबसे बोलते हैं सर बीज अच्छा क्वालिटी बीज मिल जाएगा, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। सर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही होता है जो अच्छा क्वालिटी का बीज, इसके बारे में किसान को इन्फॉर्मेशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जरूरत होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो तो पौधा तो क्या बोलते हैं जर्मिनेट हो गया, सीड भी जर्मिनेट कर गया, पौधा भी आ गया, उसके बाद कीड़ा मकोड़े के मतलब इंसेक्ट और डिजीज का अटैक आ जाता है। इसके बारे में किसान को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का जरूरत है, क्यों टाइमली समय के आधार पर जितना कीड़ा मकोड़ा आता है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो फसल का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसका मतलब हुआ उनका जो एक्सपेक्ट जो ईल्ड होता है वो एक्सपेक्ट ईल्ड के आधार पर नहीं पहुँच पाएंगे। और दूसरा उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं किसान लोग, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जे शुरुआत से लेके, जैसे मतलब किस समय हम बुआई करें और किस समय हम जुताई करें, कब पटाए मतलब इरिगेशन कब डाले, हम खाद किस समय दें, कितना अमाउंट ऑफ खाद देंगे, इस तरह का तरह तरह के इन्फॉर्मेशन का किसान के पास जरूरत पड़ता है। और आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन का जरूरत भी है ना, किसान को हम लोग कैटेगरी करते हैं मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, मतलब उसका लैंड कितना अमाउंट ऑफ लैंड है उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ कैटेगरी है, रेगुलेशन है उसके, वो किसान का भी इन्फॉर्मेशन का भी रिक्वायरमेंट ना हम ये स्टडी करके देखे हैं, जो वो भी चेंज हो जाता है उसका लैंड होल्डिंग के आधार पर। और खरपतवार मतलब वीड मैनेजमेंट के बारे में किसान को भी बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन जरूरत पड़ता है।
1: जी, और पहले किस प्रकार की सूचना पहुंचाई जाती थी किसानों तक?
0: ओके हाँ, पहला देखिए इन्फॉर्मेशन डिलीवरी करने का जो तरीका था मोस्टली क्या होता था, अभी भी है मतलब फार्मर टू फार्मर, एक कोई गांव में अच्छा किसान है बहुत दिन से खेती के वगैरह कर रहा है, उनके इस क्रॉप के कल्टीवेशन व खेती के बारे में ज़्यादा कुछ पता है, वो तो क्या करते थे वो एक्सपीरियंस जो हो जाता है और उनके साथ थोड़ा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर व साइंटिस्ट बोलिए उन लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत रिश्ता बना रहते थे, रेगुलर आना जाना लगा रहते थे, वो आने जाने के अंदर उनका भी नॉलेज ग्रेन हो जाता था, एक्सपीरियंस भी बढ़ता था। वो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर, वो हो गया गांव का प्रोग्रेसिव फार्मर। तो गांव का जितना भी प्रोग्रेसिव फार्मर होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल पहले भी प्ले करता था, अभी भी वो लोग वो इम्पोर्टेंट रोल आपका किस खेती में प्ले कर रहा है। ये छोड़ के भी हम लोगों का सिस्टम में जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर होता है, किसान सलाहकार होता है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होता है, ये सबसे भी किसान को इन्फॉर्मेशन मिलता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी किए हैं तो उसमें भी देखा है एग्री इनपुट डीलर्स, इसका मतलब जहाँ से किसान लोग खाद दबाव वगैरह जो भी लेते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है। क्यों होता है, देखिए उनके पास वो लोग जब दुकान मनाते हैं या दुकान चलाते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड बोलिए जो भी है वो सब रहता है, और किसान को भी वो लोग एडवाइस देते हैं, क्या वो लोग भी ट्रेंड होता है। हमारा यूनिवर्सिटी में भी 15 दिन का एक ट्रेनिंग भी चलता है उन लोगों के लिए, फर्टिलाइजर डीलर के लिए, तो उसे फर्टिलाइजर तो नहीं है उसके साथ वो लोग कुछ दवा वगैरह भी रखते हैं, तो उस आधार पर उन लोगों के पास भी थोड़ा अच्छा सा नॉलेज हो जाता है और वो लोग कंपनी के साथ भी जुड़े हुए हैं और कंपनी वाले भी उन लोगों को रेगुलरली टाइम टू टाइम उन लोगों को अपडेट भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये सब अपना जो कन्वेंशनल जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, मतलब जहाँ से किसान को इन्फॉर्मेशन मिलते हैं वो है वहाँ से वो मिल जाता है। वो छोड़ के हमारा पुराना जो है अब हम लोग रेडियो एफएम बोल रहे हैं, लेकिन रेडियो तो

0: बहुत पुराना समय से है, जब से हमारा क्या बोलते सोवियत क्रांति जब हुआ था, हाई यील्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था, तब से ही वो क्या बोलते हैं, जब शाम के समय में किसान के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है रेडियो, गवर्नमेंट का क्या सोच है, गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है, मान लिया गेहूं का खेती हो रहा है उस समय के आधार पर किस तरह का कीड़ा मकोड़ा आ सकते हैं उसके बारे में वो लोग भी डिस्कस भी करते हैं। तो इस आधार पर आप देखें तो ये टोटल एक सिस्टम है जो पहले था अभी भी है, लेकिन समय के आधार पर आप देखिए सोशल मीडिया बोलिए, आपको ये भी पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये भी है किसान हेल्पलाइन है, वहाँ से भी किसान लोग, वहाँ पे भी किसान लोग फ़ोन लगाते हैं व फ़ोन करते हैं, वहाँ से भी उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अभी के समय में जो ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन जो किसान लोगों को पहले मिलता था मान लेते थे, अभी भी ले रहा है, लेकिन नया नया कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये लोग मांग रहे हैं। जैसे आप मान लिया ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, कुछ कुछ किसान बोलते हैं सर आप बताइए ना सर कहाँ से ड्रोन खरीदेंगे, कितना प्राइस होगा, उसको कैसे यूज किया जाएगा, और फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में वो पूछते हैं। और सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट अभी एरिया हो रहा है, देखिए लेबर जो मार्केट है ना थोड़ा शिफ्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरे सेक्टर में ज़्यादा लेबर शिफ्ट हो रहा है, तो लेबर एक इशू हो गया। जो जैसे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय ज़्यादा दिक्कत है, हार्वेस्टर जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ लेबर का भी क्राइसिस होता है, इस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। और किस तरह के इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट इंफॉर्मेशन तो है, मार्केट फ्लक्चुएशन मतलब जैसे मान लिया कोई एक फसल का भागलपुर यहाँ पर एक प्राइस होता है, पटना में भी एक प्राइस होता है, तो थोड़ा गैप हो जाता है, कोई कभी कभी क्या हो जाता है जैसे भागलपुर में 5 रुपया कम, पटना में 10 रुपया मान लिया ज़्यादा होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसान के पास पहुँच जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा भाव मिल जाता है और उनको भी उस तरह से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है और ये भी मिलता है, बेनिफिट भी मिलता है
1: जी। अगला सवाल ये है सर कि इसका उपयोग करने के लिए क्या करना होगा किसान भाइयों को, क्या कुछ प्रोसेस है इसके बारे में बताइए।
0: हाँ देखिए, इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हो ही गया है उसके आधार पर आप मोबाइल ऐप्स आ गया है, मोबाइल ऐप्स आपका पहुंच गया है। मोबाइल ऐप्स मतलब एक एंड्रॉयड जो फोन होता है स्मार्टफोन बोलते हैं, दो तरह का, एक आईओएस सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, दूसरा होता है एंड्रॉयड, मोस्टली आप देखेंगे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में चलता है। और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर वही मोबाइल अभी देखिए जो स्मार्टफोन हम लोग बोलते हैं, इस स्मार्टफोन के कारण इन्फॉर्मेशन ठीक से आप देंगे तो हम लोग एक टेक्निकल टर्म फिंगरप्रिंट बोलते हैं, फिंगर टिप बोलते हैं, तो आपका सामने ऑलवेज 24/7 मोड में कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मोबाइल ऐप्स के थ्रू से। नहीं अभी जो बात होता है मोबाइल ऐप्स है क्या और ये कैसे किसान को हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे ना। मोबाइल ऐप्स एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू से कोई भी किसान क्रॉप का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसका क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब उसका जो बीमारी वगैरह होता है, जो कीड़ा मकोड़े आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, और भी कुछ इशू जैसे मार्केटिंग रिलेटेड जो इशू है वो भी यहाँ से ये लोग ले सकते हैं
1: जी। अब इसके बाद एक सवाल और कि खेती में कौन कौन से मोबाइल ऐप्स जो अभी हैं उपलब्ध हैं जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होंगे।
0: अच्छा देखिए अब देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मोबाइल से लिखेंगे तो बहुत मोबाइल से आपको मिल जाएगा, कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट हो सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह वो लोग भी बना रहे हैं, कोई इंडिविजुअल लेवल भी बना रहे हैं, तो कुछ मोबाइल ऐप्स आपको फ्री में मिल जाता है, कोई मोबाइल सब पेड होता है, लेकिन इस मोबाइल ऐप को हम कैटेगरी करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कुछ होता है क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड, दूसरा होता है मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा होता है क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, और भी होता है प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और फाइनली वो हम लोग बोल सके सीड रिलेटेड। इसका मतलब यही हो गया, आप जितना भी मोबाइल ऐप है उसको कैटेगरी कर दो ब्रॉडली, हम लोग 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएगा। तो एक हो गया क्रॉप मैनेजमेंट, दूसरा हो गया फिर रिपीट कर रहा हूँ मार्केटिंग रिलेटेड, तीसरा हो गया क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड, चौथा हो गया प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड, और पांचवा हो गया सीड रिलेटेड, मतलब कहाँ से आपको अच्छा क्वालिटी सीड मिल जाएगा ये आपको। तो इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हम छोटा छोटा करके इसके बारे में बताया, क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड। इसमें क्या किस तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जैसे मान लिया आपको सोइंग कब करना चाहिए, सीड रेट आपको कितना देना चाहिए, और कब आपको क्रॉप के मैच्योरिटी के बारे में बताएगा, इरिगेशन कब देना मतलब आपको देना चाहिए, इस रिलेटेड छोटा छोटा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसमें ज़्यादा रहता है। और क्रॉप प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो जो मोबाइल ऐप्स होता है उसमें देखिए क्रॉप मैनेजमेंट रिलेटेड ज़्यादा नहीं रहता है। प्लांट प्रोटेक्शन मतलब आप कीड़ा मकोड़ा जो लगेगा, जो जिस तरह का प्रॉब्लम आएगा, मान लिया मकई का बा गेहूं का फसल में किसी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक हो गया, मतलब कीड़ा का अटैक हो गया, उस समय किसान के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों? वो टाइम नहीं देता है। मतलब जब कीड़ा का अटैक हो जाता है या कोई बीमारी आ जाता है तो किसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। कुछ कुछ ऐसा होता है, मान लिया आपको जैसे बताया था मेज के लिए फॉल आर्मी वार्म, ये बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग इंसेक्ट के आधार पर काम करता है। तो ये फॉल आर्मी वार्म को आप 2-3 दिन उसका क्या बोलते हैं मोस्टली जो सीडलिंग स्टेज में रहता है, छोटा जब रहता है पौधा, उस समय टाइमली उसको मैनेज आप नहीं किए हो तो आपका क्रॉप को वो टोटली डैमेज कर देगा। तो किसान को उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम वो सिम्टम क्या है, किस तरह से दवा दे, मतलब पेस्टिसाइड कैसे अप्लाई करे, किस समय अप्लाई करे, शाम में करे ना सुबह करे, और करने के समय हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्यों, ये भी सब इशू को ये प्लांट प्रोटेक्शन रिलेटेड जो ऐप्स होता है, जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का ई नीरोग आप लोगों को पता होगा, वो इस रिलेटेड डिस्कशन करता है। और मार्केटिंग रिलेटेड जो क्या होता है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का ई नेम एक प्रोग्राम भी है, उसके आधार पर वो जो जितना भी मार्केट को कनेक्ट करके रखते हैं, इसके आधार पर आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट है ऑल ओवर इंडिया का, मेजर जो क्रॉप होता है बा वेजिटेबल होता है उसका प्राइस कैसे फ्लक्चुएट होता है बा कैसा प्राइस रहता है पता चलता है। आप बोलेंगे सर इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा किसान को जरूर होगा, वो बार्गेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम जितने भी बोले अभी भी हमारा सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम मार्केटिंग सिस्टम में मिडिल मैन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मेजर रोल प्ले करता है। तो किसान को जब पता चल जाएगा, जैसे ठीक है दिल्ली का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, पटना का मार्केट में गेहूं का भाव ऐसा चल रहा है, कलकत्ता में ऐसा चल रहा है, तो किसान क्या मिडिलमैन के साथ बार्गेन करके वो थोड़ा प्राइस भी अपना बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग रिलेटेड ऐप्स का बहुत बड़ा वैल्यू है। और मैंने ये भी बताया था जो मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ऐसा भी ऐप्स है जिस ऐप्स के थ्रू से किसान भी चाहे तो अपना सामान वगैरह थोड़ा लार्ज क्वान्टिटी होना चाहे वो भी बेच भी सकते हैं। और क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस सपोर्ट करते हैं, और कुछ कुछ कंपनी भी आगे बढ़ गए हैं वो क्रॉप इंश्योरेंस रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके किसान को भी सपोर्ट करते हैं, तो वो भी मिल सकता है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन नेचुरली आप लोगों के मन में आएगा, वो क्वेश्चन नहीं है जे सर मोबाइल ऐप्स तो है, मोबाइल ऐप्स कैसे हम सर्च करें और कैसे मोबाइल ऐप्स को हम लोग इंस्टॉल करें, ये क्वेश्चन जरूर आपके पास आएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बहुत को पता है लेकिन फिर भी मैं ये भी मालूम करना हम लोग को होना चाहिए जी। कुछ कुछ किसान मान लिया इस रेडियो टॉक सुनने के बाद उसका मन में भी आ सकता है नहीं सर इन लोग जब बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जब बोल रहे हैं यार ये मैंने मोबाइल ऐप्स हमारा काम में आ सकता है, तो वो कैसे आप इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ बता देता हूँ। पहले आपको स्पेसिफिकली हम बताता हूँ, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक सर्च बॉक्स दिखाएगा, तो सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे मान लिया हमारा यूनिवर्सिटी का जो मोबाइल ऐप है ई नीरो, आप इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा एक ऐप्स चलता है प्लांटिक्स, मान लिया आप टर्म को आपको ये करना पड़ेगा क्या बोलते हैं टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करने के बाद क्या होता है वो सर्च जो एक क्या बोलते हैं एक ग्लास की तरह सर्च को सिम्बल कुछ देता है उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने उस रिलेटेड मोस्टली मान लिया हमारा ई नीरोग होगा तो ई नीरोग का ऐप्स का आइकॉन आपके पास आ जाएगा, और उसमें फाइल कितना एमबी का होगा नहीं होगा वो भी उसमें लिखा रहता है, आप देख लीजिए उतना ज़्यादा मान लिया किसी का 10 MB हो सकता है, किसी का 15 MB हो सकता है, किसी 20 MB हो सकता है, आप आपका मोबाइल का स्टोरेज कैपेसिटी का आधार पर सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको इंस्टॉल में जाइए। तो इंस्टॉल जब कर देंगे थोड़ा टाइम लेगा सर्वर के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के पहले अभी जो सिस्टम होता है सिक्योरिटी चेक में जाता है, तो सिक्योरिटी चेक करके आपको भी दिखा देगा इस ऐप्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो सीधा आपको वार्न कर देगा ये ऐप्स का सिक्योरिटी रिलेटेड सम इशू है। आप देखने के बाद कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं है तो आप इसको क्या बोलते हैं ये कर लीजिए, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा सीधा ही ओपन करके आएगा OPEN। तो ओपन आप क्लिक करेंगे तो जैसे प्लांटिक्स जो है, अभी देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, सर हम इंग्लिश में तो हमको डील नहीं कर पाएंगे, बात सही है। उसके लिए भी अभी का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, लोकल वर्नाकुलर भी आ सकता है। मान लिया आपको हिंदी की जरूरत है, ठीक है, लैंग्वेज चूज कर लीजिए, इंग्लिश की जगह आप हिंदी मराठी गुजराती इंग्लिश बंगाली बहुत तरह का लैंग्वेज उसमें ऑप्शन रहता है। आप हिंदी चूज करना चाहते हैं सीधा हिंदी को चूज कीजिए, और चूज करने के बाद वहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा ऐप्स के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें दिया जाता है, मतलब आपके ऐप्स के क्या बेनिफिट है, आप ऐप्स को कैसे ऑपरेट करोगे, इस तरह का दिया जाता है। और उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे बहुत तरह का वो आपका ये मांगता है, एक्सेप्टेंस मांगता है। जैसे वो आपका लोकेशन भी ट्रैक करने के लिए परमिशन मांगते हैं, आप देंगे तो होगा। वो आपका मोबाइल का कैमरा का भी परमिशन मांग सकता है, जो आपका मोबाइल कैमरा यूज कर सकते परमिशन देंगे कि नहीं देंगे वो भी मांगता है। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट टाइप, कोई कोई मोबाइल में ऐप्स में ऐसा भी हो सकता है आपका मोबाइल नंबर मांगेंगे, और मतलब आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद एक OTP आएगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इस तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके आधार पर आपका जो मोबाइल ऐप्स का इंस्टॉल हो जाएगा, होने के बाद आपको वो मोबाइल ऐप्स को यूज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है सर किस तरह का मोबाइल ऐप्स है, पहले मैंने बता दिया, आपके पास पेन और पेपर है तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। ई निरोग एक मोबाइल ऐप्स है, पर्टिकुलरली हमारे यूनिवर्सिटी का ये मोबाइल ऐप्स है, ये प्लांट प्रोटेक्शन मतलब इंसेक्ट कैटाग हो डिजीज का प्रॉब्लम हो इसके बारे में। दूसरा एक ऐप्स है लिख लीजिए एग्री ऐप्स है, AGRI एग्री APP ऐप। इसके बाद एक है इप्को फर्टिलाइजर के बारे में आप सुने हैं, इप्को एक बड़ा कंपनी है, इप्को किसान IFFCOKISAN इप्को किसान। इसके बाद आपको मिल जाएगा पूसा कृषि PUSA पूसा KRISHI पूसा कृषि। इसके बाद आपको ऐप्स मिल जाएगा खेती KHETI खेती। इसके बाद आपको मिल जाएगा कृषि जागरण KR

0: IJAK apps Bijak, ये मोस्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्रॉप इंश्योरेंस, इसके बाद आपको मिल जाएगा खेती बाड़ी KHETIBADI, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ KHETIBADI खेती बाड़ी। ये मोस्टली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है ना उन लोगों के लिए ये इस एप्स के थ्रू से आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं इसके थ्रू से। ये छोड़ के एग्री मार्केट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2016 से एक एप्स अभी भी काम कर रहा है, इसमें वेदर डाटा क्रॉप रिलेटेड डाटा वो पिक्चर बेस है, देख सकते किसान सुविधा बोलते हैं KISAN SUVIDA सुविधा है। ये छोड़ के आपको और भी मोबाइल्स है जैसे है फार्म बी FARM फार्म BEE, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स है। आप थोड़ा ऐप्स के बारे में पढ़ भी लीजिए और यूट्यूब वगैरह में जाइए, वहाँ भी जाके भी आप ऐप्स के बारे में थोड़े देख भी सकते हैं वो कौन सा ऐप किस कितनी आपका काम में आएगा, क्यों बहुत तरह का ऐप्स है। देखिए हर तरह का ऐप्स आपके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप वही ऐप्स को यूज़ कीजिए। पहले बार बता रहा हूँ ये सिक्योरिटी के लिए, आप इंस्टॉल करने के समय सिक्योरिटी एक बार चेक देखिए क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ये मोबाइल ऐप्स को आपका मोबाइल में कंटिन्यू, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत तरह का फ्रॉडुलेंट रिलेटेड इशू आता है, कुछ लिंक वगैरह भेज देते हैं, उसके बारे में भी केयरफुल आप लोग रहिए, ये भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो फाइनली यही बताएंगे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसका अपॉर्चुनिटी आपके सामने भी है, आप कैसे इसको यूज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि वो स्मार्टफोन भी अवेलेबल है और इंटरनेट का नेटवर्क भी अभी अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द गांव में तो पहुंच ही गया इंटरनेट का कनेक्शन। सो इट इज़ नाउ अप टू यू किसान बंधु, फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और नया साल आप लोगों के लिए अच्छा भी हो, ये भी हम ऊपर वाला से क्या प्रार्थना भी करते हैं, और आप लोग यूज कीजिए और हमारा यूनिवर्सिटी का जो 90.8 FM ग्रीन जो इसको भी सुनिए और आप लोग भी बेनिफिट भी रहिए। थैंक यू
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, तो आप इन ऐप का ज़रूर लाभ उठाइए, आपके लिए ही ये ऐप डेवलप किए जाते हैं, इससे आपको बहुत बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम, नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: नमस्कार, मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन BAU सबौर से। आज मैं सरधो ग्राम के एक दीपक कुमार से मिल रहा हूं, जो कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां व्यक्तियों के घरों में साझा करती है। तो दीपक जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप पोषण के बारे में क्या जानते हैं।
3: पोषण एक आहार जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसमें भोजन की प्रक्रिया को किया जा भोजन की प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, जिसमें जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, जिससे हमारे शरीर को विटामिन प्राप्त हो, प्रोटीन मिले, ऊर्जा मिले, इसे हम पोषण कर सकते हैं।
2: जी, ये तो हो गई किताबी नॉलेज की तरह, आप अपनी भाषाओं में भी सभी सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं।
3: पोषण को हम अपने जीवन में उपयोग खाद्य पदार्थ के द्वारा ला सकते हैं, जिसके अंतर्गत साग सब्जी इत्यादि आती है, साग सब्जी, मांस मछली, दूध दही, दाल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं।
2: जी जरूर, बहुत सारे व्यक्ति दवाइयों को लेते हैं पोषण के रूप में। अगर कोई व्यक्ति दवाई ना लेकर पोषण के लिए घरेलू चीजों का उपयोग करे तो वो किन किन प्रकार से ले सकते हैं।

0: मांस मछली दाल मशरूम ये सब चीज़ों को ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, सब्जी भी ले सकते हैं, साबुत अनाज भी यूज कर सकते हैं, मोटा अनाज जिसको हम कहते हैं, उससे भी शरीर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, पोषण मिलता है।
1: जी जरूर, पोषण में आपका चौथा क्वेश्चन है, पोषण में आयरन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फोलिक एसिड वगैरह को हम कैसे प्राप्त करें?
0: इसमें हम यूज कर सकते हैं, मशरूम को यूज कर सकते हैं, दाल को यूज कर सकते हैं, अंडे को यूज कर सकते हैं, मांस मछली इत्यादि, कद्दू का बीज, मशरूम, ये सब हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत,
1: जिसमें कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फोलिक एसिड वगैरह पाया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, अगर व्यक्ति सही से पोषण या पोषाहार नहीं लेता है तो उन्हें क्या क्या समस्या का सामना किया करना पड़ सकता है?
0: सही से खाना पीना नहीं खाने के चलते आदमी बीमार पड़ सकता है, मोटापन हो सकता है, हार्ट अटैक का आ सकता है समस्या, थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है, खून की कमी हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकता है सही पोषण नहीं मिलने के बाद।
1: जी, महिलाओं को सही से पोषाहार ना मिले तो क्या समस्या हो सकती है?
0: खून की कमी आ सकती है, बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है, कमजोरी आ सकता है, थकान आ सकता है, हार्मोन का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो आ सकती है।
1: सातवां क्वेश्चन है, बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर क्या समस्या हो सकती है?
0: बच्चों को सही पोषाहार नहीं मिलने पर उसके सोचने की क्षमता बिगड़ सकती है, आँख की रोशनी जा सकती है, कुपोषण का शिकार हो सकता है, बच्चे के शरीर में वृद्धि नहीं आएगी, बहुत सारी समस्याएं से उसको जूझना पड़ सकता है।
1: जी, हमारे श्रोताओं से कुछ एक क्वेश्चन ये है कि लीन प्रोटीन क्या होती है?
0: लीन प्रोटीन आदमी को मोटा कर सकता है, जिसमें आदमी को बहुत संभल कर खाना पीना यूज करना पड़ता है, जैसे उसको प्रोटीन के लिए अंडे यूज करने पड़ेंगे, मछली यूज करने पड़ेंगे, दाल, कच्ची सब्जी, जिससे प्रोटीन उसको सही मात्रा में मिल जाए।
1: नौवां है कि अपनी चारी अपनी थाली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और या फिर आप क्या जानते हैं?
0: अपनी क्यारी अपनी थाली वो है जिसमें हम अपने बागीचे में या फिर अपने बाड़ी में जो भी साग सब्जी उपजाएं, मशरूम, हरी सब्जी, साग, ये इसका उपयोग आंगनवाड़ी में भी किया जाता है बच्चों को देने में, जो हम अपने घर में उपजा सकते हैं बिना खाद बिना रसायन के, उसको हम अपनी थाली अपनी क्यारी कर सकते हैं।
1: तो क्या अपनी क्यारी अपनी थाली का प्रयोग सभी ग्रामीणों को या फिर सभी व्यक्तियों को करनी चाहिए?
0: करनी चाहिए और जरूर करनी चाहिए, इससे समाज में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इससे आदमी लंबा टाइम तक स्वस्थ रह सकता है, आदमी को ये यूज करना चाहिए, बिना रसायन का खाद्य पदार्थ यूज करना चाहिए।
1: जी दीपक जी, दीपक जी आपको धन्यवाद 90.8 FM ग्रीन की ओर से, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद।
2: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
1: मैं अजय कुमार 90.8 FM ग्रीन से, मैं आज

0: साथ संबंधित व्यक्तियों को जागरूक भी करते हैं। तो ओम, आप हमें यह बताएं कि पोषण के बारे में आप क्या जानते हैं?
1: पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन, वसा और ऊर्जा मिलती है।
0: जी, और पोषण को हम किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं?
1: हम पोषण को संतुलित कर उसको उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और हमें कमजोरी, थकान, स्वास्थ्य में नहीं होती है तकलीफ, समस्याएं।
0: अगर व्यक्ति दवाई ना खाए और पोषण अपने तरीके से ही लेना चाहे, अपने घरेलू उपाय के हिसाब से ही पोषण को लेना चाहे, तो क्या करेगा?
1: उसे अच्छी साग सब्जियां खानी चाहिए, स्वस्थ और ताजे फल सब्जियां खानी चाहिए, जिससे उसका संतुलित आहार बना रहे।
0: पोषण में आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करना चाहिए?
1: आयरन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फोलिक एसिड प्राप्त करने के लिए आप अंडे, मांस मछलियां, डेयरी, फल सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। फ्लोरिक एसिड आपको अंडे और मांस मछलियों, दूध से बनी चीजें जैसे पनीर, दही से इत्यादि से मिल जाएगी।
0: और आपका अगर आदमी या व्यक्ति सही से पोषा आहार ना ले तो उन्हें क्या क्या परेशानियां हो सकती?
1: अगर कोई व्यक्ति सही से पोषण ना ले तो उसे बहुत सी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कमजोरी, थकान, खत्म करने की क्षमता कम हो जाएगी उस रोगों से लड़ने की, हृदय रोग उत्पन्न हो सकता है और हड्डियां कमजोर हो जाएगी धीरे धीरे।
0: आपका महिलाओं को सही से पोषा आहार ना मिले तो क्या क्या समस्या हो सकती है?
1: महिलाओं को सही से पोषण नहीं मिलने से एनीमिया, जैसे यानी खून की कमी, कमजोरी, थकान, बार बार संक्रमण और हार्मोनल असंतुलन जैसी कई अस्वस्थ समस्याएं हो सकती है। मैं यह माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य को प्रभावित कर।
0: चलिए ठीक है, बच्चों को अगर सही से पोषण आहार ना मिले तो क्या परेशानियां हो सकती है?
1: बच्चों को सही से पोषण ना मिले यानी उनके पसंद की नहीं बल्कि पोषण से रिलेटेड नहीं मिले तो उन्हें बहुत सी समस्या हो सकती है, जैसे शारीरिक विकास में बाधा हो सकती है, कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, मानसिक बौद्धिक विकास में कमी, सीखने और अध्ययन केंद्रता कम हो सकती है और स्वास्थ्य समस्या और कुपोषण संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं।
0: जी ठीक। लीन प्रोटीन क्या होता है?
1: लीन प्रोटीन उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और वसा यानी फैट, खासकर संतृप्त वसा और कैलोरी का स्तर कम होता है। यह वजन घटाने और मांसपेशियों के रख रखाव में मदद करता है। इसके कुछ अच्छे स्रोत में शामिल है अंडे, मछली, स्नेल्स, फालियां, कम वसा वाला डेयरी।
0: हमारा कृषि कॉलेज एक कार्यक्रम चलाती है अपनी क्यारी अपनी थाली, तो अपनी क्यारी अपनी थाली क्या है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं?
1: अपनी क्यारी अपनी थाली भारत में खासकर बिहार राज्य में शुरू किया गया एक सरकारी और सामुदायिक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण को दूर करना और पोषण युक्त आहार की उपलब्धि सुनिश्चित करना है। मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों और पोषण वाटिका या छोटी क्यारी आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों या घरों के पास लगाई जाती है। इन क्यारियों में मौसमी पोषण से भरपूर सब्जियां और फल उगाए जाते हैं।
0: तो धन्यवाद ओम जी, आपने 90.8 FM ग्रीन को अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद।
2: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases. So, see you at the vaccination center soon.
3: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
2: Are आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों, आज के टाइम पे ना हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीज़ें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो ज़रूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
2: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
4: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज़ करें। जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है, उसमें हम लोग डेटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में। जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
2: तो सर, भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है?
4: क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो अगर हम अब हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे, वो कृषि से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत आसान है ये समझना, अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा, और जो अभी जो करंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
2: सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
4: बिल्कुल,
2: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है नहीं। क्या ये सच है?
4: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है। जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज़ चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है। मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजोन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए। ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में, अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए। तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े। तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम ये थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
2: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी है?
4: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें, तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है, इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में। जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहेगा, क्या रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है, ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका। ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है। मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
5: तो सर क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है?
4: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना, उसमें क्या भाव चल रहा है, ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पे स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहा है। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
5: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
4: सबसे बड़ा फ़ायदा तो इससे ये होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपके मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
5: सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
4: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके, सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज़ कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की ज़रूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज़ हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
5: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में।
4: स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI 4-5 ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज़ करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा. इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं. और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं. मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को. आपको बार बार उसमें जानकारी आती रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में. तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं.
5: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
4: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए. जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए. एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी. ई नाम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का. तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं. उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए. उसके बाद फिर आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए. जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं. मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए. तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें. तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है.
5: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं.
4: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज़ को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है. इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए. हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हर साल. यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं. तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें.
5: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
4: तो ये ट्रेनिंग जो है, इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं. आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं. तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं. हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है. अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी.
5: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद को.
4: बिल्कुल बिल्कुल.
5: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, IoT के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करते हैं?
4: तो IoT जो है, IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है. तो मान लीजिए कि कुछ भी मेज़र करना हो, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेज़र करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेज़र करना हो, ये सब चीज़ को हम IoT से कर सकते हैं. अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए, मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा. तो ये सब सेंसर है. IoT जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के. तो ये सब चीज़ IoT के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर.
5: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
4: तो स्मार्ट सिंचाई में भी IoT का ही एक माध्यम है. स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की ज़रूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पर, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए. तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब जरूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी, आप जानते होंगे डीजल का भी यूज होता है जेनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज करें तो।
5: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
4: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज करना है तो आप बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है, एक डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है जरूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है किसान.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
5: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
4: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी, जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें और फिर आपको जवाब देगा, ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
5: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
4: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में और ख़ासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, वो सब में बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे या फिर जो भी ग्रॉसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराना का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है ब्रोकोली है ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से, और आप देखेंगे कि 12 बजते बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सारी फसलें जो है ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से होती है और AI मेथड से, इसमें AI यूज़ किया जाता है इसके लिए, आपको ग्रीन हाउस में होता है, ये पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
5: तो अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है?
4: चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो हैं वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ़ नहीं है यूज़ करने में, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए ये रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं जो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए तभी आप सफल हो पाएंगे।
5: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
4: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर, ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
5: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद उमा जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
5: दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: कृषि

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
0: हाँ, इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
3: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
3: अच्छा,
4: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रूबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाएं जड़ तक।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या फिर डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोल कर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से

10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का विचार, जो हमें भेजा है ग्राम हनुमानगढ़, जिला फजिलका, पंजाब से अमन कुमार वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने। लिखते हैं,
3: हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि आपकी मुस्कान किसी की हिम्मत बन सकती है।
1: बहुत सुंदर विचार। जी हाँ श्रोताओं, ऐसा कहते हैं कि मुस्कुराहट वो चाबी है जो बहुत से संबंधों के बंद तालों को खोल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार के लिए।
3: और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजे हैं संदेश।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे जी का।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है राजेश कुमार विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से। वो लिखते हैं,
1: NCERT के रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मुझे बहुत सारी उपयोगी जानकारी मिलती है। मैं आपका कार्यक्रम नियमित सुनता हूँ।
3: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी
1: और लाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता देवांगन के साथ साथ डिंपल देवांगन।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीश शहरी, पूजा और पायल।
1: तो श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने संदेश भेजा और आप हमसे जुड़े रहे। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। तो हमारा पहला प्रश्न था, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम और गांव का नाम बताइए।
3: इसका उत्तर है साथियों, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय और उनके गांव का नाम था लमही, जो बनारस के पास उत्तर प्रदेश में है।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था जो हमने आपसे पूछा था कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्यों बढ़ती जा रही है।
3: इसका उत्तर है साथियों, भारत वाली इंडियन प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रही है, जिसके कारण बीच का हिमालयी हिस्सा ऊंचा होता जा रहा है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था कि भारत के किन्हीं दो प्रमुख वर्षा वनों के नाम बताइए।
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, सुंदरवन और अंडमान निकोबार के वर्षा वन।
1: अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि किन मुख्य मानवीय कारणों से रेगिस्तान बनते।
3: इसका उत्तर है साथियों, रेगिस्तान बनने के कई प्राकृतिक कारण भी हैं। यदि मानवीय कारणों की बात करें तो आवास और कृषि की जरूरतों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, बदले में पेड़ नहीं लगाना रेगिस्तान बनने का प्रमुख कारण है।
1: और अब सुनते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, भूमिगत झरने कैसे बनते हैं।
3: इसका उत्तर है, भूमिगत झरनों के बनने के कारण है भूमि की सतह से या वर्षा के पानी का पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पानी का धरती के अंदर चला जाना और अंदर ही अंदर दरारों में बहना, इसे भूजल भी कहते हैं, फिर किसी जगह निकास पाकर झरने के रूप में बाहर आना।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आइए सुनते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, दुनिया के सबसे नए या युवा पर्वत का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
3: दुनिया के सबसे नए या युवा पर्वत का नाम बताइए।
1: आप 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपना उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं।
3: हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक और एक्स और लिंक्डइन पर भी आप जरूर फॉलो करें। और अब प्रस्तुत है आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है खुशी का राज।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम है जिसमें बताया गया है, सच्ची खुशी आपस में मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की सहायता करने से ही प्राप्त होती है। हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए लेकिन एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए।
4: कॉकरोच जिसे दिल चट्टा भी कहते हैं, एक गंदा कीड़ा होता है। एक मर्तबा तमाम कॉकरोच एक जगह जमा हुए और शिकायत करने लगे कि हमें कीड़ों में क्यों शामिल किया जाता है। दांत इतने तेज होते हैं और पंजे जानवरों की तरह तेज होते हैं, लेकिन जानवर हमें कीड़ा ही समझते हैं और बड़ी हिकारत से देखते हैं। हमारे पर भी होते हैं और हम उड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई हमें परिंदा नहीं मानता और परिंदे भी हमें जलील समझते हैं।

0: उन्होंने अपनी ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि इन तमाम बातों पर गौर किया जाए और कोई ऐसी तदबीर की जाए जिससे उनकी इज्जत में इजाफा हो। जब सब जमा हो गए तो उनमें से सबसे बूढ़े कॉकरोच ने खड़े होकर कहा,
1: आप सबको ये तो मालूम ही है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है।
2: जी जी जी दादा।
1: आप में से जो कोई इस मामले में कुछ कहना चाहे वो कहे और कोई सूरत निकाली जाए कि हमें कीड़ा ना समझा जाए।
0: उनमें से एक छोटा कॉकरोच उठा और उसने कहा,
3: देखिए ये बात तो हम सबको परेशान किए हुए है कि सब हमें जलील समझते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी लड़की की शादी किसी जानवर से कर दें तो फिर उनसे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी और हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे। इस तरह ये मसला

0: इस बात की बहुत तारीफ की और ये तय हुआ कि उनके खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की को तलाश किया जाए और एक चूहे से उसकी शादी कर दी जाए। सब ने मिलकर एक लड़की तय की और उसे लेकर चूहे की तलाश में निकले। थोड़ी सी कोशिश के बाद एक चूहे को तलाश कर लिया। वो एक पेड़ की जड़ में बिल बनाए हुए आराम कर रहा था। चूहे ने जब कॉकरोच को देखा तो कहा,
1: कहिए जनाब, कैसे तकलीफ की? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ?
0: कॉकरोच ने कहा,
2: हुजूर, एक जमाने से हम परेशान हैं, हमारे बाजू भी हैं, हम उड़ भी सकते हैं, हमारे पंजे और दांत भी बहुत तेज हैं, लेकिन हमें कोई ना तो जानवर मानता है और ना परिंदा, इसलिए हम अपनी लड़की को आपके पास लाए हैं, आप इससे शादी कर लीजिए। इससे शादी करने के बाद आप हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे और इस तरह हम जानवरों में शामिल हो जाएंगे।
0: चूहे को उनकी ये बातें बड़ी अजीब लगी। वो बहुत देर तक सोचता रहा और उसके बाद बोला,
1: देखिए जनाब,
2: कहिए,
1: मुझे सख्त अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप किसी और के पास जाइए।
3: जी ठीक।

0: चूहे की बात सुनकर कॉकरोच बड़े हैरान हुए। वो सोचने लगे कि ये भी उन्हीं की तरह हैं जो अपनी जान बचाए फिरते हैं। वो आगे बढ़े और एक पहाड़ी के करीब सांप के पास पहुंचे। सांप बहुत आराम से गोल मटोल हुआ पड़ा था। कॉकरोच को आते देखकर सांप उठ बैठा। सांप बहुत गौर से सबकी बातें सुनता रहा और फिर उनसे बोला,
1: मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी जान तो खुद ही मुसीबत में रहती है। मैं हर वक्त नेले से डरता हूँ, उसके दांत बहुत ही तेज होते हैं। वो जब चपटने लगता है तो उस वक्त मुझे अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। आप उससे कोई राय ले।
0: आखिरकार उन्हें एक झोपड़े में आदमी मिल गया। वो उस झोपड़े में दाखिल हुए तो देखा कि एक दुबला पतला आदमी एक चटाई पर बैठा हुआ है। कॉकरोच जैसे ही आगे बढ़े वो एकदम से खड़ा हो गया और उन्हें हटाने लगा। कॉकरोच ने कहा,
2: डरिए मत, हम आपसे मदद लेने आए हैं।
0: आदमी ने पूछा,
3: हाँ कहो क्या कहना है।
0: कॉकरोच ने उसे भी पूरी कहानी सुनाई। आदमी ने बहुत जोर से कहा लगाया और कहा,
3: ओ, आप मेरे पास आए हैं, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ की बात क्या है। आप जानते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा आप ही से तकलीफ होती है। अगर मैं तेल खुला छोड़ दूं तो वो आप पी जाते हैं, खाना रख दूं तो आप उसे खराब कर देते हैं, बावर्ची खानों को तो आपने अपना घर ही बना रखा है। आपने तो खुद मुझे आजिज कर रखा है और अब आप मुझसे ही मदद मांग रहे हैं। आपसे जानवर तो क्या मैं भी परेशान हूँ।
0: कॉकरोच ये सुनकर बहुत खुश हुए। वो वापस अपने घर गए और उन्होंने एक दूसरा जलसा किया। उन्होंने कहा,
1: हम सब जानवरों के पास गए और देखा कि जानवर तो क्या आदमी भी किसी ना किसी से डरता है और आदमी तो सबसे ज्यादा हमसे ही डरता है। एक छोटा सा कीड़ा होने के बावजूद हमारी बड़ी अहमियत है, इसलिए हमें हरगिज शर्मिंदा ना होना चाहिए। हमें अपने कॉकरोच होने पर फख्र होना चाहिए, इसलिए कि हम देखने में तो छोटे हैं लेकिन हमारी भी अहमियत है। छोटी से छोटी चीज की भी अपनी जगह बहुत अहमियत होती है, इसलिए हमें कीड़े ही बने रहना चाहिए और इसी हाल में खुश रहना चाहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुशी का राज।

0: मैंने दीक्षा पोर्टल पर सर्च किया और पाया अपना मनपसंद ऑडियो वीडियो कार्यक्रम।
1: आप भी सर्च कर सकते हैं
2: कक्षा 1 से
0: 12 तक की
2: किसी भी विषय की रोचक जानकारी। तो आइए चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर।
1: और हाँ, आप दीक्षा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
3: दीक्षा, आपका अपना शैक्षिक पोर्टल।
4: दीक्षा, दीक्षा।
5: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बादल और मोती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें बताया गया है, बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो पशु पक्षियों का ख्याल रखें।
6: In a small village, a boy named Badal walked home happily every day after school. Excited to see his mother and find out what delicious food she had made. But today, something unexpected was waiting for him.
2: Today at school was amazing. I can't wait to get home and see what Ma has prepared for lunch. What's that sound? Is someone crying? Oh no, it's a little puppy. Hey dear, don't be sad. You must be lost. I will take you home with me. Come, come.

0: Just like Moti, we should always care for our pets and cherish their companionship. A true friend will always help in times of need.
1: So friends, did you hear how amazing Moti was in saving Badal? Yes, he was indeed, isn't it? And what about Badal? He loved Moti so much and took great care of him. You know, pets do speak, but only to those who know how to listen. Friends, pets are very special members of our family. So, take care of not only your pets, but also all birds and animals around you. Badal and Moti, you were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Artists, Mamta Malkani and Farhan Ali Naqvi. Child artist, Vanya. Sound recordist, Manju Kumari. Script writers, Deepali Sardana and Stuti Paul. Guidance, Ajit Horo. Direction, Vimlesh Chaudhary. Produced by Jagbandhu Jana. This program is brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बादल और मोती,
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है।
5: कब से?
4: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
5: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुड़बक
4: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
5: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
4: डॉक्टर खांसी तो है।
5: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
4: टीबी?
5: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
4: ठीक है।
5: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीते।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट

0: कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
1: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से चार कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू, जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड, उसको वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक, जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं, जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं, जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड, जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक, जो है इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
0: जी, तो सर, ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
1: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है, और इसकी वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
0: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
1: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
0: और इससे बचने का कोई तरीका, जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सकें और अपने फसलों को बचा सकें?
1: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है। अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
0: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और सर, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें?
1: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है, तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया,

0: वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
1: अच्छा।
0: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़ा होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत ज़रूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे
1: जी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले भी ज़रूरी होता है कि बीजों का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसानों के लिए आपका कोई अंतिम संदेश?
0: यस, तो उड़द मैं एक लास्ट संदेश यही देना चाहता हूँ कि उड़द हमारे लिए एक बहुत लाभदायक फसल है, लेकिन इससे जैसे मैंने बताया कीड़ों से बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए किसान भाइयों को नियमित रूप से निगरानी करने का ज़रूरत है और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन जो हमने मेंशन किया उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
2: फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो TB हो सकता है।
2: TB?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: TB किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। आज का कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में लोग सुनते तो बहुत है लेकिन सही जानकारी अभी भी हर घर तक नहीं पहुंच पाई है। आज हम बात करने वाले हैं TB रोग के बारे में, यानी क्षय रोग के बारे में आज हम बहुत सारी बातें समझने वाले हैं। किस तरीके से हम सब मिलकर बना सकते हैं टीबी मुक्त भारत, इस बारे में हम बातें करने वाले हैं विस्तार से। लेकिन शुरुआत करते हैं एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, पास के ना एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश भाई जी को कई हफ्तों से खांसी थी। पहले उन्होंने सोचा मौसम बदल गया होगा, फिर पड़ोसियों ने कहा कि पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, बुखार आने लगा, रात में पसीना आने लगा, लेकिन शर्म और डर की वजह से उन्होंने जांच ही नहीं करवाई। जब हालात ज्यादा बिगड़ गई तब आशा दीदी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। जांच हुई तब पता चला कि टीबी है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या हुई? इलाज शुरू हुआ, दवाइयां मुफ्त मिली, पोषण सहायता मिली और आज रमेश पूरी तरह स्वस्थ है। यानी सच यही है कि टीबी लाइलाज नहीं है बल्कि पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और इन सारी बातों को समझाने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अपनी प्रिय टीकन देवी। स्वागत है आपका टीकन देवी जी।
1: धन्यवाद आरजे जी। सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, टीबी से डरने की नहीं समझने की जरूरत है। जी हाँ, टीबी को समझने की जरूरत है। टीबी को हम समझेंगे तभी उससे हम लड़ पाएंगे। श्रोताओं, टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलती है, और जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या जोर से बोलता है तो बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, टीबी का इलाज संभव है और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ये पूरी तरह मुफ्त है। और भारत सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, और भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से टीबी को पूरी तरीके से देश से खत्म कर दिया जा सके।
4: टीकन देवी जी, आपने बताया कि देश में टीबी खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है, क्या कोई स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं?
1: बिल्कुल आरजी जी, और ये जानना बहुत जरूरी भी है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत साफ और समयबद्ध लक्ष्य तय किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जितनी जल्दी हो सके टीबी मरीजों की पहचान की जाए, क्योंकि अक्सर लोग महीनों तक खांसी को सामान्य समझते रहते हैं, जांच नहीं करवाते हैं। उन्हें लगता है कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम के बदलने की वजह से हो गया है, या फिर किसी भी वजह से वो जांच नहीं करवाते, जिससे टीबी जैसी बीमारी अंदर ही अंदर फैलती रहती है। इसलिए अब सरकार की कोशिश ये है कि हर संदिग्ध व्यक्ति तक जांच की सुविधा पहुंचे और बीमारी शुरुआती चरण में ही पकड़ में आ जाए, जिससे बीमारी को जड़ से खत्म करना आसान हो। और दूसरा लक्ष्य है टीबी से होने वाली मौतों को कम करना। देखिए, जब मरीज समय पर इलाज शुरू करता है और दवाइयां नियमित लेता है तो टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, लेकिन अगर मरीज देर करता है तो मौत भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी मरीज का इलाज बीच में ना छूटे। इसलिए मरीजों के लिए जरूरी होता है कि वो नियमित और पूरी दवाई ले। और तीसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रखा है हमारे भारत सरकार ने कि समुदाय में नए टीबी मामले कम से कम मिले या बिल्कुल खत्म हो जाए। यानी सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना भी जरूरी है। इसके लिए जागरूकता, स्क्रीनिंग और लोगों की भागीदारी सबसे अहम है। श्रोताओं, दरअसल ये अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। जैसा अभियान का संदेश भी कहता है, टुगेदर वी कैन स्टॉप टीवी, योर वॉइस, योर अवेयरनेस एंड योर एक्शन कैन हेल्प बिल्ड अ हेल्दियर टीबी मुक्त भारत। यानी हम सबकी आवाज और भागीदारी से ही टीबी मुक्त भारत संभव है।
4: बहुत सुंदर बात कही आपने। मतलब सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब समाज भी साथ आएगा। टीकन देवी जी, एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग टीबी के लक्षण पहचान ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सामान्य खांसी या कमजोरी है। ऐसे में लोग कैसे समझें कि जांच करवाने का समय आ गया है?
1: आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। मैं सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को दो हफ्तों से ज्यादा लगातार खांसी बनी हुई है तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लें। कई बार खांसी के साथ बलगम भी आता है और कुछ मामलों में खून भी दिखाई

0: में अधिक पसीना आए तो ये भी टीबी का लक्षण हो सकता है। कई मरीजों में धीरे धीरे वजन भी कम होने लगता है, भूख कम लगती है और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होती है। और कुछ लोग सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ भी महसूस करते हैं, इसलिए रोजमर्रा के काम करते हुए जल्दी थक जाना भी एक संकेत हो सकता है आरजे जी। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो जांच करवाने में देर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो पाएगी।
1: यानी शरीर संकेत देता है, बस हमें समझने की जरूरत होती है और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। एक सवाल और, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है या कुछ लोग ज्यादा खतरे में होते हैं?
0: देखिए, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर जिन लोगों को पहले कभी टीबी हो चुकी है उनमें दोबारा संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उन्हें विशेष सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। इसी तरह अगर घर में किसी सदस्य को टीबी है तो बाकी परिवार के लोगों की नियमित जांच बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि वे लंबे समय तक एक मरीज के संपर्क में रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी संक्रमण फैल जाए। और एक और बहुत बड़ा कारण है कुपोषण। हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें लगता है कुपोषण और टीबी का क्या रिश्ता होगा? है, जिन लोगों का शरीर कमजोर होता है या जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो टीबी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जिन्हें डायबिटीज है और HIV से प्रभावित है उन व्यक्तियों में भी संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है आरजे बाबू। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि धूम्रपान और शराब का सेवन फेफड़ों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे टीबी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए धूम्रपान शराब से बिल्कुल बचा कर रखें खुद को, और जो भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं उन सभी की नियमित स्क्रीनिंग बहुत जरूरी मानी जाती है, ताकि बीमारी समय रहते पकड़ा जा सके और उसका इलाज किया जा सके।
1: मतलब जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें खास तौर पर सतर्क रहने और समय समय पर जांच करवाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और यही जागरूकता टीबी मुक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
1: अब तक हमने लक्षणों और जोखिम वाले लोगों के बारे में जाना, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है जल्दी जांच और जल्दी इलाज। आखिर ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है?
0: देखिए आरजे जी, टीबी को खत्म करने की सबसे बड़ी रणनीति बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। पहला कदम हमें क्या उठाना है? बीमारी को जल्दी से जल्दी पहचानना है, और जब किसी व्यक्ति की समय पर जांच हो जाती है तो संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू कर दिया जा सकता है, तो ऐसे में बीमारी को जल्दी ठीक किया जा सकता है। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचानना, दूसरा कदम है तुरंत इलाज शुरू करना। कई बार लोग जांच तो करवा लेते हैं लेकिन दवा शुरू करने में बहुत देर कर देते हैं या फिर वो डर जाते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं कि आप दवा शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि टीबी का इलाज जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी मरीज स्वस्थ होगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा इलाज पूरा करना। टीबी की दवाइयां बीच में छोड़ देने से बीमारी वापस आ सकती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। अगर आप टीबी का इलाज बीच में छोड़ेंगे तो उसके बाद मरीज को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का खतरा हो जाता है आरजे बाबू। इसलिए ये तीन कदम बहुत जरूरी होते हैं। पहला कदम बीमारी को जल्दी पहचान लीजिए, दूसरा कदम कि तुरंत इलाज शुरू कीजिए, और इलाज शुरू करने के बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, इलाज पूरा कीजिए। डरना नहीं है, इलाज करवाना है, नियमित और पूरी दवाई खानी है और पौष्टिक आहार लेना है। और बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अस्पताल जाएंगे, खर्चा बहुत होगा, और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है टीबी को लेकर। इसलिए अब सरकार सिर्फ इंतजार नहीं कर रही है कि टीबी मरीज अस्पताल आएंगे, बल्कि अस्पतालों में, विशेष OPD में और हाई रिस्क समूहों में स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि बीमारी की पहचान खुद लोगों तक पहुँच कर की जा सके। इससे क्या होगा कि बीमारी की पहचान हो जाएगी, उनका इलाज जल्दी शुरू होगा, और उनका इलाज जल्दी शुरू होगा तो उनकी बीमारी भी जल्दी ठीक होगी।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों का इंतजार नहीं कर रही बल्कि लोगों तक खुद पहुंच रही है, ये सच में बहुत अच्छी पहल है। टीकन देवी जी, कई श्रोता ये सोचते हैं कि टीबी की जांच और इलाज बहुत महंगा होगा, इसलिए लोग डर जाते हैं और जांच कराने में देर करते हैं। क्या सच में इलाज इतना मुश्किल और खर्चीला है?
0: नहीं आरजे जी, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।

मैं आज सभी श्रोताओं से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, टीबी की जांच और इलाज भारत सरकार द्वारा पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

0: मिलता है तो पूरी दवाइयां भी सरकार के द्वारा निशुल्क दी जाती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है कि पैसे बहुत खर्च होंगे, आपको जांच से लेकर दवाइयां तक सब कुछ मुफ्त मिलेगा।
1: मतलब मरीज को दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं?
0: बिल्कुल नहीं, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं, देर ना करें। सरकार चाहती है कि कोई भी व्यक्ति पैसों की चिंता की वजह से इलाज से वंचित ना रह जाए। और ये बात हर किसी तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आप अगर आपको लक्षण दिखे तुरंत जांच करवाइए जो मुफ्त होगा, और अगर लक्षण दिखने के बाद जांच करवाने के बाद टीबी निकलता है तो उसके बाद आगे का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होगा। डरिए मत, इलाज करवाइए और आप पूरी तरह स्वस्थ हो पाएंगे।
1: लेकिन लोग अक्सर दवा कुछ दिन लेने के बाद छोड़ देते हैं, क्या इससे फर्क पड़ता है?
0: बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टीबी का इलाज सामान्य बुखार या खांसी जैसा नहीं होता है, इसका इलाज कई महीनों तक लगातार चलता है। और सबसे जरूरी बात, दवा नियमित और पूरा कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। और अगर मरीज बीच में दवा छोड़ देता है तो बीमारी दोबारा और बहुत गंभीर रूप में लौट सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद क्या होगा कि दवाइयां कम असर करने लगेगी और उसके बाद टीबी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दवा बीच में बिल्कुल ना छोड़ें और याद रखें कि पूरा इलाज ही टीबी को पूरी तरह से ठीक करता है।
1: टीकम देवी जी, आपने पहले बताया था कि सरकार सक्रिय रूप से लोगों की जांच भी करा रही है, ये जांच कहाँ कहाँ की जा रही है?
0: बहुत अच्छा सवाल। अब टीबी की पहचान सिर्फ अस्पताल वाले मरीजों तक सीमित नहीं है, सरकार एक्टिव केस फाइंडिंग यानी सक्रिय खोज अभियान चला रही है और अब जांच कई जगहों पर की जा रही है, जैसे कि एचआईवी क्लिनिकों में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होती है, एनसीडी क्लिनिक में होती है जहां डायबिटीज या अन्य बीमारियों के मरीज आते हैं, डायलिसिस केंद्र में भी मरीजों की स्क्रीनिंग हो रही है, कैंसर उपचार केंद्र में, वहीं तंबाकू निषेध क्लिनिक में भी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि इस समूह को भी टीबी होने का खतरा ज्यादा रहता है। और अस्पताल के ओपीडी में या फिर आईपीडी में, दोनों ही जगहों पर, दोनों ही विभागों में नियमित स्क्रीनिंग की जाती है। देखिए, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, सक्रिय खोज अभियान चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य साफ है, बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके ताकि संक्रमण फैलने से पहले ही इलाज शुरू हो सके और मरीज स्वस्थ हो सके।
1: यानी अब सरकार मरीज के आने का इंतजार नहीं कर रही बल्कि खुद खोज रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही रणनीति टीबी खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, जल्दी पहचान और तुरंत इलाज।
1: टीकम देवी जी, क्या इन प्रयासों से भारत में सच में कोई बदलाव दिख रहा है?
0: जी हाँ, ये बहुत उत्साहजनक खबर है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वर्ष 2015 से 2023 के बीच हमने टीबी के रोकथाम में बहुत सफलता पाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में टीबी के मामलों में लगभग 18% की कमी आई है और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 21% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये सबके प्रयासों का ही फल है कि हम वैश्विक औसत से भी तेज प्रगति कर रहे हैं, जो दिखाता है कि जब सरकार, स्वास्थ्य कर्मी और समुदाय साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव बहुत संभव हो जाता है।
1: ये सच में उम्मीद देने वाली बात है, यानी अगर लोग समय पर जांच और पूरा इलाज करवाएं तो टीबी को खत्म किया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और इसलिए मैं श्रोताओं से फिर कहना चाहूंगी, टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, जांच और इलाज मुफ्त है, दवा नियमित लें और पूरा कोर्स करें, और लक्षण दिखे तो तुरंत जांच

0: की सही पोषण से भी ठीक होती है। जब शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है तभी दवाइयां असर करती है और मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होता है कि टीबी मरीजों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि वो पौष्टिक भोजन ले सके और इलाज के दौरान जो कमजोरी होती है उससे बच सके। इसके अलावा निक्षय मित्र पहल भी चल रही है जिसमें समाज के लोग, संस्थाएं और समुदाय आगे आकर मरीजों को पोषण, भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। और निक्षय मित्र कोई भी बन सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप निक्षय मित्र बनिए और टीबी मरीजों को आप किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप उन्हें हौसला दे सकते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज पूरा कीजिए और जो भी जरूरी सहायता आपसे संभव हो सके वो आप प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आप कह सकते हैं कि पूरा समाज मरीज का सहारा बनता है ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के दौरान अकेला महसूस ना करे।
1: वाह, मतलब इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं बल्कि समाज के सहयोग से पूरा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, क्योंकि टीबी मुक्त भारत सिर्फ सरकार अकेले नहीं बना सकती है ना, इसमें समाज की भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। जन भागीदारी का मतलब होता है हर व्यक्ति जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करे। सबसे पहले लोगों तक टीबी के लक्षणों की सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है और जब जानकारी होगी तभी लोग जांच के लिए आगे आएंगे। दूसरा, हमें लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। कई लोग डर या शर्म की वजह से जांच नहीं करवाते और ये सोच बदलनी होगी कि अगर आपको टीबी हो गया है तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ना ही डरने वाली बात है। आप जांच करवाइए और इलाज करवाइए। और लोग इसलिए भी डरते हैं, शर्माते हैं कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो। तो तीसरी सबसे जरूरी बात यही है कि भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। टीबी मरीज को अलग या कमजोर समझना बहुत गलत है, बल्कि उनका सहयोग करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मरीज को पूरा इलाज करवाने में मदद करना चाहिए। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी होती है कि मरीज को पूरा इलाज के लिए आप प्रोत्साहित करें। और सबसे अहम बात कि मरीज को पोषण और मानसिक सहयोग देना होता है। जब समाज साथ खड़ा होता है तो मरीज का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगी कि टीबी पर खुलकर बात करें, इसे छुपाएं नहीं।
1: सही कहा आपने, बीमारी छुपाने से नहीं समझने और मिलकर लड़ने से खत्म होती है। टीकन देवी जी, हमारे समाज में कई तरह की बातें सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि टीबी छूने से फैलती है या मरीज के पास बैठने से बीमारी हो जाती है, क्या ये सच है?
0: नहीं, ये पूरी तरह गलत धारणा है आरजे बाबू। टीबी साथ बैठने से नहीं फैलती, ना ही खाना साझा करने से फैलती है। ये बीमारी मुख्य रूप से तब फैलती है जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता है या छींकता है और हवा में मौजूद जीवाणु उन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जरूरी सावधानियां बहुत ही सरल है। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में सावधानी रखें और घर या कमरे में ताजी हवा आने दें। जब सही जानकारी होगी तब डर और गलत फहमियां भी खत्म होगी आरजे।
1: यानी डर नहीं, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। टीकन देवी जी, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वो खुद को टीबी से कैसे बचा सकता है?
0: देखिए, रोकथाम के तरीके बहुत आसान है और रोजमर्रा की आदतों से जुड़े हैं। सबसे पहले खांसी शिष्टाचार, यानी कि जब भी खांसी आए तो अपने मुंह को ढकें, छींके तो भी अपने नाक को ढककर छींके। इससे क्या होगा कि संक्रमण फैलने से रोका जा सकेगा। दूसरा है कि पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है क्योंकि मजबूत शरीर संक्रमण से बेहतर लड़ पाता है ना। और तीसरा, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और घर में अच्छा वेंटिलेशन रखना भी बहुत जरूरी है ताकि हवा का प्रभाव बना रहे। आप बंद कमरे में रहेंगे तो जो भी संक्रमण होगा वो कमरे में ही रहेगा, लेकिन जब साफ हवा कमरे के अंदर आएगी तो आप संक्रमण से खुद को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। और जिन लोगों में जोखिम ज्यादा है उन्हें डॉक्टर की सलाह से प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है जिससे बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जोखिम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से मिलिए, उनसे सलाह लीजिए और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात कीजिए।
1: छोटी छोटी आदतें लेकिन बड़ा असर, यही संदेश है।
0: और अंत में मैं सभी श्रोताओं से दिल से कहना चाहूंगी कि टीबी लाइलाज नहीं है, इसकी जांच और इलाज दोनों मुफ्त है। बस सबसे जरूरी है कि पूरा इलाज करिए और मरीजों का साथ दीजिए, भेदभाव नहीं करिए। और याद रखिए, अभियान का संदेश यही है, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय इंडिया, पावर्ड बाय जन भागीदारी। यानी कि जन भागीदारी के साथ ही हम टीबी को खत्म कर सकते हैं।
1: दोस्तों आपकी आवाज

0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।
1: धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये है 90.8 MHz यानी FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई ना करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियान 50 EC या फिर डाइमेथोएट 30 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियान 50 EC को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रीड की 0.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियान की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है। ट्रैप बांधने की अवस्था फल पकने से 60 दिन पहले होना चाहिए और 6 से 10 सप्ताह के अंतराल पर नर की सुगंध बदलते रहना चाहिए। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम हर रोज दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के हिसाब से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन और भैंस को 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें। ध्यान दें, हरा चारा 20 से 25 किलो हर पशु को दिन में जरूर खिलाएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना?

अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಋಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है. जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में. और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और खासतौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से. लेकिन अगर उनके लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफी प्रभाव पड़ता है. ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है. इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी. सर आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
1: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है. एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है. दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है. और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट. ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है. और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं.
0: तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
1: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है. जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते हैं और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं. पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं. और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है.
0: सर जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
1: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं. फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है. इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए.
0: सर जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं. तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करे, तो कैसे कर सकते?
1: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है. तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं. जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है. पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है. और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है. तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े.
0: सर पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए.
1: जी,
0: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
1: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए. तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए, जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, तो इससे क्या होता है संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छाटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
0: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
1: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल के नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
0: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
1: धन्यवाद आपको भी।
0: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: अरे जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं। बुढ़बात
2: खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है और लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन ऐन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है। वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है। ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियाँ किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर अपना परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी, और ये इतनी कमाल की कहानी है वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म पिंक आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, ज़रूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म, एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ज़रूर देखिए। और हम आगे बढ़ें तो द ग्रेट इंडियन किचन, और ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है। ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी, और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना जरूरी होता है, और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपके उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़ लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कम बैक करती है और सारी चीज़ें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई, तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस मैं यहाँ देने बैठ जाऊँ तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज़ हुई थी फिल्म लापता लेडीज। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी अपनी बेटी अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है, अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही जरूरी होता है। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा, इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे, तो ये फिल्में आप जरूर देखें अभी के लिए। तो लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट आपके दोस्त उमा को दे इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

0: क्या आप सब खसरे के बारे में जानते हैं? हाँ या ना?
1: ऐसे बच्चे कभी ना कभी हम सभी ने अपने परिवार में या आस पड़ोस में देखे होंगे, हाँ या ना?
2: हाँ।
0: इसे ही कहते हैं खसरा, जिसे एक साधारण बीमारी समझा जाता है और इलाज की जगह पूजा पाठ करवा कर सोचते हैं ये अपने आप ठीक हो जाएगा।
1: खसरा बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कारण हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। अगर एक बच्चे को खसरा है तो उसके संपर्क में आने वाले बच्चे को भी खसरा होना निश्चित है।
2: ये तो गंभीर समस्या है भाई।
0: समस्या तो गंभीर है चाचा, पर इसका सरल है उपाय।
2: क्या क्या क्या?
1: बच्चे को पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाने से इससे बचा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: तो सबकी समझ में आ गया ना? खसरा रुबेला बीमारी है घातक, आइए इसे मिटाए जड़ तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त आरजे उमा। साथियों, खेती अब सिर्फ हल और बैल और मौसम के सहारे रहने वाला नहीं है। अब खेती में भी दिमाग वाला कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कदम रख चुका है। तो आज हम अपने कार्यक्रम में खेती में एआई की संभावनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, और हमारे साथ आज हैं सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम ग्रीन के प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र। आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप विश्वविद्यालय में खेती में एआई के अभिनव प्रयोग पर कार्य करते रहते हैं, आप बताएं कि एआई किस तरह से खेतों में उपयोगी हो सकता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का नमस्कार। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एआई क्या है। देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि इंसान और चाहे हम जानवर की बात करें या जितने भी लिविंग थिंग हैं, जो जीवित चीजें हैं, उनके बीच और

0: माना आ चुका है, आने वाला है ये हम नहीं कहेंगे। ये पिछले वर्षों तक की बात थी कि आने वाला है, बल्कि यह AI का दौर है और आ चुका है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है अब मशीनी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। तो ऐसे में जो सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता, आकलन करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें मशीन में आ चुकी है। तो कहते हैं कि पिछला वर्ष जो गुजरा 2024 का जो वर्ष था वो AI एक एक्साइटमेंट के तौर पे आया था, फिर 2025 में AI एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आया, लेकिन अब जो AI है ना वो हमारे ज़िंदगी का भाग बन चुका है। एक हमारी ज़िंदगी को आसान कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो अब खेती जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है, इससे के बगैर चाहे वो दुनिया जितना भी एडवांस हो जाए, जितना भी दुनिया तरक्की कर ले, लेकिन खेती में जब तक कि विकास की बात न करें तो बातें अधूरी रह जाती है। यानी कि ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए हमें खेती ज़रूरी है। तो अब खेती में AI का क्या प्रयोग हो सकता है? तो देखिए, पहले की बात कि AI का आप अभी कैसे प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में प्रयोग कर रहे थे, मार्केटिंग वाले बड़ा आसानी से आपका डेटा ले लेते हैं और उसको फिर एनालिसिस करते हैं, फिर वो आपको प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां जो कर रही थी, अब ये आम आदमी जो है अब करने लगा है। ChatGPT से आप सवाल पूछते हैं, जवाब देता है।
1: उसमें अब AI बड़ी बड़ी कंपनियों से आम आदमी
0: के आसपास आ चुका है। गूगल का जो AI स्टूडियो है आपका काम आसान कर रहा है, विद्यार्थियों का काम आसान कर रहा है। तो हर चीज़ का दो पहलू होता है, एक उसका सकारात्मक पहलू, एक नकारात्मक पहलू। तो जो चर्चाएं हैं नकारात्मक वाली पहले होती हैं, तो AI जब कदम रख रहा था तो, या अभी भी जिनके लिए AI नया है तो उनके बारे में, AI के बारे में बहुत सारे भ्रामक चीज़ें हैं, AI जॉब खा जाएगा, AI हमारा नुकसान कर देगा। तो ये ऐसी बात नहीं है, लोगों को समझना चाहिए। जब कंप्यूटर भारत में आ रहा था तो इसी तरह की अफवाहें थी, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो हमारी ज़िंदगी आसान हुई। टिकट की लाइन अब नहीं लगती, हमारे मोबाइल पर ही टिकटिंग होती है। सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं ऑनलाइन

0: जिंदगी आसान नहीं हो जाएगी, बल्कि वो चीजें हमारे लिए सुलभ भी हो जाएगी। इससे गरीबों का भी फायदा होने वाला है। अब देखिए, खेती जो है वो किसान करते हैं, आम जो लोग हैं हमारे देश की, जो अभी भी हमारे राज्य की निर्भरता खेती के ऊपर ही है। अब देखिए, खेती में इसका प्रयोग से कैसे किसान अपना खर्च बचा सकते हैं, तो हम देखेंगे कि खेती में पहला कदम जो है एआई से हम कैसे करवा सकते हैं। तो फसल के चयन और बुआई में भी हम एआई की मदद ले सकते हैं।
1: अच्छा।
0: तो अक्सर किसान भाई पूछते हैं, जब हम अपने रेडियो कार्यक्रम के दौरान होते हैं, जब हम उनसे मिलते जुलते हैं, प्रशिक्षणों में मिलते हैं, तो कहते हैं क्या कि इस साल कौन सी फसल बोए, इस साल कौन सी फसल का की बारी है, मंजर आएगा कि नहीं, बारिश की संभावना कितनी है, होगी नहीं, या ये इस बार ज्यादा बारिश हो गई है तो क्या लगाएं। हाँ। तो ऐसा जो सिस्टम है ना, तो हम उसको अगर इसमें एआई से हम पूछें, तो एआई के पास अगर इस तरह के डाटा है तो जो जवाब देगा वो बहुत ही सटीक होगा, बल्कि भ्रामक नहीं होगा। अब मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियां होती हैं वो भी सटीक होती है, कई बार वो भी उसमें कमी रह जाती है, लेकिन जो एआई की जो अपनी जो एआई भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि डेटा के आधार पर ही आपको चीज़ों से अवगत कराता है। तो ऐसे में एआई से हम पूछें कि इस बार कौन सी फसल बोएं, तो एआई पहले ये देखेगा कि इस बार मौसम जो है वो पिछले बार कैसा रहा था, पिछले 50 साल के जो मौसम का डेटा, एक पैटर्न होता है बारिश का, कि अगर इतना तापमान है तो बारिश की इतनी संभावना होगी, कोई अगर एल नीनो जैसे अभी चल रहा है तो उसका प्रभाव से कितना बारिश की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति पूरे दिन जो आकलन करेगा और एक वैज्ञानिक जो है पूरी टीम कर के बताएंगे, एआई आपको बस कुछ पलों में ही एनालाइज करके बता सकता है कि आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, बारिश होगी या नहीं, ये भी जल्द ही एआई आपको बता देगा। और हम लोग भी एआई आधारित जो मौसम का जो अनुमान अभी बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही बता रहा है, और उसके जरिए आपको मौसम की के जो मिजाज है उसके अनुसार कृषि की सलाह भी हम अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एआई आपको फसल के चयन में आपको मदद कर रहा है, बुआई के समय में, अब देखिए जो वैज्ञानिक महोदय कहते रहते हैं कि जब बारिश का पैटर्न जो है वो जैसे जैसे शिफ्ट करता है, वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन यानी कि उत्पादकता प्रभावित होती है। तो इस चीज को एआई बहुत तेजी से गणना करता है, जैसे खेतों में इस बार नमी बहुत ज्यादा रह गई क्योंकि लेट बारिश हुई थी, उस नमी के कारण रबी की बुआई में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई, जिसमें गेहूं की बात हो या दलहनी या तिलहनी की बात हो। तो ऐसे में जब ये बारिश हो रही थी उस समय, तो आप एआई के जरिए अनुमान लगा करके इस तरह के सिस्टम जो डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रह सकते थे कि हमारी बुआई किस चीज़ की करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको फसल कौन से लगाने में लाभदायक होगा, तो आपके जो फसल लगाने के जो मेथड होते हैं, वहाँ के जो मिट्टी की उपलब्धता होती है, वहाँ की क्लाइमेट होती है, वो बहुत सारा चीज़ इसके लिए जवाबदेह होता है। तो इन सबके डेटा अगर आपके एआई के पास है तो ये सही तरीके से बता सकता है कि अगर देर हो चुकी है तो इसमें कौन सी फसल बुआई आपके लिए आसान होगी, क्या बीज की सही मात्रा होगी, बुआई का सही समय क्या होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में एआई आपको मदद करता है।
1: अच्छा, एआई क्या हमें मौसम की सटीक जानकारी देता है, और कैसे दे सकता है एआई हमें मौसम की सटीक जानकारी?
0: देखिए, मौसम की बात करें तो मौसम किसान का सबसे बड़ा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है, क्योंकि मौसम आधारित हमारी खेती प्राचीन काल से रही है और आज भी हम मौसम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं, बल्कि मौसम की मेहरबानियों पर ही हमारी खेती टिकी हुई है। तो जो एआई आधारित मौसम प्रणाली है उसमें बारिश, पाला, लू, तूफान की पहले से चेतावनी की पूरी उसमें जानकारी दी जाती है। इससे पहले किसान समय रहते फसल बचा सकते हैं, सिंचाई या कटाई का निर्णय ले सकते हैं, और अगली बुआई का पहले से ये तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो मौसम का जो मिजाज है ना, उसका आप जैसे लोगों का मिजाज भाप के आप बात करते हैं, कि मूड कैसा है जनाब का, तो ऐसा ही हम मूड में बात करेंगे। तो ऐसा ही मौसम का मूड क्या रहने वाला है AI से।

0: जानकारी लेकर के आप सही तरीके से अपने फसल को या सही फसल को बुआई कर सकते हैं।
1: तो मौसम के हिसाब से बुआई या फसल की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसके बाद फसलों में जो कीट और रोग लग जाते हैं उससे क्या बचाव में AI मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, ये देखिए कीटों की पहचान और कीटों की रोकथाम एक बहुत बड़ा जटिल विषय रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो खेती में इनपुट लगता है उसमें खाद पानी जो श्रम है, इसके अतिरिक्त जो कृषि रसायन है ना, जिसमें कि कीटों को रोकथाम, इसके रोगों की रोकथाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। यानी कि जो एक किसान खेती करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस बार की खेती में हमें मात्र 20% मुनाफा हुआ या 10%

0: सबसे पहला कदम ये हो सकता है कि हम कैसे हम इसका प्रबंधन कीटों और रोगों को सही तरीके से करें। तो जो AI है वो कीटों की पहचान करने में, उसकी रोकथाम करने में, सलाह देने में बहुत ही आसानी से काम कर रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय का ई निरोग ऐप है, ये भी इस पे काम कर रहा है और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपने खेतों में जो भी पौधे आक्रांत हैं, चाहे वो सीरियल क्रॉप यानी कि कोई आपकी पारंपरिक खेती हो या फिर बागवानी हो, लत्तेदार सब्जियां हो, तो उनके फसलों के जो आक्रांत वाले भाग हैं उसको फोटो खींचकर आप अपलोड करते हैं, कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, तो जो AI सर्वर है वो उसको एनालाइज करके और आपको जानकारी देता है कि ये वास्तव में किस तरह का कीट है, उन कीटों से रोकथाम के लिए क्या सटीक उपाय है, कौन कौन सी दवाइयाँ आपको रिकमेंड की जाती है। तो ये अभी कार्य किया जा रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT के सहयोग से, और ये काफ़ी कारगर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप भी कार्यरत हैं, जैसे प्लांटिक्स के नाम से एक ऐप है, उसमें भी आप लोड करके और अपने जो भी प्लांट हैं उसके भाग को फोटो खींच करके आप उसमें दे सकते हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आपको सहज है तो गूगल आज ये फैसिलिटी देता है, गूगल जेमिनाई हो या गूगल का AI मोड पर आप जाएँ, आप अपने पौधे की फ़ोटो खींचें, आप उसके बारे में पूछें। हाँ, आप ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका सही एंगल से रहना चाहिए, उसमें फ़ोटो को सही एंगल के साथ साथ फ़ोटो सही प्रकाश में यानी कि सही लाइट में खींची जानी चाहिए ताकि उसको समझ में आ सके। नहीं तो हो सकता है कि आपका अगर फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हो तो उसका जो रिप्लाई है, जो आपका प्रतिउत्तर जो आएगा, उसमें थोड़ी सी आपकी गलती हो सकती है, लेकिन इसमें गलती की संभावना कम रहती है जो AI जो डाटा दे रहा है। तो अब देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, आप सीधे अपने दुकानदार भाई से जाके पूछते थे कि इसमें ऐसा कीट लग गया है, फल ससमट लग गया है, इसमें मधुआ लग गया है, तो इसके लिए कोई दवा बता दी। तो क्या करता था कि वो दवा आपके फायदे से ज़्यादा उनके फायदे में कौन सा हो सकता है, किस पे ज़्यादा उनका कमीशन है, ऐसी संभावना बनती थी और वो आपको दे देते थे। सबसे ज़्यादा जो किसान सलाह लेते हैं वो दुकानदार से ही लेते हैं जो दवा बेचने वाला है। तो ऐसे में आप पहले से अगर जागरूक रहेंगे तो पूछ सकते हैं कि नहीं भैया उसमें कीट तो ये है, तो हम फिर ये दवा क्यों डालें। तो ये एक है उसमें कि आपको कीटनाशक का जो नाम आ जाएगा, छिड़काव की विधियां आ जाएंगी, और एक सिस्टेमिक जो दवा है ये जो कि वैज्ञानिक ही बता पाते हैं कि कब कब किस मात्रा में दवा दें ताकि उसका सिर्फ निदान नहीं हो पाए बल्कि अगली बार भी जो है वो खेती में आपका कीट ना आ पाए, इसका भी निदान बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है AI अभी बखूबी करके दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, आपका पैसा कम लगा, फसल में ज़्यादा रसायन नहीं पड़े तो फसल भी जो है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और सुरक्षित रहेगा, हमारे कंजप्शन के हिसाब से ज़्यादा सटीक रहेगा। तो इस तरह से हमारे लिए जो कीट और रोग की पहचान निदान में हमारा AI जो है सहायक बन रहा है।
1: बस किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना होगा कि वो जो भी फोटो खींचते हैं वो अपलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और सही प्रकाश में सही एंगल से ली गई होनी चाहिए। हमने कीट और उसके प्रबंधन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन क्या AI की मदद से स्मार्ट सिंचाई भी की जा सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए पानी आज सबसे बेशकीमती संसाधन है, हम बेतरतीब तरीके से सिंचाई करें और एक हम सूक्ष्म तरीके से सिंचाई करें और ज़रूरत पड़ने पे ही सिंचाई करें, ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि हम सिंचाई के लिए या तो बिजली खपत करते हैं या फिर हम डीजल इंजन चलाते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कि हम अपने धरती का दोहन करते हैं। तो इन सभी बातों में क्या होता है कि हमारा पैसा लगता है, जो प्राकृतिक संसाधन का दुरुपयोग होता है अगर हम सही तरीके से सिंचाई न करें, लेकिन AI जो है यहाँ पर भी मदद कर रहा है। इस तरह की चीज़ें आने वाली हैं या कई किसान भाई अपना चुके हैं, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो बड़े स्तर पर जो खेती कर रहे हैं वो AI आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली भी लगा रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि AI को पता होता है कि पानी कब देना है, कितना कितनी मात्रा में देनी है, पानी देनी भी है या फिर नहीं देनी है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, वो मॉइस्चर सेंसर ये बताते रहता है कि इस पौधे में मिट्टी में कितना अभी पानी

0: की मात्रा है या फिर बिल्कुल पानी नहीं है। डेटा पहले से बता रहा होता है कि इस फसल में कितनी पानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो एक स्मार्ट तरीके से चल रही होती है, उसमें आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और ये पानी जो है अपने उपयोग के हिसाब से ही कमांड जाता है और मोटर चालू हो जाता है और जो भी आपका स्प्रिंकलर है या ड्रिप है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी पानी वहाँ पर जाते रहती है। अगर किसी एरिया में लो लैंड है वहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है, आपका कुछ एरिया जो है खेत का अपर लैंड है, तो ऐसे में क्या होता है वहाँ भी वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को चॉक कर देता है और जहाँ पानी की ज़्यादा आवश्यकता है तो वहीं पे पानी देता है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि एआई की मदद से पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है, फसल की सेहत बेहतर रहती है और कुल मिलाकर प्राकृतिक संसाधनों का भी यहाँ पर सदुपयोग हो पाता है।
1: मतलब एआई की मदद से किसान भाई बहन स्मार्ट सिंचाई कर सकते हैं, पानी की कितनी ज़रूरत है और कब पानी देना है नहीं देना है, ये सारी चीज़ें एआई की मदद से काफ़ी बेहतर तरीके से की जा सकती है और पानी को भी और फसल को भी बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और एआई और कृषि मशीनें ये दोनों एक साथ मिलकर किस तरीके से किसान भाई बहनों की मदद कर सकता है?
0: हाँ, देखिए जो मशीनें हैं ना वो एक हार्डवेयर होती है। अब आप कल्पना करिए कि उस हार्डवेयर पे अपना जो कमांड कौन देता है, इंसान देता है। तो ये इंसानी बुद्धि जो है उसको चला रहा है। अब वह दिन भारत में दूर नहीं, चूंकि अब दूर पहले विदेशों में ऐसा हो रहा था, अब इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है कि एआई से चलने वाली मशीनें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको बीज कहाँ पे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी मशीनों में पहले से डेटा फिट रहेगी। आपको वह दिन दूर नहीं जब ट्रैक्टर भी एआई आधारित आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप आए दिन सुनते होंगे कि विदेशों में ऐसे ऐसे कार चल रहे हैं जिसमें ड्राइवर लेस है, जो सब कुछ जानता है, जबकि सड़क पर गाड़ी चला लेना बहुत मुश्किल होता है और खेतों में थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम होता है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से प्रयोग के स्तर पर की जा रही हैं कि ट्रैक्टर में एआई इनेबल लगाया जाए, ऐसे उसमें सेंसर लगाए जा रहे हैं, इस तरह के रडार लगाए जा रहे हैं कि खेत को स्कैन करके और जो ट्रैक्टर है वो उसमें परिचालित होता है। अब उसमें आप चाहे तो जीरो टिलेज से की बुआई कर रहे हो तो क्या होता है कि जीरो टिलेज में बीज की बीज की दूरी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो एआई कंट्रोल कर लेगा और उसमें खाद और दवा की जो सटीक मात्रा है वो भी आपको ये चला जाएगा और सारा डेटा जो है वो एक सर्वर पे जाएगा और वो सर्वर को ये पता रहेगा कि खेत में कब बुआई हुई है, कब इसमें खाद पड़ना है, सेंसर के जरिए पता होगा कब इसमें सिंचाई होना है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है वो एक सीध में होती है और एआई जो है वो खेती को संपादित करता है। तो इससे मजदूरी का खर्च घटेगा आने के दिनों में और काम तेज और सही तरीके से ही होगा।
1: बिल्कुल, मतलब एआई मशीनों के साथ मिलकर और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। किसान भाई बहन की एक और समस्या होती है फसल को उगाने के बाद कि बाजार तक कैसे पहुँचे और उससे अच्छी आमदनी कैसे ले, तो क्या इसमें भी एआई कुछ सहायता कर सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए एआई अब यह भी बताता है कि फसल की अनुमानित पैदावार कितनी हुई है, उस आधार पर उसका मंडी का भाव क्या है, कब बेचने से ज़्यादा दाम मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो बिचौलियों पर कम निर्भर रहेंगे और सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस स्तर के जो कार्य हैं जहाँ पे कॉरपोरेट फार्मिंग हो रही है, जहाँ पर कि एक बड़े स्तर की खेती हो रही है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो इंगेज हैं, वहाँ पे ये एआई आधारित जो बाजार भाव है वो उसका सही आकलन हो रहा है। जैसे गेहूं की इस बार अभी खेती हो रही है, मौसम अनुकूल रहता है, बम्पर क्रॉपिंग हो जाती है, बहुत शानदार फसलें होती हैं, तो क्या होगा कि ज़्यादा उत्पादन यानी कि बाजार में मांग कम। तो ऐसी स्थिति में एआई को पता रहेगा कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है। तो किसान भाई अगर इसको ये देखेंगे अपने एआई के माध्यम से कि दूर के मंडी में इतना भाव इसका गिर चुका है, बड़ी मंडी, और छोटे मंडी वाले में अभी भी जो बाजार भाव है वो ठीक ठाक मिल रहा है या हमें स्थानीय स्तर पे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो AI के मदद से अपने अनाज का सही भाव पे, उचित भाव पे उसको बेच सकेंगे। AI यहाँ यह भी निर्देशित करेगा कि आपको अभी बाज़ार में होल्ड करने की ज़रूरत है, अभी आपका सामान स्टोर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ार में मांग आने वाली है। AI चूँकि सारी चीज़ें जो है डेटा एनालिसिस के आधार पर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर करते हैं, तो इसका जो डिमांड है, इसका जो सप्लाई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो डेटा आते रहती हैं उसके आधार पर आपको ये बताता है कि कब खरीदना है, कब बेचना है। जैसे शेयर मार्केट में होता है, AI आधारित शेयर मार्केट की जो जानकारियां जो दी जाती है तो उसमें बहुत ही सटीक आधार पर होता है कि कब शेयर खरीदना है, कब बेचना है। तो ठीक उसी तरह से जो कमोडिटी बाजार है, जो मंडी भाव है, वहाँ पर भी इसकी जानकारियाँ आपको सही तरीके से दी जाती रहेगी, जिससे कि आपको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और आपका जो फसल है उसका उचित दाम मिल पाएगा।
1: मतलब अब AI बाजारों तक किसान कब पहुंचे तो उनके लिए बेहतर होगा, और कब पैदावार अच्छी हुई है ये AI अनुमान लगा लेता है, इसके बाद उसका भाव क्या रहने वाला है ये भी अनुमानित हो जाता है, जिससे किसान भाई बहनों को अच्छा जो मुनाफा है वो मिलता है। और इसके अलावा क्या AI से होने वाली कुछ चुनौतियां भी होती है या फिर उससे कुछ आने वाली मुश्किलें जो होती है उसका कुछ समाधान भी है क्या?
0: देखिए AI एक सुविधा, एक सुलभता तो है ही, इसमें कई चुनौतियां भी हैं। AI के जो फायदे के अलावे जो चुनौतियां हैं, जैसे किसान भाई में अभी भी थोड़ी सी लिटरेसी की कमी है, उतना टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो उसके साथ सहज नहीं है, तो एक चुनौती तो है। थोड़ा एक क्या है कि तकनीकी डर है, जैसे अभी हम एक इंसान के तौर पर इंसान से वार्तालाप करते हैं, अब एक निर्जीव चीज़ के साथ इंटरेक्ट करना कि बताओ भाई इसमें कौन सा फसल लगाएं, इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है, तो एक तकनीकी डर है, एक तकनीकी झिझक है, एक चुनौतियां हैं। अब इसका जो समाधान ये है कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। जैसे हम अपने किसान भाइयों को दैनिक स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं कि कब क्या लगाएं, कितना दूरी पे लगाएं, किस मौसम में लगाएं, नई नई खेती, इस सब चीज़ों का प्रशिक्षण चलता है, तो अब उनको इस प्रशिक्षण में AI को भी शामिल करने की ज़रूरत है। तो किसान भाई इस तरह के जो खेती है उसमें अगर AI के बारे में और भी ज़्यादा जागरूक रहें, तो देखिए आप ज़रूरी नहीं कि आप हमारे वार्ता को, हमारी परिचर्चा को सुनकर कल से AI का प्रयोग शुरू ही कर देंगे, लेकिन एक ये होता है कि आप AI का दौर आने वाला है, आप कहीं पीछे न छूट जाएं, आप बिल्कुल तैयार बैठे रहें कि आपके पास AI का स्किल है, शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो आप खेती कर रहे हैं, कई किसान भाई ड्रोन दीदी जो है उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो ड्रोन भी AI के जरिए आपका वो एक प्रिसाइज वे में खेती का सलाह भी देता है, साथ ही वहाँ पर छिड़काव भी करता है। तो ये सारी चीज़ों के साथ आप पहले से संलग्न है तो आने वाला दिन आपका रहेगा। बाकी जो किसान भाई छूट जाएंगे उसमें आप AI वाले किसान भाई रहेंगे। देखिए AI से पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर से पहले क्या हुआ, मशीन आया। कहते हैं कि जो 1757 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मशीनी युग आया, तो जहाँ पर 10 मजदूर काम करते थे एक मशीन काम करने लगा जी। बड़े बड़े फिर भीमकाय मशीन आने लगे, जहाँ 100 मजदूर काम करते थे एक ही मशीन काम करने लगा, यानी मशीनों ने मजदूरों का जो हक कहते हैं कि छीना था। तो क्या हुआ कि जो मजदूर का हक छीना गया वो मजदूर जो बुद्धिमान थे वो मशीन चलाना सीख लिया, यानी कि जिस मशीन से उनकी नौकरी जाने वाली थी, उनकी दिहाड़ी जाने वाली थी, उन्होंने उस मशीन को ऑपरेट करना सीख लिया। तो क्या हुआ, वो आगे चल के एक बड़े इंजीनियर बन गए, उद्योगपति बन गए। ऐसे ही कंप्यूटर का युग आया, तो जब कंप्यूटर का युग आया तो ऐसे में किसकी नौकरी छीनी, जहाँ पर कि जो क्लर्कल जॉब था, जहाँ पर 10 क्लर्क काम करते थे वहाँ पर एक कंप्यूटर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, जो जिन्होंने कंप्यूटर को सीख लिया उनको तरक्की मिल गई, उस काम को तेजी से संपादित करने लगे, उनको अपने काम में ज़्यादा प्रगति मिली और ज़्यादा प्रमोशन मिला। जो नहीं सीखते गए, जो आलोचना करते रहे, वो पीछे छूटते चले गए। ऐसे ही एआई का युग है। आपको आलोचना करने से, आप में डर बना करके रखने से, भ्रम फैलाने से एआई के दौर पर कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। एआई आपके जीवन का हिस्सा है, आगे रहेगा, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। चाहे वो खेती हो, वो कारोबार हो, शिक्षा जगत हो, मीडिया जगत हो, कोई क्रिएटिव जगत हो, हर जगह पर एआई ही एआई का बोलबाला रहेगा। अगर आप एआई से डरेंगे तो एआई वास्तव में आपका जो जॉब है उसका नुकसान पहुंचाएगा, एआई से आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उस एआई से काम निकालना सीख जाएंगे तो आप उस एआई के मास्टर बन जाएंगे, एआई आपका फायदा पहुंचाने वाला बन जाएगा।
1: यानी कि एआई से नुकसान हो सकता है, वो नुकसान तभी हो सकता है जब एआई से आप अच्छी तरीके से परिचित ना हो। आप अचानक से एआई के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, एआई से बहुत ज़्यादा मदद लेने लगते हैं उसे बिना जाने समझे, तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। लेकिन जब आप एआई का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं।
0: बिल्कुल। तो आज की खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और तकनीक से आगे बढ़ेगी। एआई जो है वो खेती का दुश्मन नहीं, किसान का नया साथी है। तो याद रखिए, जब तकनीक खेती से जुड़ती है तो खेती भविष्य बन जाती है। इसी संदेश के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।
1: धन्यवाद ईश्वर चंद्र जी, आपने एआई से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताई कि किस तरीके से एआई की मदद से किसान भाई बहन बहुत तरक्की कर सकते हैं और अपनी फसलों को बचा सकते हैं, अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अच्छी आय भी कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हम मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। आप जुड़े रहिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। 16 से 17 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। इसके बाद 20 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 20 से 25 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि इस अवधि में 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पे किसान भाई बहनों के लिए। किसान भाई बहनों के लिए एक सामान्य सलाह ये है कि आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में खेत में कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें। ध्यान रखें कि खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और खाद और कीटनाशकों का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो गर्मा मूंग और उड़द की खेती करते हैं उन्हें बता दें, मूंग और उड़द की फसल में रस चूसक कीट माहू, हरा फुदका, सफेद मक्खी और थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। बचाव के लिए हेतु मेलाथियन 50 ईसी या फिर डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में छिड़काव करें। ध्यान रखें, छिड़काव तभी करें जब वर्षा ना हो। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, फल मक्खी लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा जैसी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इस कीट का अगर प्रकोप हो तो प्रकोप शुरू होते ही 1 किलोग्राम छोआ, 2 लीटर मेलाथियन 50 इसी को 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। छिड़काव तभी करें जब मौसम साफ हो, वर्षा होने की स्थिति ना हो। जिनके खेत में भिंडी लगे हैं उन्हें बता दें, भिंडी की फसल में अगर लीफ हॉपर कीट का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड की आधा मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरीके से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें और अगर माइट कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इथियन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से इस घोल का छिड़काव करें। ध्यान रखें, गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेला, लौकी यानी कि कद्दू और खीरा की फसल में निकाई गुड़ाई जरूर करें। जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, आम के बाग में फल मक्खी के प्रबंधन के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाएं। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 फेरोमैन ट्रैप लगाकर फ्रूट फ्लाई मक्खी को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इन ट्रैपों को निचली शाखाओं पर 4 से 6 फीट की ऊंचाई पर बांधना चाहिए। ध्यान दें कि एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप के बीच में 35 मीटर की दूरी रखें और ट्रैप को कभी भी सीधे सूर्य की किरणों में नहीं रखना चाहिए। ट्रैप को आम की बहुत घनी शाखाओं के बीच में नहीं बांधना चाहिए और ट्रैप को ऐसे बांधें कि बाग में साफ दिखाई दे कि ट्रैप कहां बांधा गया है।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಋಷಿ. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं आम और लीची में लगने वाले कीट के प्रबंधन के बारे में. दोस्तों कुछ ही वक्त में आम और लीची बाजार में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी लगभग हर किसान भाई बहन की ये समस्या होगी कि आम और लीची में लगने वाले कीटों का प्रबंधन कैसे करें. इस बारे में आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर श्याम बाबू साहा. आप हैं कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद.
0: सर सबसे पहला सवाल कि आम के बगीचों में फसल सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए.
1: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों. चूंकि अभी का जो समय है उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए. चूंकि अब जो आपका फसल है, आम का जो फसल है, तो वो उसका साइज लगभग अंडा के आकार का हो गया है. तो इस समय मुख्यतः कौन कौन से समस्या आपको आ सकती है और क्या क्या हमें करना चाहिए. तो सबसे पहले ये है कि जो भी आपका बाग बगीचे है उसमें साफ़ सफाई का पूर्णतः ध्यान देना चाहिए. वो साफ़ सफाई आपका बाग हो, क्योंकि अगर साफ़ सफाई नहीं रहता है तो उसमें जो है कि वो कीटों का जो है वो आश्रय बनता है, और जिसके चलते जो है कि आपके जो बगीचे में है उसका प्रकोप ज़्यादा होता है. तो कोई भी, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो बगीचा है तो उसमें जो है कि अगर कोई विशेष खरपतवार हो या ऊंची ऊंची झाड़ियां हो तो उनको हटा लेना है, और साथ में अगर कोई ऊपर से कोई फल गिर रहे हों तो उसको वहाँ नीचे में नहीं रखना है, उसको वहाँ से हटा करके किसी गड्ढे में उसको गाड़ देना है. साथ ही साथ आपको जो है अभी चूँकि तेज गर्मी जब चल रही थी उस समय भी ध्यान देना है. अभी तो पछुआ हवा चल रही है, ये पूर्वा

0: हवा चल रही है तो अभी ठीक है, लेकिन जो ही आपको लगे कि पानी की अगर ज़रूरत है तो अपने जो बगीचे हैं उसमें सिंचाई करना है। और जो भी हम लोग जब छिड़काव करने की बात करें, अगर कीटनाशक की जब बात करते हैं तो उसको ऊपर से नीचे तक उसमें छिड़काव करना है, ताकि जो है आपका जो पौधा है वो उसमें कीटों का नियंत्रण सही से हो सके। और कुछ चीज़ों ये है कि जो भी हम कीटनाशक लेते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली कीटनाशक हम लोग ले, जिससे कि आपका जो कीटों का प्रबंधन है वो अच्छे ढंग से हो।
1: तो सर, आम में कौन कौन से कीट मुख्यतः लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है?
0: हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुख्यतः जो अब आम में जो लगने वाले हैं, क्योंकि आम का तो कुछ स्टेज हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो अभी जो लगने वाले जो अभी जो लगे होंगे जिनसे आपको दो चार होगा, तो उनमें सबसे मुख्यतः अभी जो है फल मक्खी है। फल मक्खी जो है, अब किसान भाई इसको आप लोग जानिए कि फल मक्खी बोलते किसको हैं, तो ये जब आप आम के जो पौधे देखेंगे, जो आम का फल है, तो उसमें आप जो देखेंगे कि मक्खी के आकार से थोड़ा सा बड़ा लगेगा कि आपके फल पे बैठा हुआ है, तो वो जो है यही फल मक्खी है। और इसके ये आप देखेंगे कि इसके पंख थोड़ा बड़े बड़े होते हैं जनरली जो हम लोग के घर में जो मक्खी पाए जाते हैं उनके तुलना में। और ये फल पे बैठ करके ये एक देती हैं, अंडा देती हैं, और उनसे जो शिशु निकलता है, ये शिशु जो है पहले तो थोड़ा सा आम के आपका जो उसका ऊपरी वाला हिस्से जो है उसमें छिद्र करेगा, और छिद्र करने के बाद इसके शिशु जो है वहाँ अंदर चली जाती है, और अंदर जाने के बाद पुनः आपको वो अंदर वो खा करके और आपके जो फल है उसको वो सड़ा देती है, उसमें छिद्र कर देती है, और फल जो है कि समय से पहले ही वो पौधे से नीचे गिर जाता है। इसे कभी कभी किसान को लगता है कि जो आम जो है समय से पहले पक गया, लेकिन ऐसा समय ये नहीं है। तो ये फल मक्खी के शिशु इसको करते हैं। अब इसमें किसान भाइयों को कई चीज़ें हैं जो ध्यान देना चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं कि उसको नियंत्रण करने के लिए छिड़काव करते हैं, कि छिड़काव करते हैं हम कि छिड़काव से करेंगे, लेकिन नीचे जो फल गिर गया उसको किसान भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि चूंकि जो आपका फल गिरा उसमें जो आपका मधुमक्खी के जो शिशु हैं या उनके जो आगे वाला जो स्टेज है, प्यूपा है, या पुनः उनका जो जीवन चक्र है वो कंटिन्यू रहता है, तो जिसके चलते है कि आप ऊपर तो छिड़काव कर रहे हैं लेकिन नीचे में कीड़ा आपका लगा हुआ है, आपका आपके बगीचे में ही वो आश्रय लिया हुआ है। अतः ये ऐसे जो भी आपके बगीचे में अगर गिरे हुए हैं तो उनको चून करके और मिट्टी में उनको दबा देना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चूँकि आम का ये फल है तो इसमें हम लोग ज़्यादा जहरीला कीटनाशी न देते हुए इन चीज़ों का आप उपयोग करें, जिससे कि इसमें जो फल में जो विषाक्तता कम आए और हमारे लिए ज़्यादा वो हेल्दी हो। तो इसके लिए जो है फेरोमोन ट्रैप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो फल मक्खी के लिए फेरोमोन ट्रैप आता है, उसका 10 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से, मतलब एक एकड़ में आपको 10 फेरोमोन ट्रैप आपको इस्तेमाल करना है। फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल करने में ये एक प्रकार का ट्रैप है, जिसमें क्या होता है कि एक टेबलेट लगा होता है और उसमें मादा जो फल मक्खी है उसका सेंट निकलता है, जिसके चलते जो नर मक्खी है उसमें आके वो ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ा जाते हैं। तो ये ट्रैप है, और इसको जो है कि ये एक बार आप लगा दिए तो लगभग महीनों चलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके बाद हम लोग करते क्या है कि 1 किलो गुड़ का जो छोआ होता है वो लेते हैं, और 2 लीटर मालाथियन 50 EC उसकी जो है 1000 लीटर में इसको घोल बनाते हैं, और घोल बना करके इसको जो है छिड़काव करना है। और अगर ज़रूरत पड़े तो पुनः जो है कि 15 दिन के बाद एक छिड़काव और करें, जिससे कि है कि आपके जो ये आम के जो फसल में जो है जो गिरने की जो समस्या है, या जो फल छेदक फल मधुमक्खी का जो समस्या है, फल मक्खी का जो समस्या है, वो नियंत्रण आप कर सके। अब जो दूसरा जो कीट है वो है मिलीबग। मिलीबग या इसको दहिया कीट भी बोलते हैं, ये मुख्यतः जो है चिपटे गोल आकार के होते हैं एवं पंखविहीन होते हैं। ये उड़ नहीं सकते, ये ऐसा कीट है जो ये उड़ नहीं सकते एवं शरीर पे इनके जो है कि सफ़ेद जो दही के रंग का पाउडर चिपका होता है, इसीलिए इसको हम लोग दहिया कीट भी कहते हैं। अब ये जो कीट है मुख्यतः आपके जो आम के जो नए पत्तियां हैं या जो उनके जो जो पतले पतले उसके जो तना होते हैं तो उससे ये रस चूसते हैं, और जिस समय में अगर आम में मंजर आता है उसमें मंजर वाले डंठल में भी लगते हैं और उससे भी रस चूसते हैं, और फाइनली क्या होता है अंततः क्या होता है कि ये पत्तियाँ जो हैं सूख जाती है या मंजर में अगर लग जाएंगे तो फल नहीं लगेंगे। तो ये मिलीबग है, अब हमको हम समझते हैं कि आप पहचान जाएंगे इसको। ये चल के आगे ऊपर की ओर जाती है, चूंकि इसमें पंख नहीं होते ये इसलिए उड़ के नहीं जाती है। अब इनके हम लोग प्रबंधन के लिए क्या क्या करें, तो इसमें मई और जून महीने में बगीचे की अगर हम जुताई कर देते हैं, चूंकि ये मुख्यतः क्या एक पौधे से दूसरे पौधे में ये चल के ही जाती है तो नीचे से जाती है, तो अगर हम जुताई कर देते इनके जो भी जीवन चक्र के जो भी स्टेज हैं अवस्था है वो नष्ट हो जाते हैं और उनका फैलाव रुक जाता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। अब जो जुताई जब हम लोग कर लेते हैं तो जुताई करने के बाद हम लोग को इसमें चाहिए क्लोर पॉलीफॉस 50 cc प्लस साइपरमेथ्रिन 5 cc की जो है 150 ml मात्रा या फोलिडॉल 2% जो पाउडर के रूप में आता है उसका 250 ग्राम मात्रा है, या नीम की खली जो है जो उनकी 1 kg मात्रा जो है वो जो खेत के जो जो आम का पौधा है उसके आसपास उसको देना चाहिए, और पुनः उसको देने के बाद उसमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसके अलावे मिलीबग को रोकने के लिए आधा जो मेन जो पौधा का आम के जो पौधा का जो पेड़ होता है उसके आधा मीटर ऊंचाई पे 10 सेंटीमीटर एक ओस्टिको ग्रीस की पट्टी को लगाना चाहिए। ओस्टिको पट्टी ये मिलता है, अगर नहीं कुछ मिले किसान भाइयों तो आप जो ग्रीस जो यूज करते हैं ट्रैक्टर में या दूसरे अपने जो हमारे जो मशीनरी हैं उसको लगाने में, तो उसका 10 सेंटीमीटर का पट्टी पूरे पौधा में मतलब पौधे के चारों तरफ उसको लगाना है। ये इसलिए लगाते हैं कि ये जो मिलीबग अभी हम बताए कि ये चल उड़ नहीं सकती है, चल के जाती है, तो ये ग्रीस में अटक जाएगी, चिपक जाएगी और आगे आपका जो पौधा है ऊपर की ओर ये नहीं जाती है और आपका पौधा बच जाता है। इसके अलावा अगर किसान भाई ग्रीस अगर नहीं लगाते हैं तो 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला पॉलीथीन सीट जो सब जगह मिलता है उसकी 20 सेंटीमीटर चौड़ी पॉलीथीन चारों तरफ से पौधे में लपेट देना है। इसके चलते भी पौधा जो में ये मिलीबग जो है क्योंकि ये चिकना होता है पॉलीथीन ये ऊपर चढ़ नहीं पाता है। और उसके बाद अगर इन चीज़ों के करने से पहले अगर कीट पौधे के ऊपर चला गया है जो आप देखेंगे कि इसका प्रकोप हो रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग रासायनिक कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं। तो रासायनिक कीटनाशी के इस्तेमाल करने में हम लोग जो है इसको जो है रोगर या बिप्रोफेजीन 25 cc मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से इस पे हम लोग छिड़काव करते हैं, इसे इसका जो मिलीबग से है आपको नियंत्रण हो जाता है। अब जो दूसरा जो और कीट है जिसे सभी किसान भाई परेशान रहते हैं वो है तना छेदक। ये जो तना छेदक होती है किसान भाइयों ये आप देखते होंगे कि किसी भी शाखा में या पौधा में कभी कभी क्या होता है आप देखेंगे कि कुनाई टाइप से निकल रहा है और वो जालीनुमा टाइप से भी वहाँ पे दिखता है, तो ये हमारे तना छेदक का समस्या है या उसको जो बार्क ईटिंग कैटरपिलर बोलते हैं उसकी ये समस्या होती है। तो उसको उसे निजात करने के लिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एक सॉफ्ट एक मुलायम जो है तार या साइकिल का जो स्पोक है उससे उसको हम लोग साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद उसमें जो है चाहे पेट्रोल हो या नहीं तो किरोसिन तेल हो उसमें किसी कॉटन में उसको भिंगो करके और उसके अंदर उसको डाल देते हैं, वो जो